के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

तो लीजिए जनाब, एक बार फिर से हम आपके पास आ चुके हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर और कार्यक्रम भोर सुहानी, और आपके साथ हूँ मैं रूपा धवन। तो दोस्तों, कहते हैं कि सुबह का जो पहला घंटा होता है ना, वही तय करता है कि आपका पूरा दिन कैसा बीतेगा आज। तो आज की सुबह खुद से एक छोटी सी बात कहिए, मैं आज के दिन का आभारी हूँ। जो बीत गया वो कल था, जो सामने है वो एक नया अवसर है। आज जब आप चाय या पानी का पहला घूंट लें, तो बिना किसी जल्दबाजी के बस उस पल को महसूस कीजिएगा। अपनी चिंताओं को थोड़ी सी देर के लिए दरवाजे से बाहर ही रहने दें। ओहो, मेरी तो चाय भी ठंडी हो गई। तो लीजिए मेरे साथ फिलहाल चाय का, चुस्कियों का आनंद, और गाते रहिए हमारे साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

जी हाँ, चाय पीकर तो थोड़ी सी आप में अभी चुस्ती दुरुस्ती आ ही गई होगी। क्या कहा, अभी आप बिस्तर पर ही हैं? ओहो, अगर बिस्तर पर ही हैं तो धीरे से उठिए जनाब और हल्का गुनगुना पानी पीजिए, अपनी खिड़की खोलिए और ताज़ी हवा को अंदर आने दीजिए। सिर्फ 5 मिनट अनुलोम विलोम या प्राणायाम कीजिए और पूरा दिन बस तरोताज़ा रहिए।

दोस्तों, जब आप सुबह उठते ही ये तय कर लेते हैं कि आज का दिन मेरा है और मैं हर चुनौती का सामना मुस्कुराकर करूंगा या करूंगी, तो आधी जंग तो आप वहीं जीत जाते हैं। जिंदगी के इस मैदान में हार मुझे स्वीकार नहीं, मेरी मेहनत मेरी ताकत किसी की मोहताज नहीं। जब तक मंजिल के शिखर पर परचम ना लहरा दूं, रुकूंगा नहीं झुकूंगा नहीं, ये वादा निभाऊंगा। तो आज का दिन, आज की सुबह नई ऊर्जा के साथ आई है, तो इसे यूं ही अपने हाथों से ना जाने दें। पुरजोर कोशिश के साथ आज के दिन के साथ एक नई शुरुआत करें।

दिल के रिश्ते का कोई नाम नहीं होता, हर रास्ते का कोई अंजाम नहीं होता। अगर निभाने की चाहत हो दोनों तरफ तो कोई भी रिश्ता नाकाम नहीं होता। इन्हीं पंक्तियों के साथ रूपा अनुमति लेती है भोर सुहानी से। खुश रहिए, आबाद रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेती है रूपा। आप सुनेंगे कुछ ही पलों में समाचार। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की पहली तिथि, तदनुसार 23 अगस्त 2026। सुबह के 5:53 और 32 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

FM गोल्ड चैनल 97.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आइए अब आपको आज के कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण, जिसे प्रस्तुत करेंगे शीतल। 6:44 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड का भाग 31। 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार। 7:10 पर कार्यक्रम होगा गोल्ड सुप्रभात। 8:45 पर आप सुनेंगे म्यूजिकल दिल्ली कार्यक्रम। 9:00 से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार होंगे। 9:10 पर म्यूजिकल दिल्ली में आपके साथ होंगे विजय सिंह। 9:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।

एक बार फिर से आपको याद दिला दें, 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण, जिसे प्रस्तुत करेंगे शीतल। छह बजकर 44 मिनट पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस में अयोध्या कांड का भाग 31। ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 6 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि सीमा को हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना जरूरी था। बयान में कहा गया है कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से रूस की 2 दिन की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। वे व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर जयशंकर यात्रा के दौरान रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स JRSE लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। शिलान्यास समारोह के बाद JRSE भवन में लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती किरंगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट के बीच डूरंड कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने नवी मुंबई के कपड़ा अपशिष्ट पुनर्चक्रण मॉडल का विस्तार महाराष्ट्र के अन्य नगर निगमों में भी करने का आह्वान किया है। इससे बढ़ते कपड़ा अपशिष्ट की समस्या से निपटने के साथ साथ नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। श्री सिंह ने CBDT बेलापुर स्थित कपड़ा पुनर्चक्रण सुविधा TRF का निरीक्षण करते हुए कहा कि प्रतिमाह लगभग 78 टन कपड़ा अपशिष्ट एकत्र किया जाता है, इसीलिए इस अपशिष्ट को स्थायी संसाधनों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय को नवी मुंबई नगर निगम के साथ हुए समझौते के समान अन्य नगर निगमों के साथ भी समझौते करने पर विचार करना चाहिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने जयपुर के एक केंद्र पर अखिल भारतीय

अपरिमेय अनुकंपा तेरी शब्दों में कैसे लाऊं, तूने जो जो मुझको बख्शा शीश नवा कर गाऊं। कणकण में तेरा एहसास है जीवन की हर सांस में, तूने ही जो अमृत खोला इस मरुस्थल की प्यास में। अंधेरे रास्तों में आकर तूने दीप जलाए हैं, असमर्थों को अपने बल से मार्ग नए दिखाए हैं। हर असफलता की ठोकर में छिपा तेरा ही संबल था, तभी तो आज

इस जीवन का हर एक पल जल थल था। अब और करूं क्या याचना, जब सब कुछ दे डाला है, ये रोम रोम तेरा ऋणी, तूने जीवन संभाला है। बस श्वास श्वास यह कहती हो, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। चरणों में अर्पित है जीवन, हे प्रभु तुम्हारा आशीर्वाद।

चलता में हमारे जीवन के हर एक कण में आपका जो ये भाग है, हम न चाहते हुए भी इसे भूल न जाने कैसे जाते हैं। चलिए लौटते हैं अपनी उसी परममय प्रकृति की तरफ, जो हमारी माता भी है, हमारे पिता भी हैं, हमारा जीवन भी है और इस जीवन का आधार भी है। 6:13 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये शुरुआत हुई है आज के दिन की अर्पण के साथ और आज अर्पण में आपके साथ हूँ मैं शीतल।

हमारे जीवन में सबसे अहम और सबसे खास हैं हम खुद, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन की इस भाग दौड़ में इन सारी समस्याओं को लेकर के हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। याद रखिए, नए मुंह हैं, नए शरीर हैं, पर समस्याएं वही पुरानी हैं। आपको क्या लगता है कि जैसे आपको जल्दी सोकर उठना पड़ रहा है और आपका अभी और सोने का मन था, क्या ये समस्या 1000 साल पहले नहीं थी? बिल्कुल थी। 2000 साल पहले? जी बिल्कुल भी थी। और ऐसी ही जब से मानव अस्तित्व रहा है, समस्याएं तब से रही हैं। तो हमारे लिए क्या खास है? हमारे लिए ये खास है कि ये जीवन रूपी मौका जो हमें मिला है वो इस सारी सृष्टि का आनंद लेने के लिए है। ये ऐसा अद्भुत मौका है जब अविनाशी नाशवान के अंदर आकर खुद बैठ गया है। पता नहीं हम उन सारी समस्याओं को क्यों ऊपर रखते हैं, और जब हम उन समस्याओं से नहीं जूझ कर हल कर पाते तो हमें लगता है कि नहीं, अब जीवन की समाप्ति निकट है और अब हमें सब कुछ ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, जीवन बहुत खूबसूरत है और आशीर्वाद के रूप में हर क्षण हमें मिल रहा है। तो हमें अपने इस जीवन के हर एक क्षण को, हर एक पल को प्रभु की याद में बिताना चाहिए। उन्हें समर्पित करते हुए जीवन के हर एक कण को जब हम बिताते हैं तो उसमें चाहे हम दुखी थे या खुश थे, उस सारे ही क्षण प्रभु के पास पहुंच जाते हैं और ये जीवन सफल माना जाता है।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

6:30 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये है अर्पण और आज अर्पण में आपके साथ हूँ मैं शीतल। हमारे जीवन में अक्सर हम बहुत सी चीज़ों की तलाश करते हैं और जिन चीज़ों की तलाश हमें लगातार बनी रहती है वो चीज़ें हम अपने आसपास इधर उधर बहुत सी अलग जगहों पर ढूंढते रहते हैं। चलिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक व्यापारी एक शहर से बहुत सा धन कमाकर वापस अपने शहर लौट रहा था। इसी बीच उसके पास पोटली में उसने अपना सारा धन जमा करके रखा था। बीच रास्ते में उसे एक चोर ने देख लिया। उस चोर ने सोचा, अगर मैं ऐसे इसे छीनूंगा तो सीधा पकड़ा जाऊंगा, क्यों ना इसके साथ रहूं और फिर जब ये सो जाए या फिर आराम करे तब मैं इसका माल लेकर भाग जाऊं। वो दोनों मिले, मित्रता हुई, बातचीत होने लगी और उसके बाद बहुत रात हो गई तो उन्होंने निश्चय किया कि चलो कहीं रुक जाते हैं। वो दोनों मिलकर एक सराय में रुक गए। जब वो रुके तो उन्होंने कहा, चलो अब खाना खाने चलते हैं। तो वो खाना खाने चले गए और इस बीच जब दोनों कमरे से बाहर चले गए तो खाली हाथ थे, यानी कि उस व्यापारी ने अपना जो धन था, अपना जो सामान था, वो उसी कक्ष में कमरे में छोड़ दिया था। अब चोर उस व्यापारी के साथ गया तो, लेकिन उससे कुछ बहाना बना करके कमरे में लौट आया ये ढूंढने के लिए कि कहां उसने ये सारा अपना धन छिपाया है। उसने सारा उसका सामान ढूंढ लिया पर उसे कहीं भी नहीं मिला, जबकि वो देख रहा था कि व्यापारी बिल्कुल खाली हाथ था, उसके पास कुछ नहीं था। अब वो उसके पास पहुंचा और पहुंचने के बाद उन्होंने खाना वगैरह खाया और आए और सो गए। इसके बाद अगले दिन फिर साथ चले और फिर रात हुई और उसके बाद वही प्रक्रिया दोबारा दोहराई गई और खाना खाने के लिए तब गए तो चोर वापस से बहाना लगा करके कमरे में आया और उसने फिर से चीज़ें चेक करने की कोशिश की, लेकिन उसे नहीं कुछ भी मिला और वो जो है फिर आ गए वापस और खाना वाना खा कर सो गए। अगले दिन अब व्यापारी का घर जो है वो नज़दीक आ रहा था। चोर ने कहा, देखो भाई मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं तुम्हारा कोई सहयात्री या मित्र नहीं हूँ, मैं चोर हूँ।

मैं बहुत परेशान हूं कि तुमने अपना सारा धन आखिरकार छिपाया कहां? मैंने तो कई बार ढूंढ लिया, मुझे नहीं मिला। तो व्यापारी ने कहा, मैंने जब तुम्हें देखा और तुमने मुझसे बात की तो मुझे शुरू में ही पता चल गया था कि तुम चोर हो। तो जब भी हम खाना खाने जाते थे तो उस वक्त मैं अपना धन तुम्हारे तकिए के नीचे छिपाता था, क्योंकि मुझे मालूम था तुम इसकी तलाश मेरे हर एक सामान में करोगे, कमरे की हर एक कोने में करोगे, लेकिन अपने तकिए के नीचे नहीं ढूंढोगे। बिल्कुल ऐसे जीवन में हमारे पास बहुत से अवसर हैं, बहुत सी खुशियां हैं, बहुत सी चीजें हैं, पर हम हमेशा जो तलाश करते हैं वो दूसरी जगहों पर करते हैं। बस इस रास्ते को मोड़ना है, बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ जाना है। कभी हम सोचते हैं पढ़ लिख लेंगे तब खुशियां आ जाएंगी, कभी हम सोचते हैं बंगला बन जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन अगर हम सच में समझने का प्रयास करें तो जीवन में जब हम अंदर मुड़ेंगे और उस परमपिता परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, तब जो असली प्रसन्नता और स्थायी खुशी मिलती है वो कहीं और नहीं मिलेगी।

6:44 और 28 सेकेंड हुए हैं और अब वक्त है रामचरितमानस से पाठ का। आइए सुनते हैं आज अयोध्या कांड के कुछ अंश।

श्री राम लक्ष्मण तथा सीता के गंगा तट पर स्थित श्रृंगवेरपुर के निकट पहुंचने का समाचार सुनकर निषाद राजगुहू के हर्ष की सीमा न रही। अपने प्रियजनों तथा भाई बंधुओं को एकत्रित कर भेंट देने के लिए फल मूल आदि बहंगियों में भर भर कर वो सदल बल श्री राम से मिलने चला। राम ने उसे आत्मीय की भांति पास बिठाकर उसकी कुशल क्षेम पूछी। निषाद राज गदगद होकर बोला, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल है। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। यहां की धरती, धन संपत्ति और घर सभी आपके हैं। मैं तो परिवार के साथ आपका सेवक मात्र हूं। अब कृपा कर हमारे पूर्वे में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए। श्री राम ने उत्तर दिया, हे सुजान सखा, तुमने जो कहा वो तुम्हारे स्नेह का द्योतक है, किंतु पिता ने मुझे कुछ और ही आज्ञा दी है। मुझे 14 वर्षों तक मुनिवेश और व्रत धारण करके उन्हीं सरीखा भोजन करते हुए वन में ही निवास करना है। एक तापस का गांव में रहना उचित नहीं है। श्री राम लक्ष्मण तथा सीता का तापस वेश देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम विह्वल हो रहे हैं। वो उन माता पिता की कठोरता से क्षुब्ध हैं जिन्होंने ऐसे सुकुमारों को वनवास दिया है।

0: यां उदार शक्ति विंशति षड विंशति इत्यभ्यासः च सम्मिलितौ स्तः। रक्षामन्त्रालयेन उक्तं यत् द्वयोः देशयोः भारतीय वायुसेनायाः सहभागितया हिन्द प्रशान्त क्षेत्रे तस्याः परिचालन क्षमता उन्नत सामरिक समन्वयम् अथ रणनीतिक रक्षा सहयोगं च सुदृढीकर्तुं प्रतिबद्धता प्रकाशिता। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्य प्रभृति रूस देशस्य द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। तत्र जयशंकरः भारत रूस अन्ताप्रशासनिकायोगस्य वाणिज्यार्थिक प्रविधि सांस्कृतिक सहयोगानां सप्तविंशतितमस्य अधिवेशनस्य साहाध्यक्षतां विधास्यति। यात्रावधौ डॉ जयशंकरः रूस देशस्य विदेशमन्त्रिणा सर्गेई लावरोव इत्यनेन सह मेलनं करिष्यति अथ क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु अपि चर्चा करिष्यति। क्रीडा मन्त्रालयेन ह्यः जापाने आगामि मासे प्रारप्स्यमाणानाम् एशियायाः क्रीडानां कृते 290+400-सदस्यात्मकस्य भारतीय दलस्य अनुमोदनं कृतम्। अस्मिन् दले 65+200 पुरुषाः अथ 27+200 महिलाः च क्रीडकाः सन्ति। भारतस्य 20-सदस्ययुतं बैडमिंटन दलं पीवी सिंधुः लक्ष्य सेनः आयुष शेट्टी इत्यादिभिः प्रसिद्धैः क्रीडकैः युक्तमस्ति। अस्मिन् दले महिलायुगलं गायत्री गोपीचन्दः अथ त्रिसा जोली अपि सम्मिलिताः सन्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठन की बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोणों पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव बढ़ाना है। इससे पहले पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। पार्टी महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर एक महीने का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देशभर में 14,00,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा को हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैफरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में यंत्र इंडिया की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट्स के बीच डूरंड कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत को विश्व की फार्मेसी बन की अपनी पहचान से आगे बढ़कर अनुसंधान, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के बल पर विश्व की प्रयोगशाला के रूप में उभरना होगा। वे भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में स्वास्थ्य सेवा में AI को बढ़ावा देना विषय पर आयोजित 3rd IIMA हेल्थकेयर समिट 2026 को संबोधित कर रही थीं। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खरीफ और आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की तैयारियों की कल समीक्षा की। नई दिल्ली में आयोजित बैठक में उर्वरक विभाग के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री नड्डा ने कहा कि उर्वरकों की उपलब्धता संतोषजनक है। उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की निरंतर और निर्बाध आपूर्ति करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने जयपुर में एक केंद्र पर अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए एडुक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एनटीए ने सूचित किया है कि नोटिस के समाधान तक मैसर्स एडुक्विटी का पैनल तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जयपुर के एक केंद्र पर बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण कल 49 परीक्षार्थी अपनी पूरी परीक्षा नहीं दे पाए थे। प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की पहली तारीख को 10 बजे जयपुर के राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन में आयोजित की जाएगी। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य उड़ान अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया। इनमें ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में उदारा शक्ति 2026 अभ्यास शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 2 देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय VC प्रमोद। Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed national office bearers of the BJP at the party headquarters in New Delhi yesterday. Besides BJP President Nitin Nobin, the meeting was attended by the party's national vice presidents and general secretaries, among others. The Prime Minister said in a social media post that organizational meetings are all about new ideas and perspectives aimed at strengthening the party and deepening connect with the people. He said it was a great interaction with fellow party colleagues and the new organizational team. Earlier, BJP National President Nitin Nobin held a meeting with the newly appointed national office bearers. Mr. Nitin Nobin informed that during the meeting, the BJP also passed a resolution regarding the honour and protection of the historical legacy of Vande Mataram. In the resolution, the party has condemned and unequivocally opposed the decision taken by the Congress Working Committee on the 19th of this month to reaffirm its 1937 resolution restricting the singing of Vande Mataram to its first 2 stanzas at the Congress programs. The party also resolved to uphold the honour, dignity, legacy and national status of the complete Vande Mataram as the national song of India, as an immortal symbol of the country's national consciousness and freedom struggle. Defence Minister Rajnath Singh has asserted that non-violence and peace is India's culture and no one should make the mistake of considering this value of non-violence as its weakness. Mr. Singh said that safeguarding the country's security, sovereignty and honour is the foremost duty of the government. Mr. Singh was speaking at a function in New Delhi. Mr. Singh also said that Jain religion is the pride of India's civilization and culture, and the Narendra Modi government has given priority to the preservation and promotion of the Jain traditions and heritage. The central government has notified the removal of the 12-minute advertisement duration cap for television channels. The decision has come into effect with notification of the amendment in the Cable Television Networks Rule 1994 in the Gazette. Earlier, Information and Broadcasting Ministry said that in view of the changes that have occurred in the TV broadcasting sector, a need was felt to revisit the stipulations relating to the advertisement duration. The statement added that in India, the sector is heavily dependent on advertising, irrespective of whether a channel is pay or free to air. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will undertake a 2-day official visit to Russia beginning today. The minister will co-chair the 27th session of the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, technological and cultural cooperation.

0: गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। खिले खिले आसमान और तन मन को महका देने वाली इस ठंडी सुहारी हवा के साथ आप सभी का स्वागत आपके अपने चहेते रेडियो स्टेशन आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शुरू हो चुकी है बहुत ही खूबसूरत से सुबह और गोल्ड सुप्रभात लेकर मैं शीतल हूँ आज आपके साथ। खिड़की से झांकती ये हल्की हल्की धुंधली सी धूप और कानों में घुलती संगीत की मीठी सी लहर, यही तो है एक नए खूबसूरत दिन की असली शुरुआत। तो अपने सारे गिले शिकवे और कल की थकान को दीजिए विदा और कान लगा लीजिए हमारे साथ, क्योंकि आज का सफर होने वाला है बेहद खास। मैं शीतल बहुत सारी बातें, बहुत प्यारे प्यारे गीत और आपकी सुबह को और भी रोशन कर देने वाली बातें लेकर आई हूँ। तो चाय का कप उठाइए, गहरी सांस लीजिए और बनिए मेरे साथ, क्योंकि हम करते हैं शुरुआत भाई दिलों की बात सुनने से। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं भी अपने दिल की बात बोल दूँ।
1: जो इजाज़त हो तो एक बात कहूँ, जो इजाज़त

हम तो अपनी बातें कहने के लिए यहाँ पर आए ही हुए हैं। सावन भादों के सुहाने मौसम, हल्की बुहारों और भीनी भीनी हवा के मिजाज को पिरोते हुए रेडियो में जब आपका साथ हमारे साथ बनता है, तो फिर ये खूबसूरती मौसम की, दिन की, इन घड़ियों की और भी खास हो जाती है। आसमान में उमड़ते घुमड़ते बादलों और मौसम के इस हसीन नज़ारे के साथ जब हम हाथ में उठाते हैं चाय का प्याला, तो ये जितनी भी सुस्ती है ना, ये सब इधर उधर गायब हो जाती है। तो चाय के प्याले के साथ थाम लीजिए इस सुहाने से मौसम का हाथ, क्योंकि आगे आने वाले पलों में हम आपके लिए बताने वाले हैं कि भाई मौसम का हाल कैसे रहने वाला है। फिलहाल तो इस वक्त बारिश हो रही है और बड़ा मज़ा आ रहा है। वैसे तो बड़े सारे लोग हैं जो घर से निकल रहे हैं अपने काम के लिए, लेकिन फिर भी बहुत गर्मी हो रही थी और मौसम ऐसा है कि मोहब्बत हो जाए इस मौसम से, प्यार हो जाए इस मौसम से। और अगर हम तापमान की बात करें तो आज 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहने की आशा जताई जा रही है और 27 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम कहा जा रहा है। और बारिश अभी भी हो रही है और शाम को 6 बजे के करीब फिर से एक बार रिमझिम बुहार का मौसम बन सकता है। और इस मौसम में अगर अपनों का साथ हो, ऐसे में बातें हों, बहुत सारा वक्त एक दूसरे के साथ बिताया जाए, और कई बार ऐसा लगता है हम सामने वाले को मना रहे हैं, हमारी गलती है। पर क्या कभी कभी ऐसा होता है, हमारा मन करता है भाई एक बार अपनी तरफ भी देख लो, हो सकता है हमसे जिस बात पर आप नाराज़ हैं आपकी ही कोई गलती हो।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर है आपके साथ लेकर गोल्ड सुप्रभात। और गोल्ड सुप्रभात में आज मैं शीतल हूँ आपके साथ। 7:22 हुए हैं। हम बार बार कह रहे हैं नया दिन नई शुरुआत, लेकिन सचमुच में इस नए दिन की शुरुआत को खूबसूरत और बेहद प्यारी करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे तन को ताजगी मिले और मन को मिले सुकून। और अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा पूरा दिन संवर जाता है। तो बस गहरी सांस लीजिए और अपने शरीर को थोड़ा सा वक्त दीजिए, क्योंकि आज की इस सुबह हम बात कर रहे हैं योगा की। जी हाँ, योग जो जोड़ता है हमारी सांसों को कुदरत से, इन खूबसूरती भरे पलों से, चाहे वो ताड़ासन की स्थिरता हो या शरीर की हर सुस्ती को दूर भगाने वाले कुछ आसान से स्ट्रेच। और ज़रूरी है कि हम हफ्ते भर की थकान को यहाँ पर थोड़ा सा विदा करने के मूड में बैठ जाएं। अपने जीवन में योग ज़रूर अपनाएं। आप चाहें तो आप सिंपल स्ट्रेचिंग्स कर सकते हैं जिनमें ताड़ आसन बेहद आसान और सरल और बहुत प्रभावी योग आसन है। आप सीधे खड़े हो जाइए, अपने हाथों को ऊपर कीजिए, दोनों उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लीजिए और उन्हें विपरीत दिशा में खींचना आरंभ कीजिए। जब आप अपने हाथों को ऊपर की दिशा में खींचें तभी आप अपनी एड़ियों को भी ऊपर की तरफ खींचिए। इसी प्रक्रिया को आप पहले तो शुरुआत में बिना थमे कीजिए और जब आप 5 बार ऐसा

कर ले तो फिर आप ऊपर उसी स्थिति में जब आप स्ट्रेच कर रहे हैं ऊपर की तरफ थोड़ा सा थमने की रुकने की कोशिश कीजिए और ऐसा आप 10 बार कीजिए और आप अपनी मांसपेशियों में जितनी भी अकड़न थी उसको जाता हुआ महसूस करेंगे। लेकिन ध्यान कीजिए कि हमेशा जब भी आप योग करें, चाहे वो ताड़ासन जैसा आसान आसन ही क्यों ना हो, हमेशा किसी एक्सपर्ट या विशेषज्ञ की देखरेख में ही कीजिए, उनसे सलाह लेकर के तब कीजिए और अपनी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखिए।

मौसम की बात हो रही थी तो यहाँ हम देखेंगे कि बात सेहत से जुड़ी हो तो हमें थोड़ा ज़्यादा सावधान होकर रहना चाहिए। ख़ास तौर से आजकल जो ये मौसम है इसमें बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कोशिश कीजिए कि पानी का इंटेक अच्छा रखिए, साथ ही भोजन में साधारण चीज़ें, घर की बनी चीज़ें खाइए ताकि ऐसी अगर कोई समस्या हो तो बहुत आसानी से आप उससे निपट सकें।

ये मुस्कुराहट, ये रोशनी यूं ही बनी रहे, इसी उम्मीद के साथ गोल्ड सुप्रभात को यहीं पर विराम देने की दीजिए इजाज़त। आपसे होगी मुलाकात 8:45 पर। आप सुनिए समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे। मुझे यानी शीतल को दीजिए गोल्ड सुप्रभात से इजाज़त। नमस्कार।

0: सुप्रभात, नमस्कार। कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज और मेरे साथ हैं सारा मुश्तबा। प्यार के पलों की बात की जाए और बशीर बद्र का शेर न याद आए, ऐसा कैसे हो सकता है। वो कहते थे, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। इसीलिए बेहतरीन पलों को हमेशा याद करें, क्यों सारा?
1: बिल्कुल सही कहा आपने फरहत। इनफैक्ट याद ना करें उन पलों को, खुल के पूरा जीना भी बहुत ज़रूरी होता है। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक वी आर पेइंग ट्रिब्यूट टू केके टुडे ऑन हिज बर्थडे। ऑफ कोर्स इन आर लास्ट सेगमेंट आल्सो वी विल प्ले सम वेरी मेमोरेबल सॉन्ग्स, बट आई थिंक फॉर द बिगिनिंग ऑफ द शो आई थिंक दिस वाज द मोस्ट एप्ट सॉन्ग, सो दैट ऑन अ संडे व्हेन यू आर प्रॉब्ली नॉट रशिंग टू योर वर्क प्लेस, यू कैन ऑल्सो सिट बैक एंड थिंक कि एक्चुअली कोई भी बहुत ही एग्जॉटिक पल आता नहीं है, जो आपके हाथ में पल है ना वही सब कुछ है, उसी को बेस्ट जिए और गिव योर बेस्ट, इजंट इट?
0: बिल्कुल सारा, आज रविवार है और सभी के लिए ये दिन होता है आराम का और सुकून भरा। तो हफ्ते भर की भागदौड़ के बाद संडे दिया जाता है रिलैक्स करने के लिए, तो तैयार हो जाइए, पूरे आधे घंटे हम दोनों आपके साथ रहेंगे और देश और दुनिया के समाचार देंगे और वो सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे जो आपके लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा मौसम का हाल जानेंगे और आज सुबह ही हल्की बौछारें पड़ चुकी हैं राजधानी दिल्ली में सारा।
1: दैट्स राइट, बट फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस फरहत।
0: जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नव नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोणों पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नव नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा।
1: इंटर विल होस्ट द ब्रिक्स स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स मीटिंग इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश टुडे। द मिनिस्टेरियल एंगेजमेंट विल ब्रिंग टुगेदर मिनिस्टर्स एंड हेड्स ऑफ डेलीगेशन फ्रॉम ऑल 11 ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन स्पोर्ट्स। द मीटिंग विल बी चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मनसुख मांडविया, with Minister of State for Youth Affairs and Sports Raksha Khadse also participating. Representatives from Brazil, China, Egypt, Ethiopia, India, Indonesia, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa and the UAE will deliver country statements during the meeting. The program will also feature the BRICS Friendship Cycling Event, bilateral meetings and cultural engagements. The meeting will conclude with the adoption of the BRICS Sports Joint Declaration.
0: सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि सीमा को हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी। तब लेकर आज तक टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उस समय टीवी चैनलों को प्रसारित करने के मुख्य माध्यम केबल टीवी की प्रसारण क्षमता सीमित थी और उपभोक्ताओं के पास बहुत कम विकल्प थे। केबल टीवी क्षेत्र के डिजिटलीकरण के बाद डीटीएच, एचआईएसटी और आईपीटीवी सहित सभी प्लेटफॉर्म अब डिजिटल हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: National Testing Agency NTA has issued a show cause notice to Messrs Eduquity Career Technologies Private Limited for lapses in the conduct of the All India Ayush Postgraduate Entrance Test AIAPGET examination at a center in Jaipur. NTA has informed that pending resolution of the notice, the empanelment of Messrs Eduquity with the agency stands suspended with immediate effect. Due to a power supply failure at a center in Jaipur, 49 candidates could not complete the examination yesterday. NTA has informed that the re-examination of AIAPGET for affected students will be conducted on the 1st of next month at 10 a.m. in Rajasthan College of Engineering for Women, Jaipur. It added that further details will be shared through the revised admit card issued for such candidates. The agency has expressed regret for the inconvenience caused.
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत को विश्व की फार्मेसी की अपनी पहचान से आगे बढ़कर अनुसंधान, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के बल पर विश्व की प्रयोगशाला के रूप में उभरना होगा। वो भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में स्वास्थ्य सेवा में AI को बढ़ावा देना विषय पर आयोजित IIMA हेल्थ केयर समिट 2026 को संबोधित कर रही थी। AI की परिवर्तनकारी क्षमता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि AI दवाओं की खोज में तेजी ला सकता है, व्यक्तिगत उपचार को सक्षम बना सकता है और बेहतर स्क्रीनिंग, नैदानिक निर्णय लेने और रोग निगरानी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा वितरण को मजबूत भी कर सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि AI को अपनाना सुरक्षित, जिम्मेदार और मानव केंद्रित होना चाहिए, जिसमें रोगी की गोपनीयता के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय हों। सुश्री पटेल ने कहा कि AI को मानव दैनादिक निर्णय का एक पूरक होना चाहिए, न कि उसका स्थान लेना चाहिए। उन्होंने पायलट परियोजनाओं से जनसंख्या स्तर पर कार्यान्वयन की ओर बढ़ने के लिए सरकार, शिक्षाविदों, स्वास्थ्य संस्थाओं, स्टार्टअप और उद्योग के बीच अधिक सहयोग का आह्वान किया।
1: A Panama flagged cargo ship with 24 crew members, mostly Chinese, on board sank in the Bay of Bengal yesterday. Officials said the ship sank about 240 nautical miles off the Odisha coast. 20 of the crew members of the ship, MV Ocean Winner, were Chinese, 3 Myanmaris and 1 Bangladeshi. The ship was heading to Singapore carrying 72,100 metric tons of iron ore fines from Odisha. It had left the Paradeep coast at 10:42 p.m. on 20th of August. Indian Coast Guard and Indian Navy have launched a rescue operation. So far, 2 persons have been rescued from the waters.
0: और अब खेल जगत की हलचल के साथ है मुकेश कुमार बल।
3: भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में कल विश्व एथलेटिक्स रजत स्तरीय प्रतियोगिता में भारत के रोहित यादव ने भाला फेंक और मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद स्पर्धाओं में जीत हासिल की। रोहित ने अपने छठे और अंतिम प्रयास में 87.68 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने 8.07 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया। महिलाओं की लंबी कूद में एनसी सोजान पहले, शैली सिंह दूसरे, जबकि मुबस्सिना मोहम्मद तीसरे स्थान पर रहीं। किशोरी अभिनया राजा राजन ने भी महिलाओं की 100 मीटर

0: दौड़ 11.34 सेकंड में जीतकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया। नाइजीरिया के चुकवू एबुका एनेक्वेची ने पुरुषों के शॉटपुट का खिताब जीता, जबकि इटली के जेन वियर दूसरे स्थान पर रहे। भारत के करणवीर सिंह ने भी उम्दा प्रदर्शन किया। इसके अलावा खेल मंत्रालय ने अगले महीने से जापान में शुरू होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय दल को मंजूरी दे दी है। इस बार एथलेटिक्स के सर्वाधिक 73 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।
1: और श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम लोग करेंगे महानगरों की खबरों का। लेकिन सारा से सबसे पहले जान लेते हैं चेन्नई की खबरें।
2: Well, Delhi Chief Minister Rekha Gupta has said that India must become a creator of artificial intelligence rather than just a consumer. She was delivering the 41st convocation address in Vellore, and she said that the Union government was investing substantially in the fields of semiconductors, computing infrastructure, defense and robotics through the India AI mission. She said that the aim is to move beyond consuming AI technology to producing it. This shift will be one of the greatest contributions graduates can make to their state and country. Moving on to some news from Bengaluru. Vegetation growing through cracks, possible moisture ingress and signs of reinforcement corrosion at the K.R. Puram Cable State Bridge have raised concerns over its maintenance. Experts said that vegetation through concrete could indicate cracks and moisture pathways, with root growth accelerating deterioration. A Greater Bengaluru Authority engineer called for priority structural health monitoring and assessment of all city bridges and flyovers. Deputy Chief Minister G. Parameswara yesterday inaugurated the Dr. B.R. Ambedkar Bhavan Anubhav Kendra, constructed at a cost of 21 crore rupees in Chintamani. Parameswara said the state-of-the-art centre aims to preserve and take Dr. Ambedkar's thoughts and philosophy to future generations. He also appreciated the initiatives undertaken in the city, including Azad Chowk, and congratulated Minister M.C. Sudhakar. And some news coming in from Hyderabad. Telangana High Court Chief Justice Aparesh Kumar Singh called for timely resolution of disputes in the telecom, broadcasting, airport and cyber sectors through specialized expert bodies. Speaking at a seminar on dispute resolution mechanisms in airport tariffs, telecom, broadcasting and cyber sectors, Justice Singh traced the evolution of specialized dispute resolution in telecom from the 1997 formation of Telecom Regulatory Authority of India to the 2000 establishment of Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal. So Farhad, this was the buzz that I had from these three cities of Chennai, Bengaluru and Hyderabad. What is the latest that you have from Delhi, Mumbai and Kolkata?
3: जी, दिल्ली से सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं सायरा। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान के अंतर्गत पावन माटी कलश बंधन और वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन सोमवार को राजधानी के तालकटोरा स्टेडियम में होगा। वहीं दिल्ली विधानसभा की यूथ आउटरीच पहल के अंतर्गत दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस की छात्राओं ने विधानसभा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा के ऐतिहासिक महत्व और इसकी गहरी लोकतांत्रिक विरासत को करीब से जाना और दिल्ली विधानसभा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विधानसभा अध्यक्ष विजयेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में विधानसभा सार्थक लोकतांत्रिक आउटरीच पहलों के जरिए युवाओं की भागीदारी को लगातार मजबूत कर रही है। और अब आगे बढ़ते हैं, मुंबई का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि विश्व के सबसे बड़े कपास उत्पादक देश भारत को अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला में गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मुंबई में वस्त्र समिति के 62वें स्थापना दिवस के अवसर पर श्री सिंह ने पारंपरिक रेशों के साथ साथ नए रेशों को भी वस्त्र उद्योग में शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार और उसकी एजेंसियां नशाखोरी के खिलाफ लड़ाई में पीछे नहीं हटेगी। श्री फडणवीस शनिवार को नशा मुक्त नवी मुंबई अभियान के तहत कैंपस कनेक्ट अभियान के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार समाज के सहयोग से नशाखोरी को हराने में सफल होगी। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई। और अब कोलकाता का रुख कर लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद JRSE भवन में लघु एवं मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री दिन में बाद में युवा भारती किरंगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जॉइंट के बीच डूरंड कप का फाइनल मैच देखेंगे।

0: और अब श्रोताओं महानगरों के मौसम का हाल जान लेते हैं। सबसे पहले सायरा बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली के मौसम की। तो आज जैसा कि हमने अपने श्रोताओं को शुरुआत में ही बताया कि सुबह ही हल्की बौछारें पड़ चुकी हैं और दिन में भी मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिन भर बादल छाए रहेंगे तो गर्मी से निजात मिल सकती है।
1: वेल, बस बादल खाली सिर्फ छाए ना रहे, बरस भी छाए, बिकॉज आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट दिल्ली रिसीव्ड द शावर्स, एंड ऐसा तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा है जैसे यू नो मॉनसून आए हो। सो वी रियली होप that Delhi would receive some respite from the heat and humidity.
0: बिल्कुल। और अब मुंबई की अगर बात की जाए तो वहां पर भी बारिश का सिलसिला रहेगा। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। कोलकाता में आज बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बौछारें होने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
1: And Chennai will have a generally cloudy sky today. Some light rain or drizzle is expected. The minimum temperature was 25 degrees Celsius, while maximum is expected to be around 36 degrees Celsius. Bengaluru will also have some light rain today and the sky will remain generally cloudy throughout the day. The minimum temperature was 28 degrees Celsius, while maximum may reach 28 degrees Celsius. Hyderabad will also have a partly cloudy sky today and there's possibility of a thunderstorm or dust storm over there. The minimum temperature was 24 degrees Celsius, while maximum may reach 32 degrees Celsius.
0: और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं सायरा। सबसे पहले बात करते हैं सन 1947 के। आज ही के दिन वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे। वहीं 1993 में सन 2000 के ऐतिहासिक ओलंपिक खेलों की मेजबानी ऑस्ट्रेलियाई नगर सिडनी को सौंपी गई थी।
1: On this day in 1799, Napoleon Bonaparte returned to France from his Egyptian campaign. On this day in 1839, the United Kingdom captured Hong Kong during the First Opium War. Also on this day in 1943, Battle of Kursk, which was the largest tank battle in history, ended after 50 days as the Soviet Union defeated Germany. And over 10,000 tanks took part in it. Nearly 2,50,000 combatants were killed.
0: और आज के दिन 23 अगस्त का वो दिन था, भारत दुनिया के इतिहास में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। 2023 में भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की थी और उसी की याद में इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है।
1: That's right, and that made India the first country to land near the lunar south polar region. And I take back the listeners to the year 1944. Romania switched sides in World War II and joined the Allies. Also on this day in 1966, the Lunar Orbiter 1 sent the first photograph of the Earth from the vicinity of the Moon. And in 1990, Armenia declared its independence from the Soviet Union. And before we move to the last section, Farhad, there is some more news that we would like to share with our listeners. Well, Canadian Prime Minister Mark Carney has said that Canada will match the United States' new tariffs dollar for dollar to protect Canadian workers, farmers, families and businesses after trade negotiations between the two countries collapsed. In a social media post, Carney said that for over a year, Canada has worked intensively and in good faith with the United States to negotiate a new comprehensive trade deal. Carney further said that he had instructed Canadian negotiators to return to Ottawa after over a year of discussions with Washington, adding that Canada could not accept the offer made by the US. The Canadian Prime Minister added that Ottawa would announce details of its retaliatory tariff measures in the coming days. The new measures will come into force on Tuesday after Labor Day. And one more news, from our country. Union Textiles Minister Giriraj Singh has called for expanding Navi Mumbai's textile waste recycling model to other municipal corporations in Maharashtra to address the growing problem of textile waste while creating new employment opportunities. And Farhad, ye ji, bahut cheeze hum log dekh rahe hain aajkal, because we are living in an era that you know, because everything is available so you know readily, that wo purane din chale gaye jab hum log you know kapde ek generation se dusri generation pehenti thi. There's so much of textile waste that is happening. In fact, the other day I was having a conversation with a friend that इफ़ यू रिमेंबर, हम लोग पहले बचपन में अपने बैग्स तक की अगर जिप खराब होती थी हम लोग उसको भी ठीक करवा के फिर यूज़ करते थे, बट दीज डेज वी जस्ट बाय अ न्यू बैग विच इज़ सो बैड बिकॉज इट्स एक्चुअली जनरेटिंग अ लॉट ऑफ वेस्ट.
0: बल्कि आपने देखा होगा कि जीन्स जो है अगर खराब हो जाती थी तो उसका जो है बैग बनवाया जाता था, बहुत सारी चीज़ें जो है वेस्ट मटीरियल जो होता था उसमें सजाने के जो सामान थे वो बनाए जाते थे, कलाकारियाँ की जाती थी. तो मुझे लगता है लेकिन अभी भी जिन लोगों को शौक है घरों में वो चीज़ें हो रही हैं, रिसाइकल चीज़ें हो रही हैं.
1: हाँ हो रही हैं, बट जितना हम लोग करते थे शायद थोड़ा सा और ज़रूरी है बिकॉज देयर इज़ अ ह्यूज वेस्ट दैट इज़ ऑब्वियसली दैट इज़ जनरेटिंग डे बाय डे. एंड दैट्स व्हाई मिस्टर सिंह द यूनियन टेक्सटाइल्स मिनिस्टर सेड दैट अराउंड 78 टन्स ऑफ टेक्सटाइल वेस्ट इज़ कलेक्टेड एवरी मंथ एंड स्ट्रेस दैट द नीड टू टर्न वेस्ट इनटू सस्टेनेबल रिसोर्सेज. ही सेड द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स शुड एक्सप्लोर अग्रीमेंट्स विद अदर municipal corporations similar to the arrangement with the Navi Mumbai Municipal Corporation. Mr. Singh made the remarks during his visit to the textile recovery facility at Belapur where he inspected the project. Navi Mumbai Municipal Corporation Commissioner Dr. Kailas and Deputy Mayor Dashrath Bhagat were also present. तो अगर देखा जाए गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स बिट, बट एज वी मेंशन दैट इवन इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऐड आर ओन बिट इन रिड्यूसिंग वेस्ट ऑफ एवरी काइंड, नॉट जस्ट टेक्सटाइल वेस्ट.
0: देखिए सारे सरकार योजनाएं जरूर बनाती हैं और लेकिन उसमें अमल में हमारा हमारी जिम्मेदारी होती है उसे लाना, क्योंकि किस कोई भी चीज अगर शुरुआत होती है तो अगर उसकी हम लोग पहल नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए ही जो है वो दिक्कत पैदा कर सकते हैं.
1: एब्सोल्युटली. एंड नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट सेक्शन फरहत, व्हेन वी रिमेंबर सम ऑफ द बर्थ एंड death anniversaries of people or birthdays. So who is the first on our list, Farhat?
0: जी सबसे पहले सारा साहित्यकार की बात कर लेते हैं. हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार और आलोचक डॉक्टर रघुवंश सहाय वर्मा का आज ही के दिन पुण्यतिथि है उनकी. आज ही के दिन उन्होंने हमें अलविदा कहा. इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे वो. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला के फेलो रहे डॉक्टर रघुवंश. दोनों हाथों से अपंग थे लेकिन फिर भी इस अपंगता को उन्होंने अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया. वो पैरों से लिखते थे, वो निरंतर पैरों से लिखते रहे और इतना लिख दिया कि उन्हें कई सम्मान और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया. डॉक्टर रघुवंश की पुस्तक यूरोप के इतिहास की प्रभाव शक्तियां प्रकाशित हुई. संस्कृति एवं मानव मूल्यों का आधार बनाकर लिखने वाले प्रोफेसर रघुवंश का हिंदी में नई आलोचना के सूत्रपात में भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा. कई उपन्यासों की रचना करके उन्होंने अपनी सृजनात्मकता प्रतिभा का परिचय दिया. तो मुझे लगता है कि बहुत ही तारीफ के लिए और आजकल उन युवाओं के लिए भी इंस्पायरिंग है जो इस तरह का जो कदम उठा लेते हैं, बहुत ही जल्दी निराशाजनक जो है बातें करने लगते हैं.
1: इमेजिन ही वाज राइटिंग विद हिज फीट एंड आजकल तो एआई का दौर है, वॉइस टाइपिंग है, सो यू नो नथिंग कैन एक्चुअली स्टॉप यू फ्रॉम यू नो अचीविंग व्हाट यू रियली वांट टू डू एंड नो मोर बहानास एज वी से.
0: बिल्कुल सायरा. और एक और साहित्यकार का आज ही के दिन जन्म हुआ, गोविंद विनायक करंदीकर का. मराठी में रचना करने वाले ये प्रसिद्ध कवि लेखक अनुवादक रहे. उन्हें अधिकांश विंदा करंदीकर के नाम से जाना जाता है. साहित्यिक आलोचक और अनुवादक के रूप में विशेष तौर पर ये जाने जाते रहे और 2006 में 39वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया.
1: And we are remembering a very fine actress of yesteryear. It's her birthday today. We are talking about Saira Bano. And well, she is regarded as one of the finest actors of Hindi cinema and was among the most popular actresses of the 60s and early 70s. She received 4 Filmfare Award nominations throughout her career. She made her acting debut with Jungli film in 1961, for which she received the Filmfare Award for Best Actress, and this was a nomination.
0: और उनकी उम्र थी उस समय 16 साल, मतलब 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी. और बॉलीवुड में कदम रखने के बाद अभिनेत्री ने अपने अभिनय कौशल का लोहा मनवाया और वो फिल्म जो है आपने बताया जंगली थी. तो क्यों ना फिल्म जंगली से ये प्यारा सा गीत सुन लेते हैं.

0: सारा, ये तो हम सुन रहे थे फिल्म पड़ोसन से, और बहुत ही अच्छी फिल्म थी ये। 60 और 70 के दशक में सारा बानो एक सफल अभिनेत्री की तरह बॉलीवुड में जगह बना चुकी थी, और 1968 में इस फिल्म के जरिए उन्होंने अपने करियर में और तब्दीली महसूस की।
1: दैट्स राइट, नोबडी कैन फॉरगेट द बिंदु ऑफ पड़ोसन, और शायद इसीलिए हमारी टीम को भी जल्दी थी कि हम लोग पड़ोसन का गाना पहले सुना दिया।
0: इसी फिल्म से एक और गीत है, लेकिन सारा हम लोग वो भी अपने श्रोताओं को सुना

0: इसके बाद फिल्म गोपी, सगीना, बैराग जैसे हिट फिल्मों में अपने पति दिलीप कुमार के साथ उन्होंने काम किया और ये जोड़ी काफी सुपर डुपर हिट रही।
1: राइट, एंड भले ही ऑन रील तो हिट रही बट रियल लाइफ में कितनी हिट रही, बिकॉज आई थिंक सायरा बानो वाज एब्सोल्युटली स्मिटन बाय दिलीप कुमार, एंड कहीं भी वो जाती थी इन ऑल इवेंट्स शी यूज्ड टू से दैट आई हैव गॉट द कोहिनूर ऑफ इंडियन सिनेमा, एंड ऑफ कोर्स अ वेरी ब्यूटीफुल पेयर इंडीड। एंड बात हम लोग जंगली फिल्म की कर रहे थे तो क्यों वी हैव अ डायलॉग फ्रॉम द फिल्म, लेट्स लिसन टू इट।
2: अरे जो कमबख्त ने खाने के साथ प्लेट और चमचे नहीं रखे,
3: आप खाना खाना चाहते हैं या चमचे और प्लेटें?
2: फिर वही बदतमीजी, जाओ मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगा।
3: मत खाइए, मुझे तो भूख लगी, मैं खाती
2: हूँ। क्या खाओ खाओ,
3: खड़े खड़े नजर क्या लगा रहे हैं आप, भूख लगी है तो खाइए।
2: तुम समझते हो एक दिन खाना नहीं खाने से मैं मर जाऊंगा क्या?
3: जीने की गुंजाइश कम है, मरने के चांसेस बहुत ज्यादा। क्या पराठा है, आलू की भाजी, सुभान अल्लाह। अच्छा मेरा ख्याल है जान लेंगी ये चीजें। क्यों साहब बहादुर, आप सचमुच कुछ नहीं खाएंगे?
2: No.
3: अच्छा अगर कुछ नहीं खाते तो ये एक हरी मिर्च खाकर पानी ही पी लीजिए।

0: सारा जॉन एलिया इसी पर कहते थे कि क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है. तो इस तरह की जो शख्सियत है वो अपने काम से ही लोहा मनवा लेते हैं.
1: दैट्स ट्रू. स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM. थैंक्स फॉर ट्यूनिंग लिसनर्स. हैव अ ग्रेट डे अहेड.
0: नमस्कार.
2: नमस्कार. आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की. वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित. सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की. विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज. ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान. बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा. चालक दल के 24 सदस्य थे सवार. भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया. और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता. तन्वी और कोमल को कांस्य पदक. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की. श्री मोदी ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचार और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं. हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को बढ़ाना है.
3: एक सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन नबीन ने कहा कि भाजपा ने वंदे मातरम की ऐतिहासिक विरासत के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 19 अगस्त को कांग्रेस कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन को केवल पहले दो पैरा तक सीमित करने वाली वर्ष 1937 के प्रस्ताव को पुनः लागू किए जाने के निर्णय की कड़ी निंदा की. पार्टी ने राष्ट्रीय गीत के रूप में संपूर्ण वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा, विरासत और राष्ट्रीय महत्व को बनाए रखने का संकल्प लिया. श्री नबीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी. इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा. आनंद और प्रिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
2: सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है. ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है. एक रिपोर्ट.
4: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था. बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर. मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है. टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी. तब से लेकर आज तक टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं. उस समय टीवी चैनलों को प्रसारित करने के मुख्य माध्यम केबल टीवी की प्रसारण क्षमता सीमित थी और उपभोक्ताओं के पास बहुत कम विकल्प थे. केबल टीवी क्षेत्र के डिजिटलीकरण के बाद DTH, HIST और IPTV सहित सभी प्लेटफॉर्म अब डिजिटल हैं. सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा.
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे. विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे. डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

0: आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट्स के बीच डूरेंट कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है और किसी को भी अहिंसा के इन मूल्यों को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। श्री सिंह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार की सर्वोपरि कर्तव्य है।
1: अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि किसी को की हत्या मत करो, किसी को मारा नहीं जाना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी भी रूप से किसी को पीड़ा न पहुंचाई। अहिंसा के मूल्य को हमारी कमजोरी किसी भी सूरत में नहीं समझी जानी चाहिए। हमारे अहिंसा को गलत मत समझो, अहिंसा और शांति हमारी संस्कृति है।
0: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खरीफ और आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की तैयारियों की कल समीक्षा की। नई दिल्ली में कल एक बैठक में उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की निर्बाध और समय पर आपूर्ति करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत को विश्व की फार्मेसी की अपनी पहचान से आगे बढ़कर अनुसंधान, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के बल पर विश्व की प्रयोगशाला के रूप में उभरना होगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में स्वास्थ्य सेवा में AI को बढ़ावा देना विषय पर आयोजित हेल्थ केयर समिट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तनकारी क्षमता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि AI दवाओं की खोज में तेजी ला सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। कार्यक्रम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता, द्विपक्षीय बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 अनुकूलन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना की निर्मम कार्रवाई में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने के बाद ये अपील की गई है। इस क्षेत्र में कड़ी नाकाबंदी और कर्फ्यू के कारण संचार व्यवस्थाएं ठप हैं। इस बीच बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी ने आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे सरकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। इसमें 4 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। BYC ने बताया कि शुक्रवार को मस्तुंग के खड़कुचा इलाके में एक ड्रोन हमले में 4 मजदूर मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इनमें चीनी नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। एक रिपोर्ट।
2: अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। जहाज MV ओशन विनर के चालक दल में चीन के 20, म्यांमार के 3 और एक बांग्लादेशी नागरिक सवार था। जहाज ओडिशा से करीब 72,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर 20 अगस्त को पारादीप तट से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में उदार शक्ति 2026 अभ्यास शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
3: रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 2 देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपने अग्रिम

0: पंक्ति के राफेल विमानों के साथ 20 से अधिक भागीदारी देशों की वायु सेनाओं के साथ मिलकर अभ्यास किया। उधर मलेशिया में आयोजित सैन्य अभ्यास उदार शक्ति के दौरान भारतीय वायुसेना के चालक दल ने रॉयल मलेशियन वायुसेना के साथ मिलकर उच्च तीव्रता वाले लड़ाकू मिशन और संयुक्त सामरिक युद्ध अभ्यास किए। आरजू और प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने जयपुर में अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की पहली तारीख को जयपुर में आयोजित की जाएगी। स्लोवाकिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 पदक और जीत लिए हैं। मानसी लाठर ने रजत पदक और तन्वी गुंदेश, मकदूम और कोमल ने कांस्य पदक हासिल किए। और भारत और श्रीलंका के बीच वर्तमान क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज कोलंबो में शुरू होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से खेला जाएगा। भारत पहला टेस्ट 165 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में कल विश्व एथलेटिक्स रजत स्तरीय प्रतियोगिता में भारत के रोहित यादव ने भाला फेंक और मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद स्पर्धाओं में जीत हासिल की। रोहित ने अपने छठे और अंतिम प्रयास में 87.68 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने 8.07 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया। महिलाओं की लंबी कूद में एनसी सोजान पहले, शैली सिंह दूसरे, जबकि मुबस्सिना मोहम्मद तीसरे स्थान पर रहीं। नाइजीरिया के चुकवू एबुका एनेक्वेची ने पुरुषों के शॉटपुट का खिताब जीता, जबकि इटली के जेन वियर दूसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा खेल मंत्रालय ने अगले महीने से जापान में शुरू होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय दल को मंजूरी दे दी है। इस बार एथलेटिक्स के सर्वाधिक 73 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और विदर्भ में दिनभर तेज वर्षा का अनुमान है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 2-3 दिन तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। इस बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मंगलवार तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों की नई दिल्ली में बैठक की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भाजपा जेंजी से जुड़ेगी, 14 से 25 वर्ष के युवाओं से जुड़ने के लिए पार्टी अभियान चलाएगी। जनसत्ता का शीर्षक है, राष्ट्रगीत के सम्मान से किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं, भाजपा ने वंदे मातरम पर कांग्रेस के निर्णय की आलोचना की। अमर उजाला के अनुसार कांग्रेस के पूरा वंदे मातरम न गाने के खिलाफ प्रस्ताव पास, विकसित भारत का उद्घोष भी वंदे मातरम। दैनिक जागरण ने वंदे मातरम पर घिरी कांग्रेस शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वंदे मातरम के दो ही पद गाने की कांग्रेस की जिद से ये साफ है कि सोनिया गांधी ने 15 अगस्त को पार्टी मुख्यालय पर उसके पूर्ण गायन पर आपत्ति जताई थी। पंजाब केसरी का शीर्षक है, गोरखा मुद्दे पर समझौते की तैयारी, सरकार ने गठित की समिति, चिकन नेक को मिलेगी अवैध सुरक्षा। गृहमंत्री अमित शाह, गोरखा नेताओं और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच हुई बैठक का उद्देश्य वर्तमान समस्याओं का समाधान करना। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्री जयशंकर का बयान देते हुए लिखा है, पाक यूनिक आतंक फैलाता है, बोले चीन के साथ अच्छे रिश्ते दोनों के हित में। अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा, भारत यूएस संबंध ट्रंप और मोदी की दोस्ती पर आधारित। राजस्थान पत्रिका ने नया युद्ध शीर्षक से दिया है, ईरान की घेरेबंदी के बीच अमरीका में साइबर हमले, ड्रोन मिसाइलें शांत, अब यूएस और ईरान के बीच साइलेंट वॉर। अमर उजाला के अनुसार मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी सेना में असंतोष, रावलपिंडी की सुरक्षा बढ़ाई गई, पूर्व सैनिकों के संगठनों में भी बढ़ी नाराजगी, सुरक्षा बलों पर हमले को बताया कारण। दैनिक जागरण का शीर्षक है, 1 सितंबर से ई बोर्डिंग पास दिखाकर हो सकेगी विदेश यात्रा, एयरपोर्ट पर फिजिकल बोर्डिंग पास और स्टैंपिंग व्यवस्था खत्म होगी। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, चैटबॉट नहीं, बुजुर्ग सबसे बड़े लाइफ कोच, संकट में सर्च के बजाय संवाद करें, समाधान के साथ नया नजरिया भी मिलेगा। 1500 अमरीकी बुजुर्गों की युवाओं को सीख, जो हाथ में है उसी पर फोकस करें। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार

0: कांगड़ा की अंशिका और प्रवीण राणा बने प्रेरणा स्रोत, एक साथ की एलएलबी, बेटी टॉपर और पिता तीसरे स्थान पर। राजस्थान पत्रिका के अनुसार 3 साल बाद विदेश में टेस्ट सीरीज जीतने उतरेगी भारतीय टीम। श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट की श्रृंखला में टीम इंडिया 1-0 से आगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की।

0: Bill said the ship sank about 240 nautical miles off the Odisha coast. 20 of the crew members on the ship MV Ocean Carrier were Chinese, 3 Myanmarese and 1 Bangladeshi. The ship was heading to Singapore carrying 72,100 metric tons of iron ore fines from Odisha. It had left the Paradip coast on the 20th of this month. Indian Coast Guard and Indian Navy have launched a rescue operation. So far, 2 persons have been rescued from the waters. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will undertake a 2-day official visit to Russia beginning today. The minister will co-chair the 27th session of the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation. During the visit, Dr. Jayashankar will also meet his Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and exchange perspectives on regional and global issues. Canadian Prime Minister Mark Carney has said Canada will match the United States' new tariffs dollar for dollar to protect Canadian workers, farmers, families and businesses after trade negotiations between the two countries collapsed. In a social media post, Carney said, "For over a year, Canada has worked intensively and in good faith with the United States to negotiate a new comprehensive trade deal." Carney further said he had instructed Canadian negotiators to return to Ottawa after over a year of discussions with Washington, adding that Canada could not accept the offer made by the United States. The Canadian Prime Minister added that Ottawa would announce details of its retaliatory tariff measures in the coming days. The Indian Meteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh and Odisha today. IMD said that heavy rainfall conditions are expected to prevail over East Uttar Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Gangetic West Bengal and Vidarbha for the day. Similar weather conditions have also been forecast for Madhya Pradesh, Uttarakhand, Kerala, Mahi and northeastern parts of India during the next 2 to 3 days. Meanwhile, Andaman Nicobar Islands, Andhra Pradesh, Bihar, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal are likely to witness thunderstorms accompanied with lightning and gusty winds till the 25th of this month. The weather department has also predicted squally weather with wind speeds gusting up to 60 km per hour, likely to prevail off West Bengal, Odisha and North Andhra Pradesh coasts, adjoining some parts of West Central and Northwest Bay of Bengal today. In wrestling, Indian women wrestlers added 3 more medals to the country's tally at the Under-20 World Championships in Slovakia, with Mansi Latha winning silver and Tanvi Gundesh Madgum and Komal securing bronze medals. In the 68-kilogram final, Mansi was edged 1-2 by China's Chen Ling Song in a closely contested bout, settling for the silver medal. India added 2 medals in the bronze medal playoffs. Tanvi defeated Canada's Agnia Kraskova 10-4 in the 57-kilogram category, while Komal overcame Hungary's Eda Balaz 5-2 in the 59-kilogram division to claim bronze. In cricket, second and final test match of the series between India and host Sri Lanka will begin today in Colombo. The match will start at 10 a.m. Indian Standard Time. India won the first test by 165 runs and currently lead the series 1-0. And now for a look at today's newspapers, it's over to Saira Mujtaba.
1: Thank you, Pramod. BJP backs Vande Mataram's legacy, headlines The Pioneer, while Hindustan Times headlines, BJP plans drive targets Congress in Vande Mataram resolution. The Asian Age headlines, BJP will weaponize Vande Mataram to blunt opposition attack, woo Gen Z. Almost all leading newspapers carry on their front page the story of the first meeting of the newly appointed office bearers of the BJP. The Tribune headlines, BJP forms special team for Gen Z outreach, Naveen Smriti key faces. While The Hindu says, it's about ideas, perspectives, says Modi after team Naveen meet. And finally, a story in the Sunday Tribune says, a Kangra girl and her father aced the LLB exam, securing first and third ranks respectively. Anshika Rana topped, while her father Praveen Rana secured third rank. And with that, it's back to you, Pramod.
0: Thank you, Saira. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi meets BJP's newly formed team at the party headquarters in Delhi. Party passes resolution regarding honour and protection of historic legacy of Vande Mataram. Center notifies removal of 12-minute advertisement duration cap for television channels. India to host BRICS sports ministers meeting in Visakhapatnam in Andhra Pradesh today. British parliamentarians seek UN intervention to end bloodshed in POJK by Pakistani forces. Cargo ship with 24 crew members sinks in Bay of Bengal off Odisha coast. Indian Coast Guard and Navy launch rescue operation. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पार्टी सदर दफ्तर में बीजेपी की नई तश्कील शुदा टीम से मुलाकात की। पार्टी ने वंदे मातरम की तारीखी विरासत के एहतराम और तहफ्फुज़ से मुतालिक एक करारदाद मंजूर की। मरकज ने टेलीविजन चैनलों पर इश्तेहारात के लिए 12 मिनट की हद खत्म करने को नोटिफाई किया है। भारत आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स के खेलों के वुज़रा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से होने वाली खूरेजी के खात्मे के लिए अक्वाम मुत्तहदा से मुदाखलत करने का मुतालबा किया है। 24 रुकनी अमले वाला एक कार्गो जहाज ओडिशा के साहिल के करीब खलीज बंगाल में डूब गया। भारतीय साहिली मुहाफिज दस्ते और बहरिया ने बचाव की कार्रवाई शुरू कर दी है। और कुश्ती में स्लोवाकिया में जारी 20 साल की उम्र तक की आलमी चैंपियनशिप में मानसी लाथर ने चांदी का तमगा जीता, जबकि तन्वी और कोमल ने कांसे के तमगे हासिल किए। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में बीजेपी के सदर दफ्तर में पार्टी के नए मुकर्रर करदा कौमी ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि तंजीम की मीटिंगें नए ख्यालात और नुक्ते नजर पर मबनी हैं, जिनका मकसद पार्टी को मजबूत बनाना और अवाम के साथ उसके ताल्लुक को मजीद गहरा करना है। बीजेपी के सदर नितिन नबीन ने भी पार्टी के नए मुकर्रर करदा कौमी ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान बीजेपी ने कौमी गीत वंदे मातरम की तारीखी विरासत के एहतराम और तहफ्फुज़ से मुतालिक एक करारदाद मंजूर की। पेश है एक रिपोर्ट।
3: बीजेपी के सदर नितिन नबीन ने कहा कि बीजेपी की टीम भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के वजीर आजम ने मोदी के अज़्म को पूरा करने के लिए पार्टी की बुनियाद को वसी करने की खातिर मुकम्मल लगन और खुलूस के साथ काम करने के लिए अहदबस्ता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब नबीन ने कहा कि वंदे मातरम की तारीखी विरासत के एहतराम और तहफ्फुज़ से मुतालिक करारदाद में पार्टी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के उस फैसले की मजम्मत और वाज तौर पर मुखालफत की है जो इस माह की 19 तारीख को लिया गया था। इस फैसले के तहत कांग्रेस ने अपनी 1937 की करारदाद को दोबारा नाफिज करने और कांग्रेस के प्रोग्रामों में वंदे मातरम को सिर्फ उसकी पहली दो बंद तक महदूद रखने का फैसला किया था। पार्टी ने यह अज़्म भी जाहिर किया कि पूरे वंदे मातरम के एहतराम, वक़ार और विरसे और कौमी हैसियत को बरकरार रखा जाएगा, क्योंकि वंदे मातरम भारत के कौमी गीत के तौर पर मुल्क के कौमी शऊर और आज़ादी की जिद्दोजहद की एक लाजवाब अलामत है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने फैसला किया है कि बीजेपी कारकुनों के जरिए मुल्कगीर मुहिम चलाई जाएगी ताकि वंदे मातरम की तारीख, मफहूम, कौमी अहमियत और शानदार विरसे को मुल्क के हर कोने तक पहुंचाया जा सके। कौमी ओहदेदारों की पहली मीटिंग के अख्ताम के बाद रियासती सुदूर जनरल सेक्रेटरीज और दिगर ओहदेदारों के साथ सेवा संकल्प अभियान के लिए एक कौमी वर्कशॉप मुनक़िद की गई। सहाफियों को जानकारी फराहम करते हुए बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े ने ऐलान किया कि बीजेपी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 17 सितंबर को आने वाली सालगिरह के मौके पर एक माह तवील मुल्कगीर सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। इस मुहिम का मकसद अवामी खिदमत के लिए उनके अज़्म को उजागर करना और बिलखसूस नौजवानों को खिदमत के काम अंजाम देने की तरगीब देना है। नई दिल्ली से सौम्या की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
2: मरकजी हुकूमत ने टेलीविजन चैनलों के लिए इश्तेहारात की 12 मिनट की हद खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। یہ فیصلہ کیبل ٹیلی ویژن نیٹورک ضوابط 1994 میں ترمیم کو گزٹ میں شائع کیے جانے کے بعد نافذ العمل ہو گیا ہے۔ اس سے قبل وزارت اطلاعات و نشریات نے کہا تھا کہ ٹیلی ویژن نشریات کے شعبے میں آنے والی تبدیلیوں کے پیش نظر اشتہارات کی مدت سے متعلق موجودہ ضوابط پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی تھی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
4: وزارت نے کہا

0: इलाके में पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से शहरियों पर किए गए ड्रोन हमले को सरकारी दहशतगर्दी का वाकया करार दिया है। जुमे को मस्तंग जिले के खड़कोचा इलाके में एक बागीचे पर ड्रोन हमले के बाद ये बयान सामने आया है। इस हमले में वहां काम करने वाले चार अफराद मौके पर ही हलाक हो गए जबकि तीन दीगर जख्मी हुए। पाकिस्तानी फिजाइया के जरिए बलूचिस्तान के सुराब जिले के गिदर इलाके में रिहायशी इलाके पर मुबैना अंधाधुन बमबारी के महज चंद दिन के बाद यह हमला किया गया है। इस बमबारी में खवातीन और बच्चों समेत 30 से ज्यादा अफराद मारे गए थे। पनामा का एक परचम बरदार जहाज जिसमें अमले के 24 अफराद सवार थे कल खलीज बंगाल में डूब गया। इस जहाज में ज्यादातर अमला चीनी शहरियों पर मुश्तमिल था। हुकाम ने बताया कि जहाज ओडिशा के साहिल से तकरीबन 240 बहरी मील दूर गर्कयाब हुआ। जहाज एमवी ओशन विनर पर सवार अमले में 20 अरकान चीन के, 3 म्यांमार के और एक बांग्लादेशी शहरी शामिल थे। ये जहाज ओडिशा से तकरीबन 38,000 टन लोहे का खाम माल लेकर सिंगापुर जा रहा था। ये 20 अगस्त को रात तकरीबन 11:42 पर पारादीप बंदरगाह से रवाना हुआ था। भारतीय साहिल मुहाफिज दस्ते और भारतीय बहरिया ने इमदाद और बचाव की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक 2 अफराद को बचाया जा चुका है। कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी ने कहा है कि तिजारती मुजाकरात नाकाम होने के बाद कनाडा अमरीका की जानिब से आयात किए गए नए महसूल का जवाब डॉलर के बदले डॉलर से देगा और कनाडा अपने कारकुनों, किसानों, खानदानों और कारोबारों के तहफ्फुज़ के लिए अहद बस्ता है। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने कहा कि मशरकी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, गंगा की तराई वाले मगरी बंगाल और विदर्भ के इलाकों में आज शदीद बारिश के हालात रहने का इम्कान है। स्लोवाकिया में जारी 20 साल की उम्र तक की आलमी कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय खातून पहलवानों ने मुल्क के लिए मजीद 3 तमगे जीते। मानसी लाथर ने चांदी जबकि तन्वी मकदुम, गंदेश मकदूम और कोमल ने कांसे के तमगे हासिल किए। 68 किलोग्राम जुमरे के फाइनल में मानसी लाथर को चीन की चैनलिंग सॉन्ग ने सख्त मुकाबले में 1-2 से शिकस्त दी जिसके बाद उन्हें चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। भारत ने कांसे के तमगों में मजीद 2 तमगे हासिल किए। 57 किलोग्राम जुमरे में तन्वी ने कैनेडा की एग्निया को 10-4 से शिकस्त दी जबकि 59 किलोग्राम जुमरे में कोमल ने हंगरी की एडब्लेजिस को 5-2 से हराकर कांसे का तमगा जीता। क्रिकेट में भारत और मेजबान श्रीलंका के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच आज कोलंबो में शुरू होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे से खेला जाएगा। भारत ने पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता था और भारत को इस सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। भारतीय एथलीट्स रोहित यादव और मुरली श्री शंकर ने बिलतरतीब नेजा फेंकने और लॉन्ग जंप मुकाबलों में कामयाबी हासिल की। ये मुकाबले कल भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में होने वाले आलमी एथलेटिक्स सिल्वर लेवल कॉन्टिनेंटल टूर 2026 के तहत मुनाकिद हुए। रोहित यादव ने नेजा फेंकने के अपने छठे और आखिरी कोशिश में 87.68 मीटर की जाती तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए यह खिताब अपने नाम किया। खवातीन के लॉन्ग जंप में कौमी रिकॉर्ड याफ्ता एनसी सोजन ने 6.71 मीटर की छलांग के साथ भारतीय खिलाड़ियों की शानदार कामयाबी का आगाज किया। शायली सिंह ने 6.56 मीटर के साथ दूसरे जबकि मुबस्सिना मोहम्मद ने तीसरे नंबर पर रहीं। नौमर एथलीट अबानिया राजाराजन ने भी नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए खातिन की 100 मीटर दौड़ में 11.34 सेकंड में फाते रहीं और 20 साल से कम उम्र का कौमी रिकॉर्ड दोबारा अपने नाम किया। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के सिलीगुड़ी के दौरे को खसूसियत के साथ शाये करते हुए लिखा है कि वजीर दाखिला अमित शाह ने सिलीगुड़ी में मगरबी बंगाल के पहाड़ी इलाकों के नुमाइंदों और दीगर मुतल्लिका फरीकों के साथ मीटिंग की और कहा कि आइन के दायरे में उनके मसाइल का जल्द से जल्द तस्वीर किया जाएगा। वजीर खारजा डॉक्टर ए जयशंकर आज रूस के 2 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे जहाँ वो भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इस खबर को आज के सभी अखबारों ने अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की खबर है भारतीय बहरिया कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोची की जानिब से तैयार करदा तीसरा आबदोशिकन जहाज मंगरोल सौंपा गया।
0: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। وزیر اعظم نریندر مودی نے دلی میں پارٹی صدر دفتر میں بی جے پی کی نئی تشکیل شدہ ٹیم سے ملاقات کی. پارٹی نے وندے ماترم کی تاریخی وراثت کے احترام اور تحفظ سے متعلق ایک قرارداد منظور کی. مرکز نے ٹیلی ویژن چینلوں پر اشتہارات کے لیے 12 منٹ کی حد

खत्म करने को नोटिफाई किया है। भारत आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स के खेलों के वुजरा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फोर्सेज की जानिब से होने वाली खूरेजी के खात्मे के लिए अक़वामे मुत्तहिदा से मुदाखलत करने का मुतालबा किया है। और इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

जिंदगी में खुशियों की तलाश करनी नहीं चाहिए, बस खुशियों को जनरेट कर लेना चाहिए। जब भी किसी भी परिस्थिति में हम कहीं पर भी रह रहे हैं, तो ऐसे में ज़रूरी है कि ये देखना कि हम कैसे मुस्कुरा सकते हैं, कैसे खुश हो सकते हैं, क्योंकि ये गम, परेशानी, खुशियाँ, दुख ऐसे ही आते रहेंगे, जाते रहेंगे, पर जो ज़िंदगी की अनमोल घड़ियाँ हैं, अगर एक बार आई और गई, वापस लौटकर बिल्कुल नहीं आने वाली है। तो जो ये खास से पल हैं, चलिए इन्हें और खास बनाते हैं, इन्हें खुशियों से सजाते हैं। 8:46 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये है म्यूजिकल दिल लगी, जिसमें आपका साथ देने के लिए मैं शीतल हूँ आज आपके साथ। आप सभी को मेरा नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और इस मॉर्निंग को और खूबसूरत बनाता है आज का ये मौसम। इस मौसम में आपको रखना है अपना ख्याल, और इजहार मोहब्बत भी अगर आप कर दें, तो फिर सोचिए कि कितनी खूबसूरती से दिन भर जाएगा।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों।

पर मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

रविवार यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो छुट्टी का दिन और ऐसा दिन जहां हम हर चीज़ अपनी मर्जी से कर सकते हैं, सोकर अपनी मर्जी से उठ सकते हैं, हम चाहें तो जितनी देर तक बैठकर चाय पी सकते हैं, हम चाहें तो नाश्ते में कुछ अलग सी चीज़ खा सकते हैं और हम चाहें तो नाश्ता स्किप भी कर सकते हैं। आज का दिन बहुत खास होता है और आज का ही क्यों, हर एक दिन हमारी ज़िंदगी का बहुत ख़ास होता है और ऐसे में ज़रूरत होती है कि इस ज़िंदगी को थोड़ी सी तसल्ली में बैठ कर के जीने की। तो क्यों ना इस ज़िंदगी को जिया जाए महसूस करके, हर एक पल को ये याद करके कि भाई ये जो पल है ना ये बहुत ख़ास है, इसमें से जो खूबसूरती, जो मोहब्बत, जो खुशियां हमें निकालनी है ना वो निकालनी ही है। और ज़िंदगी में जब भी हम रहें, या तो हम काम पर रहें या कोई छुट्टी का दिन हो, ये हमें याद रखना है कि ये हमें खुशियों से भरने के लिए दिन आया है। काम करना है तो काम में खुश रहना है, आज फुर्सत है तो फुर्सत से खुश रहना है, और साथ में अगर किसी अपने का साथ मिल जाए तो उसके साथ उसकी खुशियों में खुश रहना है।

अभी वक्त कह रहा है कि म्यूजिकल दिल्लगी के इस पड़ाव को यहीं पर देना है विराम, क्योंकि आपको सुनने हैं समाचार। ठीक 9:10 पर हो गया म्यूजिकल दिल्लगी का दूसरा पड़ाव, जिसमें आप सुनिएगा बहुत बेहतरीन गीत विजय के साथ। मुझे यानी शीतल को दीजिए इजाजत, रखिए अपना खूब ख्याल, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में नव नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचार और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ संपर्क बढ़ाना है। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट्स के बीच डूरंट कप फाइनल भी देखेंगे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। बैठक में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता, द्विपक्षीय बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने जयपुर में अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए एडुक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रभावित विद्यार्थियों के लिए पुनर्परीक्षा 1 सितंबर को सवेरे 10 बजे जयपुर में ही आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश को पत्र लिखकर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों के रक्तपात को रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना की निर्मम कार्रवाई में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने के बीच ये अपील की गई है। इस क्षेत्र में कड़ी नाकाबंदी और कर्फ्यू के कारण संचार व्यवस्थाएं पूरी तरह ठप हैं। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे।
2: अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। जहाज MV ओशन विनर के चालक दल में चीन के 20, म्यांमार के 3 और एक बांग्लादेशी नागरिक सवार था। जहाज ओडिशा से करीब 72,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर 20 अगस्त को पारादीप तट से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: स्लोवाकिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 और पदक जीत लिए हैं। मानसी लाठर ने रजत पदक और तन्वी गुंदेश मकदुम तथा

जब राहों में रह गुजर है एफएम गोल्ड, तो फिर उस पर रास्ते पर चलते हुए अपन मिल ही जाते हैं। और मैं टकरा गया हूँ आपसे जी, विजय एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ से बोल रहा हूँ। क्या हालचाल है, संडे की सुबह मना रहे हो आप? हाँ, यही काम रहा आपको? और आपको तो पता ही है कि जो हमारी रसोई है उसमें अच्छी सेहत का राज छुपा है। हाँ हाँ भाई, परजाई जी खुश होंगी तो अच्छा खाना बनाएंगी ना। और आपने ये काम तो परजाई जी को ही सौंपा हुआ है हमारी। अब भाई साहब उठ जाओ, कुछ काम कराओ उनके साथ, और प्रोसेस्ड फूड ना मंगवाएं। ताज़े फल, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज, देसी मोटे अनाज यानी मिलेट्स को बनाएं अपनी खुराक का हिस्सा। ये ना सिर्फ शरीर को ऊर्जा देते हैं बल्कि बीमारियों को भी दूर रखते हैं। जैसा अन्न वैसा मन, इसलिए आज ही चुनिए सही और पौष्टिक खाना। आइए सुनते हैं एक पौष्टिक गाना। गाना सुनने से पहले थोड़ी सी गाने की बात हो जाए। ये गाना है, हम तीसरी मंजिल का सुनने जा रहे हैं दोस्तों, आरडी बर्मन की शुरुआती प्रतिभा जो थी ना, इस गाने में खूब निकल कर आई है। बेजोड़ नमूना है, हाय बिल्कुल अनूठी जटिल धुन है और चुनौती देती है म्यूजिक को, कंपोजिशन को। गिटार, ब्रास, पर्कशन, संडे मॉर्निंग आपकी बन जाएगी भाई साहब। एफएम गोल्ड के साथ इस गाने को रफी साहब और आशा भोसले ने गाया है। शम्मी कपूर और आशा पारिख पर फिल्माया गया था ये गाना। मजरूह सुल्तानपुरी का ये गाना हम सुनते हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही होगी कौन सा गाना है, हालांकि बहुत सारे गाने आपको पता ही हैं। इस गाने को निर्देशित खुद करना चाहते थे विजय आनंद, जो कि गाइड फिल्म का काम कर रहे थे न्यूयॉर्क में उन्हीं दिनों। तो इस गाने के लिए, शूट के लिए और गाइड के काम के लिए, वो न्यूयॉर्क और महाबलेश्वर के बीच लगातार सफ़र करते रहे। और बजट बचाने के लिए जिस मेले वाले सेट पे ये गाना शूट हुआ ना, उसी सेट पर रात को शूटिंग हुआ करती थी एक और गाने की, क्या जानू सनम होती है क्या। बड़ा प्यारा गाना है ना, वो आज हम नहीं सुन रहे अभी तो फिलहाल। ये गाना पेश खिदमत।

है खड़ी लेकिन वहाँ कोई और थी इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाँ देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी मैं इन पे मरता।

इनको भी है मेरा खुमार, इनको भी है इनके लिए है मोहतरम, छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाथ देखिए साहिबो, वो कोई और थी, और ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ।

गम दोस्तों रुसवा हुए हम दोस्तों इनके लिए ए मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाँ देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ।

मुझ पर यकीन अब कम सही हा, हा। मैं सादा दिल मुझे दिम सही हा, हा। इनके लिए ए मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा।

0: मैं इन पे मरता हूँ।
1: देखिए साहब, हम भी आप पे मरते हैं, बस आप भी हम पे मरिए और थोड़े बहुत बातें सुनते सुनते गाने भी सुनिए।
2: एनसीआरईपीई से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
3: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube

0: चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: गोल्ड आकाशवाणी म्यूजिकल दिल लगी विजय सिंह के साथ संडे मॉर्निंग रविवार की सुबह। दोस्तों, बदलते भारत के साथ आगे बढ़ने के लिए सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि नए विचारों और इनोवेशन की भी ज़रूरत है, और इसी सोच को पंख देने के लिए भारत सरकार की ओर से चल रहा है अटल इनोवेशन मिशन। ये मिशन देश के युवाओं और छात्रों को नई तकनीक से जोड़कर उनके इनोवेटिव आइडियाज़ को हकीकत में बदलने का मौका दे रहा है। अगर आपके पास भी है कोई नया आइडिया तो अटल टिंकरिंग लैब्स के जरिए अपने सपनों को दीजिए एक नई उड़ान। तो एक उड़ता हुआ गाना सुने उड़ता हुआ गाना ऐसा है कि ये गाना आया तो 2001 के आसपास था, हाँ 2001 में ही आया था, लेकिन उड़ता तब से है क्योंकि हमारे दिलों में आज भी ये गाना बसता है। फरहान अख्तर के निर्देशन में दिल चाहता है का ये गाना, और ये फिल्म ने तो बहुत कुछ बदल दिया था ना, ट्रेंड ही बदल दिया था। मैंने सुना है कि उसके बाद गोवा के ट्रिप लोग खूब लगाने लगे थे, घूमने जाने लगे थे इस फिल्म से प्रभावित होकर। और मैं किसी की बातचीत सुन रहा था तो वो जो किला है जहाँ शूट हुआ था, तो उस किले को दिल चाहता है के नाम से ही जान लिया गया है। मेरे दोस्त कौस्तुभ की मैं बातचीत कहीं सुन रहा था और वो गोवा में ही रहते हैं। शंकर एहसान लॉय का संगीत और जावेद अख्तर के बोल बहुत खूबसूरत थे, और जनाब इस फिल्म ने क्रिटिक्स का दिल भी जीता और बॉक्स ऑफिस भी जीता, और आपका दिल जीता हुआ है इस गाने ने। जैसे जैसे मैं बोलता रहूँगा आपको ये गाना सुनना बहुत ही अच्छा लगेगा।

बस मुकरते हम नहीं हैं भाई साहब, आपके साथ रहेंगे। अपना दिल का मेल बॉक्स खुलेगा 10:30 बजे और तब आप हमें ईमेल भेजिएगा ना। ईमेल आईडी आपको पता है, fmgoldairdelhi@gmail.com, fmgoldairdelhi@gmail.com, delhi, DELHI। हाँ, तो विचार कीजिएगा, कुछ अच्छे से गाने भेजिएगा। हम गाना सुनवा पाएंगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आपका नाम ज़रूर लेंगे। और बस यही कहने जा रहे हैं, उससे पहले खान पान का रखिए ख्याल और अच्छे गाने भी सुनिए ना हमारे साथ।

0: हमारी चाहतों का फसाना नहीं मिटेगा कभी, और जिन शहीदों ने देश के लिए काम किया है उनकी यादें भी नहीं मिटेंगी। सुनते हैं वतन का राग।
1: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोता

0: श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि आचार्य शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 9 अगस्त। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण चौहान और दिल्ली से नरेंद्र देव पांडे। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

भारतीय स्वाधीनता संघर्ष की कहानी केवल बड़े बड़े आंदोलनों की कहानी नहीं है, ये उन अनगिनत कदमों की भी कहानी है जो गांव की पगडंडियों से उठे, जिन्होंने अत्याचार के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया, अंग्रेजी सत्ता की आंखों में आंखें डाल वो चलते रहे, आगे बढ़ते रहे और अपने प्राण न्योछावर कर दिए, क्योंकि उनका एकमात्र स्वप्न था स्वाधीन भारत। एक ऐसे ही महान देशभक्त थे गुलाब सिंह लोधी। वो जानते थे कि अंग्रेजी सत्ता के सामने खड़ा होना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी जाना था कि डर कर जीने से बेहतर है देश के लिए निर्भय होकर मर जाना। उनका जीवन असाधारण साहस का प्रतीक है जो बताता है कि स्वाधीनता की मशाल यूं ही नहीं जली, ये मशाल एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंची। किसी ने लोगों को जगाया, किसी ने अपने कदमों से रास्ता बनाया और किसी ने अपने रक्त से उसकी लौ को जलाए रखा। वीर गुलाब सिंह लोधी का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के फतेहपुर चौरासी क्षेत्र के चंडिका खेड़ा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता ठाकुर राम रतन सिंह लोधी एक किसान थे। वो धर्मनिष्ठ तथा अत्यंत स्वाभिमानी थे तथा कड़ी मेहनत से अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। उन्होंने अपने पुत्र के भीतर निडरता, सत्यनिष्ठा और राष्ट्र प्रेम के संस्कार डाले। जिस उन्नाव की धरती में उनकी परवरिश हुई वो भूमि बैसवाड़ा की गौरवशाली इतिहास और 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के अमर नायक राजा राव रामबख्श सिंह की शौर्य गाथा से स्पंदित रहती थी। ऐसे वातावरण में पलने के कारण बालक गुलाब सिंह लोधी के मन में देश प्रेम के भाव प्रस्फुटित हो चुके थे।

औपनिवेशिक भारत के अभावग्रस्त ग्रामीण परिवेश में गुलाब सिंह लोधी का बचपन बीत रहा था। उस दौर के ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधाओं का घोर अभाव था। ब्रिटिश राज की नीतियां ग्रामीण शिक्षा के प्रति पूरी तरह उदासीन थीं। गुलाब सिंह लोधी ने अपने गांव के निकट स्थित प्राथमिक विद्यालय में अपनी आरंभिक शिक्षा ग्रहण की। हिंदी भाषा और स्थानीय बोलियों का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था उन्होंने, लेकिन वो औपचारिक उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। हालांकि औपचारिक डिग्री न होने के बावजूद उनके भीतर गजब की बौद्धिक तीक्ष्णता और सामाजिक राजनैतिक समझ थी। अंग्रेजों के अत्याचार और किसानों पर मंडराते आर्थिक संकट को वो बहुत गहराई से देख और समझ रहे थे। इसके साथ ही तत्कालीन समाचार पत्र पत्रिकाओं और लोक साहित्य के माध्यम से देश की राजनैतिक स्थिति और ब्रिटिश नीतियों के दुष्प्रभावों पर भी उनकी दृष्टि थी। समय आगे बढ़ा और गुलाब सिंह लोधी पिता के साथ खेत में काम करने लगे। खेती किसानी के दौरान उन्होंने बहुत करीब से देखा कि किस तरह ब्रिटिश हुकूमत के मातहत जमींदार और लगान वसूल करने वाले कारिंदे निर्धन किसानों का निर्दयतापूर्वक शोषण किया करते थे। इस प्रत्यक्ष अनुभव ने उनके भीतर ब्रिटिश राज के प्रति तीव्र असंतोष और विद्रोह की भावना को जन्म दिया। 1920 का दशक भारत के स्वाधीनता इतिहास में अत्यंत उथल पुथल भरा दौर था। एक तरफ महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन देशव्यापी लहर पैदा कर रहा था, तो दूसरी तरफ क्रांतिकारी धारा के युवा अपने रक्त से आजादी की इबारत लिख रहे थे। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट हुए ऐतिहासिक काकोरी कांड ने देश भर के साथ साथ पूरे अवध क्षेत्र के युवाओं में देशभक्ति की भावना जगा दी थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद और ठाकुर रोशन सिंह

ऐसे क्रांतिकारियों की चर्चा देश भर में थी। वीर गुलाब सिंह लोधी के मन मस्तिष्क पर भी इस घटना ने अमिट छाप छोड़ी। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव गांव गांव तक पहुंच रहा था। लोग विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर रहे थे। चरखा और खादी स्वावलंबन का प्रतीक बन चुका था। वीर गुलाब सिंह लोधी समझ चुके थे कि इसी मार्ग पर चलते हुए गरीबों और किसानों का उत्थान संभव है, अंग्रेजी राज से मुक्ति संभव है।

इसी बीच साल आया सन 1935। भारत का स्वाधीनता संघर्ष लगातार जारी था और ब्रिटिश हुकूमत ने जन आंदोलनों को दबाने के लिए कठोर नियम लागू कर रखे थे। उस समय तक गुलाम भारत के मन में अपने राष्ट्र ध्वज की आकांक्षा आकार ले चुकी थी। ब्रिटिश राज के विरोध स्वरूप झंडा सत्याग्रह शुरू हो चुका था और अलग अलग अवसरों पर लोग राष्ट्र ध्वज फहराकर ब्रिटिश प्रशासन का विरोध कर रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत ने सार्वजनिक स्थानों पर भारतीय झंडे को फहराने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी थी। झंडा फहराना राजद्रोह माना जाता था और ऐसा करने वालों को असहनीय यातनाएं और सजा दी जाती थी। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में भी स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने लखनऊ के मध्य स्थित अमीनाबाद पार्क में झंडा फहराकर झंडा सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। 23 अगस्त 1935 का दिन तय हुआ। अंग्रेज सरकार को पहले ही सूचना मिल चुकी थी कि क्रांतिकारी अमीनाबाद पार्क में झंडा फहराने का प्रयास करेंगे, इसलिए सैकड़ों सशस्त्र पुलिस के सिपाही, पुलिस अधिकारी और घुड़सवार दस्तों ने पूरे पार्क को चारों ओर से घेर लिया। पार्क के सभी प्रवेश द्वार सील कर दिए गए। किसी भी नागरिक को पार्क के भीतर तो क्या, आसपास भी फटकने की इजाजत नहीं थी। पार्क के बाहर भारी

जन सैलाब उमड़ पड़ा था, लेकिन पुलिस के सख्त पहरे के कारण कोई भी भीतर नहीं जा पा रहा था। जब पार्क के बाहर जमा सत्याग्रही पुलिस के कड़े पहरे को देखकर असहाय महसूस कर रहे थे, तब वीर गुलाब सिंह लोधी ने हार नहीं मानी। वो पुलिस की नजरों से बचते हुए चुपचाप झाड़ियों और पेड़ों का सहारा लेते हुए आगे बढ़ने लगे। इस तरह पुलिस को चकमा देते हुए वो पार्क के भीतर दाखिल होने में सफल हो गए। पार्क के बीचों बीच एक विशाल और घना पेड़ था। वीर गुलाब सिंह लोधी बिजली की गति से उस पेड़ पर चढ़ गए। उन्होंने झंडे को बड़े जतन से छुपा रखा था। उनके पास बैलों को हांकने वाला एक डंडा भी था, जिसे पैना कहा जाता है। पुलिस बाहर भीड़ को रोकने में व्यस्त थी, जबकि गुलाब सिंह लोधी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर पहुंच चुके थे। पेड़ के शीर्ष पर पहुंचकर उन्होंने झंडा निकाला और पेड़ की शाखा पर झंडा फहरा दिया। हवा में लहराते झंडे को देखकर उन्होंने जोर से नारा लगाया, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, वंदे मातरम। पार्क के बाहर खड़े सत्याग्रहियों ने जब उनकी आवाज सुनी और हवा में लहराता झंडा देखा, तो गगनभेदी जयकारों से आसमान गूंज उठा। ब्रिटिश अधिकारी बौखला गए। उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया। अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। वीर गुलाब सिंह लोधी की बांह, सीने और पेट में कई गोलियां लगी। वो झंडे को संभाले हुए पेड़ पर खड़े थे और अंततः मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े। 23 अगस्त सन 1935 को मातृभूमि के लिए संघर्ष करते हुए भारत माता की गोद में ही वो बलिदान हो गए। आज वो पेड़ सत्याग्रह वृक्ष के नाम से जाना जाता है और अमीनाबाद पार्क का नाम झंडे वाला पार्क हो गया है, जो आज भी वीर गुलाब सिंह लोधी के बलिदान की गाथा सुनाता है। नमन ऐसे अमर बलिदानी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन ले, कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

दिल का मेल बॉक्स खुलेगा 10:30 बजे। आपके फरमाइशी गीत हम उसमें शामिल करते हैं, और अगर फरमाइश ना ले सकें क्योंकि समय कम होता है, कुछ ही गाने बच सकते हैं, तो उस स्थिति में हम कम से कम कोशिश करते हैं आपका नाम ज़रूर लें। आप अपनी फरमाइश भेज सकते हैं fmgolddaily@gmail.com fmgolddaily@gmail.com पर। विजय सिंह आपका वहाँ इंतज़ार करेगा। अभी हम सुनेंगे समाचार थोड़ी देर में, और समाचार सुनकर जब वापस आएंगे तो दिल का मेल बॉक्स खुलने की बात हमने आपको बता ही दी है। तो जनाब, हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार और विश्व दर्पण यानी विश्व की खबरें सुनने के बाद मिलते हैं फिर से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी भाग लेंगे। कार्यक्रम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता, द्विपक्षीय बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती क्रीड़ांगण में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर ज्वाइंट के बीच टूरन कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड या फ्री टू एयर। मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉ सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश को पत्र लिखकर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों के रक्तपात को रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना की निर्मम कार्रवाई में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने के बीच ये अपील की गई है। इस क्षेत्र में सख्त नाकाबंदी और कर्फ्यू के कारण संचार व्यवस्थाएं पूरी तरह ठप पड़ी हुई हैं। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 440 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने जयपुर में अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए एडुक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की 1 तारीख को सुबह 10 बजे जयपुर में ही आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर आज देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। उन्होंने कहा कि भारत ने 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लिया है और इस लक्ष्य को साकार करने में अंतरिक्ष क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। स्लोवाकिया में अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 और पदक जीते। मानसी लाठर ने रजत पदक और तन्वी गुंदेश मगदुम और कोमल ने कांस्य पदक हासिल किया। भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मैच आज कोलंबो में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारत का पहला टेस्ट 165 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और विदर्भ में दिनभर तेज वर्षा का अनुमान है। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, माहे और पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई वैश्विक व्यवस्था में भारत अंतरिक्ष कार्यक्रमों का लगातार विस्तार कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर 2 दिन की रूस यात्रा पर आज रवाना होंगे। कनाडा अमेरिका के साथ वार्ता विफल होने के बाद जवाबी शुल्क लगाएगा। बंगाल की खाड़ी में चालक दल के 24 सदस्यों के साथ मालवाहक जहाज डूबा। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मैच कोलंबो में जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर देशवासियों और वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में वीडियो साझा करते हुए उन्होंने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अंतरिक्ष कार्यक्रमों का विस्तार कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज नई पीढ़ी के इंजीनियर, डिजाइनर, कोडर और वैज्ञानिक नई प्रौद्योगिकियां विकसित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। उन्होंने कहा कि भारत ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लिया है और इस लक्ष्य को साकार करने में अंतरिक्ष कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। यात्रा के दौरान डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैफरोव के साथ मुलाकात भी करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए वार्ता करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगे। ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि बैठक के दौरान अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। कार्यक्रम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता, द्विपक्षीय बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 अनुकूलन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। यह जनकेंद्रित और मानवता के दृष्टिकोण को अपनाता है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने ने कहा है कि व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा अपने श्रमिकों, किसानों, परिवारों और व्यवसायों की रक्षा के लिए अमरीका के नए शुल्क के बराबर ही जवाबी शुल्क लगाएगा। एक रिपोर्ट।
1: श्री कार्नी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक साल से अधिक समय से कनाडा ने अमेरिका के साथ नए व्यापक व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए गहन और सद्भावनापूर्ण प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अमेरिका के साथ एक साल से अधिक की बातचीत के बाद कनाडा के वार्ताकारों को वापस लौटने के निर्देश दिए हैं। श्री कार्नी ने कहा कि कनाडा अमेरिका के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि कनाडा आने वाले दिनों में अपने जवाबी शुल्क कदमों के बारे में विस्तार से घोषणा करेगा, जो मजदूर दिवस के बाद मंगलवार से लागू होंगे। शुक्रवार देर रात अमेरिका और कनाडा के व्यापार वार्ता विफल होने के बाद श्री कार्नी का यह बयान आया। अमेरिका ने लगभग 28 अरब डॉलर मूल्य के कनाडाई आयात पर 50% शुल्क लगा दिया है। श्री कार्नी ने अमेरिका की मांगों को अनुचित और आर्थिक रूप से नुकसानदेह बताया। उन्होंने कहा कि कनाडा और सरकार श्रमिकों और व्यवसायों को समर्थन देने के लिए अतिरिक्त उपाय करेगी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। एक रिपोर्ट।
2: अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। जहाज MV ओशन विनर के चालक दल में चीन के 20, म्यांमार के 3 और एक बांग्लादेशी नागरिक सवार था। जहाज ओडिशा से करीब 72,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर 20 अगस्त को पारादीप तट से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया।

0: जा चुका है। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: उधर दक्षिण ओडिशा में भी एक नाव के पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य लापता हैं। 1 व्यक्ति को बचा लिया गया। जर्जिस और बेन गुएडो शहरों के बीच जब नाव रवाना हुई थी तब उसमें लगभग 15 लोग सवार थे। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य उड़ान अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में

0: ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सुरक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपने अग्रिम पंक्ति के राफेल विमानों के साथ 20 से अधिक भागीदारी देशों की वायुसेनाओं के साथ मिलकर अभ्यास किया। उधर मलेशिया में आयोजित सैन्य अभ्यास उदार शक्ति के दौरान भारतीय वायुसेना के चालक दल ने रॉयल मलेशियन वायुसेना के साथ मिलकर उच्च तीव्रता वाले लड़ाकू मिशन और संयुक्त सामरिक युद्ध अभ्यास किए। आरजू और प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मैच आज कोलंबो में जारी है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत के केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल क्रीज पर हैं। इससे जुड़ी और जानकारी के साथ हैं प्रशांत कुमार।
2: भारत पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। टीम इंडिया दूसरे टेस्ट में जीत हासिल कर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाना चाहेगी, जबकि श्रीलंका श्रृंखला बराबर करने का प्रयास करेगी। उधर स्लोवाकिया में आयोजित अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 और पदक जीते हैं। मानसी लाठर ने रजत और तन्वी गुंदेश मखदूम तथा कोमल ने कांस्य पदक अपने नाम किए। मानसी को 68 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में चीन के चेनलिंग सोंग से कड़े मुकाबले में हार कर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। तन्वी ने 57 किलो वर्ग में कनाडा की एग्निया क्राकोविस्का को हराया, जबकि कोमल ने 59 किलो वर्ग में हंगरी की एडा बालाज को हराकर कांस्य पदक जीता। इससे पहले शुक्रवार को काजल धोचक ने महिलाओं के 76 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक, जबकि तनु शर्मा और सविता ने अपने अपने भार वर्गों में रजत पदक हासिल किए। 18 वर्षीय काजल ने 76 किलो वर्ग के फाइनल में चीन की जिंगुरू सन को हराकर खिताब जीता। 72 किलो वर्ग के फाइनल में तनु ने जापान की चिसातो योशिदा को कड़ी टक्कर दी, लेकिन 3-5 से हारकर उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। प्रतियोगिता के अंतिम चरण में प्रवेश करने के साथ ही भारतीय दल अब पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धाओं के शेष 57 किलो, 65 किलो, 79 किलो और 92 किलो वर्गों में प्रतिस्पर्धा करेगा। और भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में कल विश्व एथलेटिक्स रजत स्तरीय प्रतियोगिता में भारत के रोहित यादव ने भाला फेंक और मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद स्पर्धाओं में जीत हासिल की। इसके अलावा खेल मंत्रालय ने अगले महीने से जापान में शुरू होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय दल को मंजूरी भी दे दी है। इसमें 265 पुरुष और 227 महिला एथलीट शामिल है। इस बार एथलेटिक्स के सर्वाधिक 73 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है। समाचार कक्ष से मैं प्रशांत कुमार।
1: ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना की निर्मम कार्रवाई में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने के बाद ये अपील की गई है। इस क्षेत्र में कड़ी नाकेबंदी और कर्फ्यू से संचार सेवाएं ठप हैं। उधर बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी ने आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे सरकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अंतरिक्ष कार्यक्रमों का विस्तार कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर 2 दिन की रूस यात्रा पर आज रवाना होंगे। कनाडा ने अमेरिका के साथ वार्ता विफल होने के बाद जवाबी शुल्क लगाए। बंगाल की खाड़ी में चालक दल के 24 सदस्यों के साथ मालवाहक जहाज डूबा। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मैच कोलंबो में जारी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दिल का मेल बॉक्स खुल चुका है और इतनी सारी ईमेल हैं कि बस दिल कर रहा है कि बाकी बातें छोड़ूं और सीधे नाम पढ़ना शुरू कर दूं। लेकिन दोस्तों ये भी ठीक नहीं होगा, फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम है, बार बार ईमेल ना भेजें, एक ही बार भेजा काफ़ी है। और दूसरी बात, अलग अलग गानों की फरमाइश आप भेजते हैं, शुक्रिया, इसी से हमें भी कुछ गानों के बारे में पता चलता है। लेकिन इतना तो ख्याल रखें कि हम अगर सबके सब फरमाइश पूरी करेंगे और सबके सब गाने सुनाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आधे घंटे में हम जो कर सकते हैं वो आपके लिए बेस्ट करते हैं, कम से कम आपका नाम ज़रूर पढ़ते हैं। तो होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन, अमन, दीपांशु, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, फिर कमला, भानु, गीतिका, बार बार अलग अलग तरीके से कुछ नाम भेजने से ठीक नहीं होता है, सौराष्ट्र राजकोट से जगदीश गुजराती और प्रवीण पुजारी, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र, कपिल, ईशान, पूजा परिहार, ये सब छिपा फैमिली है, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता बमारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना राजेंद्र सिंह ओबराय, महाराष्ट्र पुणे से सुनील, सुषमा, अनन्या, राजवीर गायकवाड़ और कस्बा गन्नौर, उत्तर प्रदेश से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा, नाम भी हमें याद हो गए हैं, बस इतने सारे नाम इस तरीके से आप भेजते हैं, बहुत शुक्रिया। AIR FM गोल्ड, आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, विजय सिंह के साथ हैं आप दिल के मेलबॉक्स में। और ये जो गाना आपके लिए आ रहा है, बहुत ही प्यारा सा ये गीत, आपकी खास फरमाइश पर दोस्तों, 2001 की प्रसिद्ध फिल्म लगान का गीत, घनन घनन, AR रहमान के संगीत में और जावेद अख्तर का लिखा गीत, अलका याग्निक, उदित नारायण, सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन, शान, ऐसे दिग्गजों की आवाज में।

बस ऐसी सी घनन घनन आवाजों के साथ आपके संदेश मेरे ईमेल बॉक्स में गिर रहे हैं, लेकिन इतने सारे हैं कि इन्हें गिनना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन अब क्या करें, खुशी भी होती है लेकिन थोड़ी सी ये बात भी है कि हम सब के सब संदेश नहीं पढ़ पाते हैं। फिलहाल तो साहब ये जो नाम हम पढ़ रहे हैं फटाफट से पढ़ देता हूँ जितने पढ़ सकता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन ये फरमाइश थी कुलदीप बग्गा की गोविंदपुरी से और दिल्ली से, और अब हम जो गाना सुनने जा रहे हैं उसकी फरमाइश अभी बताता हूँ। ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगत, परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान, मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन, शहनाज, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम यशफ, राशिद रसीद, और किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली, सबीहा अंजुमन, मुंबई से अनु बड़जात्या, शमसुल खान, अनुराज बेनारा, सलीम अख्तर, रेशमा बेगम अलीगढ़ से, कितने सारे नाम थे। और ये अगले नाम जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है सुरेश नारंग साहब हैं, कहाँ से पता नहीं चल रहा है, बहुत सारे नाम है। इतने में एक अच्छा गाना आपसे छूट जाएगा दोस्तों, ये भी उसी दौर का गीत है और युवा एंथम कह सकते हैं इसे, उदित नारायण विजेता पंडित की आवाज़ में, जो जीता वही सिकंदर का, मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखा ये गाना

तो ठीक है जनाब, अगला जो जवान यार गांधी चौक बाड़मेर से, राजस्थान से बबलेश, डैनी पवार, मनीष और ये खलीफों की बावड़ी से खुदाबख्श, और रामदेवड़ा से दिनेश चौहान, ये डांगरी से बाबूराम जयपाल, ये साहब हैं। अरे भाई नाम तो अपना लिख दो, पता नहीं, शह गांव बुलढाणा महाराष्ट्र से संतोष काले, तेजस और लोकेश। वाह जी वाह, बहुत धन्यवाद आपका। ये साहब हैं कौन? कितना देर लग गई बताइए आपका नाम पढ़ने में। राम नरेश, रेखा, करण चिक, रचना, पूजा, ज्योति, हनुमान मंदिर दिल्ली से बोल रहे हैं। और ये साहब हैं कहाँ से? फिर से दोबारा से अपना मैसेज भेज दिया। इतनी बार क्यों मैसेज भेजते हो दोस्तों? आप चाहते हो हम सिर्फ आप ही का नाम पढ़ते रहें क्या? हमें और दोस्त भी तो प्यारे हैं, सबको एक तरह से देखना होता है हमें। गंज डुंडवारा से शमसुल, कमर राही, शाहीन, फातिमा, अदनान, अनु, और ये साहब संदीप मक्कड़, ज्योति, ये कहाँ से? जलंधर से। वाह जी वाह, बहुत शुक्रिया दोस्तों। और ये नाम है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, फिर वो कालका से भी किसी का नाम लिख दे रहे हैं, शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा। वाह जी वाह क्या बात है। दतरंगी भाटपाड़ा छत्तीसगढ़ से हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नोखेलाल, और ये साहब हैं कैथल हरियाणा से, जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा। इसके अलावा ये क्या नाम है, सतीश अनेजा और बिमला, ये भी चंडीगढ़ से मैसेज भेजते हैं। और ये साहब हैं कौन, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी, दिशा गोस्वामी। मेरे ख्याल में इतने नाम पढ़ लेना काफ़ी है, क्योंकि अगला गाना बहुत ही खूबसूरत गाना शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया, रोमांटिक गाना बहुत प्यारा, उत्तम सिंह का संगीत, 1997 की दिल तो पागल है का बड़ा प्यारा गीत। इसकी फरमाइश भेजी है हमें भूपेंद्र सिंह ने होशियारपुर से। और एक नाम और पढ़ दूं थोड़ी देर में, सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग, भानु प्रकाश, सुनील पठानिया, चंदा पठानिया, अंजलि, सचिन, और नादौन हमीरपुर से कस्बा अग्रवाल, मंडी बागपत से आसिफ अली और मुस्कान आसिफ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: अगला गाना सुनने में बहुत ही कम समय बचा है, लेकिन कुछ नाम हम पढ़ देते हैं। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, सरिता एकांश, अर्जुन गवाणकर और ये भाई साहब बार बार एक ही मेल आ जाती है, वंडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा और ये साहब हैं फिर से वही नाम भाई, झज्जर हरियाणा से बिट्टू, रीता, जजत, रजत और मयंक भाटिया।

दोस्तों आप हमारी नज़र के सामने दिल के पास हमेशा रहते हैं, बस सुनते रहिए और फरमाइशें भेजते रहिए, बस बार बार ना भेजें कि प्रोग्राम में दूसरों का भी नाम आ सके, नहीं तो ईमेल ढूंढने में टाइम लगता है ना। इस गाने के बाद हम सुनेंगे समाचार और समाचारों के बाद आज के मेहमान लेकर पेश खिदमत होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उन्होंने निरंतर प्रयासरत रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में

0: अपना करियर तलाशने और भविष्य बनाने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। श्री मोदी ने कहा कि लागत के मामले में भारत की स्थिति काफी बेहतर है और देश में कुशल प्रतिभाओं के साथ जोखिम उठाने की मजबूत क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये खूबियां भारत को वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने की क्षमता प्रदान करती हैं। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर देशवासियों और वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस अवसर पर कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगतिशील सोच से प्रेरित भारतीय वैज्ञानिकों की ये उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्रिस्तरीय बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगे। इस दौरान ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता, द्विपक्षीय बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि साइकिल का उपयोग पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है। डॉक्टर मांडविया ने आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम के बाद मीडिया से कहा कि साइकिल चलाना फिट इंडिया आंदोलन का अभिन्न हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारतीय क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट के बीच डूरंड कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश को पत्र लिखकर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों के रक्तपात को रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 1 विकेट पर 38 रन बना लिए हैं। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। FIH हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत को पूल ई का ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चैनल गोल्ड और आप हमें सुन पा रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और आपका जाना पहचाना कार्यक्रम आज के मेहमान और मैं हाजिर हूं आपके साथ रश्मि कुकरेती और मेरे साथ है
1: महेंद्र सिंह लालस
0: और हम दोनों का स्वीकार कीजिए
1: नमस्कार।
0: और आज हमारे साथ बहुत विशेष मेहमान है। कौन से विशेष मेहमान है महेंद्र जी, आप बताइए
1: जी। मशहूर सिंगर डॉक्टर पीयूषा और डॉक्टर कैलाश अनुज हमारे खास मेहमान हैं। आपका स्वागत करते हैं कैलाश जी। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आपकी संगीत यात्रा कब और कैसे शुरू हुई?
2: वैसे तो संगीत हमको परिवार से मिला है, संस्कार में ही है। बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे मेरे पिताश्री और माँ से भी हमको वो संस्कार मिला। बचपन की शिक्षा तो हमको हमारे माता पिता के द्वारा प्राप्त हुई। उसके बाद में मेरे गुरुदेव वृंदावनस्थ पूज्यपाद महाराज श्री सुखदेव दास जी, जो विरक्त संत थे, वो अधिकतर गुफाओं में ही रहते थे, तो उनकी कृपा प्राप्त हुई मुझे, उनसे मैंने संगीत सीखा। और उसके बाद में एकेडमिक तो हमने पढ़ाई दोनों ने की, दिल्ली विश्वविद्यालय से एमफिल पीएचडी किया म्यूजिक में।
0: आपने कहा पढ़ाई दोनों ने साथ साथ की, मुझे कुछ लग रहा है, तो पीयूषा जी आगे आप बताइए।
3: हमने साथ साथ ही पढ़ाई करी, एमए किया
0: जी,
3: एमफिल किया और बहुत सालों के बाद हमने पीएचडी करी।
0: अच्छा,
3: क्योंकि ये उसके बाद कुछ कार्य में संलग्न थे अपने जॉब वगैरह में, जैसा बन पड़ा जीवन में, अभी तक सहयोग दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे।
1: कैलाश जी ये बताएं कि ऐसा माना जाता है कि संगीत, कोई भी संगीत आप गाएं, सुगम संगीत गाएं, फिल्मी गीत गाएं, भजन गाएं, गजल गाएं, उसके लिए शास्त्रीय संगीत की तालीम बहुत जरूरी है, तो आपने क्या शास्त्रीय संगीत की भी तालीम ली थी?
2: जी जी हाँ, हमने एमए वहाँ तो शास्त्रीय संगीत में ही किया जाता है
0: जी।
2: हाँ, तो मैंने इवन एमफिल किया, पीएचडी किया और शास्त्रीय संगीत सीखा।
0: अच्छा कैलाश जी और पीयूषा जी, जो ये कार्यक्रम है इसमें साथ में सुनवाते चलते हैं बहुत सुंदर सुंदर मीठे मीठे गीत संगीत भजन, आप बताएं आपको कौन सा इस मुकाम पर गीत या भजन सुनना है, ताकि हमारे श्रोता अब इंतजार कर रहे हैं आपके पसंदीदा भजन या गीत का।
2: अब वैसे तो लोग मुझे जो पहचानते हैं, जिस भजन से मेरा परिचय हुआ लोगों को तक पहुंची, वो है रात शाम

0: कितना मीठा ये भजन था। मुझे लग रहा है सब जो हमारे सुनने वाले हैं वो डूब गए हैं समय भक्ति रस में। आप बताएं आगे फिर यात्रा कैसे शुरू हुई, एकदम मतलब सीधा लॉन्च पैड मिला या कुछ संघर्ष रहा?
1: एक रचना बनाई, उसमें नटवर नागरनंदा बनाई शुरू में, उन्होंने कहा इसमें साथ में गाओ, तो फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते कुछ ऐसा जो है डुएट का एक तरीका शुरू हो गया। फिर शिव रचना बनाई इन्होंने, हनुमान जी की, राम जी की और देवी की।
2: पीयूषा जी, ये जो नटवर वाली रचना है, क्यों ना आप दोनों इसकी कुछ पंक्तियां साथ में गाकर सुनाएं हमारे श्रोताओं को। नट

0: कैलाश जी, आप दोनों जब साथ गाने लगे तो बहुत सारी तकनीकी समस्याएं भी आती है, यानी पुरुष का पिच अलग होता है, स्त्री का स्वर अलग होता है, तो ये कॉम्बिनेशन के लिए क्या क्या आपको प्रयास करने पड़े, कुछ रचना के स्तर पर कुछ आपको समझौते करने पड़े?
1: बड़ी टेक्निकल बात की है आपने। एक तो आप देखिए, अगर फिल्म में गीत है तो उसमें तो नायिका नायक होते हैं, तो उसमें तो दोनों का अलग अलग होता है। भजन में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन भजन को युगल स्वर में गाना थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन लोग लाइक करते हैं हमको। और वो ईश्वर ने, गुरुदेव ने ऐसी शिक्षा दी, उन्हीं की कृपा से कहा जाए कि उन्होंने हमको इस तरह से सिखाया और लोगों को वो पसंद आया, जो हमारा युगल का जो ढंग है।
2: वाह, हमें भी बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि जो आवाज के संतुलन की बात महेंद्र जी कर रहे थे तो वो व्यक्तिगत जीवन में भी बड़ा सुंदर संतुलन दिखाई दे रहा है, तो ईश्वर करे ये संतुलन बना रहे। जो बात अभी आपने कही कि शिक्षा भी ली, उसके बाद संगीत शुरू किया, लेकिन भक्ति संगीत चुना, शायद घर में ऐसा माहौल था, लेकिन फिर उसके बाद क्या, मतलब एक बारी नौकरी तो आकाशवाणी में आप कर रहे थे, हमें पता है आप आकाशवाणी में लंबे समय तक आपने यहाँ हमसे जुड़े रहे हैं, उसके बाद जब आप बाहर की तरफ प्रस्थान के, वो यात्रा बताइए, वो क्या था, वो अपने आप को एक खोज थी आपकी खुद के लिए, किस खोज में निकले थे आप?
1: मैंने देखा आदमी कर्तव्य करता है और देने वाला फल तो ईश्वर होता है, ऐसा कुछ हमने सोचा नहीं था कि हम कोई डुएट गाएंगे या कोई इस तरह, ऐसे ही सहज शुरू हुआ और जुड़ता चला गया, लोग पसंद करते चले गए और हम ये यात्रा में निकल पड़े। हमारे गुरुदेव का ऐसा आदेश हुआ, पहले तो हम सब कुछ गाते थे, लेकिन गुरुदेव का ये आदेश हुआ कि केवल कैलाश भजन गाइए आप लोग, तो हमने फिर भजन चुन लिया। और फिर भजन में फिर क्या है, फिर भजन की दुनिया में पहुंचने के बाद में फिर संपूर्णता नजर आई कि वैसे सभी चीज गा के देखी है और सब हमारे लिए आदरणीय और आधार है शास्त्रीय संगीत, तो वो तो आवश्यक ही है। तो फिर गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई, ईश्वर की ऐसी कृपा हुई, और आप लोगों ने इस तरह से प्रेम दिया, इतना इसमें क्या है कि जो श्रोता हैं उनका तो विशेष योगदान होता ही है, जब वो पसंद करते हैं तो हम गा पाते हैं।
0: कैलाश जी, भजन में दो चीजें होती है, एक तो परंपरागत भजन, तुलसीदास जी के, सूरदास जी के, जो मीराबाई के, जो परंपरागत भजन है, आजकल बहुत सारे लोग गीतकार भी भजन लिखते हैं, आप दोनों में से किसकी रचनाएं चुनते हैं?
1: हम लोग तो परंपरागत जो हैं उन लोगों को भी गाते हैं, जो आज लिखते हैं उनको भी गाते हैं। अब जैसे कि श्री हरिप्रिया जी हैं, जो बहुत प्राचीन निम्बार संप्रदाय में एक महावाणी ग्रंथ है और रसिक संत ही गाते हैं, जिनको जो साधना में गहनतम उतरे हुए हैं वो ही संत लोग गाते हैं, वो साधारण भजन नहीं है। उसमें वो उन्होंने जो देखा भगवान को, जैसी लीलाओं का दर्शन किया, वही चित्रण उन भजनों में है। जैसे एक रचना सुनाते हम,

0: అనత సుఘట ఉఘటై సుర సంఘట పరమీనేహ సుర సంఘట పరమీనే ఉపర తిరపు మైత్రివట సులవధట అలగ లాగదట లీనే లీనే ఉపర తిరపు మైత్రివట సులవధట అలగ లాగదట లీనే నిరత తరీరసవీ.
1: వాహ్ వాహ్ వాహ్
2: कैलाश जी, ये जो आपने भजन सुनाया ये शास्त्रीय संगीत पर आधारित था, तो आप अपनी जब कंपोजिशंस बनाते हैं तो उसमें किसी राग का बेस रखते हैं या कई रागों को मिश्रित करते हैं या कुछ और अलग ढंग से आधुनिक कंपोजिशन भी बनाते हैं?
3: ऐसा है, ये निर्भर करता है कि रचना जो लिखी गई है वो किस भाव से है उसमें, क्योंकि भजन एक ऐसा विषय है जिस पर ये वो नहीं होता है कि इसको फला राग में गाना है या फला ताल में गाना है. इसमें भाव के अनुसार जो स्वर दिखते हैं वो इस वक्त में जो दैवीय प्रेरणा होती है उसके आधार पर ही संगीत रचना बनती है.
1: वाह क्या बात है कैलाश जी, नाद ब्रह्म है. और जब हम स्टूडियो की तरफ आ रहे थे तो महेंद्र जी ने एक चर्चा की बहुत सुंदर कि जब गाने वाला भजन में उतरता है और श्रोता जब सुनते हैं तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि वो ऐसा दिव्य स्वरूप मन में उतरता है, नाद के रूप में प्रभु के दर्शन होते हैं. और ऐसा कभी वो दिव्य अनुभव हुआ हो?
3: ये जब राधा माधव कृपा करते हैं, गुरुदेव कृपा करते हैं, उनकी कृपा से ऐसा अनुभव किया जा सकता है
1: जी.
3: हाँ, क्योंकि अनुभव को शब्दों के माध्यम से बताया तो नहीं जा सकता है, ये तो अनुभूति है का विषय है. तो आप जब श्रोता जैसे डूब जाते हैं तो शायद कारण वही होता होगा कि गायक डूबा होगा तो शायद कनेक्शन मिल गया होगा तो वो भी डूब गया होगा, जैसे लगता है कि श्रोता डूब गए. तो उसमें डूबने का कारण ना कलाकार होता है ना श्रोता होता है, बीच का माध्यम कोई और ही होता है.
2: पीयूषा जी, ये बताएं कि जो भजन में बहुत सारे भाव होते हैं, भक्ति भाव भी होता है, साके भाव भी होता है, आराधना भी होता है, कौन कौन से भाव ऐसे हैं जो आपको लगता है कि जब आप गाती हैं आप में खास तौर पर आपके गाने में नजर आते हैं?
4: मुझे तो ईश्वर ही समीप लगते हैं उस समय. उस ईश्वर में इतना खो जाना, उनके स्वरूप को देखते रहना, कैसा मुकुट है, कैसा उन्होंने हार पहना है, वही सब दृश्य नजर आता रहता है गाते वक्त, जो जैसे ईश्वर का स्वरूप है.
3: वो भजन का है कि गाना संगीत रचना को ताल में सुर में, वो गाना अलग विषय है
1: जी.
3: उसकी गहराई में पहुंच जाना, अब गहराई में पहुंचता है ये कितना पहुंचता है निर्भर करता है, फिर वो गायन कुछ और हो जाता है. राग ताल भाव जब मिल जाते हैं है ना, तो फिर उसको पूर्ण स्वरूप दिखाई देता है, वो पूर्ण स्वरूप को गाना ये कृपा से संभव है.
1: कैलाश जी, आपके गुरु तो हैं ही, उसके अलावा भी जो आपके समकक्ष हैं या जो पहले गायक रहे हैं या फिल्मी गायक है, कौन से भजन और गीत आपको ज्यादा पसंद है? और क्योंकि ये समय हो चुका है कि हम आपको फिर जोड़ें एक और फिल्मी गीत के साथ, क्योंकि हमारे श्रोता इंतजार कर रहे हैं कोई अच्छा सा भजन या गीत आपकी पसंद का वो सुने.
3: लता जी को हम बहुत पसंद करते हैं
1: तो इस पड़ाव पर हम सुन लेते हैं लता मंगेशकर का गाया हुआ ये भक्ति गीत.

0: बहुत ही मीठा ये गीत था। और महेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं मुझे लग रहा है।
1: क्यों ना थोड़े से राम भजन, जो आपने बहुत सारे सुंदर राम भजन गाए, किसी एक राम भजन की पंक्ति हमारे श्रोताओं को आप सुनाएं।

0: वाह
1: पीयूषा जी, कैलाश जी, बहुत सुंदर तो आप गाते हैं, लेकिन जब आप सुंदर गाते हैं तो एक जिम्मेदारी साथ में जुड़ जाती है। वो जिम्मेदारी होती है कि एक अगली पीढ़ी को तैयार करना, सिखाना। तो आप भी ऐसा कुछ क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं भक्ति रस से जो युवा जो हमारे हैं उनको जोड़ रहे हैं, सिखा रहे हैं?
2: मेरे पोते पोती हैं,
0: एक का नाम
2: यजुर कृष्ण है पोते का, और पोते का नाम है वेदांगी प्रिया
1: जी।
2: बहुत छोटे हैं, 5-7 साल के,
0: उनको सिखा रहे हैं,
2: उनको हम सिखा रहे हैं। और वो
0: अभी एक एल्बम में गा भी रहे हैं, वो हमारे साथ
2: एक एल्बम में गा रहे हैं,
0: राम जी का एल्बम
2: अभी राम जी का जो चल रहा है तो उसमें हमने उनसे गवाया है।
1: लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जो ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे महेंद्र जी, वो शायद चाहेंगे आपसे जुड़ना, आपसे सीखना, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
2: अरे उनका स्वागत है, हमारे पास जो है वो भगवान का दिया हुआ है, गुरुदेव का दिया हुआ है, हमसे जो चाहेगा हम उसको जरूर, जो हमसे सेवा बनेगी हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो आए, हम उनको जैसा हमसे बनेगा हम सेवा करेंगे।
3: पीयूषा जी, आप बीच बीच में कान में कैलाश जी से कुछ कहती रहती है, कभी ऐसा हुआ कि भजन गा रहे हैं और कुछ चीज याद आई हो और आप बीच में कहती
0: हैं? पूरा सुनते हैं, जो मुझे भाव चाहिए उस तरह का देते हैं
2: जी। ये ऐसा करती हैं, बीच में कुछ मैं गाने में मस्त हो जाता हूँ तो पीयूषा जी हल्का सा इशारा कर देती हैं, वो मालूम नहीं पड़ता है किसी को भी, वो हल्का सा टच कर देती हैं और कागज सामने कर देती हैं थोड़ा सा कि आप इसमें ये बोल दीजिए, तो हम समझ लेते हैं, फिर हमारा कोऑर्डिनेशन है।
1: तो ये तो नैनों की भाषा है महेंद्र जी।
3: कभी कैलाश जी ऐसा तो नहीं हुआ कि आज

0: शाम को सब्जी लेते हुए जाना, ऐसी पर्ची पकड़ाई हो
1: ये तो रूटीन है और होना भी चाहिए। यहाँ का जीवन अलग है और गृहस्थ का जीवन अलग है।
0: कला जी एक बात बताएं कि संगीत के साथ एक अनिवार्य चीज जुड़ी हुई है कि आपको आखिरी सांस तक रियाज करना है। रियाज नहीं है तो संगीत जो है वो भी बरकरार नहीं रहता। तो क्या रियाज अभी भी करते हैं, कितने घंटे करते हैं, रियाज की क्या प्रक्रिया आप अपनाते हैं?
1: देखिए, एक तो रियाज तो आवश्यक ही है, बहुत जरूरी है, और फिर हमको तो इसलिए भी करना पड़ता है कि हम दोनों हैं, एक साथ गाते हैं। कभी कभी हो जाता है कि हम लोग समय ये व्यस्त रहते हैं पोते पोतियों के साथ में, तो ये उनको संभालने में लगी होती है, बाद में कर लेती हैं। और वैसे अधिकतर हम लोग साथ ही करते हैं। और एक रियाज ऐसा होता है कि मौन रूप से भी होता है, कि एक तो गाकर के होता है, एक अंतःकरण का भी रियाज होता है कि क्या भाव आया है, स्वर कैसे लगना चाहिए इस कंपोजिशन में, इस भजन में, तो वो भी एक रियाज। बाहर के साथ में अंदर का रियाज भी आवश्यक है,
2: मतलब मनन की बात कर रहे हैं कि उस पर मनन करते हैं, सोचते हैं और कुछ योजना भी बनाते होंगे, मुझे ऐसे लगता है।
1: कल्पना में तो है संगीत
2: जी
1: है। अब एक भजन है जैसे कि ब्रजभूमि में एक समय जब पहुंचे तुलसीदास, कहीं राम प्रभाव न पाया हो गया चित्तदास, तो हमको लगता है कि उस समय गए होंगे तुलसीदास जी, क्या क्या देखा होगा, अयोध्या के थे वो, तो वहां पर आके उनको क्या अनुभूति हुई, उन्होंने लता पताओं को देखा, राधा कृष्ण जपत हर कोई, आंख ढाक और कैर, बैठे मंडेरे सोचे तुलसी कहा राम सुबैर, कैसा ये ब्रजमंडल पग पग, मनमोहन का रास, कहीं राम प्रभाव ना पाया हो गया चित्तदास। तो उस तुलसीदास जी का आप भाव नहीं लाएंगे कि वहां खुद खड़े होकर के वहां नहीं जाएंगे, तो वो चीज फिर सुर में थोड़ा सा उस ढंग से नहीं उतर पाएगी।
0: अयोध्या का संदर्भ भी है तो अयोध्या पर कोई भजन या कोई पंक्ति आपको याद आती हो तो सुनाए।
1: हाँ, एक बड़ा अच्छा याद आ रहा है, अब खत्म हुआ वनवास, राम तुम

0: कैलाश जी और पीयूषा जी, जाते जाते चूंकि संगीत हमारी आत्मा से, हमारे हृदय से, हमारी भावनाओं से जुड़ता है और जोड़ता है, तो आध्यात्मिक संगीत की आप एक गुरु शिष्य परंपरा का पालन करते हैं, तो इस संगीत के जरिए क्या लोगों का भाव बदलता है? आपके भाव के साथ साथ उनके भावों में भी परिवर्तन होता है? इस अनुभव के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ जरूर बताएं।
1: निश्चित होता है सर, हाँ, क्योंकि हर व्यक्ति है ना जगत में अपने लगा हुआ अपने कर्तव्य को कर रहा है, लेकिन उतना जीवन में हर आदमी हर समय प्रसन्न नहीं रह सकता, हर समय दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि सुख और दुख आते जाते रहते हैं। लेकिन जब वह भजन को सुनता है तो जिस तरह का भाव उसके अंतःकरण में वो तो रहे ही, लेकिन भजन अपना प्रभाव छोड़ता है। अगर वो कोई परेशान है तो भजन उसको शीतलता देता है, उसको उत्साह देता है, उसको विश्वास देता है, कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि कुछ ऐसे नाम का प्रभाव है भगवान के नाम का जो आदमी को आत्मबल देता है।
0: कैलाश जी, इसी बात पर सुनते हैं एक सुंदर भक्ति रचना।

0: महेंद्र जी, मेरा तो जो रोम रोम है एकदम भक्तिमय हो गया है ये भजन सुनकर। और एक बात मेरे दिमाग में आ रही महेंद्र जी,
1: जी रश्मि जी,
0: जो भजन है हम लोग तो सुनते ही हैं, लेकिन जो युवा पीढ़ी है, जो कॉरपोरेट वर्ल्ड के नए बच्चे, उनके जीवन में भी काफी द्वंद है, काफी संघर्ष है। और कहीं ना कहीं एक दिन खत्म होने के बाद एक होता है कि अब क्या, एक अनिश्चितता की स्थिति आ जाती है। उनके लिए क्या कहेंगे, क्या भजन उनको

0: एक हम कहें ना मन को शांति, दिमाग को थोड़ा सा एक संतुलन स्थापित करने में सहायक हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है सहायक हो सकते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे?
1: बिल्कुल निश्चित रूप से, देखिए युवा को थोड़ा सा जरूरत है मार्गदर्शन की, अगर उसको मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो उसको तो जैसा माहौल मिलेगा उसको स्वीकार करेगा, लेकिन अगर उसको इस मार्ग में थोड़ा सा प्रवेश कराया जाए तो उस पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। हम अमेरिका में गा रहे थे किसी मंदिर में, एक भजन गा रहा था मैं, मत भूल नाम नारायण का, तेरी चला चली का पता नहीं, मत

0: वाह क्या
1: बात। डॉक्टर वहां सुन रहे थे, कोई कार्डियोलॉजिस्ट थे, सर्जन थे, तो उन्होंने कहा कैलाश जी ये भजन रिकॉर्डिंग किए हुए हैं क्या? मैंने कहा नहीं है, तो मैंने ऐसे ही गा दिया। मैंने कहा और भजन बहुत है हमारे, इतने सारे भजन है। मैंने कहा ये भजन क्यों आपको अच्छा लगा? क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और मैं सर्जन हूँ, मैं हार्ट को ऑपरेट करके बाहर रख देता हूँ, फिर उसको दोबारा से लगा देता हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं होता कि पेशेंट रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसलिए मुझे ये भजन अपील किया आपको कि मत भूल नाम नारायण का, तेरी चला चली का पता नहीं, कब ढल जाए जीवन की धूप विज्ञानी को भी पता नहीं। मैं मानता हूँ कर्म तो प्रधान है, भगवान ने कहा है हमारे कर्म करना तो आवश्यक है और फल ईश्वर के ऊपर, लेकिन क्या है बीच में युवा डोल जाता है, कभी कभी कर्म करने के बाद फल वैसा नहीं मिल पाता है तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है। ऐसा नहीं, उसको पुनः पुनः करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए किसी शक्ति का, अपने प्रभु का, और अपना कर्म भी करना चाहिए तो बिल्कुल ठीक रहेगा।
0: वाह बहुत सुंदर संदेश महेंद्र जी। और घड़ी कह रही है कि अब समय हो चला है इस कार्यक्रम को समेटने का, और जो हमारे सुनने वाले हैं मुझे लगता है इस समय भक्ति रस में डूब गए होंगे, और अब हम इजाजत लेना चाहेंगे। महेंद्र जी
2: हमारे साथ थे, डॉक्टर कैलाश और पीयूष अनुज जी, इनका बहुत बहुत आभार। आगे लेते हैं महेंद्र सिंह लालस
0: और रश्मि कुकरेती को दीजिए आगे, और कहते हैं
2: नमस्कार, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने और भविष्य बनाने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
1: बहुत लोगों को हमें जुड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। इस दौरान ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता और द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में यह क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, फिर चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश को पत्र लिखकर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों के रक्तपात को रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर यह दुर्घटना हुई। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया गया है। दक्षिणी ट्यूनीशिया में प्रवासियों को ले जा रही एक नौका पलट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य लापता हैं। एक व्यक्ति को बचा लिया गया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 88 रन बना लिए हैं। मुकाबले में सारांश जैन भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged the CEOs to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world.
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें तो एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है बहुत लोगों को हमें जोड़ना है हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है हिंदुस्तान जाओ भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ मैं पक्का मानता हूं जी पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है
3: He noted that an enabling environment must be created in the country where people from across the world see India as the preferred destination to build their careers and future in the space sector. Mr. Modi said that India is highly competitive in terms of cost and have quality talent with a strong risk-taking capacity. The Prime Minister said this combination gives the country the potential to establish itself rapidly as a leading player in the global space sector. On National Space Day, Union Minister of State for Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, has recalled the historic success of Chandrayaan 3. In a social media post, Dr. Singh remembered the moment on 23rd of August 2023 when Chandrayaan 3 successfully landed on the moon's south polar region. He said the achievement placed India among the world's leading space-faring nations and lauded the remarkable contribution of the Indian scientists. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended their greetings on the occasion of National Space Day. In a social media post, Mr. Radhakrishnan said that India's remarkable achievements in space exploration stand as a testament to country's scientific excellence, spirit of innovation and determination to push the frontiers of knowledge. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi, while sharing a video on social media, said that in the new global order, India is continuously expanding its space sector. Mr. Modi said that today, Gen Z engineers, designers, coders, and scientists are creating new technologies. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will undertake a two-day official visit to Russia beginning today. The minister will co-chair the 27th session of the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation. During the visit, Dr. Jayashankar will also meet Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and exchange perspectives on regional and global issues. Union Minister for Youth Affairs and Sports Dr. Mansukh Mandaviya has called for making cycling a regular part of a healthy lifestyle, highlighting its benefits for fitness and the environment. Speaking to media after the BRICS Friendship Cycling Meet event in Vishakhapatnam today, Dr. Mandaviya said cycling is an integral part of the Fit India movement. He said Prime Minister Narendra Modi's Sunday on Cycle initiative was aimed at encouraging people to adopt cycling and promote a culture of fitness. In the FIH Hockey World Cup, the Indian women's team will take on Australia tonight. India must win this match to stay in contention for a semi-final berth. The Pool E match will begin at 10:30 p.m. In cricket, Australia defeated Bangladesh by an innings and 51 runs in the second test at Mackay today, drawing the two-match series 1-1. Bangladesh had won the opening test, registering their first ever test victory in Australia. In cricket, India were 88 for 2 against host Sri Lanka at lunch on day 1 of the second and final test in Colombo. Earlier, India won the toss and opted to bat. Both Indian openers were dismissed in the first session. KL Rahul scored 18 before being dismissed by Lahiru Kumara, while Yashasvi Jaiswal fell for 45 to Asitha Fernando. Devdutt Padikkal was unbeaten on 13, while Shubman Gill was batting on 11 at the break. India have made one change to their playing 11, with seasoned Madhya Pradesh all-rounder Saransh Jain making his test debut. And that is the end of this news bulletin.

12:11 आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। समय है आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम का, जिसका आपको रहता है बेसब्री से इंतजार, कार्यक्रम वो जो एक फिल्म।

और आज आपके साथ हूं मैं आशीष। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम आपके लिए फिल्म लेकर आए हैं वो अपने दौर में सुपरहिट फिल्म मानी गई। 1979 में ये फिल्म रिलीज हुई और लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। फिल्म का नाम है सुहाग। मनमोहन देसाई ने इसका निर्देशन किया और कहानी लिखी कादर खान, प्रयागराज और के शुक्ल ने मिलकर, और प्रोड्यूसर थे इस फिल्म के राजेंद्र कुमार शर्मा, रमेश शर्मा, शक्ति सुभाष शर्मा और प्रकाश त्रिहन। मुख्य भूमिकाओं में थे शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, रेखा, परवीन बॉबी, अमजद खान, निरूपा रॉय और कादर खान। कैमरा पक्षभार संभाला वी दुर्गा प्रसाद ने और एडिटर थे इस फिल्म के मुख्तार अहमद। यादगार संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बेहतरीन गीत लिखे अपनी कलम से आनंद बख्शी ने। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफल रही और 1979 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और उसके बाद इसका रीमेक भी बना 1981 में सत्यम शिवम के रूप में, जिसमें एनटीआर श्रीदेवी और राठी अग्निहोत्री के साथ इसको फिल्म को बनाया गया था। फिल्म में किशन के किरदार में थे शशि कपूर, अमिताभ बच्चन ने भूमिका निभाई थी अमित की, रेखा थी बसंती के रोल में, अनु के किरदार में थी परवीन बॉबी जो कि बसंती की छोटी बहन होती है, निरूपा रॉय दुर्गा कपूर के किरदार में थी, शशि कपूर यानी किशन की मां का किरदार निभाया था और साथ ही दूसरा बेटा होता है अमित, विक्रम कपूर के किरदार में थे अमजद खान जो दुर्गा के पति होते हैं और दोनों यानी किशन और अमित के पिता होते हैं, रंजीत गोपाल के रोल में थे, कादर खान जग्गी के किरदार में थे, जीवन पास्कल के रूप में थे, जगदीश राज इंस्पेक्टर खान का रोल निभा रहे थे और कृष्ण धवन लाला सेठ के रूप में थे। इसके अलावा मास्टर टीटो थे और मास्टर रतन और साथ में छोटे छोटे किरदारों में जमुनाबाई के रोल में थी वत्सला देशमुख और साथ ही साथ कोमिला वर्क। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुर्गा और विक्रम की जिंदगी को दिखाते हुए। दुर्गा जो दो बच्चों की मां बन चुकी है, जी हां, जुड़वा बच्चों को उसने जन्म दिया है, लेकिन उसका पति जो है विक्रम यानी जो एक किरदार है जो अमजद खान ने निभाया था, वो बेहद ही अय्याश किस्म का इंसान है। परिवार से कोई सरोकार नहीं, हर बुरी आदत का मालिक है, जुआ, शराब, स्मगलिंग, जितने भी गैर कानूनी काम हैं वो सभी विक्रम को करने हैं क्योंकि उसे बहुत बड़ा आदमी बनना है पैसे के मामले में, और अपनी पत्नी को आए दिन प्रताड़ना देना, उसे बुरा भला कहना, लेकिन दुर्गा सब कुछ सहन कर रही है। अपराध की दुनिया में विक्रम पूरी तरह से उतर चुका है और इसकी वजह से उसके कई दुश्मन भी बन गए हैं, जैसे कि एक और स्मगलर है जग्गी, उसे उसकी दुश्मनी हो जाती है और दुर्गा दोनों बच्चों को लेकर अपने पति विक्रम के पास पहुंचती है। विक्रम अय्याशी में मुब्तला है, दुर्गा को धक्के देकर वहां से निकाल देता है और कहता है कि तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं, चली जाओ यहां से। इसी बीच जग्गी वहां पहुंचता है और दोनों की हाथापाई होती है, विक्रम और उसकी जग्गी की। विक्रम वहां से भागता है और इतने में जग्गी जो है वो दोनों जुड़वा बच्चों में से एक बच्चे को अपने साथ अपहरण कर ले जाता है। दुर्गा चिल्लाती है, रोती है, बिलखती है, अपने बच्चे के लिए दया की भीख मांगती है, लेकिन जग्गी विक्रम से दुश्मनी निकालने के लिए ये तरीका अपनाता है। बच्चे को ले जाने के बाद पास्कल नाम का एक शराबी है जिसका शराब का ठेका है, वहां पर उस शराब तस्कर को वो बच्चा बेच देता है। अब यहां से शुरू होती है उस बच्चे के जीवन की एक ऐसी गाथा जो कभी नहीं भूल पाता वो। शराबियों के बीच पलना बढ़ना उसके जीवन का एक अंग बन चुका है। दो वक्त की रोटी उसे तब मिलेगी जब वो पास्कल के लिए बुरे काम करेगा, और इसी बीच उसकी मुलाकात बचपन में होती है एक ऐसे लड़के से जिसको वो अपना भाई मानने लग गया है, और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि है वो दुर्गा का बेटा किशन। वो अपनी मां के इलाज के लिए दो वक्त की रोटी के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाता है, लेकिन वहां के लोग उसका मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि अगर ये पैसे चाहिए तो पहले शराब पी। किशन उनका कहना मानकर दो पैसे के लिए शराब पीता है, लेकिन
उससे वो सहन नहीं होती और फिर अमित उसे घर पहुंचाता है। इस तरह से वो अपना एक फर्ज निभाता है। दोनों को ये नहीं पता कि दोनों सगे भाई हैं। उधर दुर्गा को भी नहीं पता कि यही मेरा खोया हुआ बच्चा है जो आज किशन को घर पहुंचाने आया है। वक्त बीतता है, अमित बड़ा होता है। दुर्गा दिन रात मेहनत करके किशन को पढ़ाती है, लिखाती है और किशन बन चुका है एक पुलिस इंस्पेक्टर। दूसरी

कोई नहीं है सिवाय बसंती के। बसंती जो एक देवदासी है और गाने बजाने का काम करती है, लोगों का दिल बहलाती है। रोजाना अमित वहीं पहुंचता है और अपने दिल की बात बसंती से बार बार कहता है, लेकिन बसंती हर बार मजाकी अंदाज में उसे नजरअंदाज कर देती है। आखिर एक दिन ऐसा भी आता है जब अमित अपने दिल की बात बसंती को कह ही देता है।

एजेंसी का काम कर रही है, लेकिन अपनी असमत को, अपनी इज्जत को बरकरार रखा है उसने, और वो नहीं चाहती कि उसका ये साया अनु की जिंदगी पर पड़े। उसका एक ही सपना है कि अनु का घर बसे और किसी अच्छे घर में उसकी शादी हो जाए। अमित भी नहीं जानता कि वो इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा त्याग अपनी छोटी बहन के लिए कर रही है। और दूसरी तरफ अनु की मुलाकात हो जाती है किशन से। एक ऐसा वाक्या होता है, एक ऐसा हादसा होता है जहां पर अनु मेडिकल की स्टूडेंट है और वो एक प्रोजेक्ट के लिए एक डिस्को में जाती है, वहां पर लोगों से मिलना होता है, लेकिन वहां पर जो है रंजीत यानी गोपाल का किरदार जो निभाया है गोपाल, वो वहां पर उसकी असमत से खेलना चाहता है। एंड मौके पर पुलिस पहुंचती है, किशन उन सबको अरेस्ट करता है और देखता है कि अनु अपनी हालत में नहीं है, नशा कर चुकी है क्योंकि उसे धोखे से नशा दिया गया है। ऐसी हालत में वो अनु को छोड़ नहीं सकता, उसको घर पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाता है और अपनी जीप में बिठाता है और पूछता है कि कहां रहती हो, तुम्हें कहां छोड़ दूं।

अमित की जिंदगी में सिर्फ सहारा है तो बसंती का, और बसंती जो है वो भी अमित से प्यार करती है लेकिन जाहिर नहीं करती, क्योंकि उसके सर पर, उसके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दरअसल अनु उसकी छोटी बहन है। अनु को पढ़ाने लिखाने के लिए वो गांव छोड़कर यहां पर आई है और देवदास

ये थी अनु और किशन की पहली मुलाकात। और इस बीच अमित मैट्रिक पास कर चुका है और वो भी माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेने उसके घर पहुंचता है, क्योंकि उसको लगता है कि बचपन में अगर दुर्गा मेरे सर पर हाथ ना रखती, मुझ अनाथ के सर पर प्यार भरा हाथ, तो आज मैं कुछ और ही होता। हालांकि वो बुराई के दलदल से निकलना चाहता है, आशीर्वाद लेने पहुंचता है और वहां पर किशन से भी घर पे मुलाकात होती है। तब दुर्गा बताती है किशन को कि ये वही लड़का है जो बचपन में तुझे शराब के नशे में, जब तू धुत था, लोगों ने तेरे साथ बदतमीजी की थी, तो यही लड़का था जो तेरे को घर पहुंचाने आया था। किशन को वो वाकया याद आता है और वो कहता है कि अगर उस दिन अमित मेरा साथ ना देता तो शायद मैं भी बुराई के दलदल में ही धंसता चला गया होता। लिहाजा दोनों में गहरी दोस्ती है, दोनों एक दूसरे को बहुत मानते हैं, भाई जैसा प्यार है दोनों में, और दुर्गा भी दोनों का प्यार देखकर बहुत खुश होती है। इसी बीच अनु पहुंचती है किशन के घर। वो उस वाक्य की माफी मांगना चाहती है और वहां पर दुर्गा से मुलाकात होती है और दुर्गा जो है वो पहली नजर में ही अनु को पसंद कर लेती है और किशन से कहती है कि मैं इसे अपनी बहू बनाना चाहती हूं, और अनु को कहती है कि तुम अपने घर वालों से कहो कि मुझसे आके मिले। अब अनु करे तो करे क्या, चाहती वो भी किशन को बहुत है, लेकिन उसके घर में तो ले देकर उसकी एक बड़ी बहन है। उसे खत लिखती है कि जल्द से जल्द तुम आ जाओ अपने पति के साथ, यानी मेरे जीजा जी के साथ, मैं उनसे भी मिल लूंगी। उधर बसंती बड़ी असमंजस की स्थिति में आ जाती है। वो सोचती है कि अनु पर कैसे जाहिर करूं कि मैं कौन हूं, क्या करती हूं, और मैंने तो अभी तक शादी भी नहीं की। लिहाजा जब दुर्गा कहती है अमित से कि किसी भी तरीके से ये शादी होनी चाहिए, मैं तुझे ये हुक्म देती हूं, उधर किशन कहता है अमित से ये शादी नहीं होनी चाहिए, मैं तुझे हुक्म देता हूं। अमित बड़ी कठिनाई में पड़ जाता है कि किसकी सुने और किसकी माने। और दूसरी तरफ अनु के बहन और जीजा बनकर दोनों पहुंच जाते हैं किशन को मनाने के लिए, यानी अमित और बसंती। बसंती एक ही शर्त पर आती है कि मैं अनु को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। किसी तरह से मैनेज करता है अमित ये सारी बातें और वहां पर किशन को समझाते हैं मिलकर कि अनु से बेहतर लड़की तुझे कोई नहीं मिल सकती।

0: एनसीआरईपीई से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर।

की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

बारह बजकर 38 मिनट और 6 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज कार्यक्रम वो जो एक फिल्म थी और आज की फिल्म है सुहाग। अब सभी परिवार के लोग एक दूसरे को ढूंढते हैं, ढूंढते यूं हैं कि दुर्गा को आज भी उम्मीद है कि उसका सुहाग, उसका पति विक्रम एक दिन उसे वापस मिलेगा, अपना लेगा और साथ ही साथ उसका खोया बेटा भी उसे मिल जाएगा, उसे विश्वास है। वहीं अमित को नहीं पता कि उसकी सगी माँ यही है, सगा भाई यही है और उसका बाप विक्रम भी इसी शहर में है। विक्रम वही है इंसान है जो इंस्पेक्टर खान का हत्यारा है, इंस्पेक्टर खान जिसने बचपन से किशन और उसकी मां को सहारा दिया, मुंह बोला भाई बन गया दुर्गा का और किशन की परवरिश में उसका बहुत बड़ा योगदान था। लिहाजा खान मामा जो था किशन के लिए, उसकी हत्या के बाद जब उसे पता चलता है किशन को कि उसका हत्यारा कोई और नहीं बल्कि विक्रम है, तो विक्रम को रंगे हाथों वो पकड़ना चाहता है और ये भी जानता है कि ये स्मगलर है, नामी स्मगलर है, लेकिन बिना सबूत के उसे हाथ नहीं डाल सकता। और इसी बीच विक्रम को पता चलता है कि किशन के मंसूबे ये हैं, तो वो किशन को अपने रास्ते से हटाना चाहता है और इसके लिए वो अमित को खरीदता है, अमित को पैसा देता है। अमित को पैसे की जरूरत इसलिए है कि उसका जिंदगी का एक ही सपना है कि माता शेरोवाली दुर्गा माँ का मंदिर पूरा हो। उसके लिए वो लोगों से भीख मांगता है, चंदा इकट्ठा करता है, दिन रात की मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसके पास पैसे की कमी है क्योंकि वो अपना इस सपना पूरा करना चाहता है, माँ शेरावाली का मंदिर बनाना चाहता है। लिहाजा उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए विक्रम उसे पैसा देता है और कहता है कि किशन को तुम्हें रास्ते से हटाना है। किशन जो उसकी जान है, अमित की भाई से बढ़कर उसको मानता है वो, उस वक्त तो वो हाँ कर देता है और किशन को बताता है कि ऐसे ऐसे एक आदमी ने मुझे पैसे दिए हैं तुम्हारा कत्ल करने के लिए, खून करने के लिए। तो किशन कहता है ठीक है, नवरात्रों की रात जब वो वहां पर आएगा मंदिर में, तुम ये नाटक करना कि जैसे तुमने मुझे मार दिया, तब मैं उसे रंगे हाथों गिरफ्तार करूंगा, मैं देखना चाहता हूं कि वो शख्स आखिर कौन है। यही होता है नवरात्रि की धूम में, वहां पर सभी पहुंचते हैं, बसंती है, अमित है, सारी तमाम बस्ती के लोग हैं, नाच गा रहे हैं और वहां पर विक्रम भी पहुंचता है एक साधु के वेश में और वहां पर आता है किशन भी।

विक्रम के सामने अमित इस तरह का नाटक करता है कि जैसे उसने किशन को मार दिया है, और विक्रम उसको पक्का करने के लिए कि वाकई किशन मर चुका है

मंदिर के अंदर कमरे में लेकर जाता है और वहां पर होती है किशन के साथ उसकी हाथापाई। और इस हाथापाई में विक्रम भी जख्मी होता है लेकिन वो भाग जाता है वहां से, और इस बीच किशन के सर पर लाती है गहरी चोट, और इस चोट के कारण किशन अपनी देखने की ताकत खो देता है बिल्कुल। और इस वक्त दुनिया उसकी अंधेरी हो चुकी है और वो चाहता है कि इस अंधेरी दुनिया में उसका साथ दे तो सिर्फ और सिर्फ अमित। अमित को वो भाई से बढ़कर मानने लग गया है और अमित को कहता है कि तुम अगर वाकई मेरी आंखें बनना चाहते हो तो पुलिस में भर्ती हो जाओ। अमित कहता है कि मैं तैयार हूं क्योंकि मैं जुर्म के बीच पला बड़ा हूं, एक एक बुराई को मुझे मैंने नजदीक से देखा है और मैं बुराई को जड़ से खत्म कर दूंगा, सभी बुरे काम करने वालों के पते ठिकाने मुझे मालूम है। किशन अमित की सिफारिश करता है पुलिस महकमे में, लेकिन पुलिस महकमे के लोग कहते हैं कि किशन उस आदमी की तरफदारी कर रहा है जो शराब के नशे में धुत रहता है, यानी अमित में सबसे बड़ी कमी और सबसे बड़ी बुराई कह लीजिए कि यही कि वो शाम होते ही शराब का गुलाम बन जाता है। अब किशन कहता है अमित से कि अगर तू मुझे अपना भाई मानता है तो इस शराब की आदत को छोड़ और पुलिस महकमे में भर्ती हो और मेरे हाथ, मेरे कान, मेरी आंखें अब तू ही बन। अमित पहुंचता है बसंती के पास, कहता है कि मैं शराब छोड़ना चाहता हूं और मुझे चाहिए तेरी मदद।

अमित इस इम्तिहान में पूरी तरह से अव्वल रहता है। अपना वादा निभाता है किशन को दिया हुआ कि मैं शराब छोड़ दूंगा, उसके बाद ही मैं पुलिस में भर्ती होऊंगा और तेरा सहारा बनूंगा। और यही होता है, पुलिस में भर्ती हो जाता है अमित और उसके बाद बुराई को ख़त्म करने के लिए निकल पड़ते हैं दोनों दोस्त एक दूसरे का सहारा बनकर। अब उनकी दोस्ती की मिसालें पूरा शहर देने लग गया है। किशन को तो मानो अमित के रूप में भाई मिल चुका है।

दुश्मनों का सफाया होना शुरू हो गया है और इधर जग्गी और विक्रम एक बार फिर मिल चुके हैं। जग्गी विक्रम को रास्ते से हटाना चाहता है, विक्रम जग्गी को। विक्रम को नहीं पता कि दुर्गा इसी शहर में और मेरे दोनों बच्चे भी मेरे साथ हैं। एक हादसे में पहुंच जाता है दुर्गा के घर और वहां दुर्गा उसे माफ कर देती है और किशन को भी कहती है कि माफ कर दे अपने पिता को। पिता साथ रहने लगता है।

लेकिन किशन को और दुर्गा को नहीं पता कि विक्रम केवल एक नाटक करने के लिए यहाँ पर आया, पुलिस से बचने के लिए आया है। आखिरकार किशन को उसकी असलियत पता चलती है और विक्रम को पकड़ने के लिए किशन और अमित निकल पड़ते हैं। लेकिन एक हादसे में जग्गी विक्रम को रास्ते से हटाना चाहता है, हेलीकॉप्टर में उसके बॉम्ब लगाता है और इस हादसे में अपने पिता को बचाने के लिए दोनों आगे बढ़ते हैं। दुर्गा कसम देती है, मेरे सुहाग को बचा कर लाओ। और वहां पर विक्रम को जब वो बचाते हैं तो उस

गुस्से में विक्रम को भी काफी चोटें आती हैं। उसको एहसास होता है कि लोगों के साथ उसने जो आज तक किया वो गलत किया, लेकिन अब वो पछताने के लिए, अपना पश्चाताप करने के लिए अपनी आंखें, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि इस एक्सीडेंट के बाद वो अपनी आंखें गवा सकता है, तो वो अपनी आंखें देता है किशन को, उसको एक नई जिंदगी देता है। दुर्गा को मिलता है उसका सुहाग, बसंती और अनु को मिलता है एक अच्छा घर। इस तरह से खुशी का आलम सभी के घर में आता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में श्री मोदी ने निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
1: बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।

0: आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इस दौरान ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता और द्विपक्षीय बैठक भी होगी। ब्रिक्स युवा अलायंस ने आज लगातार दूसरे दिन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ विषय पर चर्चा का आयोजन किया। ये ऑनलाइन चर्चा मुख्यतः वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार पर केंद्रित थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की अध्यक्षता करेंगे। डॉ. सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हॉर्मुज जल डमरू मध्य को एक बार फिर अमरीकी इलाका बताए जाने के बाद से अमरीका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। इस बीच ईरान ने फिर कहा है कि जब तक अमरीका अपना रुख नहीं बदलता, हॉर्मुज बंद रहेगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने हॉर्मुज पर अमरीकी दावों को खारिज करते हुए ट्रंप के बयानों की कड़ी आलोचना की। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमरीका ईरान पर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूरी पर यह दुर्घटना हुई। जापान में राजधानी टोक्यो के उत्तर पूर्वी प्रांत इबाराकी में आज तड़के 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 105 रन बना लिए हैं। एफआईएच हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत को पूल ई का यह मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Anuja Kumar. India is celebrating National Space Day today. The country observes the day to commemorate the historic soft landing of Chandrayaan 3 on the lunar South Pole in 2023, making India the first country to achieve the feat. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended their greetings on the occasion. Prime Minister Narendra Modi, while sharing a video on social media, said, "In the new global order, India is continuously expanding its space sector." Mr. Modi said that India's space sector is a magnet for global investors. He said that India has resolved to become a developed nation by 2047 and the space sector will play a pivotal role in realizing this vision. The Prime Minister also noted that India's private space talent is creating its own unique identity across the world. Prime Minister Modi today said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged the CEOs to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world.
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें। तो ये जब ब्रेकथ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है। हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी।

1:11 आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ मधुर तरानों का कार्यक्रम दिल ढूंढता है। आपके साथ हूं मैं आशीष, नमस्कार। ऐसे सदाबहार गीत दोस्तों जो कल भी दिल के करीब थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म बदलते रिश्ते के उस गीत से जिसे गाया है महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर ने, संगीत से सवारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीतकार आनंद बख्शी।

अगली पेशकश आपके लिए है फिल्म आशा से, गायक कलाकार मोहम्मद रफी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार एक बार फिर से कलम के जादूगर आनंद बख्शी।

0: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

1:25 आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ कार्यक्रम दिल ढूंढता है ऐसे पुरसुकून नगमों को जो कल भी सदाबहार थे आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आज की हम आपकी नजर करते हैं फिल्म है आंधी। गायक कलाकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर, संगीतकार आरडी बर्मन और गीतकार गुलजार। और दोस्तों इस गीत के बाद आप सुनेंगे संस्कृत साप्ताहिकी।

0: राष्ट्रीय क्रीड़ा दिवस मनाया जाता है। मैथिली में 29 अगस्त के राष्ट्रीय क्रीड़ा दिवस मनायल जायत अछि। द्वितीय वाक्य मस्ती पंचोत्तर नवदश शततमे वर्षे अगस्त मासस्य नवविंश्याम मेजर ध्यानचंद जन्म अलभत। दूसरा वाक्य है, इस दिन सन 1905 में मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ। मैथिली में यही दिन सन 1905 में मेजर ध्यानचंद का जन्म भेलनि। तृतीय वाक्य मस्ति मेजर ध्यानचंद हॉकी क्रीड़ाया साधक नामना ज्ञायते। तीसरा वाक्य है, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर नाम से जाना जाता है। मैथिली में मेजर ध्यानचंद के हॉकी का जादूगर कहल जायत छनि। चतुर्थम वाक्य मस्ति भारत प्रशासनेन राष्ट्रीय क्रीड़ा पुरस्कार मेजर ध्यानचंदस्य नामना परिवर्तितः। चौथा वाक्य है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद के नाम से जोड़ा है। मैथिली में भारत सरकार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के मेजर ध्यानचंद के नाम से जोड़ी देलक। धन्यवाद
1: महोदयायै अतितराम धन्यताम आविष्कुर्मः। आर्ष संस्काराणां सौरभैः जगद्वृत्तस्य प्रत्यग्रस्पन्दनैः ज्ञानविमर्शेण अथ च राष्ट्रिय वाग्वैभवेन परिपूरितः अयं सारस्वत संगमः निश्चप्रचमेव भवतां सुमनसां चेतांसि आनन्दितवानिति विश्वसिमः। अस्य कार्यक्रमस्य विषये भवतां भवतीनाञ्च अमूल्यान् अभिप्रायान् अस्माकं संस्कृत साप्ताहिकी @gmail.com इति ईमेल संकेते प्रेषयित्वा अस्मान् उपकुर्वन्तु। कालस्य गतिमनुसरन्तः आगामिनि सप्ताहे पुनः नूतनैः विचारप्रसूनैः सह भवतां सम्मुखं समुपस्थास्यामः। तावत्पर्यन्तं प्रस्तुतकर्त्रे जतिनशर्मणे समस्तप्रसारणदलाय च दीयतां गमनानुज्ञा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं महताब आलम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खला के शोबे के स्टार्टअप इदारों पर जोर दिया है कि वह आलमी सतह पर हुनरमंद अफराद को रागिब करने के लिए मजबूत इको निज़ाम तैयार करें। वजीर आजम ने खला के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद दी है। ब्रिक्स मुल्कों के खेलों के महकमे के वजीरों की मीटिंग आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में जारी है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर रूस के दो दिन के दौरे पर जा रहे हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और सहेली आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ईरान ने पड़ोसी मुल्कों को अपने खिलाफ अमरीका की इक्तसादी मुहिम में शामिल होने के खिलाफ खबरदार किया है। क्रिकेट में भारत और मेजबान श्रीलंका के दरमियान सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच कोलंबो में जारी है। और FIH हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय खवा टीम का मुकाबला आज रात ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीद बरकरार रखने के लिए भारत को यह मैच जीतना होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खला के शोबे के स्टार्टअप इदारों ने सरकार में अपने एतमाद और भरोसे का इजहार किया है। खला के शोबे के स्टार्टअप CEOs के साथ गुफ्तगू के दौरान जनाब मोदी ने उन पर जोर दिया कि अपनी कोशिशों में तसलसल बरकरार रखें और खला के शोबे का एक ऐसा मजबूत इको निज़ाम बनाएं जो दुनिया भर से बासलाहियत अफराद को रागिब करने की सलाहियत रखता हो। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क में एक ऐसा साजगार माहौल तैयार किया जाना चाहिए जहां दुनिया भर के लोग खला के शोबे में अपना कैरियर और मुस्तकबिल बनाने के लिए भारत को तरजीही मुल्क के तौर पर देखें।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: जनाब मोदी ने कहा कि लागत और खर्च के एतबार से भारत इंतहाई मुसाबकती मुल्क है और जोखिम उठाने की मजबूत सलाहियत के साथ उसके पास बासलाहियत अफराद भी हैं। वजीर आजम ने कहा कि ये इम्तिजाज मुल्क को आलमी सतह पर खला के शोबे में एक सरकर्दा मुल्क के तौर पर तेजी के साथ खुद को कायम रखने की कुव्वत बख्शता है।
1: एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया, जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है।
0: पेश है एक रिपोर्ट।
2: मुल्क आज खला का कौमी दिन मना रहा है। ये दिन हर साल 23 अगस्त को चांद पर चंद्रयान स्वयं के कामयाबी से उतरने की याद में मनाया जाता है। 2023 में आज ही के दिन ये खलाई जहाज चांद के जनूबी कुतुब खत्ते के नजदीक उतरा था। इस तारीखी वाक्य के बाद भारत ये कामयाबी हासिल करने वाला दुनिया का पहला मुल्क और खला से मुतालिक शोबों में काम करने वाले दुनिया के सरकर्दा मुल्कों में शामिल हो गया। खला के कौमी दिन के मौके पर न सिर्फ एक तारीखी कामयाबी का जश्न मनाया जाता है बल्कि ये दिन नौजवान नस्ल को खलाई साइंस और इख्तरा की जानिब रागिब करने का एक मौका भी फराहम करता है। सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज खला के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब राधा कृष्णन ने कहा कि खला के शोबे में दरियाफ्त के काम में भारत की काबिल कदर कामयाबियां मुल्क के साइंसी कारकर्दगी, इख्तराक के जज्बे और इल्म के हुसूल के तई लगन और अज़्म की अक्कासी करती हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि नए आलमी निज़ाम में भारत अपने खला के शोबे को लगातार उसत दे रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि आज जेन जी इंजीनियर्स, डिजाइनर्स और साइंसदान नई नई टेक्नोलॉजियां तैयार कर रहे हैं। आज खला के कौमी दिन के मौके पर साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चंद्रयान 3 की तारीखी कामयाबी को याद किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर सिंह ने 23 अगस्त 2023 के उस लम्हे का तذکرہ किया जब चंद्रयान 3 चांद के कुतुब जनूबी के खित्ते पर कामयाबी के साथ उतरा था। उन्होंने कहा कि इस कामयाबी से भारत खला के शोबे में दुनिया के सरकर्दा मुल्कों में शामिल हो गया था। साथ ही उन्होंने भारतीय साइंसदानों की काबिल कदर खिदमात की सताइश भी की। ब्रिक्स मुल्कों के खेलों के महकमे के वजीरों की मीटिंग आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में जारी है। نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے محکمے کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا اور اسی محکمے کی وزیر مملکت رکشا نکھل کھڈسے نے سبھی 11 برکس ممبر ملکوں کے کھیلوں کے محکمے کے وزیروں اور وفود کے سربراہوں کا خیر مقدم کیا۔ وزارتی اجلاس میں کھیلوں کے ذریعے برکس ملکوں کے مابین اشتراک کو مستحکم بنانے پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ وشاکھاپٹنم میں کل برکس ملکوں کے نوجوانوں کے امور کے وزیروں کی میٹنگ ہوئی تھی جو مشترکہ بیان منظور کرنے کے ساتھ ختم ہو گئی۔ نوجوانوں کی عمر اور کھیلوں کے محکمے کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے تندرستی اور ماحولیات کے لیے سائیکلنگ کے فائدوں کو اجاگر کرتے ہوئے اسے صحت مند طرز زندگی کا باضابطہ حصہ بنایا جانے پر زور دیا ہے۔ آج وشاکھاپٹنم میں برکس دوستی سائیکلنگ پروگرام کے بعد نما نگاروں سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر مانڈویا نے کہا کہ سائیکلنگ فٹ انڈیا تحریک کا لازمی حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی سنڈے آن سائیکل پہل کا مقصد لوگوں کو سائیکلنگ اختیار کرنے اور تندرستی کے کلچر کو فروغ دینے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر آج سے روس کا دو روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیر موصوف تجارتی، اقتصادی، سائنسی، تکنیکی اور ثقافتی اشتراک سے متعلق بھارت روس بین حکومتی کمیشن کے 27 اجلاس کی مشترکہ طور پر صدارت کریں گے۔ دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر روس کے وزیر خارجہ سیرگی لافروف سے بھی ملاقات کریں گے اور علاقائی و عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج چھتیس گڑھ، اڈیشا اور وسطی آندھرا پردیش میں کہیں کہیں شدید سے لے کر بہت شدید بارش کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات محکمے نے اروناچل پردیش، آسام، میگھالے، ساحلی کرناٹک، مشرقی اتر پردیش، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال اور جھارکھنڈ میں بھی کہیں کہیں تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ ادھر قومی راجدھانی دلی کے بعض حصوں میں آج صبح ہلکی سے لے کر اوسط بارش ہوئی۔ موسمیات محکمے کے مطابق شہر میں بیشتر مقامات پر ہلکی سے لے کر بہت ہلکی بارش اور کہیں کہیں اوسط بارش ہو سکتی ہے۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی نے ہمسایہ ملکوں کو تنبیہ کی ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ کی اقتصادی مہم میں شامل نہ ہو۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر پڑوسی ملک اس میں شامل ہوتے ہیں تو ایران انہیں اپنا دشمن

0: भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस के इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सृजित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है, आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
0: कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक वीएन राव भी उपस्थित थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: देश आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। हर वर्ष 23 अगस्त को यह दिन चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की स्मृति में मनाया जाता है। वर्ष 2023 में इस दिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। इस उपलब्धि के साथ भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया और साथ ही विश्व की अग्रणी अंतरिक्ष शक्तियों में अपनी जगह बनाई। संचार और मौसम पूर्वानुमान से लेकर नेविगेशन और आपदा प्रबंधन तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी लोगों के दैनिक जीवन में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक इस समय आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में चल रही है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और शिष्टमंडल के प्रमुखों का स्वागत किया। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच खेलों के माध्यम से सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है। बैठक के अंत में साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। ब्रिक्स युवा अलायंस ने आज लगातार दूसरे दिन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ विषय पर चर्चा का आयोजन किया। ये ऑनलाइन चर्चा मुख्यतः वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार पर केंद्रित थी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। डॉ. मांडविया ने आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम के बाद मीडिया से कहा कि साइकिल चलाना फिट इंडिया आंदोलन का अभिन्न हिस्सा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सहअध्यक्षता करेंगे। डॉ. सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ से भेंट के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 27 अगस्त तक जापान की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका का दौरा करेंगे। उनके साथ भारत का एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी जापान जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा भारत और जापान के विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी संबंधों की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सफाई के काम में मानवीय श्रम को कम करने और मशीनों के अधिक इस्तेमाल की आवश्यकता है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय, सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य बीमा जरूरी हैं। नौसेना का प्रशिक्षण जहाज सुदर्शनी और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार जहाज पर सवार चालक दल के सदस्य और प्रशिक्षु पुर्तगाल की नौसेना और भारतीय समुदाय के साथ पेशेवर

0: और सांस्कृतिक आदान प्रदान करेंगे। ये INS सुदर्शनी का 15वां पुर्तगाल दौरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ में भी दिन में ऐसे ही मौसम की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार बारिश से प्रमुख नदियां उफान पर हैं।
1: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के नए क्षेत्र के कारण उड़ीसा के कई हिस्सों में फिर से भारी बारिश हो रही है। IMD ने आज केंदुझर, मयूरभंज, रायगढ़, कोरापुट और कलाहंडी में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। कलाहंडी के थुआमूल रामपुर में पिछले 24 घंटे में 345 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो राज्य में सबसे ज्यादा है। लगातार बारिश के बीच बंसाधारा और सालंदी जैसे नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाके अभी भी जोखिम की स्थिति में है। 7 जिलों में हालिया बाढ़ से लगभग 14 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और राहत व बहाली का काम जारी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज सुबह हल्की बारिश हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि युद्धपोत निर्माण, अपतटीय पोत और अन्य रक्षा क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। श्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन री शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड से जुड़े 5 केंद्रों के भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार आंतरिक सुरक्षा के मामले में पूरा सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 11,000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि GRSE ने हाल के समय में 100 से अधिक पोत उपलब्ध कराए हैं। GRSE की परियोजनाएं शिपयार्ड की विनिर्माण क्षमता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी। इन परियोजनाओं से समुद्री बलों और अन्य रक्षा जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। यंत्र इंडिया लिमिटेड के मेटल एंड स्टील फैक्ट्री ईशापुर में 750 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से 2 केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इनसे स्वदेशी धातुकर्म और रक्षा विनिर्माण को मजबूती मिलेगी। चौथे चरण की औद्योगिक क्रांति और ऊर्जा कुशल तकनीकों से लैस ये दोनों केंद्र उच्च स्तर के विनिर्माण को बढ़ावा देंगे, आयात पर निर्भरता कम होगी और रक्षा, रेलवे तथा रणनीतिक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने पड़ोसी देशों को ईरान के खिलाफ अमरीका के आर्थिक अभियान में शामिल न होने की चेतावनी दी है। उधर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर अमरीकी इलाका बताए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने फिर कहा है कि जब तक अमरीका अपना रुख नहीं बदलता, हॉर्मुज बंद रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने हॉर्मुज पर अमरीकी दावों को खारिज करते हुए श्री ट्रंप के बयानों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य और अमरीका के बीच की दूरी 7,000 मील से भी अधिक है और ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमरीका ईरान पर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारियां कर रहा है। ईरान ने कहा है कि इससे उसकी अर्थव्यवस्था को और अधिक नुकसान होगा और प्रमुख व्यापारिक साझेदारों तथा खासकर चीन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो ईरान के कच्चे तेल का एक प्रमुख आयातक बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा के साथ व्यापार वार्ता को स्थगित किए जाने और कनाडा को अमेरिकी राज्य बनाने की इच्छा एक बार फिर व्यक्त करने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार विवाद और गहरा गया है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कनाडा पर आरोप लगाया कि वो अमरीकी किसानों पर काफी अधिक शुल्क लगा रहा है। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिका की मांग को अनुचित और व्यापार समझौते की अनदेखी करने वाली है। श्री कार्नी ने कहा कि कनाडा अपने कामगारों, किसानों, परिवारों और कारोबार की रक्षा के लिए अमेरिका जितना ही शुल्क लगाएगा। प्रधानमंत्री कार्नी ने स्पष्ट किया कि कनाडा स्वतंत्र रूप से व्यापार समझौता वार्ता करेगा और इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। जापान में राजधानी टोक्यो के उत्तर पूर्वी प्रांत इबाराकी में आज तड़के 5.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से पानी की पाइप फट गई और कुछ इलाकों में यातायात सेवा पर भी असर पड़ा। भूकंप का केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था।

0: अब कुछ खेल खबरें। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 184 रन बना लिए हैं। इस मुकाबले में सारांश जैन भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं। भारत ने पहला मुकाबला 165 रन से जीता था। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन।
1: ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में एक पारी और 51 रन से हरा दिया है। दोनों टीम श्रृंखला में 1-1 की बराबरी पर रही। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर और भारत चौथे स्थान पर है। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। पूल ई का ये मैच रात 10:30 बजे शुरू होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं, जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज 2 दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमरीकी आर्थिक प्रतिबंध अभियान में शामिल न हों। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी। और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आज प्रस्तुत है रानी दुर्गावती पर केंद्रित योगेश त्रिपाठी का लिखा नाटक रानी दुर्गावती। संयोजक हैं पुष्पेंद्र सौरभ और निर्देशक हैं विनोद कुमार।
1: समय 16वीं शताब्दी। चारों तरफ फैले अराजकता के माहौल के बीच गढ़ा कटंगा शायद एकमात्र ऐसा राज्य था जहां शांति थी, प्रजा खुशहाल थी, समृद्ध थी। गोंडवाना साम्राज्य के महाराज दलपत शाह अपनी पत्नी दुर्गावती, पुत्र वीर नारायण और राजमाता पद्मावती के साथ राजकाज संभाल रहे थे। किंतु समय कभी कभी बड़ा निर्दयी हो जाता है। राजा दलपत शाह अचानक बीमार होकर स्वर्गवासी हो गए। रानी दुर्गावती पर ये वज्रपात से कम न था।

0: रानी जी, राजमाता पद्मावती और राजपुरोहित महेश ठाकुर पधार रहे हैं।
1: पुत्री दुर्गावती, पुत्री दुर्गावती, हमारी प्रसन्नता पर काल की कुदृष्टि पड़ गई। पुत्री, काल की कुदृष्टि।
2: अपने आप को संभालिए राजमाता।
3: राजमाता, क्षमा चाहता हूं। नगर और समीपवर्ती क्षेत्रों में घोषणा की जा रही है कि महाराज के साथ महारानी दुर्गावती सती होंगी।
0: क्या? नहीं, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा।
4: मैं सती नहीं होंगी। मैंने प्राण और मन से अपने पति को स्वीकार किया था। वो चले गए, किंतु उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का दायित्व अब मेरा है।

0: माँ दुर्गा का दिया हुआ ये अमूल्य जीवन व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। राजमाता, आशीर्वाद दीजिए।
1: पुत्री,
0: आपके पुत्र के बाद अब आपकी दुर्गावती की हर सांस मातृभूमि की रक्षा और सम्मान में समर्पित होगी।
1: पुत्री दुर्गावती।
2: महारानी, महारानी प्रणाम। राजमाता,
1: क्या बात है दीवान आधार सिंह?
2: क्षमा चाहता हूं राजमाता, ये सब कुंवर चंद्र शाह के कहने पर किया गया था।
1: चंद्र शाह? बड़े भाई की मृत्यु के बाद कुंवर चंद्र शाह के कुकृत्य का अर्थ समझ आता है हमें। लेकिन उनकी ये मंशा कभी पूरी नहीं होगी। दीवान जी।
2: जी राजमाता।
1: हमें सावधान रहना होगा। राजकुमार वीर नारायण को राजगद्दी पर बिठाते समय यदि चंद्रशाह कोई भी चाल चलता है तो हमारी आज्ञा है उसे बंदी बना लीजिए।
2: जो आज्ञा राजमाता।

0: और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। चंद्रशाह ने वीर नारायण के राज्याभिषेक में रुकावट डाली और रानी ने उसे बंदी बनाकर राज्य से निर्वासित कर दिया। जिस तरह से यहाँ गढ़ा की गद्दी पर बालक वीर नारायण को बिठाकर रानी दुर्गावती शासन संभाल रही थी, ठीक उसी तरह दिल्ली की गद्दी पर बालक अकबर को बिठाकर सल्तनत को संभालने में जुटा था बैरम खान। लेकिन विरासत में मिली साम्राज्य विस्तार की चाहत और बैरम खान की चालबाजियां सीख सीख कर अकबर अपनी मासूमियत खो चुका था। वो 18 वर्ष की उम्र का होते होते क्रूरता और अवसरवादिता की उस हद पर पहुंच गया था जहां उसे अपनों का खून भी पानी लगने लगा था।
1: जिल्ले इलाही गोंड रियासत की महारानी दुर्गावती ने बाज बहादुर को शिकस्त दे दी है, साथ ही जान भी बख्श दी है। अब चारों ओर रानी दुर्गावती की बहादुरी और महानता की चर्चे हैं।
2: बहादुरी,
1: महानता,
2: बीरबल, हमें जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को किसी और की बहादुरी और महानता के किस्से पसंद नहीं। विजयनगर तो चलो दूर दक्षिण में है, उसे बाद में देखेंगे, लेकिन मेवाड़ के राणा प्रताप और गढ़ा की इस बेवा दुर्गावती को अपनी सल्तनत में मिलाना निहायत जरूरी है।
1: हुजूर, गढ़ा एक छोटा और शांत राज्य है, हमें उनसे कोई खतरा नहीं।
2: खतरा सरहद का नहीं बीरबल, खतरा तारीख का है। आने वाला समय हमें महान अकबर कहे, इसके लिए हमें हर उस सिर को झुकाना होगा जो ऊंचा उठने की जुर्रत करता है, हर उस राजा और राज्य को जीतना होगा जो सचमुच महान है या हो सकते हैं। हम किसी और की महानता की परछाई में नहीं जी सकते।
1: बेहतर जहां पना, लेकिन
2: लोग कहते थे कि हम तो एक बच्चा हैं, लेकिन हमने उस बैरम खान से भी पीछा छुड़ा लिया जिसने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। क्यों करना पड़ता है अगर महान बनना है तो, क्योंकि लोग उसे महान कहने लगेंगे, कहेंगे कि बैरम खान ने अकबर को तराशा और शहंशाह बना दिया, वरना वो तो इस लायक ही नहीं था।
1: और जो राजा आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे,
2: मिट्टी में मिला देंगे उन्हें भी और उनके नाम को भी।
3: जहां पना, रतनपुर के राजा कल्याण शाही आपसे मिलना चाहते हैं।
2: मिलने आया है या कुछ मांगने? ये रतनपुर है कहां?
1: जहां पना, रतनपुर गढ़ा राज्य के दक्षिण पूर्व सीमा पर है।
2: ओ, अब तो पक्का दुर्गावती के खिलाफ कोई मशवरा देने आया। यहां के राजाओं को दूसरे राजा से इतनी जलन क्यों होती है बीरबल? बुलाओ उसे, देखें क्या है उसके पास देने या सुनाने के लिए।
4: रतनपुर के राजा कल्याण शाही हाजिर हो।
5: जहां पनाह का इकबाल बुलंद रहे।
2: बैठिए। आप यहां किस लिए आए हैं कल्याण शाही?
5: जहां पनाह, गोंड राज्य की रानी दुर्गावती ने जब से मियां बास बहादुर को मात दी है।
2: हमें मालूम है, कुछ ऐसा कहिए जो हम नहीं जानते।
5: जी, तब से हम पड़ोसी राज्य उनसे बहुत डरे हुए हैं। वो कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं।
2: अगर ऐसा होता तो अब तक उसने मालवा पर हमला बोल दिया होता। क्यों बीरबल?
1: जी, आपने सही फरमाया हुजूर।
5: जहांपनाह, मालवा पर हमला ना करके वो खुद को महान दिखाना चाहती हैं। और असलियत ये है कि वो मुगल सल्तनत को भी हथियाने की तैयारी कर रही हैं।
2: भला वो किसके दम पर?
5: एक तो उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड है जहांपनाह, और दूसरे उसके पास एक नायाब हाथी और एक नायाब सलाहकार है जहांपनाह।
2: इन दोनों को हमारे दरबार में हाजिर कराने का फरमान भेजा जाए। क्या हुआ बीरबल, तुम खामोश क्यों?
1: आलीचा, अंदेशा है कि बेवकूफी में वो कहीं आपके हुक्म की बेअदबी ना कर दे।
2: तब तो और भी अच्छा होगा बीरबल, हमें गढ़ा को कुचलने का सीधा बहाना मिल जाएगा। महान हिंदुस्तान के एक और महान राज्य की महान रानी की महानता साबित होने से पहले ही खत्म हो जाएगी।

0: महारानी, मुगल बादशाह अकबर का संदेश लेकर एक दूत आया है।
1: मुगल बादशाह का दूत? अंदर ले आओ उसे।
0: जो आज्ञा।
2: महारानी जी, सल्तनत हिंद शहंशाह अकबर ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। कहा है कि अपने नायाब हाथी सरमन और अपने सलाहकार आधार सिंह को दिल्ली दरबार में भेजें।
1: और इस थाल में ये तोहफा क्या है?
2: दमकते सोने का बना पिंजरा। उन्होंने ये भी कहा है कि एक औरत का काम

0: हम राजपाट संभालना और जंग के मैदान में उतरना नहीं है, महल के अंदर रहना है।
1: आप अतिथि गृह में विश्राम करिए, हमारा जवाब लेकर जाइएगा।
0: जो हुक्म महारानी साहिब।
1: जलालुद्दीन की ये जरूरत कि उसने हमारे प्रिय सरमन हाथी और आधार सिंह जी आपको मांग लिया।
2: वो ऐसा ही करता है महारानी, वो कमजोर राज्यों को डराने के लिए ऐसे ही हथकंडे अपनाता है।
1: जलालुद्दीन ने इस पिंजरे को भेजकर हमें संदेश दिया है कि हम उसकी अधीनता स्वीकार कर लें। वो हमें सोने के पिंजरे में कैद पंछी बनाना चाहता है।
2: आपने सही अनुमान लगाया है रानी साहिबा।
1: उस मुगलिया दूत को वापस यहां लेकर आओ।
3: जो आ गया महारानी।
0: हुक्म महारानी साहिबा।
1: अब आप जा सकते हैं, आपका काम पूरा हो गया। अपने जहां पनाह से कहिएगा कि हम एक स्वतंत्र राज्य हैं, उनके गुलाम नहीं। हां, उनके इस नायाब तोहफे का जवाब हम जल्द से जल्द देंगे।
0: जो हुक्म।
2: महारानी, यदि हम चुप रह गए तो इसे हमारी कायरता समझा जाएगा।
4: वो तो ठीक है, परंतु उत्तर क्या दिया जाए?
1: एक पिंजिना बनवाइए, वो भी शुद्ध सोने का। उसने मुझे पिंजरा भिजवाया है ना, हम उसे कपास धुनने का पिंजिना भिजवाएंगे। उसे संदेश देंगे कि बेहतर है कि वो गोंडवाना पर नजर ना डाले, वरना पूरी जिंदगी बैठकर कपास धुनने के अलावा किसी और काम के लायक नहीं बचेगा। गढ़ा पर नजर ना डाले।
4: परंतु सोने का?
1: हाँ, ठीक उतने ही वजन का जितने वजन का उसका पिंजरा है, ना एक रत्ती ज्यादा ना एक रत्ती कम। जलालुद्दीन को पता चलना चाहिए कि गढ़ा की महारानी कोई भिखारिन नहीं है जो उसके सोने से तब जाए।
5: और इसे लेकर दिल्ली कौन जाएगा माँ?
2: मैं जाऊंगा, यदि महारानी उचित समझें।
1: उचित है। आखिर उस अहंकारी को पिंजिना भिजवाने का सही अर्थ भी तो समझाना होगा। शीघ्र कार्रवाई की जाए।
2: जो होगा महारानी।

0: फैने
1: पिंजना वो भी सोने का। बीरबल इस पिंजने का क्या मतलब हुआ?
0: आलीजान महारानी दुर्गावती का मतलब है कि आप गढ़ा जीतने के मर्दाना ख्वाब छोड़कर स्त्रियों की तरह रुई ढूंढने का काम शुरू करते हैं। एक और अर्थ भी हो सकता है हुजूर।
1: वो क्या?
0: अगर आपने गढ़ा पर हमला किया तो आपको कैद में डाल देंगे। और आलीजा, कैदियों को कपास ढूंढने का काम दिया जाता है और आपको भी
1: जरूरत लगता है। काफी सोना हो गया है गढ़ा रियासत के पास।
2: आपने ठीक कहा शहंशाह, गढ़ा रियासत में सोना भी है और शौर्य भी। हमारा राज्य करेले की तरह है, जो हमें निगलने की कोशिश करेगा उसका गला कड़वाहट से भर जाए।
1: आधार सिंह, जंग के लिए तैयार रहे, जाकर कह देना दुर्गावती से।
2: महारानी दुर्गावती कहिए आलीजा, महारानी दुर्गावती।
1: हाँ हाँ, महारानी दुर्गावती, जा सकते हो तुम। आसफ खान, जंग की तैयारी की जाए। गढ़ा पर तुरंत चढ़ाई करो, हमें गढ़ा चाहिए, समझे तुम?
3: ऐसा ही होगा जहां पर। हाँ

0: महारानी की जय हो।
1: महारानी की जय हो।
2: लौट आए आधार सिंह जी, कैसा लगा हमारा पिंजना जलालुद्दीन को?
0: अकबर गुस्से से पागल हो गया महारानी। खबर मिली है कि उसने सिपह सालार आसफ खां को आदेश दिया है गढ़ा पर हमला करने के लिए। वो निकल चुका है युद्ध के लिए।
2: हम गोंडवाना के वासी हैं, हम युद्ध की तैयारी करते नहीं बल्कि हमेशा तैयार रहते हैं। आने दो उन्हें।
3: युद्ध हुआ, नरई नाले के पास हुआ, जमकर हुआ। रानी दुर्गावती ने अपने हजार सैनिकों के साथ शत्रुओं की विशाल सेना को पहले तो अपने छापामार युद्ध कौशल से मार भगाया था। नरई नाले के पास संकरे दर्रे में फंसे मुगल सेना के हजारों सैनिक गाजर मूली की तरह काटे गए। अपनी सेना की यह दुर्दशा देखकर आसफ खान पूरी तरह घबरा गया और अपनी बची खुची सेना लेकर भाग खड़ा हुआ। लेकिन दूसरे दिन 24 जून 1564 को वो वापस आया।
1: महारानी, महारानी, अनर्थ हो गया महारानी। इस बार तो आसफ खां अपनी पूरी तोपें पहाड़ी के मुहाने पर ले आया है। सामने बहुत सारी तोपें दिख रही हैं।
2: कितनी बड़ी भूल हुई हमसे। यदि हमने कल रात ही धावा बोल दिया होता तो उनकी तोपों के मुंह खुलने से पहले ही नष्ट हो चुके होते।
1: जी महारानी।
2: खैर, अब पीछे देखने का समय नहीं है। वीर सैनिकों,

0: Maharani! Maharani! Maharani!
1: स्वर्गलेवती!
0: अरे स्वर्गलेवती महारानी के
1: परिया बनो, रुकने वाली नहीं हो।
2: सैनिकों घेरा बनाओ, महारानी को सुरक्षित पालकी में रखकर दुर्ग की तरफ ले जाओ। जाओ
1: मैं रणभूमि छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी।
0: नहीं महारानी,
1: इस जलालुद्दीन को तो पता चलेगी किससे सामना हुआ था उसका।
0: महारानी काफी खून बह गया है, संभालिए अपने आप को महारानी।
1: ये
2: महारानी,
1: कौन?
2: रानी, मैं आपका सेवक आधार सिंह।
1: आधार सिंह, लगता है बहुत खून बह गया है मेरा। ये शरीर अब साथ नहीं दे रहा है। सामने देखिए वो उनकी विशाल सेना हमारी तरफ पड़ रही है। इसके लिए इससे पहले कि वो दुष्ट मुगल मुझे बंदी बनाकर मेरा अपमान करे, ये लीजिए मेरी कटार, और अपने हाथों से मुझे मृत्यु के घाट उतार दीजिए, मुझे वीर गति दे दीजिए।
2: नहीं महारानी, नहीं, ये अधर्म ये दास अपने हाथों से कभी नहीं कर सकता मारा, कभी नहीं। हम आपको मार कर जीने से अच्छा मरना पसंद करेंगे। आप चलिए, आप चलिए, हम घेरा बनाकर आपको दुर्ग में ले चलते हैं।
1: क्या आप यही चाहते हैं कि हमारा अपमान हो? गढ़ा की रानी मुगलों की कैद में जाएगी? नहीं, रणभूमि छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आधार सिंह जी, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो गढ़ा की बेटी अपना फैसला खुद करना जानती है।
2: महारानी, छोड़िए मेरी कटार, छोड़िए। अरे महारानी,
1: आधार सिंह जी, मैंने हमेशा माना है कि जीवन और मृत्यु के बीच कोई दीवार नहीं होती। मृत्यु भी तो इस अमर जीवन का एक छोटा सा अंश ही है। हे मातृभूमि, हे मेरी गढ़ा माटी, तेरी सदा ही जय हो। जय पड़ोते।
2: महारानी, धन्य है आपका ये बलिदान महारानी दुर्गावती।
3: ये युद्ध इतिहास के पन्नों में भले ही अकबर ने जीता, लेकिन कीर्ति और गौरव की अमर पताका महारानी दुर्गावती की ही फहराई। मात्र

0: भूमि की आन बान और शान के लिए चंदेल राजवंश की बेटी और गोंड साम्राज्य की महारानी दुर्गावती के इस सर्वोच्च बलिदान ने लाखों करोड़ों देशवासियों के मन में देश के लिए मर मिटने की ऐसी अलख जगाई जो आज भी जिंदा है और सदियों तक जिंदा रहेगी।
1: अभी आप योगेश त्रिपाठी का लिखा नाटक सुन रहे थे, रानी दुर्गावती। भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार राजेश आहूजा, रानी दुर्गावती कुमकुम जैन, राजमाता पद्मावती सुचित्रा गुप्ता, राजपुरोहित महेश ठाकुर सुनील लोहिया, दीवान आधार सिंह योगेंद्र टिकू, अकबर राजेश काम्बोज, बीरबल कीमती आनंद, चंद्रशाह सुरेंद्र सागर, रामचेरी जया रामधर। अन्य भूमिकाओं में थे किशोर सहिजानी और ऐशान शर्मा। सहयोग हरदीप सिंह का था और संयोजक थे पुष्पेंद्र सौरभ। इस नाटक के निर्देशक थे विनोद कुमार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक इस समय आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में चल रही है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और शिष्टमंडल के प्रमुखों का स्वागत किया। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच खेल के जरिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है। बैठक के अंत में साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सहअध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि युद्धपोत निर्माण, अपतटीय पोत और अन्य रक्षा क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर

0: भर बनने की आवश्यकता है क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में रखरखाव सेवा को बेहतर करना जरूरी है। आज कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE और यंत्र इंडिया लिमिटेड से जुड़े 5 केंद्रों के भूमि पूजन समारोह में उन्होंने ये बात कही। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सफाई के काम में मानवीय श्रम को कम करने और मशीनों के अधिक इस्तेमाल की आवश्यकता है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय, सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य बीमा जरूरी हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदान और झारखंड में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने पड़ोसी देशों को ईरान के खिलाफ अमरीका के आर्थिक अभियान में शामिल न होने की चेतावनी दी है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर अमेरिकी इलाका बताए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने फिर कहा है कि जब तक अमेरिका अपना रुख नहीं बदलता, होर्मुज बंद रहेगा। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच जारी है। चायकाल तक भारत ने 3 विकेट पर 187 रन बना लिए हैं। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। FIH हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत को पूल ई का ये मैच जीतना हर हाल में जरूरी है। इसके साथ ही ये बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged the CEOs to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. He noted that an enabling environment must be created in the country where people from across the world see India as the preferred destination to build their careers and future in the space sector.
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: Mr. Modi said that India is highly competitive in terms of cost and have quality talent with a strong risk-taking capacity. The Prime Minister said that this combination gives the country the potential to establish itself rapidly as a leading player in the global space sector.
2: एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। मेरा एक मंत्र है कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। कॉस्ट में हम कॉम्पिटिटिव है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं।
1: Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended their greetings on the occasion of National Space Day. In a social media post, Mr. Radhakrishnan said that India's remarkable achievements in space exploration stand as a testament to country's scientific excellence, spirit of innovation, and determination to push the frontiers of knowledge. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi, while sharing a video on social media, said that in the new global order, India is continuously expanding its space sector. Mr. Modi said that today, Gen Z engineers, designers, coders and scientists are creating new technologies.
3: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट

आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर 3:25:37 आप जुड़े हुए हैं अभी के अपने चैनल से और हम आपके लिए लेकर के आए हैं फिल्म संगीत। मैं हूं आपके साथ नईम अख्तर।

ये था आपके लिए फिल्म संगीत अभी के लिए। नईम आपसे इजाजत चाहती है, आप सुनते रहिए 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आपके लिए अभी बहुत से कार्यक्रम बाकी हैं जिनमें फिल्म संगीत भी है, और अब से कुछ ही देर में आपके लिए होगा कार्यक्रम रेडियो किड्स। रेडियो किड्स जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया बच्चों का ही कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आज आपके लिए कार्यक्रम जो प्रस्तुत किया जा रहा है वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सी.एम. श्री स्कूल सेक्टर 21 रोहिणी के बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम रेडियो किड्स।

0: हेलो दोस्तों, हम डॉक्टर वी आर अम्बेडकर सीएम श्री स्कूल सेक्टर 21 रोहिणी के विद्यार्थी हैं। आज हम आए हैं आकाशवाणी केंद्र के एफएम गोल्ड चैनल के
1: रेडियो क्विज प्रोग्राम में।
0: मैं हूं अनन्या, आपकी रेडियो दोस्त। चलिए मेरे दोस्तों से मिलते हैं।
2: मैं अक्षत कक्षा 8वीं से।
3: मैं सौम्या कक्षा 7वीं से।
4: मैं अक्षिता कक्षा 7वीं से।
5: मैं तन्मय कक्षा 8वीं से।
6: मैं सबरीन कक्षा 8वीं से।
0: तो दोस्तों, आज हमारी पिटारे में है अनेक छोटी छोटी मगर प्रेरणादायक कहानियाँ और कविताओं का खजाना। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं हंसने को, गर्व करने को, भावुक होने को? क्योंकि हम भारत की बात करेंगे जो हमारे दिलों में बसता है। वैसे सौम्या, इस बात से मुझे याद आया, आप कोई कहानी लेकर आई हैं?
3: हाँ जरूर, क्या आप मेरी कहानी सुनना चाहोगी?
0: जरूर जरूर।
3: दोस्तों, कहानियाँ सुनना जो सबको पसंद है, आधुनिक मानव का विकास भी तो एक सुंदर कहानी है। आज मैं आप सभी के सामने भारत की अनेकता में एकता विषय को लेकर एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है रंगों की एक ही डोर। कहानी छोटी है लेकिन दिल छू लेने वाली है। तो चलिए हम सब मिलकर इस कहानी के सफर पर चलते हैं। दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले की एक छोटी सी सोसाइटी में एक नया सांस्कृतिक पार्क बन रहा था। पार्क के बीचों बीच एक बहुत बड़ी कैनवस लगाया गया, जिस पर पूरे भारत की एक साझी पेंटिंग बनानी थी। इसके लिए अलग अलग राज्यों से आए 4 बच्चों को चुना गया। असम से अंधता, पंजाब से मनप्रीत, तमिलनाडु से कार्तिक और राजस्थान से आया कबीर। पहले दिन जब चारों बच्चे पार्क में मिले तो सबने अपनी अपनी कला दिखानी शुरू करी। मनप्रीत ने ढोल और सरसों के खेत बनाए, कार्तिक ने अपने रंगों से सुंदर मंदिर और नारियल के पेड़ केरे, अंधता ने बिहू नृत्य की आकृति बनाई और कबीर ने रेत के टीले तथा रंग बिरंगी प्यारी प्यारी सुंदर कठपुतलियां बना दी। लेकिन जब शाम को उन्होंने पेंटिंग को दूर से देखा तो वह बहुत बिखरी सी लग रही थी। लग ही नहीं रहा था कि यह एक ही कैनवस है। सब अपनी अपनी तस्वीर

0: को बेहतर बताने लगे। तभी सोसाइटी के दादाजी वहाँ आए। उन्होंने बच्चों को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बच्चों तुम सबने अपनी अपनी जगह की तो सुंदरता को उकेर दिया, लेकिन एक बात बताओ, इस चित्र में भारत कहाँ है? कार्तिक ने पूछा, दादाजी भारत तो इन सब में है ना? दादाजी ने कहा, ये सब अलग अलग मोती हैं, जब तक इन्हें एक धागे में ना पिरोया जाए यह माला नहीं बनेगी। अगले दिन चारों बच्चों ने एक अनोखी योजना बनाई। मनप्रीत के खेतों के ऊपर से बहती हुई नदी को कार्तिक ने अपने नारियल के बागों से जोड़ दिया। कबीर के राजस्थान के रेगिस्तान की सीमाओं पर अंधता के असम की हरी भरी चाय की पत्तियां बिछा दी और सबने मिलकर बीचों बीच एक विशाल तिरंगा फहराता हुआ बनाया, जिसकी छांव में ये सारे दृश्य एक दूसरे से गले मिल रहे थे। जब पेंटिंग पूरी हुई तो ऐसा लग रहा था मानो पूरा भारत एक ही सांस ले रहा हो। भाषा अलग थी, पहचान अलग थी, खान पान अलग था, लेकिन कला के उस कैनवस ने सबको एक कर दिया। दोस्तों, ऐसा ही तो है अपना प्यारा भारत। यहाँ अनेक धर्मों, जातियों, भाषाओं, बोलियों, खान पान, नृत्य कला आदि को मानने वाले लोग रहते हैं, मगर जब एक भारत की बात आती है तो हम सब भारतीय बन जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भी तो यही कहा है, पहले और सबसे अंत में हम सब भारतीय हैं। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। जय हिंद।
1: इतना देशभक्ति प्रेम देखकर मानो मेरा दिल बहुत ही खुश हो गया। इसी बात पे मुझे एक गाना याद आ रहा है।

0: अक्षता, तुम्हारे पास भी तो एक सुंदर कविता थी, क्या तुम वो हम सबको सुनाओगी?
1: जरूर जरूर, मैं सबको अपनी प्यारी सी कविता जरूर सुनाऊंगी। आज आपके लिए एक बहुत

भारी सी लोरी लेकर आई हूँ, जिसका विषय है एक लोरी शहीदों के नाम। निंदियां आना मीठी मीठी जब बल के झपकाऊं मैं, नमन शहीदों को तुम करना,

गाऊं मैं। तो चलिए अब मैं इस मीठी सी निंदिया में उन महान वीरों से मिलना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। आजाद जति नश फाक उल्ला से,

बुध को देखूं और सुने आऊं मैं, स्वामी विवेका गौतम बुद्ध को देखूं और सुने आऊं मैं। निंदियां आना मीठी मीठी जब पल की झपकाऊं मैं। वीरता उम्र की मोहताज नहीं होती। अब मैं उन बाल वीरों के सपने के बारे में बताना चाहूंगी जिन्होंने छोटी उम्र में ही अद्भुत साहस किया। गुरु गोविंद सिंह के चार साहबजादे जिनको बाल में ही दीवारों में चिनवा दिया गया था। जोरा जीत जुजार फते सा, जोरा जीत जुजार फते सा, बालक वीर बन आऊं मैं।

भारत की वीर गाथा केवल और केवल पुरुषों तक सीमित नहीं है। अब मैं उन वीरांगनाओं के सपनों के बारे में बताना चाहूंगी जिन्होंने साहस और त्याग की मिसाल कायम की।

0: जब उनमें खो जाऊं मैं। धन्यवाद।
1: अरे वाह, इसी बात पे मुझे एक गाना याद आ रहा है, सुनना चाहेंगे आप लोग?
2: हाँ हाँ जरूर जरूर।

0: सबरीन, तुम्हारी आंखें कुछ लाल लाल सी लग रही हैं। लगता है तुमने रात भर कहानियां ही लिखते में अपनी आंखों को दर्द दिया है बस।
1: हाँ, क्या करूं।
2: सबरीन, आप ना टीवी कम देखना आज और अपनी आंखों को आराम देना तो आपकी आंखों की लालिमा चली जाएगी।
0: ठंडे पानी से आंखों को धुला करो सुबह सुबह बहुत अच्छी तरीके से।
3: आप घर जाकर 15 मिनट अपने आंखों के ऊपर खीरा रखना
4: और अपनी आंखों के आसपास हमेशा सफाई रखना।
1: आप टीवी और फोन बहुत कम देखना।
2: वैसे अगर हम आंखों के बारे में बात कर ही रहे हैं तो मैं बता देती हूँ, 25 अगस्त से नेत्र पखवाड़ा आ रहा है और ये 8 सितंबर तक चलेगा।
0: अरे वाह,
4: इस नेत्र पखवाड़े से तो हमें काफी सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी।
1: किसी को इसका उद्देश्य पता है?
0: नहीं, आप क्या बताएंगी?
1: इसका उद्देश्य ये है कि ये लोगों को नेत्रदान के प्रति प्रेरित करता है और समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करना है।
0: अरे वाह, कितनी अच्छी सोच है इसकी।
3: दोस्तों, यह मौसम बारिश का है, अगर इस मौसम में गीत संगीत के साथ चाय पकौड़े हो जाए तो बात ही क्या। बरसात की बात की है तो क्यों ना हम अपने विद्यालय की छात्रा साक्षी दीदी से कजरी का गीत सुने।
5: हाँ, जरूर।

0: अरे रक्षाबंधन भी तो आ रहा है, चलो अब उसके बारे में बात कर रहे हैं।
1: हाँ हाँ चलो हाँ,
2: जरूर।
1: वैसे सौम्या तुमने क्या सोचा है रक्षाबंधन के बारे में?
0: मैं तो अपने भाई से काफी सारे तोहफे मांगूंगी और उसको सबसे प्यारी राखी बांधूंगी ताकि वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करे।
1: और अक्षिता तुमने?
3: मैं तो अपने भाई को कितनी भी प्यारी राखी बांधू देगा तो बेको वो वैसे भी कुछ भी नहीं।
4: कैसा भाई है?
1: अक्षत तुमने क्या सोचा है अपनी बहन को देने के लिए?
4: मैं अपनी बहन को ढेर सारी चॉकलेट दूंगा।
1: बस चॉकलेट ही?
4: और क्या,
3: अपनी बहन को बस चॉकलेट से मनाओगे?
4: हाँ बस।
3: अरे ये तो बहुत छोटा सा गिफ्ट है, क्या वो खुश हो जाएगी चॉकलेट से?
4: छोटा है लेकिन मेरी भावनाओं से भरा है।
0: अरे हाँ, वैसे भी भाई बहनों को तोहफों से ज्यादा भावनाएं चाहिए होती हैं।
3: ये भाई बहन के बीच का प्यार जताता है और इससे हम ये भी सीखते हैं कि हमें हमेशा अपने भाई बहनों की रक्षा करनी चाहिए।
5: हाँ, एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है ताकि वो उसकी सुरक्षा करे, उसके साथ रहे।
6: और एक भाई भी राखी बनवाने के बाद वह सारी चीजें करता है जिससे कि उसकी बहन सुरक्षित रहे। और हाँ, मैं अपनी बहन के लिए चॉकलेट्स के अलावा रेडियो पे एक गाना भी डेडिकेट करना चाहूँगा।
3: कौन सा?

0: दोस्तों, बातें तो बहुत हो गईं, अब समय हो गया है घर जाने का। तो आप तैयार हैं घर चलने को?
1: हाँ।
0: तो चलो अब घर चलते हैं। लेकिन लेकिन लेकिन अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नई कहानी नई कविताओं के साथ
1: इसी चैनल इसी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर।
0: तब तक

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो किड्स। आज का रेडियो किड्स प्रस्तुत किया रोहिणी के स्कूल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सी एम श्री स्कूल सेक्टर 22 रोहिणी के बच्चों के द्वारा। ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर FM गोल्ड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि युद्ध पोत निर्माण, अपतटीय पोत और अन्य रक्षा क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में रखरखाव सेवा को बेहतर करना जरूरी है। आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड से जुड़े 5 केंद्रों के भूमि पूजन समारोह में उन्होंने ये बात कही। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सफाई के काम में मानवीय श्रम को कम करने और मशीनों के अधिक इस्तेमाल की आवश्यकता है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय, सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य बीमा जरूरी है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि साइकिल का उपयोग पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है। डॉ. मांडविया ने आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम के बाद मीडिया से कहा कि साइकिल चलाना फिट इंडिया आंदोलन का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी की संडे ऑन साइकिल पहल का उद्देश्य लोगों को साइकिल चलाने के लिए प्रोत्साहित करना और स्वस्थ जीवन शैली की संस्कृति को बढ़ावा देना है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने पड़ोसी देशों को ईरान के खिलाफ अमरीका के आर्थिक अभियान में शामिल न होने की चेतावनी दी है। उधर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हॉर्मूज जल डमरू मध्य को एक बार फिर अमरीकी इलाका बताए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने दोहराया है कि जब तक अमरीका अपना रुख नहीं बदलता, हॉर्मूज बंद रहेगा। कोलंबो में भारत ने श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 234 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। पूल ई का ये मैच रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं, जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has said that space sector startups have shown their trust in the government. Mr. Modi stated this during an interaction with the startup CEOs of the space sector. The Prime Minister urged them to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world.
2: दुनिया अब भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें। तो एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: During the interaction, Chief Executive Officer of India's first space tech unicorn, Skyroot Aerospace, Pawan Kumar Chandana thanked Mr. Modi for opening up the space sector. Meanwhile, National Space Day is being observed today. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Modi extended their greetings on the occasion. In a social media post, Mr. Radhakrishnan said, India's remarkable achievements in space exploration stand as a testament to countries' scientific excellence, spirit of innovation and determination to push the frontiers of knowledge. Meanwhile, Prime Minister Modi, while sharing a video on social media, said that in the new global order, India is continuously expanding its space sector.
3: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: The country observes the day every year to commemorate the historic soft landing of Chandrayaan 3's Vikram lander on the moon on this day in 2023, making India the fourth country to achieve a soft landing and the first to land near the lunar south polar region. Defence Minister Rajnath Singh has stressed the need for self-reliance in shipbuilding, ship repair and related maritime sectors, describing it as vital to the country's security. He asserted that India is capable of becoming a global shipbuilding hub and called for high-quality maintenance services and timely delivery of defence products to achieve this goal. The Defence Minister was addressing the gathering after laying the foundation stone for 5 expansion projects of the Garden Reach Shipbuilders and Engineers and Yantra India Limited in Kolkata. BJP today demanded the Congress party to support the Women's Reservation Bill in the Parliament instead of playing politics around it. Talking to reporters in New Delhi, BJP National General Secretary Smriti Irani said the Congress party only claims that they support women. Ms. Irani appealed to all political parties to work together so that women get more seats in the Lok Sabha and state assemblies. The BRICS sports ministers meeting under India's chairship is being held at Vishakhapatnam.

4:53 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी एफएम गोल्ड। मैं हूँ नईम अख्तर, लेकर आपके लिए कुछ फिल्मी नगमे।

0: Manager procurement post carries 50,000 plus PF per month. The maximum age limit is 56 years on deputation and 55 years for contract for the joint director or general manager and 40 years for manager. The last date for receipt of applications is 2/9/2026 up to 5:30 p.m. Applications must be sent by India Post. Hand delivery is not permitted. For detailed eligibility, application forms and terms and conditions, kindly visit the website at www.mohfw.gov.in. I repeat, it is www.mohfw.gov.in. The Indian Institute of Corporate Affairs, IICA, an autonomous body under the Ministry of Corporate Affairs, invites applications for the post of a head center for micro, small and medium enterprises. The post carries pay level 13 as per the 7 CPC. For deputation or direct recruitment or a consolidated contractual remuneration, it is 1,75,000 to 2,25,000 per month. There is only one vacancy for the position. Candidates applying on deputation basis should have completed 5 years of service in level 12 or 10 years of service in level 11 with relevant experience. For direct recruitment contractual appointment, candidates should possess a postgraduate degree in the relevant field with at least 10 years of experience. The maximum age limit is 56 years for deputation, direct recruitment and up to 68 years for contractual appointment. The last date for submission of applications is 7th September 2026. Application forms can be downloaded from the website at www.iica.nic.in. I repeat, it is www.iica.nic.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सूरत में आवश्यकता है सहायक प्रोफेसर ग्रेड 2 की। विभाग हैं कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग विभाग तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग। ऑनलाइन आवेदन, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा अन्य नियम और शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए संस्थान की वेबसाइट www.svnit.ac.in। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहायक कमांडेंट परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है। नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की योग्यता क्रम में सूची सहित परिणाम को देखने के लिए आयोग की वेबसाइट देखें। वेबसाइट है www.upsc.gov.in। चंडीगढ़ प्रशासन जनसंपर्क विभाग में आवश्यकता है एक वरिष्ठ फोटोग्राफर की। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए चंडीगढ़ प्रशासन जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट chdpr.gov.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर हिमाचल प्रदेश आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। प्रोफेसर सीधी भर्ती अथवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 6 पद जिन्हें सीधी भर्ती के ही आधार पर भरा जाना है। नियम शर्तों सहित विस्तृत विज्ञापन और आवेदन पत्र के लिए देखिए संस्थान की वेबसाइट www.aimsbilaspur.edu.in। सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान आमंत्रित करता है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी गणित, पीजीटी अंग्रेजी, टीजीटी सामाजिक विज्ञान, काउंसलर यानि परामर्शदाता, आर्ट मास्टर अर्थात कला शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, संगीत अध्यापक, यूडीसी,

0: अनुबंध के आधार पर तथा एलडीसी और ड्राइवर ये पद भी अनुबंध के आधार पर भरे जाने हैं। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रीशियन कम पंप ऑपरेटर तथा नर्सिंग सिस्टर का भी एक एक पद उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.ssjhunjhunu.com। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बज चुके हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। और इस पटारे में आज हमारे पास बहुत कुछ है जो हमारे कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट में होगा। तो परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा।
2: वेल, नमस्कार लिसनर्स, दिस इज शगुन चोपड़ा विद जया भारती। टुडे यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन आकाशवाणी गोल्ड एट 100.1 FM एंड वेल, एज जया टोल्ड अस, देयर इज सो मच टू लुक फॉरवर्ड टू। टुडे नेशनल स्पेस डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, मोर ऑन दैट इन द डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, एज वेल एज स्पोर्ट्स न्यूज विल गिव यू। विल ऑल्सो हैव रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स एंड ट्रिब्यूट्स, दे आर एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी आर फर्स्ट बिगिनिंग with the headlines. Prime Minister Narendra Modi urges space startups to build robust ecosystem and attract global talent. Extends greetings on National Space Day.
1: BRICS देशों के खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी.
2: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar undertakes a two-day official visit to Russia beginning today.
1: छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट।
2: ईरान वॉर्न्स नेबर्स अगेंस्ट जॉइनिंग यूएस इकोनॉमिक कैंपेन अगेंस्ट तेहरान।
1: भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी।
2: एंड इन द FIH हॉकी वर्ल्ड कप, इंडियन वुमेन टू टेक ऑन ऑस्ट्रेलिया इन अ मस्ट विन मैच फॉर अ सेमीफाइनल बर्थ टुनाइट। So listeners, this is the discussion segment Dateline India. Our discussion will be for National Space Day. Jaya.
1: जी, तो जब हम स्पेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आकाश में क्या क्या है।
2: जी
1: बिल्कुल, है ना। तो अगर हम चांद को देखें तो चांद हमारे लिए सिर्फ आसमान में चमकता एक खगोलीय पिंड नहीं रहा, वह बचपन की कहानियों का चंदा मामा रहा है, गीतों और कविताओं का सबसे खूबसूरत किरदार रहा है और हमारी परंपराओं में भी उसकी अपनी जगह रही है। लेकिन आज हम चांद को एक नई नज़र से देखते हैं, भावनाओं से आगे, विज्ञान और जिज्ञासा की नज़र से। क्योंकि जिस चांद को सदियों से हम निहारते आए, भारत ने वहां पहुंचकर उसे करीब से समझने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है।
2: That is true. The moon has always been part of our stories, songs and dreams, and today India has turned that childhood wonder, the moon, into a remarkable space journey, and 23rd of August celebrates that journey as National Space Day.
1: बिल्कुल शगुन, और ठीक 3 साल पहले इसी तारीख को भारत ने इतिहास रचा था। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास शिव शक्ति पॉइंट पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी।
2: Yes, शिव शक्ति पॉइंट, and with that one touchdown, India became the fourth country in the world after the US, Russia and China to achieve a soft landing on the moon. And the first to land near the lunar south pole.
3: 2, 1, 0. Plus 5 seconds.
4: Lift off normal.
5: Here we have a majestic lift off of LBM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft.
6: The LBM-3 M4 Chandrayaan mission accomplished its precise satellite injection conditions. LBM-3

0: M4 mission is successful.
1: So, oh wow, we have heard that iconic victory sound from Chandrayaan 3, and honestly, Jaya, this moment made every Indian heart swell with pride.
2: बिल्कुल, लेकिन जश्न के उन कुछ पलों के पीछे बरसों की साइंस, इंजीनियरिंग, सब्र और लगातार कोशिशें थी. विक्रम की लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर उतरा और वहीं पर साइंटिफिक जांच शुरू कर दी. इसकी एक खास खोज चांद की सतह पर सीधे सल्फर का पता लगाना था. चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर सीधे सल्फर की मौजूदगी का सफलतापूर्वक पता लगाया.
1: Yes, and Chandrayaan 3 itself is part of a much larger story. So earlier, Chandrayaan 1, which was launched in 2008, it helped detect water molecules and hydroxyl on the lunar surface. You were talking about sulfur, right, for Chandrayaan 3. And Chandrayaan 2, launched in 2019, it continued lunar exploration and with its orbiter capturing images at resolutions of up to 30 centimeters. How great.
2: तो ये कहानी किसी एक मिशन से नहीं बनी, या धीरे धीरे एक एक एक सवाल और एक एक खोज के साथ बनी. और इसलिए नेशनल स्पेस डे सिर्फ एक ऐतिहासिक लैंडिंग का जश्न नहीं है, यह उन लोगों का जश्न है जिन्होंने इसे मुमकिन बनाया. वे वैज्ञानिक, इंजीनियर, रिसर्चर्स, टेक्नीशियन, इनोवेटर और सपने देखने वाले जो हमेशा पूछते रहते हैं, अब आगे क्या.
1: Well, yes, forward-looking people. So the celebrations they carry this year, they carry the inspiring theme towards Viksit Bharat, innovating, collaborating and aspiring global space leadership. And the message, it is very clear. India isn't looking at space merely as a destination. We are looking at it as a platform for innovation, for collaboration and for national development.
2: बिल्कुल, और जिज्ञासा की ताकत की याद दिलाने के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन से बेहतर कौन हो सकता है, जिन्होंने मशहूर बात कही थी, जरूरी बात यह है कि सवाल पूछना बंद ना किया जाए. स्कूल की प्रयोगशालाओं से लेकर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स तक सवाल पूछने की यह भावना हर जगह जड़ जमा रही है.
1: दैट इज ट्रू. एंड well, this brings us to another fascinating change, the rise of India's private space ecosystem. So India opened the space sector to private participation in the year 2020, and the Indian Space Policy 2023, it further expanded opportunities across the space value chain.
2: निश्चित रूप से, और सुधारों और इन स्पेस जैसे संस्थानों के साथ भारत की अंतरिक्ष यात्रा एक बड़ी राष्ट्रीय पहल बनती जा रही है, जिसमें सरकारी संस्थान, निजी उद्योग और वैश्विक साझेदार एक साथ आ रहे हैं.
1: So Jaya, today India has operational launch vehicles. They include PSLV, GSLV, LVM3, SSLV, and this supports Earth observation, communication. Altogether, they do that navigation, scientific exploration, and commercial missions as well.
2: और इसके साथ ही लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा रहा है. श्रीहरिकोटा में 2 ऑपरेशन लॉन्च पैड हैं, जबकि तीसरा बनाया जा रहा है. कुलसेकर पट्टिनम को भी भारत के दूसरे रॉकेट लॉन्च साइट के तौर पर विकसित किया जा रहा है.
1: बट बिफोर वी एक्चुअली टेक अ लुक एट वेयर इंडिया इज गोइंग, लेट्स टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट हाउ फार वी हैव ऑलरेडी ट्रैवल्ड. वी शुड पैट आवर बैक्स. And India's first satellite, Aryabhata, was launched in 1975, India 1975, aboard a Soviet rocket. And this early milestone marked the beginning of our space journey.
2: बिल्कुल, और क्या आपको भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान याद है? यह 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंचा और 8 साल से ज्यादा समय तक काम करता रहा, जो इसके तय 6 महीने के मिशन समय से कहीं ज्यादा था. Right. फिर 2023 में चंद्रयान 3 आया.
1: And today, well, we are back in the present. The journey continues. Aditya L1 is studying our nearest star, the Sun, from the Sun Earth L1 point. While AstroSat, another one, is exploring the universe across X-ray, optical and ultraviolet wavelengths. And ExpoSat, it is taking India deeper into X-ray polarization astronomy.
2: और फिर निसार है. इसरो और नासा का एक जॉइंट मिशन, जो पृथ्वी पर होने वाले बदलावों जैसे कि जंगलों, ग्लेशियरों, महासागरों और जमीन पर नजर रखता है.
1: सो जया, इंडिया स्पेस एम्बिशंस आर नाउ रीचिंग इवन फर्दर. गगनयान एम्स टू सेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट्स टू अ 400 किलोमीटर ऑर्बिट फॉर अ 3-day मिशन, विद द फर्स्ट अनक्रूड एक्सपेरिमेंटल मिशन टारगेटेड फॉर द 4th quarter ऑफ दिस ईयर एंड द क्रूड मिशन टारगेटेड बाय नेक्स्ट ईयर. गगनयान
2: जी, और वहीं चंद्रयान 4 की

0: योजना अगले साल के लिए बनाई गई है और यह सैंपल इकट्ठा करने, चंद्रमा से ऊपर उठने और उन सैंपल्स को पृथ्वी पर वापस लाने का प्रदर्शन करके चंद्रमा की खोज को एक कदम और आगे ले जाएगा।
1: एंड विद द ल्यूपेक्स मिशन एंड द इसरो जेएएक्स ए कोलैबोरेशन इंडिया एंड जापान दे विल इन्वेस्टिगेट वाटर एंड अदर वोलेटिलिटीज इन द नियर द लूनर साउथ पोल।
0: वीनस ऑर्बिटर मिशन भी है जिसे 2028 के लिए तय किया गया है। यह शुक्र ग्रह की जियोलॉजी, वायुमंडल और आयनोस्फीयर का अध्ययन करेगी।
1: Well, yes, we were telling you about investigating water with Japan, collaboration, India's collaboration with Japan and other volatiles near the lunar South Pole. Also looking even further ahead, India is working towards the Bharatiya Antariksh Station with its first module targeted for launch by 2028, next to next year, and a fully operational space station envisioned by 2035.
0: And this is the next generation launch vehicle ki bhi yojana hai. Yeh ek aanshik roop se dobara istemal hone wala rocket hai, jise ज्यादा पेलोड क्षमता और बार बार लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है।
1: राइट एंड फर्स्ट सैटेलाइट इन 1977 टू अ प्लान्ड स्पेस स्टेशन इन द 2030s। दिस इज क्वाइट अ जर्नी, इट हैज बीन क्वाइट अ जर्नी एंड परहैप्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट इज दैट दिस जर्नी इज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू गवर्नमेंट लेबोरेटरीज। स्टार्टअप्स, इंजीनियर्स, कोडर्स, डिजाइनर्स, रिसर्चर्स, young innovators, they're all becoming part of it. And as the great scientist and former president of India, Dr. APJ Abdul Kalam famously said, dream, dream, dream. Dreams transform into thoughts and thoughts result in action.
0: और शगुन शायद यही नेशनल स्पेस डे का असली मतलब है। एक सपना एक सोच बनता है, एक सोच एक प्रयोग बनती है और एक प्रयोग एक मिशन बनता है और एक दिन वह मिशन चांद तक पहुंचता है।
1: Well, yes, dreams turn into something substantial. Today, Vice President C.P. Radhakrishnan has extended greetings on National Space Day, saluting Indian scientists, engineers and innovators, and he highlighted the nation's ambitious space missions and that includes Gaganyaan.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर युवा इंजीनियरों, डिजाइनरों, कोडर्स और वैज्ञानिकों की बढ़ती भूमिका के साथ साथ भारत के बढ़ते प्राइवेट स्पेस सेक्टर पर जोर दिया है।
1: एंड ड्यूरिंग एन इंटरेक्शन विद द स्टार्टअप सीईओज ऑफ द स्पेस सेक्टर, मिस्टर मोदी अर्ज्ड द सीईओज टू रिमेन कंसिस्टेंट इन देयर एफर्ट्स एंड बिल्ड अ रोबस्ट स्पेस सेक्टर इकोसिस्टम कैपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग टैलेंट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड।
0: उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि 2047 तक भारत के विकसित देश बनने की यात्रा में अंतरिक्ष क्षेत्र अहम भूमिका निभाएगा।
1: एंड एट द थर्ड नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेशंस इन अहमदाबाद, यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत हाईलाइटेड स्पेस टेक्नोलॉजी एज अ की पिलर ऑफ द विकसित भारत विजन।
0: श्री शेखावत ने इस बात पर भी बल दिया कि भारत के अंतरिक्ष सुधार स्टार्टअप और इंडस्ट्री के लिए नए मौके पैदा कर रहे हैं, साथ ही अंतरिक्ष तकनीक आम नागरिकों के जीवन को भी तेजी से प्रभावित कर रही है।
1: Well, this occasion pays tribute to the enduring legacy of Dr. Vikram Sarabhai, the visionary who laid the foundation for India's space program. So as we celebrate National Space Day today, let's look up at the sky, but perhaps with a slightly different feeling, because that sky is no longer simply something we gaze at or we used to gaze at. It is something India is exploring.
0: बिल्कुल, बचपन में जब हम आसमान को देखते थे, आकाश में चीजें देखते थे, कभी हमने सोचा ना होगा कि हम वहां पहुंचेंगे, और अब हम वहां पे पहुंच रहे, इसलिए हम बस अब उसे देख नहीं रहे बल्कि उसे पहुंच रहे। और भारत निश्चित रूप से उस अंतरिक्ष की अहमियत को समझ रहा है और तेजी से भारत उसे एक नई दिशा भी दे रहा है। शिव शक्ति पॉइंट से गगनयान तक, चंद्रयान से लेकर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन तक, यह सफर जिज्ञासा, साहस और हम यह कह सकते हैं कि भारतीय भावना से प्रेरित है।
1: So happy National Space Day, and here's to a nation that once looked at the stars with wonder and is now reaching for them with confidence.
0: और श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज क्या कुछ खास है। तो सबसे पहले हम इन्हें नागपुर लिए चलते हैं, जहां मंथन फॉर युवा अभियान का भव्य समापन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में हुआ। इस अभियान से युवाओं की प्रतिभा, नवाचार, कौशल और राष्ट्र निर्माण की भावना को मंच मिला। सुनिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: जन मंथन की ओर से पिछले एक महीने से चल रहे युवा शक्ति प्रतिभा और ऊर्जा के उत्सव मंथन फॉर युवा कार्यक्रम का समापन आज नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति

0: रेशिमबाग मैदान पर हुआ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नई तकनीक, स्टार्टअप संस्कृति, नवाचार, कौशल विकास, डिजिटल सशक्तिकरण, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से नई पीढ़ी को सक्षम, जिम्मेदार और राष्ट्रभक्त नागरिक के रूप में तैयार करना इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य था। मंथन फॉर युवा कार्यक्रम की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा,
1: सबसे पहले तो मैं मंथन फॉर युवा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे युवाओं की जो बात है उसको सामने लाने का काम मंथन फॉर युवा ने किया है। और ये जो सारे मेरे साथ बैठे हुए इनक्रेडिबल लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में युवाओं को प्रेरित किया है, इन सभी को इस मंच पर लाने का काम मंथन फॉर युवा ने किया है।
0: इस युवा अभियान में 23 जुलाई से 22 अगस्त के बीच हजारों विद्यार्थियों, युवाओं, नवोन्मेषकों और विभिन्न संस्थाओं ने भाग लिया। इनमें से विजेताओं को आज मुख्यमंत्री के हाथों पुरस्कार प्रदान किए गए। समापन समारोह का सबसे बड़ा आकर्षण ढोल ताशा वादकों का महावादन रहा। सैकड़ों वादकों ने एक साथ एक ही लय में और उत्साहपूर्ण माहौल में ढोल ताशों का वादन प्रस्तुत करते हुए वातावरण में ऊर्जा और उत्साह भर दिया। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी नागपुर से मैं नम्रता फलके।
2: Now we are heading to Srinagar, where preparations are in full swing for the inaugural International Film Festival of Jammu and Kashmir, scheduled to be held from September 7th to 10th in Srinagar and Jammu. More details from our correspondent.
3: The festival will feature screenings under several categories, including International Competition, Cinema of the World, Bharat Panorama, Jammu Kashmir Select, Best Debut Films, Documentary and Short Films. The screenings are expected to showcase diverse cinematic traditions, themes and filmmaking styles. A series of master classes, panel discussions, in-conversation sessions, roundtables and workshops will be organized, bringing together filmmakers, actors, critics, scholars, students and other professionals from the industry. Major festival venues include Sher-e Kashmir International Convention Center and INOX Shivpura in Srinagar and Wave Cinema in Jammu. A floating cinema at Lalit Ghat is also proposed as part of the festival. Elaborate arrangements are being made for security, traffic management, airport facilitation, hospitality, accommodation, transportation and protocol. Medical facilities, power supply, sanitation, beautification and venue preparedness are also being coordinated to ensure smooth conduct of the event. The festival will showcase Jammu and Kashmir's rich heritage, cuisines, handicrafts, traditional art forms and iconic tourist destinations, providing visitors with an opportunity to experience the region's distinctive cultural identity. It will also provide an opportunity for filmmakers and artists from across the country and abroad to connect with Jammu and Kashmir's vibrant culture and cinematic landscape. The festival is also expected to provide local filmmakers and emerging talent with opportunities to interact with established personalities from film industry, gain exposure to international cinema and explore new avenues for creative and professional growth. For Parikrama, this is Ishfaq Shah from Srinagar.
4: अब श्रोताओं, चलिए आपको लिए चलते हैं गोवा, जहां चीनी उद्योग के आधुनिकीकरण और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 84वां वार्षिक सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय चीनी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
5: शुगर टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित इस 3 दिवसीय सम्मेलन में चीनी उद्योग को नई तकनीक से जोड़ने और उत्पादन को अधिक बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। डिजिटल तकनीक, ऑटोमेशन और आधुनिक मशीनों के जरिए चीनी मिलों की कार्य क्षमता बढ़ाने और उत्पादन लागत कम करने के उपायों पर विशेषज्ञों ने जानकारी साझा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि
6: शुगर के साथ साथ आपने जो इथेनॉल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं और विच इज एन E20 जो पेट्रोल में ऐड कर रहे हैं, विच इज एन अगेन गिव्स अ बूस्ट फॉर द फार्मर्स, जिससे आप अन्नदाता से आप ऊर्जादाता बन गए हैं, ये तो बात जरूर कहूंगा। और जो ऊर्जादाता बनने के कारण विच विल हेल्प फॉर द इंडियन इकोनॉमी इन लॉन्ग रन।
5: गन्ने से अब सिर्फ चीनी ही नहीं बल्कि इथेनॉल और E20 जैसे ईंधन भी तैयार किए जा रहे हैं। इससे किसानों के लिए आय के नए अवसर खुल रहे हैं, यानी अन्नदाता अब देश की ऊर्जा जरूरतों में भी योगदान दे रहे हैं और ऊर्जादाता की नई भूमिका निभा रहे हैं। सम्मेलन में विशेषज्ञों, कंपनियों और चीनी मिलों के प्रतिनिधियों ने नई तकनीक और विचार साझा किए। इससे चीनी उद्योग को और आधुनिक, टिकाऊ और सक्षम बनाने की दिशा में नई संभावनाएं सामने आई हैं। साथ ही किसानों और उद्योग दोनों के लिए विकास के नए अवसरों की उम्मीद भी मजबूत हुई है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी समाचार पणजी से मैं निखिल उपाध्याय।
4: अब चलते हैं खेल के मैदान और जानते हैं कि वहां क्या हलचल है। तो सबसे पहले बात हमारे देश की शान हॉकी की। दरअसल FIH हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत को पूल ई का यह मुकाबला हर हाल में जीतना होगा।
2: जया, अनदर स्पोर्ट्स अपडेट। इन क्रिकेट, इंडिया वर 287 for 4 अगेंस्ट होस्ट श्रीलंका ऑन डे वन ऑफ द सेकेंड एंड फाइनल टेस्ट ऑफ द सीरीज इन कोलंबो व्हेन रिपोर्ट्स लास्ट केम इन।
4: अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
7: ग्रेट फ्रीडम फाइटर Tanguturi Prakasham Panthulu, who is popularly called Andhra Kesari. It was today in 1872 that the famous freedom fighter was born in present-day Prakasham district in Andhra Pradesh. The district was named after him. He is known for his grit and valor against the British. In a famous incident, he stood before the police to shoot at him during the Simon Commission's visit to then Madras in 1928. Prakasham is also well known for his active participation in the non-cooperation movement in 1922. He organized a demonstration by 30,000 Congress volunteers in Guntur. In 1942, when the call for Quit India was given by Mahatma Gandhi during the Bombay session of the Congress, demanding an end to the British rule in India, Prakasham was one of the active participants. He was arrested and jailed for more than 3 years.
8: During the freedom movement, Prakasham also founded the Swarajya magazine and spread nationalistic sentiments across the country. Tanguturi Prakasham graduated from the Madras Law College. After practicing as a lawyer for 14 years, he went to England and completed the barrister's course to qualify as a lawyer in the Madras High Court. He met Gandhiji for the first time on a ship to London. He was fascinated by Gandhiji's idea for the freedom struggle. He served as State Congress President 4 times before the independence. He also served as the Chief Minister of the State of Madras and Andhra. His administrative abilities were reflected in his important decisions in manifold areas of statecraft. The Zamindari Abolition Report, prepared by him for Madras Province, became the precursor of the Government of India's efforts to abolish the system in the country. On May the 20th, 1957, the country lost one of its greatest sons and freedom fighters. India is forever indebted to the selfless service of these great men who fought for the independence of the country. The day of 23rd August is important in the history of freedom movement because on this day in the year 1933, Mahatma Gandhi was released from Yerawada jail as his health deteriorated following a fast. In the beginning of August in 1933, Bapu declared his intention to offer individual satyagraha. The colonial government arrested Bapu in Ahmedabad and sent him to Sabarmati prison. Later, he was shifted to Yerawada jail, where he began a fast on August the 16th because he was not allowed his work for Harijans from inside the jail. However, on August the 20th, he was admitted to a hospital, still a prisoner. By August the 23rd, his condition was serious and he was released unconditionally.
4: हम याद कर रहे हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक ऐसे गायक को जिसने अपनी बुलंद आवाज और तराना गायकी से पूरे विश्व को मंत्रमुग्ध कर दिया। जी हाँ, आज ग्वालियर घराने के शीर्ष संगीत साधक, प्रख्यात शिक्षाविद और अद्वितीय गायक पंडित विनायक राव पटवर्धन जी की पुण्यतिथि है। 22 जुलाई 1898 को जन्मे पंडित जी ने अपना पूरा जीवन माँ सरस्वती की साधना और संगीत के प्रचार प्रसार में समर्पित किया। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने आकाशवाणी पर अपना पहला कार्यक्रम 15 अगस्त 1927 को दिया था और वे आकाशवाणी संगीत सम्मेलनों के नियमित और बेहद लोकप्रिय कलाकार थे। सुनते हैं उनका बेहद प्रसिद्ध भजन जोगी मत जा।

0: संगीत और कला के क्षेत्र में उनकी महानता और निस्वार्थ सेवा के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1972 में पद्म भूषण से नवाजा था।
1: Listeners, today we're also remembering Keith John Moon, the drummer for the rock band The Who. Well, he is regarded as

आज ही जन्मदिन है सदाबहार अभिनेत्री सायरा बानो जी की। महज 16 साल की उम्र में उन्होंने शमी कपूर के साथ फिल्म जंगली से अपना धमाकेदार डेब्यू किया था। आइए सुनते हैं इसी फिल्म से मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज का यह जादू, कश्मीर की कली हूं मैं।

0: Listeners, let us talk about another musician, KK. Well, Krishna Kumar Kunnath, the playback singer who is regarded as one of the most prolific playback singers India has ever seen or heard.
1: बिल्कुल, हमारे चहेते केके की आज जयंती है और उन्हें पहला ब्रेक साल 1996 में फिल्म माचिस के गाने छोड़ आए हम से मिला था लेकिन साल 1999 में आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम का गाना बहुत ही उनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ।

0: सेलिब्रेट्स फ्रेंडशिप.
1: बिल्कुल. और आज भी स्कूल कॉलेज की विदाई हो या फिर दोस्तों के साथ, तो उनका गाया हुआ यह गाना हर महफिल की जान होती है. और शगुन केके केवल हिंदी तक सीमित नहीं थे, उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और बंगाली सहित देश की कई भाषाओं में सैकड़ों सुपरहिट गाने दिए. बहुमुखी प्रतिभा के धनी केके को उनकी बेहतरीन गानों के लिए 2 स्टार स्क्रीन अवार्ड से नवाजा गया, जिसमें पहला है फिल्म बचना ए हसीनों के गाने खुदा जाने और फिल्म काइट्स के गाने जिंदगी दो पल की. इसके साथ ही उन्हें 6 बार प्रतिष्ठित फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित भी किया गया. केके आज भले ही हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी आवाज का जादू हमेशा हमारे दिलों में गूंजता रहेगा. केके को याद करते हुए सुनते हैं उनका एक और कालजयी और बेहद भावुक गीत, हम रहें या ना रहें कल.

0: और श्रोताओं, समय हो चला है परिक्रमा के इस अंक को यहीं समाप्त करने का, तो अनुमति दीजिए जया भारती और शगुन चोपड़ा को आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने का।
1: वेल वी थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की।
3: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
2: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चंदाना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को $45 अरब की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप्स और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि युद्ध पोत निर्माण, अपतटीय पोत और अन्य रक्षा क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में रखरखाव सेवा को बेहतर करना जरूरी है। आज कलकत्ता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE और यंत्र इंडिया लिमिटेड से जुड़े 5 केंद्रों के भूमि पूजन समारोह में रक्षा मंत्री ने ये बात कही। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वे महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़ें और संसद में इसका समर्थन करें। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने में सहयोग करके इसे साबित करना चाहिए। श्रीमती ईरानी ने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने गंगा नदी के संरक्षण से संबंधित नियमों में हाल ही में किए गए बदलाव पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। NGT अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक पीठ ने इस महीने की शुरुआत में जारी की गई एक अधिसूचना पर संज्ञान लिया है। अधिसूचना में कथित तौर पर गंगा नदी को इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में निर्माण निषेध क्षेत्र से हटा दिया है। अधिकरण मानना है कि यह बदलाव वर्तमान पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 291 रन बना लिए थे। देवदत्त पडिकल ने 117, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1

आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर 5:10:59 लीजिए 5:11 हुए हैं। आप हैं अपने उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है गाते गुनगुनाते और जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यानी आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर। आपके साथ मैं हूं आज नईम अख्तर और इस कार्यक्रम में हम सुनते हैं 80 और 90 के दशक के कुछ ऐसे गीत जो आज भी हमारे जहनों में कहीं ना कहीं ताज़ा हैं, हमें गुदगुदा जाते हैं, हमें कुछ याद दिलाते हैं और हमेशा हमारा साथ निभाते हैं। तो चलिए आगाज करते हैं एक ऐसे ही बहुत ही सुरीले नगमे से। फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है। देवन आशा पारिख वाली नहीं, सलमान खान वाली। नम्रता शिरोडकर और पिंकल खन्ना भी फिल्म में थीं और इस गीत में नम्रता शिरोडकर थीं।

0: एनसीआरईपीई से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: आकाशवाणी एफ एम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 5:16:30 कार्यक्रम गाते गुनगुनाते, जिसमें आपके लिए हम लेकर आए हैं 80 और 90 के दशक के कुछ सदाबहार गीत। एक गीत अभी आपने फिल्म जब प्यार किसी से होता है फिल्म से सुना था, अभी एक और गीत आपको सुनवाने वाले हैं। पुकार फिल्म का गीत है ये, और पुकार फिल्म का गीत हमारे जहन में इसलिए आया कि बस अभी अभी 15 अगस्त का मौका गुजरा है, हमारी आज़ादी की सालगिरह का मौका गुजरा है, और ये जो हम पुकार की बात कर रहे हैं, ये पुकार फिल्म भी देशभक्ति पर ही आधारित थी। ये और बात है कि इससे पहले भी जो हमारी जानकारी के हिसाब से दो और पुकार फिल्में आ चुकी हैं, और दोनों ही देशभक्ति पर आधारित थीं कहीं ना कहीं। लेकिन इस वाली पुकार की अगर हम बात करें तो ये आज़ाद भारत के सिनेरियो में पिक्चराइज थी। पहली पुकार में आपने देखा होगा बादशाह जहांगीर का इंसाफ, दूसरी पुकार में आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन, रणधीर कपूर, टीना मुनीम और जीनत अमान का वो दौर जिस दौर में भारत पर पुर्तगालियों का कब्जा था, और तीसरी पुकार जो है ये आज़ाद भारत की वो पुकार है जो बहुत हंसी मजाक में, बहुत लाइट हार्टेड रोमांस के साथ शुरू होती है, लेकिन अल्टीमेटली ऐसी जगह जाकर फिल्म ख़त्म होती है जहां दिखाई देता है कि देशभक्ति का जज्बा हर जज्बे से ऊपर है, देश से प्यार हर प्यार से ऊपर है। अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित की पुकार, ए आर रहमान का म्यूज़िक।

0: वो गीत बहुत पसंद आते हो। इसका फिल्म का नाम भी कुछ ऐसे ही है, मोहब्बतें। तो आइए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत।
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

जाने का वक्त हो रहा है तो क्यों नहीं चलते चलते आपको एक ऐसा गीत सुनवा दिया जाए कि आपके भी कुछ यादें ऐसी ताज़ा हो जाएं जो आपकी जवानी के दौर के हों और जिसमें आपने भी रोमांस किया हो और उन अपने रोमांस के टाइम में आप

तो बताइए कितनी यादें ताज़ा हुई, कुछ कुछ चीज़ें याद आई ना, और अगर नहीं भी याद आई होंगी, अगर आपकी कोई भी याद उसके साथ नहीं जुड़ी हुई होगी और आप यंग जनरेशन से, मतलब आज की जनरेशन से हैं, आपने वो फिल्म नहीं देख रखी या उन गीतों को नहीं सुन रखा, तो भी आपको इस गीत का संगीत सुन करके बहुत मज़ा आया होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। और इसी उम्मीद के साथ नईम अख्तर अभी गाते गुनगुनाते कार्यक्रम से आपसे इजाज़त लेना चाहेगी, दिल तो नहीं कर रहा लेकिन क्या करें, रेशमा आ चुकी हैं सिर पर, डंडा लेके खड़ी हुई हैं कि निकलो नईम।

0: हर इसके बाद मेरा कार्यक्रम है, तो भाई डंडे से बहुत डर लगता है, निकलती हूँ मैं भी। आप सुनते रहिए 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी एफएम गोल्ड, और अब से चंद ही पलों में आपके लिए होगा कार्यक्रम पूर्वोत्तर डायरी।
1: उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर डायरी का आज का नया संस्करण। आपके साथ मैं हूं वैष्णवी। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से जुड़ी विकास की नई पहल, बदलती तस्वीर, संस्कृति, परंपरा और उन लोगों की कहानियाँ जो अपने काम और जज्बे से समाज में बदलाव ला रहे हैं, इन्हीं पहलुओं को सामने लाता है हमारा आज का कार्यक्रम। आज की यात्रा में सबसे पहले चलेंगे असम, फिर त्रिपुरा और मिजोरम होते हुए पहुँचेंगे मणिपुर। इन राज्यों से जुड़ी कुछ खास और मानवीय कहानियाँ आपके सामने होंगी, तो आइए शुरू करते हैं आज की पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं असम से। राज्य में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच सड़क संपर्क को और बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर बेहाटा चारियाली गुवाहाटी के पास से तेजपुर तक 135.87 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर के विकास को मंजूरी दी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 8,970 करोड़ रुपए से अधिक है। इस कॉरिडोर का उद्देश्य केवल दो शहरों के बीच आवागमन को आसान बनाना नहीं है, बल्कि असम के आर्थिक, पर्यटन और लॉजिस्टिक से जुड़े केंद्रों को बेहतर सड़क संपर्क देना भी है। परियोजना में कई बाईपास, पुल और अंडरपास का प्रावधान है, जिससे आबादी वाले इलाकों में यातायात का दबाव कम करने में मदद मिलेगी। बेहतर सड़क संपर्क का सीधा असर यात्रियों के साथ साथ सामान की आवाजाही, स्थानीय कारोबार और पर्यटन पर भी पड़ सकता है। असम के चाय उद्योग और दूसरे व्यापारिक क्षेत्रों के लिए तेज और सुगम परिवहन व्यवस्था महत्वपूर्ण है। गुवाहाटी और तेजपुर के बीच बनने वाला ये नया कॉरिडोर असम की कनेक्टिविटी और आने वाले समय में इसके आर्थिक महत्व को किस तरह बदल सकता है, इसी पर आधारित हमारी खास रिपोर्ट सुनिए।
3: गुवाहाटी के पास बहटा चरियाली से तेजपुर तक बनने वाला ये एक्सेस कंट्रोल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 15 का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। सरकार के अनुसार इससे औसत यात्री गति करीब दोगुनी हो सकती है और सफर का समय लगभग आधा होने की उम्मीद है। इससे ईंधन की खपत और वाहनों की संचालन की लागत में भी कमी आ सकती है। इस प्रोजेक्ट में 5 बड़े बाईपास बनाए जाएंगे, जिनकी कुल लंबाई करीब 58.7 किलोमीटर होगी। ये बाईपास बहटा चरियाली, सिपाझार, खारूपेटिया, ढिकियाजोली और तेजपुर जैसे क्षेत्रों से गुजरने वाले यातायात का दबाव कम करेंगे। इससे स्थानीय लोगों के लिए आवाजाही आसान और सड़क सुरक्षा बेहतर होने की उम्मीद है। इस सड़क का सीधा फायदा असम के चाय कारोबार को भी मिल सकता है। बेहतर और ज्यादा भरोसेमंद कनेक्टिविटी से चाय बगानों, प्रोसेसिंग यूनिट, व्यापार केंद्रों और बाजारों के बीच सामान की आवाजाही आसान होगी। गुवाहाटी पहले से ही क्षेत्र के चाय कारोबार का एक प्रमुख केंद्र है। पर्यटन के लिहाज से भी ये कॉरिडोर महत्वपूर्ण है। इससे कामाख्या मंदिर, काजीरंगा और ओरंग नेशनल पार्क जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच बेहतर होगी। इससे गुवाहाटी, तेजपुर और उत्तर असम के बीच पर्यटन सर्किट को बढ़ावा मिलने की संभावना है। प्रोजेक्ट में 15 बड़े पुल, 30 छोटे पुल, 19 फ्लाईओवर, 46 अंडरपास और करीब 210 किलोमीटर तक की सर्विस रोड शामिल है। तेजपुर बाईपास में हाथियों की आवाजाही के लिए अंडरपास भी बनाया जाएगा। इसके अलावा वहां 4.9 किलोमीटर की आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा भी विकसित की जाएगी। यह कॉरिडोर आगे चलकर अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर और पीसाघाट की कनेक्टिविटी को भी मजबूत करने में मदद करेगा। साथ ही रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और जलमार्ग जैसे रसद केंद्रों से भी बेहतर जुड़ाव मिलेगा। यानी गुवाहाटी तेजपुर कॉरिडोर सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि असम में तेज आवाजाही, मजबूत व्यापार और पर्यटन विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं शिवांग मिश्रा।
2: श्रोताओं, अब बात त्रिपुरा की, जहां अंतरिक्ष तकनीक का इस्तेमाल प्रशासन और विकास से जुड़े कामों में लगातार बढ़ रहा है। आज 23 अगस्त है और देश राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। ये अवसर हमें ये समझने का मौका भी देता है कि अंतरिक्ष से जुड़ी तकनीकें अब केवल अंतरिक्ष अनुसंधान तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर आम लोगों से जुड़े कामों में भी उपयोगी साबित

0: प्रचलित हो रही है। त्रिपुरा में रिमोट सेंसिंग, GIS और दूसरे अंतरिक्ष आधारित तकनीकों का इस्तेमाल प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी, भूमि उपयोग में बदलाव को समझने, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण से जुड़े कार्यों में किया जा रहा है। राज्य की योजनाओं में अंतरिक्ष तकनीक के माध्यम से कृषि, वन और प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी से जुड़े प्रयासों का भी उल्लेख है। आपदा की स्थिति में किसी इलाके की जानकारी जल्दी जुटाना हो, किसी क्षेत्र में बदलाव की निगरानी करनी हो या प्राकृतिक संसाधनों का आकलन करना हो, सैटेलाइट से मिलने वाली जानकारी प्रशासन के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। इसके साथ ही अंतरिक्ष विज्ञान और इससे जुड़ी तकनीकों में युवाओं के लिए अध्ययन, शोध और रोजगार के नए अवसर भी सामने आ रहे हैं। त्रिपुरा में अंतरिक्ष तकनीक किस तरह विकास और प्रशासन के काम को नई दिशा दे रही है और युवाओं के लिए इस क्षेत्र में क्या संभावना है? मौसम की जानकारी, आपदा प्रबंधन, खेती, संचार, नेविगेशन और पर्यावरण की निगरानी, इन सभी क्षेत्रों में अंतरिक्ष तकनीक की भूमिका लगातार बढ़ रही है। पूर्वोत्तर के लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर NESAC यानी NESAC का खास योगदान है। मेघालय के उमियम में स्थित NESAC भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत काम करता है और पूर्वोत्तर के विकास के लिए अंतरिक्ष आधारित तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। त्रिपुरा में भी सैटेलाइट से मिलने वाली जानकारी और रिमोट सेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल खेती, वन प्रबंधन, आपदा की तैयारी और प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी में किया जा रहा है। ड्रोन और सैटेलाइट डेटा जैसी नई तकनीकों के बढ़ते इस्तेमाल से विकास और प्रशासन के क्षेत्र में नई संभावनाएं भी सामने आ रही हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस युवाओं को विज्ञान के लिए प्रेरित करने का भी अवसर है। आज छात्रों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान कोई दूर की चीज नहीं रह गई है। चंद्रमा, मंगल और सूर्य के मिशनों में भारत की सफलता ने अंतरिक्ष अनुसंधान में नए अवसरों के रास्ते खोले हैं। वैज्ञानिक और विशेषज्ञ छात्रों को जिज्ञासु बनने, सवाल पूछने और विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर भी खास बल दिया जा रहा है। इसरो रोबोटिक्स चैलेंज 2026 के जरिए छात्रों को भविष्य में ग्रहों की खोज में काम आने वाली तकनीकों पर काम करने का मौका मिला है। इसके विजेताओं की घोषणा 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह के दौरान की जाएगी। नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर पूर्वोत्तर के छात्रों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। पिछले साल त्रिपुरा में हुए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कार्यक्रम में स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने क्विज, व्याख्यान और प्रदर्शनी जैसी कई गतिविधियों में हिस्सा लिया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतरिक्ष अनुसंधान का भविष्य सिर्फ आधुनिक तकनीक पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि ऐसे युवाओं पर भी निर्भर करेगा जो सीखने, प्रयोग करने और नई खोज करने के लिए तैयार हो। भारत अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में छात्रों और युवा शोधकर्ताओं की भूमिका आने वाले समय में और महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस इसलिए अतीत की उपलब्धियों का जश्न, वर्तमान की प्रगति की पहचान और भविष्य की दिशा तय करने का अवसर है। चंद्रयान से गगनयान तक, सैटेलाइट तकनीक से लेकर नई पीढ़ी की अंतरिक्ष तकनीकों तक भारत का अंतरिक्ष सफर लगातार आगे बढ़ रहा है और 23 अगस्त को जब देश राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएगा तो अगली पीढ़ी के लिए संदेश साफ है। आसमान की ओर देखिए, सवाल पूछिए, बड़े सपने देखिए और उन सपनों को विज्ञान की नई संभावनाओं में बदलिए। श्रोता, अब आपको ले चलते हैं मिजोरम। आइजोल के पास लिंगपुई एयरपोर्ट, यहाँ आने जाने वाले यात्रियों की भीड़ के बीच कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी यात्रा खुशी की नहीं बल्कि मजबूरी और दुख से जुड़ी होती है। इसी माहौल में एक व्यक्ति लंबे समय से अपनी जिम्मेदारी को सिर्फ ड्यूटी के तौर पर नहीं बल्कि इंसानियत की सेवा के रूप में निभा रहे हैं। लिंगपुई एयरपोर्ट के चैपलिन मेजर के बियाकथुआमा पिछले साल अक्टूबर से एयरपोर्ट पर आने वाले शवों को सम्मान के साथ रिसीव करने और दुख की घड़ी में परिवारों को सहारा देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने सैकड़ों शवों को सम्मान पूर्वक रिसीव किया है। इतना ही नहीं, इलाज के लिए मिजोरम से बाहर जाने वाले मरीजों के लिए भी वे प्रार्थना करते हैं। एयरपोर्ट जिस स्थान पर जहां हर दिन अलग अलग भावनाओं से गुजरते लोग मिलते हैं, उनकी ये भूमिका संवेदना और मानवीय जिम्मेदारी की एक अलग तस्वीर पेश करती है। दूसरों के दुख में उनके साथ खड़े रहने की ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी की कहानी नहीं है, बल्कि ये बताती है कि कठिन समय में एक छोटी सी मानवीय पहल भी किसी परिवार के लिए कितनी बड़ी मदद बन सकती है। लिंगपोई एयरपोर्ट पर मेजर के बियाक्थुआमा किस तरह ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं और उनके काम से जुड़े अनुभव क्या है, सुनिए हमारी खास मानवीय रिपोर्ट।
1: आइजोल के पास लिंगपुई एयरपोर्ट के चैपलिन मेजर के बियाक्थुआमा ने पिछले साल अक्टूबर में सेवा शुरू करने के बाद से एयरपोर्ट के जरिए लाए गए करीब 383 शवों को सम्मान के साथ रिसीव किया है। इसके अलावा इलाज के लिए मिजोरम से बाहर जाने वाले मरीजों के लिए भी वे नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं। आइजेक लिंगपुई एयरपोर्ट के चैपलिन मेजर के बियाक्थुआमा के मुताबिक बड़ी संख्या में शव देश के अलग अलग हिस्सों के अस्पतालों से मिजोरम के रास्ते मणिपुर लाए गए हैं। उन्होंने बताया कि कई शव मणिपुर से लाए गए थे और एयरपोर्ट पर उन्हें विधिवत रिसीव किया गया। कई बार शव लेने के लिए परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं होता। ऐसे मामलों में शव को कपड़े से ढककर फूलों से सजाया जाता है और सम्मान दिया जाता है। 3 मई 2023 को मणिपुर में जातीय हिंसा शुरू होने के बाद से कुकी जो समुदाय के शवों को इम्फाल एयरपोर्ट ले जाना सुरक्षित नहीं रहा, इसलिए शवों को मिजोरम के लिंगपुई एयरपोर्ट के रास्ते मणिपुर के पहाड़ी जिलों तक पहुंचाया जाता है। वहां से उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए चूराचांदपुर या सड़क मार्ग से दूसरे पहाड़ी इलाकों में भेजा जाता है। मेजर बियाक्थुआमा ने बताया कि हर महीने करीब 200 मरीज इलाज के लिए मिजोरम से बाहर जाते हैं। एयरपोर्ट पर इन मरीजों के लिए और शव लेने आने वाले परिवारों के लिए भी प्रार्थना की जाती है। इसमें धर्म या चर्च की मान्यता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। मिजोरम सरकार ने 1998 के आखिर में लिंगपुई एयरपोर्ट शुरू होने के बाद से वहां चैपलिन की सेवा की जिम्मेदारी सॉल्वेशन आर्मी को दी है। इसके तहत शवों को सम्मान के साथ रिसीव करने और इलाज के लिए बाहर जाने वाले मरीजों के लिए प्रार्थना करने की व्यवस्था है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए विशाल शर्मा।
2: पूर्वोत्तर डायरी।
0: श्रोताओं अब रुख करते हैं मणिपुर का, जहां भाषा और संस्कृति से जुड़ी एक महत्वपूर्ण तारीख हाल ही में मनाई गई। 20 अगस्त को मणिपुरी भाषा दिवस मनाया गया। ये दिन 20 अगस्त 1992 की उस ऐतिहासिक उपलब्धि की याद दिलाता है जब मणिपुरी भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। वर्ष 2026 में इस अवसर का 35वां आयोजन हुआ। मणिपुरी भाषा का इतिहास केवल एक भाषा के विकास की कहानी नहीं है, ये मणिपुर की साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। भाषा के साथ इसकी अपनी लिपि, साहित्य, लोक परंपराएं और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां भी जुड़ी हैं। भाषा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने पर बल दिया गया। ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी भाषा से जोड़ने और उसके संरक्षण के प्रति जागरूक करने का भी माध्यम बनते हैं। आज जब डिजिटल माध्यमों में भाषाओं के इस्तेमाल का दायरा तेजी से बढ़ रहा है, तब किसी भाषा को जीवंत बनाए रखने में नई पीढ़ी की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मणिपुरी भाषा की ऐतिहासिक यात्रा इसके साहित्य और इसके सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ बदलते दौर में इसे आगे बढ़ाने की कोशिशों पर आधारित हमारी खास रिपोर्ट सुनिए।

भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में मणिपुरी भाषा को शामिल किए जाने की ऐतिहासिक उपलब्धि के याद में राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इम्फाल स्थित जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकादमी यानी JNMDA में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस वर्ष कार्यक्रम की थीम रही शांति, एकता और अखंडता के लिए राज्य गीत सना लैबक मणिपुर। समारोह का आयोजन मणिपुर भाषा दिवस राज्य स्तरीय समारोह समिति ने JNMDA के सहयोग से किया। कार्यक्रम में राज्य के गृह मंत्री गोविंदास कौंथोजम मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि किसी समाज की पहचान, संस्कृति, इतिहास और सभ्यता की महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है। उन्होंने मणिपुर की भाषाई विरासत को संरक्षित करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर काम करने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि भाषा में किसी समुदाय का इतिहास, ज्ञान, परंपराएं और सामूहिक स्मृतियां सुरक्षित रहती हैं। इस अवसर पर मणिपुरी भाषा और संस्कृति के संरक्षण में साहित्यकारों, शिक्षाविदों, सांस्कृतिक संगठनों और समुदायों की भूमिका पर भी जोर दिया गया। कार्यक्रम में राज्य गीत सना लैबक मणिपुर के रचयिता और प्रसिद्ध कलाकार अरिबाम श्याम शर्मा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मणिपुर भाषा को 20 अगस्त 1992 को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इसी ऐतिहासिक दिन के

0: स्मृति में हर साल मणिपुरी भाषा दिवस मनाया जाता है। भाषा दिवस के अवसर पर मणिपुरी भाषा और साहित्य की समृद्ध परंपरा को याद करने के साथ साथ इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की जरूरत पर भी चर्चा हुई। गृह मंत्री गोविंद दास कौंथोजम ने कहा कि सरकार मणिपुर भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिलाने की दिशा में भी प्रयास करेगी और अगले साल के भाषा दिवस से पहले इस दिशा में आगे बढ़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह 35वां मणिपुर भाषा दिवस सिर्फ एक ऐतिहासिक उपलब्धि को याद करने का अवसर नहीं रहा, बल्कि मणिपुर की भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के संकल्प के रूप में भी सामने आया। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं जया भारती।
1: श्रोता, मणिपुर की पहचान उसकी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के साथ साथ खेल प्रतिभाओं के लिए भी रही है। अब आपको खेल के मैदान से मणिपुर की एक और खास उपलब्धि के बारे में बताते हैं। मणिपुर के चनम्बम ऋषिकांता सिंह ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में रजत पदक जीतकर देश और राज्य का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता के स्नैच वर्ग में उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों का नया रिकॉर्ड भी बनाया। उनकी ये कामयाबी केवल पदक तक सीमित नहीं है, ये उस मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास की कहानी भी है जो किसी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाता है। मणिपुर की इस होनहार भारोत्तोलक की खेल यात्रा, राष्ट्रमंडल खेलों में उनके प्रदर्शन और इस शानदार उपलब्धि से जुड़ी कहानी पर आधारित हमारी रिपोर्ट सुनिए।
2: चनम्बम ऋषिकांता सिंह ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में देश का नाम रोशन किया। 5 जुलाई 1998 को जन्मे ऋषिकांता ने कम उम्र में ही खेल की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत में उनकी दिलचस्पी बॉक्सिंग में थी, लेकिन इम्फाल की नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी में ट्रायल के दौरान उनका चयन वेटलिफ्टिंग के लिए हुआ। ऋषिकांता का सफर आसान नहीं रहा। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उनके पिता बस और ट्रक चलाकर परिवार का खर्च चलाते थे, जबकि उनकी माँ खेतों में मजदूरी करती थी। ऋषिकांता ने कई परेशानियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने वेटलिफ्टिंग का सपना नहीं छोड़ा। एक समय ऐसा भी आया जब आर्थिक परेशानियों के कारण उन्होंने खेल छोड़ दिया था, लेकिन मणिपुर के वेटलिफ्टिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दोबारा मौका मिलने के बाद उनका करियर फिर पटरी पर आ गया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई उपलब्धियां हासिल की। 2022 में उन्होंने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में 55 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 2025 में 60 किलोग्राम वर्ग में राष्ट्रमंडल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने ग्लासगो के लिए अपनी जगह पक्की की। और फिर आया 26 जुलाई 2026 का दिन। ग्लासगो में ऋषिकांता ने 60 किलोग्राम वर्ग में 264 किलोग्राम का कुल वजन उठाकर रजत पदक जीता। स्नैच में 121 किलोग्राम उठाकर उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों का रिकॉर्ड भी बनाया। इस उपलब्धि के साथ वह राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले मणिपुर के पहले पुरुष वेटलिफ्टर बन गए। ऋषिकांता की कहानी बताती है कि मुश्किल हालात सपनों का रास्ता रोक सकते हैं, लेकिन अगर हौसला मजबूत हो तो मंजिल हासिल की जा सकती है। मणिपुर के इस बेटे की कहानी पूर्वोत्तर के हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाना चाहता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं नेहा गोस्वामी।
1: श्रोताओं, अब हम आपको अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर से रूबरू कराते हैं। नामसाई में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2026 समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने हिस्सा लिया। इस दौरान अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक के जरिए अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के विकास की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। आइए जानते हैं इस खास आयोजन और स्पेस एप्लीकेशंस के महत्व के बारे में।
3: अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने नामसाई में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2026 समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया। अरुणाचल प्रदेश स्पेस एप्लीकेशन सेंटर और नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में छात्र, वैज्ञानिक, अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का उत्सव मनाने के साथ ही अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के विकास में स्पेस एप्लीकेशन की बढ़ती प्रासंगिकता को रेखांकित करना था। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम मुख्य रूप से अन्वेषण पर केंद्रित प्रयास के विकसित होकर राष्ट्र निर्माण और नागरिकों के जीवन में सुधार का एक शक्तिशाली माध्यम बन गया है। उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के लिए स्पेस एप्लीकेशन का महत्व विशेष रूप से अधिक है, क्योंकि राज्य

0: का विशाल भौगोलिक क्षेत्र, कठिन भूभाग, समृद्ध प्राकृतिक संसाधन और भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता है। इसके बाद उपमुख्यमंत्री ने प्रस्तावित अत्याधुनिक विज्ञान केंद्र श्रेणी 2 और 10 मीटर डोम डिजिटल तारामंडल श्रेणी 2 के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। ये सुविधा भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की विज्ञान संस्कृति संवर्धन योजना के तहत विकसित की जा रही है। उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में हो रही तरक्की से फायदा उठाने की बहुत संभावना है। राज्य को राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिलकर काम करना जारी रखना चाहिए और समावेशी व टिकाऊ विकास के लिए टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। श्री मैन ने कहा है कि शिक्षा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में निवेश करने से विकसित अरुणाचल प्रदेश की दिशा में राज्य की प्रगति और मजबूत होगी, साथ ही इससे विकसित भारत 2047 के बड़े राष्ट्रीय विजन में भी योगदान मिलेगा। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा।
1: श्रोताओं, अब हम आपको पूर्वोत्तर भारत की एक खास पहचान एरी रेशम के बारे में बताते हैं। मेघालय और असम के कुछ हिस्सों में बड़ी संख्या में एरी रेशम का उत्पादन किया जाता है। अपनी कोमलता, अहिंसा और संवेदनशीलता के लिए पहचाने जाने वाला ये रेशम पूर्वोत्तर के हजारों परिवारों की आजीविका का अहम जरिया है और खास तौर पर महिलाओं के सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आइए जानते हैं पूर्वोत्तर की अर्थव्यवस्था और शिल्प परंपरा से जुड़े एरी रेशम के बारे में विस्तार से।
2: मेघालय के पारंपरिक एरी सिल्क आज अपनी कोमलता, टिकाऊपन और अहिंसा की विशेष पहचान के कारण देश विदेश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यह केवल एक वस्त्र नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति संवेदनशील सोच और पारंपरिक ज्ञान का प्रतीक बनकर उभरा है। पूर्वोत्तर भारत, खासकर मेघालय और असम में तैयार होने वाला यह रेशम अपनी अनोखी उत्पादन प्रक्रिया और उपयोगिता के कारण अन्य रेशमों से अलग स्थान रखता है। एरी सिल्क को पीस सिल्क या अहिंसा रेशम भी कहा जाता है। इसका कारण इसकी उत्पादन विधि है जो इस दुनिया के अन्य रेशमों से अलग बनाती है। समानता शहतूत या मुगा रेशम में कोकून को उबालकर धागा निकाला जाता है जिससे रेशम के कीड़े की मृत्यु हो जाती है, लेकिन एरी सिल्क में सामिया रसीनी नामक कीड़ा पहले तितली के रूप में कोकून से बाहर निकलता है और उसके बाद खाली कोकून से धागा तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचता, इसलिए यह रेशम शाकाहारी और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील लोगों के बीच खास पसंद बनता जा रहा है। मेघालय के रीभोई जिले और उमरेन दिवोन क्षेत्र को एरी सिल्क उत्पादन का प्रमुख केंद्र माना जाता है। उमरेन दिवोन को देश का पहला एरी सिल्क विलेज घोषित किया जा चुका है। यह बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवार इस उद्योग से जुड़े हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य में लगभग 25,000 से अधिक परिवार एरी सिल्क उत्पादन और बुनाई से जुड़े हैं, जिनमें 90% से अधिक महिलाएं हैं। इस तरह यह उद्योग न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है बल्कि महिला सशक्तिकरण का भी एक प्रभावी माध्यम बन गया है। एरी सिल्क की एक खास विशेषता इसकी थर्मो रेगुलेटरी प्रकृति है। यह कपड़ा मौसम के अनुसार शरीर को संतुलित तापमान प्रदान करता है। सर्दियों में यह शरीर की गर्मी को बनाए रखता है, जबकि गर्मियों में हवा के प्रवाह को आसान बनाकर ठंडक का एहसास देता है। इसकी बनावट में हल्की ऊनी गर्माहट भी होती है, जिसके कारण इसे कई बार असमिया ऊन के नाम से भी जाना जाता है। यही गुण इसे साल भर पहनने योग्य बनाते हैं और इसे दैनिक उपयोग के लिए भी उपयुक्त बनाते हैं। इस रेशम की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है प्राकृतिक रंगों का उपयोग। एरी सिल्क के कपड़ों को रंगने के लिए स्थानीय और जैविक स्रोतों से प्राप्त रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पीले रंग के लिए हल्दी, लाल के लिए लैक और नीले या गहरे रंगों के लिए नील का प्रयोग किया जाता है। इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता और कपड़े की गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहती है। प्राकृतिक रंगों के कारण यह वस्त्र त्वचा के लिए भी सुरक्षित माना जाता है। हाँ। हाल के वर्षों में एरिस सिल्क को मिला GI टैग इसकी पहचान को और मजबूत करता है। यह टैग इस बात की पुष्टि करता है कि यह उत्पाद अपने मूल क्षेत्र और पारंपरिक तकनीक से ही तैयार किया गया है। GI टैग मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, खासकर जापान और यूरोपीय देशों में इसकी मांग तेजी से बढ़ी है। इन देशों में ऐसे उत्पादों को अधिक महत्व दिया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल हो और जिनका उत्पादन नैतिक तरीके से किया गया हो। आर्थिक दृष्टि से भी एरिस सिल्क उद्योग लगातार आगे बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में इसके उत्पादन और निर्यात में वृद्धि देखी गई है। बुनकरों को अब सीधे बाजार से जुड़ने का अवसर मिल रहा है, जिससे उनकी आय में सुधार हो रहा है। कई क्षेत्रों में बुनकरों की आय में 30-40% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह बदलाव ग्रामीण स्तर को बेहतर बनाने में मदद कर रहा है। सरकार भी इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। केंद्र और राज्य सरकार की पहल पर कारीगरों को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स और नए डिजाइन के माध्यम से एरिस सिल्क को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियान भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिससे स्थानीय उत्पादों को भी नई पहचान मिल रही है। एरिस सिल्क काफी उपयोगी और टिकाऊ है। इसे घर पर ही हल्के ठंडे पानी और माइल्ड डिटर्जेंट से आसानी से धोया जा सकता है। समय के साथ इसकी बनावट और अधिक मुलायम होती जाती है, जिससे इसकी उपयोगिता लंबे समय तक बनी रहती है। यह गुण इसे रोजमर्रा के उपयोग के लिए भी एक बेहतर विकल्प बनाता है। पारंपरिक तकनीकों और आधुनिक प्रयासों के मेल से यह उद्योग लगातार आगे बढ़ रहा है और पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान दिला रहा है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं करिश्मा राय।

तो श्रोताओं, ये थी आज की पूर्वोत्तर डायरी। पूर्वोत्तर की पहचान उसकी विविधता में है और यहाँ की बदलती तस्वीर विकास के साथ साथ लोगों की मेहनत, परंपरा और प्रतिभा की भी कहानी कहती है। इसी के साथ आज की पूर्वोत्तर डायरी में बस इतना ही। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं airnsdtalks@gmail.com पर। फिर मिलेंगे पूर्वोत्तर की एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार। कार्यक्रम के संपादक हैं कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक हैं दानिश जैदी।

उत्तर पूर्व अद्भुत रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हो गया। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बैठक 2026 के अंतर्गत सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने खेल विकास, युवा भागीदारी तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने व्यावहारिक और सतत सहयोग के साथ ब्रिक्स खेल भागीदारी का निर्माण करने का आह्वान किया। उन्होंने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धा और खेल विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी साझा करने का प्रस्ताव किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध पोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रूपये की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
2: हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है। आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरईसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्स एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को एआई और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। ICMR के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न है। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पडिकल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी है।
1: प्रोपल्शन सिस्टम हो, कंपोजिट मटेरियल्स हो, रॉकेट स्टेजेज हो, सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स हो, भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
2: Defense Minister Rajnath Singh has stressed the need for self-reliance in shipbuilding, ship repair and related maritime sectors, describing it as vital to the country's security. He has said that India is capable of becoming a global shipbuilding hub. Defense Minister was addressing the gathering after laying the foundation stone for 5 expansion projects of the Garden Reach Shipbuilders and Engineers and Yantra India Limited, worth approximately 3,400 crore rupees in Kolkata. Indian Council of Medical Research, ICMR, has clarified that no new strain of H1N1 has been identified and there is no cause for panic. The influenza strains currently circulating are also well matched with the vaccine strains recommended for the Northern Hemisphere. According to senior scientists at the ICMR, these viruses have been in circulation since the year 2025. Delhi police has clarified that no permission has been granted to any individual organization for holding protest or gathering at the Jantar Mantar today. He said that various videos and posts are being circulated, calling upon people to gather and assemble on the issue of reservation reforms. In a social media post, police said that prohibitory orders are already enforced in New Delhi district. The BRICS Sports Ministers meeting concluded at Visakhapatnam in Andhra Pradesh with unanimous adoption of the Sports Joint Declaration. The declaration reaffirms the commitment of the member countries to strengthen cooperation in sport through dialogue, mutual respect and inclusiveness. Addressing the gathering, Union Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia called for building a BRICS sporting partnership with practical and sustained cooperation. In men's cricket, India with 300 for 5 in the first innings against host Sri Lanka at stumps on day one of the second and final test in Colombo. Devdutt Padikkal continued his impressive form, scoring his second consecutive test century. He made 117 of 193 balls. Earlier, India won the toss and opted to bat. India won the first test by 165 runs and currently lead the two-match series 1-0. In the FIH Hockey World Cup, the Indian women's team will take on Australia tonight. India must win this match to stay in contention for a semi-final berth. The pool E match will begin at 10:30 p.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.
3: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह। श्रोताओं, बुंदेलखंड का नाम आते ही हमारे सामने एक ऐसा इलाका आता है जहां पानी हमेशा से एक बड़ी चिंता रहा है। कम और अनियमित बारिश, सिंचाई की सीमित सुविधा और कई इलाकों में भूजल की कमी, इन सब का सीधा असर खेती और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। पेयजल, सिंचाई और जल आधारित अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियां बुंदेलखंड क्षेत्र में लंबे समय से बनी रही हैं। इन्हीं समस्याओं के हल के रूप में केन बेतवा लिंक परियोजना विकसित की जा रही है। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि केन बेतवा लिंक परियोजना क्या है, इसे किस तरह विकसित किया जा रहा है और इससे बुंदेलखंड में सिंचाई, पेयजल, खेती और लोगों की आजीविका पर किस तरह से असर पड़ने की उम्मीद है। श्रोताओं, केन बेतवा लिंक परियोजना राष्ट्रीय परिपेक्ष्य योजना के अंतर्गत शुरू होने वाली पहली बड़ी परियोजना है जो निर्माण के चरण में पहुंची है। इस परियोजना के अंतर्गत केन नदी का पानी बेतवा नदी के क्षेत्र तक पहुंचाने की योजना है। इसके लिए मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों में दौधन बांध, लिंक नहर और कई अन्य जल एवं ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि केन बेतवा लिंक परियोजना किस तरह तैयार की जा रही है और इसका पूरा ढांचा क्या है।
5: केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों में केन नदी पर लगभग 97 मीटर ऊंचा दौधन बांध बनाया जा रहा है। यह बांध खजुराहो से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। दौधन बांध से लगभग 217 किलोमीटर लंबी केन बेतवा लिंक नहर निकलेगी, जो झांसी के पास बरुआ सागर में जाकर मिलेगी। यानी परियोजना का मूल उद्देश्य केन नदी के पानी को लिंक नहर के जरिए बेतवा नदी के क्षेत्र तक पहुंचाना है। लेकिन परियोजना का ढांचा केवल बांध और एक नहर तक सीमित नहीं है। इसमें लोअर और परियोजना, कोठा बैराज और बीना कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय परियोजना भी शामिल है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मौजूदा नहरों को बेहतर बनाने, तालाबों और वियर्स की मरम्मत, नए बैराज बनाने तथा सिंचाई और पेयजल से जुड़ी अन्य सुविधाएं विकसित करने का भी प्रावधान है। पूरी परियोजना की लागत 44,605 करोड़ रुपए है। परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2024 को किया था। फिलहाल दौधन बांध का निर्माण कार्य चल रहा है। लिंक नहर का काम अभी शुरू होना बाकी है। लोअर और परियोजना, कोठा बैराज और बीना कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय परियोजना भी निर्माणाधीन है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की अन्य संबंधित परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि DPR तैयार करने का काम अंतिम चरण में है। पूरी परियोजना को वर्ष 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब बात करते हैं इस परियोजना से बुंदेलखंड के किन क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन तथा उत्तर प्रदेश में बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जैसे जिले परियोजना से लाभान्वित होंगे। परियोजना पूरी होने पर 10,62,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलने की उम्मीद है। लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा परियोजना में 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का भी उत्पादन होगा। यानी केन बेतवा लिंक परियोजना का दायरा केवल खेतों तक पानी पहुंचाने तक सीमित नहीं है। इसमें सिंचाई, पेयजल और ऊर्जा तीनों को एक साथ जोड़ा गया है।
4: श्रोताओं, अब तक हमने समझा कि केन बेतवा लिंक परियोजना के जरिए पानी को एक नदी क्षेत्र से दूसरे नदी क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए किस तरह का ढांचा तैयार किया जा रहा है। लेकिन किसी भी जल परियोजना का असली महत्व केवल बांध, नहर या बैराज बनाने तक नहीं होता। असली सवाल ये है कि जब पानी उपलब्ध होगा तो उससे खेतों, किसानों, आम लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। इसी को समझने के लिए अब जानते हैं कि इस परियोजना से क्षेत्र पर क्या असर पड़ सकता है।
5: बेतवा लिंक परियोजना से सिंचाई के लिए पानी की बेहतर उपलब्धता होने पर बुंदेलखंड के किसानों की बारिश पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है। पानी समय पर उपलब्ध होने से किसान समय पर फसल की बुआई कर सकेंगे। एक से अधिक फसल लेने की

0: भावना बढ़ सकती है और फसल उत्पादकता में भी सुधार हो सकता है। इसके साथ ही किसान अधिक लाभ देने वाली फसलों की ओर भी जा सकते हैं। इसका असर केवल फसल उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगा। खेती में सुधार से किसानों की आय और ग्रामीण आजीविका को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। सिंचाई के साथ परियोजना में पेयजल को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। पानी के बेहतर उपलब्धता का मतलब केवल रोजमर्रा की जरूरत पूरी होना नहीं है। इससे स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार हो सकता है। परिवारों, खासकर महिलाओं को पानी लाने में कम समय लगेगा और इससे बच्चों की पढ़ाई, रोजगार और जीवन की गुणवत्ता पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। परियोजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। निर्माण के दौरान सिविल निर्माण, इंजीनियरिंग, परिवहन, सामग्री की आपूर्ति, मशीनों के संचालन और अन्य सेवाओं में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। स्थानीय दुकानदारों, वाहन मालिकों, आपूर्तिकर्ताओं और सेवा देने वाले लोगों को भी परियोजना से बड़ी आर्थिक गतिविधियों का लाभ मिलेगा। जहां सतही पानी उपलब्ध होगा, वहां भूजल पर निर्भरता भी कम हो सकती है। लिंक नहर से जुड़े कुछ तालाबों को पानी देने और उन्हें पुनर्जीवित करने की भी योजना है। इससे कुछ क्षेत्रों में भूजल रिचार्ज में मदद मिल सकती है। हालांकि भूजल स्तर में वास्तविक सुधार स्थानीय जमीन, पानी की स्थिति और इस्तेमाल पर भी निर्भर करता है। इस तरह देखें तो इस परियोजना का असर खेत से आगे बढ़कर पूरे क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। खेती और आय में सुधार के साथ रोजगार और व्यापार के अवसर बढ़ेंगे। इससे मजबूरी में होने वाले पलायन को कम करने में भी मदद मिल सकती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण पक्ष है, परियोजना से प्रभावित परिवार और पर्यावरण। दौधन बांध, जलाशय, लिंक नहर, पावर हाउस, सड़क और अन्य जरूरी निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में कुल 22 गांव प्रभावित हैं, पन्ना जिले में 8 और छतरपुर जिले में 14 गांव। ऐसे प्रभावित परिवारों के लिए भूमि अधिग्रहण, मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था लागू कानून और विशेष पुनर्वास पैकेज के अनुसार की जा रही है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पूरी परियोजना में लगभग 5039 प्रभावित परिवारों के लिए 629,87,00,000 रुपए के पुरस्कार पारित किए गए हैं, जिनमें से लगभग 604,74,00,000 रुपए यानी कि करीब 96% राशि का भुगतान किया जा चुका है। परियोजना के साथ पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण को भी ध्यान में रखा गया है। केन बेतवा लिंक परियोजना का पन्ना टाइगर रिजर्व और आसपास के क्षेत्र से संबंध होने के कारण वन और जैव विविधता संरक्षण महत्वपूर्ण हिस्सा है। परियोजना से होने वाली संभावित पर्यावरणीय क्षति को कम करने और उसकी भरपाई के लिए प्रतिपूरक वनीकरण, वन्य जीव संरक्षण, आवास विकास और कैचमेंट क्षेत्र में सुधार जैसे उपाय किए जा रहे हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व और आसपास के क्षेत्रों के लिए इंटीग्रेटेड लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान भी तैयार किया गया है। डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों के लिए पूरे वर्ष न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव बनाए रखने का प्रावधान है, ताकि कृषि, पेयजल, जरूरतों और नदी के पर्यावरण की सुरक्षा बनी रहे। समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
1: श्रोताओं, केन बेतवा लिंक परियोजना को केवल एक बांध या नहर परियोजना के रूप में देखना इसके व्यापक महत्व को सीमित कर देगा। इस परियोजना का उद्देश्य पानी की उपलब्धता को बेहतर बनाकर सिंचाई को मजबूत करना है। सिंचाई बेहतर होगी तो खेती में बदलाव की संभावना बढ़ेगी, खेती में सुधार होगा तो किसानों की आय और ग्रामीण आजीविका को सहारा मिलेगा, पेयजल की उपलब्धता बेहतर होगी तो लोगों के जीवन पर असर पड़ेगा और निर्माण तथा कृषि गतिविधियों से रोजगार और आर्थिक अवसर भी बढ़ सकते हैं। इस तरह केन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड में जल सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसका प्रभाव सिंचाई और पेयजल से आगे बढ़कर खेती, आजीविका और क्षेत्रीय विकास तक पहुंच सकता है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण के आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक मोहित सिंह।

0: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना दृढ परिस्थिति व्यवस्थायाः निर्माणाय वैश्विक प्रतिभाः आकर्षणाय च अन्तरिक्ष नवोद्यम संस्थानेभ्यः आग्रहः कृतः। राष्ट्रिय अन्तरिक्ष दिवसस्य शुभाशयाः च प्रेषिताः। वृक्ष क्रीडा मन्त्रिमण्डलेन वृक्ष क्रीडा संयुक्त घोषणा सर्वसम्मत्या स्वीकृतम्। ऋतुविभागेन अद्य छत्तीसगढ़स्य ओडिशा राज्यस्य तटीय आन्ध्रप्रदेशस्य च पृथक् पृथक् स्थानेषु अतिवृष्ट्यै नारंगवर्णपरा संचेतना प्रदत्ता अस्ति। ईरानदेशेन तेहरान विरुद्धे अमेरिकीय आर्थिक अभियानेन सम्मिलितुं प्रतिवेशी राष्ट्राणां चेतितम्। अपि च FIH हॉकी विश्वचषक क्रीडायां भारतीय महिला दलम् अद्य रात्रौ उपान्त्यचक्रीय स्थानाय ऑस्ट्रेलिया दलं सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य उक्तवान् यत् अन्तरिक्षक्षेत्रस्य नवोद्यमाः प्रशासने स्वविश्वासं प्रकटितवन्तः। अन्तरिक्षक्षेत्रस्य नवोद्यम संस्थानां मुख्य कार्यकारी अधिकारिभिः सह संवादावधौ श्रीमोदी तान् स्वप्रयत्नेषु निरन्तरतां रक्षितुम् अथ विश्वस्य सर्वेभ्यः भागेभ्यः च प्रतिभाः आकर्षितुं समर्थं सुदृढम् अन्तरिक्षक्षेत्रीयं पारितन्त्रं निर्मातुं प्रेरितवान्। असौ उक्तवान् यत् देशे अनुकूलं वातावरणं निर्मातव्यम्, यत्र विश्वस्य सर्वेभ्यः भागेभ्यः जनाः अन्तरिक्षक्षेत्रे स्ववृत्तिं भविष्यं च निर्मातुं भारतं प्राथमिकतया गन्तव्यस्थानम् इति पश्येयुः।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, तो एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: श्री मोदी उक्तवान् यत् व्ययस्य दृष्ट्या भारतम् अत्यन्तं प्रतिस्पर्धाक्षमम् अस्ति, अथ च अत्र गुणवत्तापूर्णाः प्रतिभाः सन्ति यासु संकटस्वीकरणस्य दृढा क्षमता वर्तते। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् एतयोः विशेषतयोः संयोगेन भारतं वैश्विके अन्तरिक्षक्षेत्रे शीघ्रमेव श्रेष्ठस्थानं स्थापयितुं समर्थमस्ति।
1: एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। कॉस्ट में हम कॉम्पिटिटिव है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं।
0: संवादावधौ भारतस्य स्काईरूट एयरोस्पेस इत्यस्य संस्थानस्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चंदना अन्तरिक्षक्षेत्रं निजक्षेत्र उद्घाटनाय प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं प्रति आभारं प्रकटितवान्। ब्रिक्स क्रीडा संयुक्त घोषणा सर्वसम्मत्या स्वीकृत्य आन्ध्रप्रदेशस्य विशाखापत्तनं नगरे ब्रिक्स क्रीडा मन्त्रिणां सभा समाप्ता। घोषणापत्रे ब्रिक्स देशानां क्रीडा विषये संवादस्य परस्पर सम्मानस्य समावेशनस्य च माध्यमेन सहकारं सुदृढं कर्तुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितम्। भारतस्य ब्रिक्स अध्यक्षतायां 26,000+ वर्षे आयोजितायाम् अस्यां सभायां क्रीडामन्त्रिणः सदस्य राष्ट्राणां वरिष्ठ प्रतिनिधयः च मिलित्वा क्रीडा विकासं युवसहभागित्वम् अन्ताराष्ट्रिय सहयोगं च प्रोत्साहनाय उपायान् चर्चितवन्तः। केन्द्रीय युवा कार्य क्रीडा मंत्री डॉ मनसुख मांडविया स्वस्य प्रारंभिक भाषणे व्यावहारिक निरंतर सहकार्येण सुदृढ ब्रिक्स क्रीडा सहभागितस्याः निर्माणाय आह्वानम् अकरोत्। सह क्रीडकानां प्रशिक्षकानां च आदान प्रदानं संयुक्त स्पर्धाः क्रीडा विज्ञानस्य अथ तंत्रज्ञानस्य च आदान प्रदानं प्रस्तावितवान्। डॉक्टर मांडविया अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे भारतं स्वस्य क्रीडा पर्यावरण व्यवस्थां परिवर्तयन् अस्ति, एवञ्च क्रीडांगणात् मञ्चपर्यन्तम् अवसरान् कल्पयति। सः पैरा स्पोर्ट्स इत्यस्य प्रोत्साहनाय क्रीडासु महिलानां सहभागित्वं वर्धयितुं च भारतस्य प्रयत्नान् अपि प्रतिपादितवान्।

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking calls from our listeners on mutual fund-related queries. But do remember that we do not address fund-specific queries. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. Your anchors for today's show, Subodh Mishra and myself, Sarabjeet Kaur.
1: Dhanyavad Sarabjeet aur namaskar shrotaon, karobari khabron ke saath Market Mantra hazir hai. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। बस याद रखें कि हम किसी खास म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 2331-4444-2371-0481 और 2371-7106। श्रोता इससे पहले स्टडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट स्नेहा सूरी। स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
2: जी, धन्यवाद।
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर।
0: फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्फ्यूज ओवर 23,000 करोड़ रुपीज इनटू इंडियन इक्विटीज इन अगस्त सो फार। इन बुलियन मार्केट गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस राइज फॉर थर्ड स्ट्रेट वीक एंड सिचुएशन इन वेस्ट एशिया रिमेन्स टेंस।
1: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अगस्त में अब तक भारतीय शेयर बाजार में 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया। सर्राफा बाजार में लगातार तीसरे हफ्ते भी सोने और चांदी में चमक कायम और पश्चिम एशिया में तनाव जारी।

0: And before we go just any further in the program, may we once again remind our dear listeners that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक श्रोता जुड़ गए हैं, पहले उनके पास ही चलते हैं. सरबजीत,
0: बिल्कुल.
1: यूपी से विवेक हमारे साथ हैं. विवेक, स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
2: हाँ, मार्केट में डटी और एक्सपर्ट को नमस्कार.
1: नमस्कार
2: सर. मैं म्यूचुअल फंड में एक SIP के द्वारा इक्विटी क्लास में 8 से 9 ईयर से इन्वेस्टेड हूँ. मेरे पास अभी एक लमसम अमाउंट है जिसे मैं निवेश करना चाहता हूँ इक्विटी क्लास में. मैं इसे SPV के माध्यम से, मेरे दो प्रश्न है. SPV के माध्यम से मैं इसे 12 महीनों में स्प्रेड कर लगाना चाहता हूँ. क्या ये सही है समय अवधि या इसको चेंज करना होगा? मेरा दूसरा प्रश्न है कि मैं एक तो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, मतलब इक्विटी मिड कैप और स्मॉल कैप, इनमें मुझे रेशो क्या रखना चाहिए सर? जैसे मेरा कोर्ट पोर्टफोलियो है उसमें मुझे कितना परसेंट रखना चाहिए? और जैसे मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर के रूप में चाहता हूँ तो मुझे मैं अपने उसमें स्मॉल कैप और मिड कैप को शामिल करना चाहता हूँ और एक वैल्यू फंड भी रखना चाहता हूँ, तो कृपया इसका जो रेशो है वो मुझे गाइड करें.
3: विवेक जी, जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि एसटीपी के माध्यम से वो लमसम आप इन्वेस्ट करें, तो ये बिल्कुल एक अच्छी अप्रोच रहती है. ये काम सबसे ज्यादा तब आती है जब आपके बैंक अकाउंट में पैसा ज्यादा देर पड़ा रहता है और डर रहता है कि कोई कुछ यूज आ जाएगा इसका और आप उसे वहां पर खत्म कर देंगे. तो एसटीपी के माध्यम से फायदा ये रहता है कि वो लमसम आपने ऑलरेडी एक फंड में डाल दिया, अब आप उसको छेड़ेंगे नहीं और आप वहां पर अपने फंड को एक इंस्ट्रक्शन दे देंगे, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, कि वो इस फंड से उस फंड में डाले. यहाँ पर बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि आपको जो जिस फंड से आप एसटीपी कर रहे हैं, जनरली ये लिक्विड फंड रखना चाहिए ताकि उतार चढ़ाव कम रहे, तो आपका बेस अमाउंट पे उतना फर्क ना पड़े. जो आप डेट फंड लेंगे और जहां से आप उसमें से जिस इक्विटी फंड में जाएंगे, ये सेम AMC के रहने चाहिए और हर इन्वेस्टमेंट जो यहां से कट रही होगी उस पर एक टैक्स इम्पैक्ट होगा जो कि तब नहीं होता है जब हम अपने बैंक अकाउंट से करते हैं. तो आप इसके बेसिस पर ये डिसीजन ले सकते हैं. जो आपका दूसरा सवाल है कि कोर पोर्टफोलियो और जो एक हम सप्लीमेंट्री पोर्टफोलियो कहते हैं जहां पे हम मिड स्मॉल को ज्यादा एलोकेट कर पाते हैं, बट कोर को थोड़ा रिलेटिवली स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स में रखना चाह रहे होते हैं, तो

0: जैसे आपने कहा वैल्यू, फ्लेक्सी, मल्टी, ये सारी कैटेगरीज आप कोर पोर्टफोलियो के लिए बिल्ड कर सकते हैं, और मिड एंड स्मॉल कैप आप अपने सप्लीमेंट्री के लिए कर सकते हैं, जिसमें जैसे आपने बोला आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आप 8-9 साल से कर रहे हैं और आप आगे भी करना चाहते हैं, तो आप 30% का एक रफ एलोकेशन अपने मिड और स्मॉल कैप एक्सपोजर के लिए रख सकते हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि जब आप फ्लेक्सी, वैल्यू या मल्टी कैप कैटेगरीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो फंड के चुनाव पर डिपेंड करता है कि वो फंड मिड और स्मॉल कैप में कितना एक्सपोजर लेता है। तो जब आप अपना मिड और स्मॉल कैप देख रहे हो, उसको सिर्फ उन मिड स्मॉल कैप फंड्स में ना देखिए, एक होलिस्टिक पिक्चर देखिए अपने पोर्टफोलियो में कि मल्टी कैप, वैल्यू या फ्लेक्सी में से कितना मिड और स्मॉल कैप आ रहा है, और रिलेटिवली इसको बैलेंस आप 30% के अराउंड का रख सकते हैं।
1: जी, विवेक जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था और स्नेहा आपने जो जवाब दिया है ये लगता है म्यूचुअल फंड के हर निवेशक के लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि अक्सर ये लोग पूछते रहते हैं इसके अलावा भी कि जैसे हम गोल्ड में या सिल्वर में कितना परसेंट रखें और हमारे पोर्टफोलियो का कितना परसेंट इसमें होना चाहिए। ये सवाल और इस तरह के सवाल अक्सर आते हैं और इसके जवाब भी स्टैंडर्ड हैं, लेकिन शायद हमें कार्यक्रम में अक्सर इनको रिपीट करने की ज़रूरत होती है।
0: बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही कोई एसेट क्लास बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, बहुत बुरा करती है, ये सवाल एकदम से टॉप ऑफ द माइंड हो जाते हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट रहता है कि इन पे बार बार मतलब चर्चा हो, लोगों को भी अच्छा लगता है। तो जहां तक गोल्ड और सिल्वर के एलोकेशन की बात रहती है, ये एक तरीके का हेज रखते हैं कि जब इक्विटी मार्केट थोड़ी अनसर्टेन है, ये आपको एक तरीके का इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। पर वही रहता है, जो चीज़ बहुत बढ़ रही होती है या मतलब उसका डायरेक्शन थोड़ी एक अलग लेवल पे होती है, उसको चेज ना करके ये जो एक प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब इनमें कोई साइंटिफिक रूल नहीं है, ये आपको एक होलिस्टिक पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प करता है। तो 5-10% की एलोकेशन आप इन टाइप के एसेट क्लासेस में रख सकते हैं।
2: सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एलोकेशन ऑफ एसेट्स एट सच ग्रेट डिटेल एंड यू वर जस्ट टॉकिंग अबाउट द एसटीपी इन्वेस्टमेंट मोड, एंड आई अंडरस्टैंड दैट इट क्रिएट्स अ साइकोलॉजिकल बैरियर वेयर यू डोंट स्पेंड द मनी विच इज ईजिली अवेलेबल इन योर बैंक अकाउंट एंड देन पार्क इट फॉर अ डेजिग्नेटेड टाइम एंड देन यूटिलाइज इट मोर fruitfully. So in the backdrop of this, why are investors increasingly choosing mutual funds over keeping all their savings in traditional avenues?
0: Right. So I guess that has something to do with how the mutual fund awareness has, let's say anybody or everywhere you just mention the word mutual fund sahi hai, and everybody, let's say, watching cricket will also be able to understand because of the kind of advertisements and awareness that is being created about a very important product. Plus, India as a market has always been tilted towards, so much tilted towards traditional asset classes that we have, we had stopped appreciating other asset classes beyond fixed income. So that is where mutual funds come in.
2: Sneha, we'll come back with that discussion. Meanwhile, we'll connect with our next caller from Delhi. Pradeep ji, swagat hai. Sawal puche.
3: Namaskar, Market Mantra team.
2: Ji, namaskar.
3: Madam, mere paas hai na ek flexi cap, ek mid cap, ek small cap. Tino mein meri SIP chal rahi hai. So kya mujhe ek multi asset fund add karna chahiye? Aur dusra mera question lump sum ke bare mein hi hai, kyunki abhi mid cap aur small cap मतलब काफी ऊपर चल रहा है, लाइफ टाइम हाई जो भी है। तो अगर मुझे सपोज करो 50,000 रुपए का लमसम करना है इस मंथ में, तो मुझे फ्लेक्सी कैप में डालना चाहिए, मिड कैप में डालना चाहिए, स्मॉल कैप में डालना चाहिए?
0: जी प्रदीप जी, जो आपका पहला सवाल था कि आप फ्लेक्सी, मिड और स्मॉल में ऑलरेडी कर रहे हैं इन कैटेगरीज में, और आप मल्टी एसेट में जाएं या ना जाएं, तो मल्टी एसेट एक डिफरेंट तरीके की बॉल गेम हो जाती है इन कैटेगरीज से, जिनके नाम में ही पता चल जाता है ये कहाँ, यूजुअली कहाँ इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब मल्टी एसेट जैसा इसका नाम है, ये डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है। इसका मैंडेट बस इतना रहता है कि एक टाइम पर मिनिमम 10% इनको 3 एसेट क्लासेस में रखना चाहिए। जनरली ये देखा गया है ये फंड्स इक्विटी, डेट और गोल्ड में ज़्यादा एक्सपोजर रखते हैं, और इसमें डायनामिकली चेंज करते रहते हैं। तो मल्टी एसेट, अगर आप चाहते हैं कि ये एक्सपोजर आपके पास आए, एक ऐसा पोर्टफोलियो आपके पास रहे जो डायनामिकली चेंज करता रहे, तो आप बिल्कुल इसमें कर सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट बात ये रहती है, जब आप फंड सिलेक्शन पे जाएं, तो आपको ये देखना पड़ता है कि हर फंड किस तरीके की इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि जब भी हम किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वी नो वॉट काइंड ऑफ रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ वी आर गेटिंग इनटू। तो यहाँ पे थोड़ी प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ वेयर द फंड इज इन्वेस्टिंग थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए बेटर रहता है कि पूरे अच्छे से हम रिसर्च करें। बट हैविंग सेड दैट, मल्टी एसेट आपके पोर्टफोलियो में ना होकर अगर आप अलग से डेट और अलग से गोल्ड भी लेते हैं तो भी आप कुछ मिस आउट नहीं कर रहे हैं एज सच. और आपका जो दूसरा सवाल था कि लमसम कहाँ किया जाए, तो मेरा मानना यह है कि लमसम से कोई आपको एक मैसिव फायदा अगर हो रहा होगा कहीं पे एज ऑफ टुडे, आपको नहीं पता है उससे एक मैसिव नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आप एक बड़ा अमाउंट एक ही साथ किसी एक ऐसी एसेट क्लास में डाल रहे हैं जहां पे जब चीज़ें हिलती हैं तो काफ़ी बुरा हिल जाती हैं और जब बढ़ती हैं तो काफ़ी बुरा बढ़ जाती हैं. तो एक वो जो एक कॉइन फ्लिप वाली प्रोबेबिलिटी रहती है ना, उसमें मैं थोड़ा झिझकती हूँ करने से. तो लमसम पे मेरा मतलब क्योंकि मैं खुद नहीं कर पाती हूँ तो मेरी अप्रोच ऐसी रहती है कि इक्विटी में मैं लमसम ना करूँ. अगर आप मार्केट टाइमिंग करके फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं और आपको भरोसा है अपने आप पे, अपनी स्ट्रैटेजी पे, तो आप इसको थोड़े एक जो एक फ़न एलोकेशन होती है ना आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे, वो इम्पैक्ट ना करते हुए एक ऐसा अमाउंट लेना, ना ही वो आपके एक्सपेंसेस को इम्पैक्ट कर रही है, ना ही आपके पूरे बाकी के कोर को इम्पैक्ट कर रही है, और फिर ही आप ये डिसीजन लेना.
1: जी, और देखते हैं अब कि FPIs का क्या हाल रहा है. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों, FPI ने अगस्त में अब तक भारतीय शेयरों में खरीदारी जारी रखी है. ताज़ा आंकड़ों के अनुसार FPI ने इस महीने अब तक भारत के शेयर बाज़ार में 23,544 करोड़ रुपए का निवेश किया है. कुल निवेश में 14,118 करोड़ रुपए स्टॉक एक्सचेंजों पर खरीदारी के माध्यम से आए, जबकि 9,426 करोड़ रुपए प्राथमिक बाजार के माध्यम से निवेश किए गए. जुलाई में तेज हुई खरीदारी की गति अगस्त में भी जारी रही, जिससे मजबूत हमारे मजबूत बुनियादी आंकड़ों और तिमाही आमदनी का समर्थन मिला है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में ज़्यादा बढ़े हुए मूल्यांकन को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण वैश्विक तरलता भी उभरते बाजारों की ओर वापस आ रही है. इस बीच ऋण बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के रुख में मिला जुला रुझान देखने को मिला है. अगस्त में अब तक FPI ने जनरल लिमिट रूट के माध्यम से ऋण प्रतिभूतियों से 995 करोड़ रुपए निकाले हैं, जबकि VRR से 83 करोड़ रुपए की निकासी दर्ज की गई. इसके उलट FAR से 852 करोड़ रुपए का निवेश हासिल हुआ है.
2: एंड विनोद जॉइंस अस फ्रॉम दिल्ली, सवाल पूछे.
4: पूरी मार्केट ममता टीम को मेरी तरफ से नमस्कार.
2: जी नमस्कार.
4: मैं मैडम से ये जानना चाहूंगा कि मैं 2016-17 से अभी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हूँ, तो उसमें तरह तरह की मेरे पास स्कीम है, और लेकिन थोड़ा सा कुछ दिन से परिवार के दबाव में महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि वो कह रहे हैं इधर उधर की एग्जाम्पल सेट करके मुझे बताते हैं कि आप कुछ म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बेच के रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करो. बट तो मैं इस फैसले को लेकर झिझक रहा हूँ, ये मुझे मैम थोड़ा गाइड करेंगे कि यह कैसा फैसला रह रहे हैं, क्या ये सही है कि इक्विटी से कुछ यूनिट्स बेच के रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना, प्लीज बताएं.
0: जी विनोद जी, जैसे मैं पहले बात कर रही थी कि हम इंडिया में जनरली एक फिक्स्ड इनकम मार्केट बन जाती है ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स की जब हम बात कर रहे थे, तो रियल एस्टेट भी एक ऐसी मार्केट रही है जिसमें जो हमारे पेरेंट्स या उनसे पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वाले टाइम का ज़माना था, उसमें रियल एस्टेट को एक बड़ा अलग तरीके से देखा जाता था, इसीलिए शायद से आपके फैमिली आपको वो कह रही है. अब इंडिया में जो रियल एस्टेट की एक सिचुएशन रहती है, उसमें एक तरीका ये देखा गया है कि आपको पता नहीं होता है कि आप जहाँ पे अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली में कंस्ट्रक्शन के बाद कुछ मटेरियलाइज होगा या नहीं होगा. एज एन एसेट क्लास जो लिक्विडिटी की एक प्रॉब्लम रहती है उसके बारे में कुछ हो नहीं पाता है, या फिर काफ़ी हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी रहती है. तो मेरा मानना ये रहता है कि जब इक्विटी और रियल एस्टेट को कंपेयर करा जाए इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं आप चाहते हैं वो पैसा जब आपको चाहिए आप यूटिलाइज कर पाएं, क्योंकि नहीं तो हम इन्वेस्ट क्यों ही कर रहे हैं अपना पैसे बचा कर. तो लिक्विडिटी मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो म्यूचुअल फंड्स आपको बेटर देते हैं दैन रियल एस्टेट. बाकी अगर आप रियल एस्टेट का एक्सपोजर चाहते हैं तो अभी का टाइम एक ऐसा आया है जब रीट्स जो लिस्टेड रियल एस्टेट रहता है उनके एक्सपोजर पे आपको फंड्स आने वाले हैं. वैसा एक फंड अभी अभी लॉन्च हुआ है उसका थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड होने देते हैं और हम तब देख सकते हैं कि अगर वो जो प्रॉमिस दे रहा है, क्योंकि वो एक इंडेक्स फंड है तो इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर का ज़्यादा स्कोप नहीं रहता है, तो एक चीज़ को ट्रैक करके आपको रिटर्न मिल जाता है जो एक रीट्स एज ए मार्केट का होता है, तो मेरे हिसाब से वो एक ज़्यादा बेनिफिशियल एरिया रह सकता है और आपको एट द सेम टाइम रियल

0: स्टेट का एक्सपोजर दे सकते हैं एक डिफरेंट तरीके से और एक लिक्विड तरीके से. तो जब इस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड बन जाता है आप इसको देख सकते हैं.
1: जी चेन्नई से काशीनाथ जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
2: हेलो
1: जी काशीनाथ जी, सवाल पूछें.
2: यस मैं काशीनाथ फ्रॉम चेन्नई. मेरा सवाल ये है कि आपने पहले जो सब फंड का नाम ले लेते थे, जैसे कि पहले अभी कुछ नाम नहीं लेते, मैं बहुत पुराना श्रोता हूँ, जैसे कि आप पहले बोल देते थे जैसे कि धीरेन्द्र सर ये सब बोलते थे, लेकिन अभी वो सिस्टम बंद कर दिए, ऐसा क्यों, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिएगा, धन्यवाद.
3: सो काशीनाथ जी, ये सिर्फ एक पॉलिसी मैटर है, जस्ट अ चेंज इन द सिस्टम इन विच द प्रोग्राम इज नाउ बीइंग प्रेजेंटेड, नथिंग मोर देन दैट.
1: जी, और ऐसा ना लगे कि हम किसी खास कंपनी या उसको बढ़ावा दे रहे हैं.
3: और जैसा कि हम कहते हैं कि पैसा आपका है तो सोच और समझ भी फाइनल और डिसीजन भी फाइनली आपका ही होना चाहिए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम दिल्ली. वरुण जी स्वागत है आपका, सवाल पूछे.
4: मैम गुड इवनिंग.
3: गुड इवनिंग
4: मैम. मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा दो फंड ऐसा है जो जिसमें पिछले एक डेढ़ साल से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, उसी कैटेगरी में दूसरा फंड अच्छा कर रहा है. अब मेरा जो कैपिटल गेन्स अगर मैं स्विच करता हूँ काफी ज्यादा बनता है, तो क्या मुझे कैपिटल गेन्स के बारे में ना सोच के क्या मुझे अभी दूसरा फंड में उसी कैटेगरी में स्विच करना चाहिए जो मैं करना चाहता हूँ उसी कैटेगरी में? यही मेरा क्वेश्चन है. थैंक यू.
0: जी वरुण जी, अज्यूमिंग कि हम यहाँ पर इक्विटी फंड्स की बात कर रहे हैं, तो पहली बात कि एक डेढ़ साल बहुत ही कम टाइम हो जाता है इक्विटी फंड्स की परफॉर्मेंस पे एक डिसीजन लेने के लिए. मैं मानती हूँ निराशाजनक जब आपको अपना पैसा दिख रहा होता है तो डाउट हमेशा आता है, बट आप देखें तो मतलब ये साल तो स्पेशली सेंसेक्स ने भी कुछ रिटर्न नहीं दिया है. और जो सिचुएशन आप अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि सेम कैटेगरी में दूसरा फंड अच्छा कर रहा है, ऐसे करते करते आपको पता नहीं है कि कब ऐसा हो जाएगा जब आप एक कलेक्टर ऑफ फंड्स बन जाएंगे, क्योंकि ऐसा हर पल हर समय आपको लगेगा कि आप जिस फंड में इन्वेस्टेड है उससे बेहतर फंड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये एक हाइंडसाइट की बात हो जाती है. अब अगर आज हम चर्चा करते हैं कि कौन सा फंड अच्छा है कौन सा फंड बुरा है, तो उसका एक जवाब ये रहता है कि वक्त बताएगा और जब आपने इन्वेस्ट करा है तब उसके अकॉर्डिंग ही जज करना चाहिए. तो बिल्कुल, जब भी हम ऐसे स्विचिंग कर रहे होते हैं हमें गेन्स और लोड्स का ध्यान रखना चाहिए. बट मेरे हिसाब से जो आप समय बता रहे हैं जितने होराइजन के लिए आप अभी इन्वेस्टेड रहे हैं, गिवन दैट ये वाला टाइम एज एन इंडियन मार्केट का भी काफ़ी फ्लैट टू फॉलिंग रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी आप अपना ये डिसीजन पे एक्ट ना करके थोड़ा समय और दीजिए. कम से कम लेट्स से 3 ईयर्स उस फंड को दीजिए परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि अभी उसने एक ही मार्केट साइकिल देखी है जब से आपने इन्वेस्ट करा है. जबकि अगर आप उसके रोलिंग रिटर्न्स जो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताता है कि डिफरेंट साइकिल्स में उसने कैसा प्रदर्शन करा है, उसको ध्यान में रखते हुए आई वुड से कि आप अपना ये डिसीजन अभी होल्ड करिए.
1: स्नेहा, लेकिन जब ऐसी बात करते हैं कि एक ही कैटेगरी के एक फंड में अच्छा प्रदर्शन है और दूसरे में उतना अच्छा नहीं है, मैं बुरा नहीं कहना चाहता, मान लीजिए अगर कितने के फर्क को हम माने कि हमें स्विच करने का फैसला लेना चाहिए, 0.2% का, 0.5% का, 1% का?
0: मैं बताती हूँ, मेरा जो नज़रिया रहता है इसको देखने का वो इतना सा रहता है कि जब आपने इन्वेस्ट करा था किसी फंड में और जो एक दूसरा फंड है, पहले तो ये देखना चाहिए कि क्या वो दोनों सेम स्ट्रेटजीज भी हैं, क्योंकि एक कैटेगरी में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में लेट्स से मल्टी कैप कैटेगरी में भी जहाँ पे सेबी कहता है कि आप इतना इतना इतना पोर्शन लार्ज मिड स्मॉल में डाल सकते हैं, वहाँ पे भी जो पोर्शन एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है वहाँ पे सब एक्टिव फंड मैनेजर्स डिफरेंट अप्रोचेस रखते हैं. तो सिर्फ नंबर देखकर तो कभी डिसाइड नहीं करना चाहिए कि कितने नंबर पे हम स्विच कर लें, क्योंकि सबके लोड सबके एक्सपेंसेस अलग अलग रहेंगे, मतलब इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन टैक्सेस, क्योंकि डिपेंड करता है आपने कब इन्वेस्ट करा है. किसी ने एक ही साल में करा है तो उनका शॉर्ट टर्म गेन लग जाएगा, शॉर्ट टर्म टैक्स लग जाएगा, तो वो जो जितना डिफरेंशियल के लिए वो उधर जा रहे हैं उन्हें यहाँ पर देना पड़ रहा है. जिसने थोड़े लंबे समय के लिए किया हुआ है तो ये सारे डिसीजंस काफ़ी कंफ्यूजिंग रहते हैं एक आम निवेशक के लिए. इसलिए बेटर ये रहता है कि आप एक टाइम दीजिए उस फंड को. बाकी अगर आपको बहुत घबराहट हो रही है उस फंड से तो फिर तो आपको ये देखना चाहिए कि आप सही एसेट क्लास में हैं भी या नहीं.
1: जी, और चलते हैं अगले कॉलर के पास. नोएडा से रविंदर हमारे साथ हैं. रविंदर स्वागत है आपका, सवाल पूछिए.

0: Yeah, good evening, madam. I have one question regarding the electronic gold receipts. How to trade in the Zerodha or Grove platform, whether it is tradable or any other way to trade? Thank you.
1: Right. So as far as my knowledge goes on the electronic gold receipts, they are very much available on the NSE platform, as in they were introduced by NSE and they allow investors to buy and hold and sell physical gold digitally through a DMAT account. When compared to ETFs, I still feel that ETFs would be a better option since they let you stay away from physical gold, which also gets its, certain trades like storage costs and the anxiety that your physical gold is somewhere else and not near you. Is everything gets protected when you invest in a gold ETF, where the money is really not in terms of that physical gold, because in your hand it's just the units, while it's otherwise when it goes to EGRs. So EGRs may suit those who are wanting direct gold ownership, and while ETFs are ideal for investors seeking more liquid passive price exposure. But all said and done, if you want to trade in EGRs, then you can do so directly on NSE platform.
2: अपने सोने की बात की तो चलिए हम श्रोताओं को बता दें कि इस हफ्ते सोने का हाल क्या रहा. कमज़ोर अमेरिकी डॉलर और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में तत्काल वृद्धि की आशंकाओं में कमी के चलते सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तीसरे सप्ताह बढ़त जारी रही. अमेरिकी ट्रेजरी द्वारा लंबी अवधि के बॉन्ड बायबैक को दोगुना करने के फैसले से लंबी अवधि के बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है, जिससे कीमती धातुओं की मांग में और वृद्धि हुई. एमसीएक्स पर अक्टूबर अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में सप्ताह के दौरान 5.1% की वृद्धि हुई और ये 162,438 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. सितंबर अनुबंध के लिए चांदी के वायदा भाव में 4.5% की वृद्धि हुई और ये 2,46,597 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई. कॉमेक्स में अक्टूबर अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में सप्ताह के दौरान 5.5% की वृद्धि हुई और ये $4,645.10 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुआ. सितंबर अनुबंध के लिए चांदी के वायदा भाव में सप्ताह भर में 6.8% की वृद्धि हुई और ये $69.53 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुआ.
3: ऑल राइट, नाउ लेट्स कनेक्ट विद रवि नारायण फ्रॉम बिलाई. जी सवाल पूछें.
4: नमस्ते मार्केट मंत्रा
3: जी. नमस्कार
4: मैडम. से मेरा सवाल है कि मैं एक SIP में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और मेरे पोर्टफोलियो में जो है एक ही अच्छे भारत के लीड बैंक के पोर्टफोलियोज हैं सारे, और इक्विटी है और फोकस इक्विटी और मल्टी कैप वगैरह है, और करीब करीब 100% का इजाफा है. मैंने मेरे इन्वेस्टमेंट का 100% का इजाफा है, तो क्या मुझे अभी फंड की कोई जरूरत नहीं है, तो शुड आई कीप ऑन कंटिन्यूइंग और मुझे इसका कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए? मुझे फंड की कोई आवश्यकता नहीं है, कैन आई रिमेन इन दी फंड्स? ये मेरा क्वेश्चन है.
1: Right. So, sir, even if you're sitting at 100% gain and the situation of your life is that you don't need that money right away, then you might as well continue your investments in the selected funds, because selling them and booking profits would only mean that, that money will eventually land in your bank account, and then the risk of consumption, like I was discussing earlier, kicks in. So it's a happy situation, and I believe since you're a long-term investor, you can continue investing in those funds.
2: एक बात इन्होंने और कही थी कि ये एक ही fund house के funds हैं.
1: अच्छा, so ये मेरे से miss हो गया होगा. यहाँ पे जरूर मैं आपको बोलना चाहूँगी, when it comes to diversification, the diversification as a product mutual fund offers you, but at an investor level, diversification kicks in when you are spreading your money across different funds, like you said, focused, multi-cap. It also is important that you are investing in more than one AMC, because generally AMCs tend to follow a holistic or a one-stop investment philosophy at a fund house level, and then according to SEBI mandates, run the portfolio constructions as per SEBI mandates. If the market is not favoring that particular philosophy at one point in time, then definitely you can be in a situation where the AMC level risk kicks in. So definitely you should look to spread beyond that particular AMC.
3: All right, moving on to the next

0: big story of the day. Tensions between Washington and Tehran escalated further after U.S. President Donald Trump again shared an image that depicts the strategically vital Strait of Hormuz as new U.S. territory. The latest post follows Trump's earlier sharing of the identical graphic on 18th of this month after he previously floated the prospect of claiming jurisdiction over the waterway. Iran had reiterated that the crucial maritime corridor will remain closed unless the United States alters its stance. Rejecting Washington's territorial assertions, Iran's Supreme National Security Council Secretary Mohsen Rezaei launched a sharp critic against the U.S. President's statements. He said the gap between America's inability to reopen the Strait of Hormuz and its claim to own it is greater than the 7,000-mile distance between Washington and the Strait itself. The rhetoric comes as the United States prepares to roll out additional economic measures targeting Tehran.
1: जी और ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रज़ाई ने पड़ोसी देशों को ईरान के खिलाफ अमेरिका के आर्थिक अभियान में शामिल न होने की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि इस तरह की भागीदारी से ईरान उन्हें दुश्मन मान लेगा. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग को दिए गए एक साक्षात्कार में रज़ाई ने कहा कि ईरान तनाव बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पड़ोसी देश अमेरिका के आर्थिक दबाव का समर्थन करते हैं तो ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा. उन्होंने ये भी कहा कि अगर क्षेत्रीय देश अमेरिका के अभियान में शामिल होते हैं तो ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल निर्यात रोक सकता है.
0: एंड लेट्स आस्क जितेंद्र जी फ्रॉम जयपुर व्हाट हिज क्वेश्चन इज.
2: हाँ, समय कम है तो शॉर्ट भी पूछ लेता हूँ. जैसे मल्टी कैप फंड है, दो फंड हाउस के बीच में उनको कंपेयर करना रहा तो उसको स्टडी करने के लिए क्या क्या पैरामीटर रखते थे.
3: जितेंद्र जी, किसी भी कभी भी जब आप एक कैटेगरी में दो फंड्स का चुनाव कर रहे होते हैं तो सबसे पहली चीज़ देखनी चाहिए कि वो फंड अपने बेंचमार्क्स को कितने अच्छे से बीट कर पा रहा है हर मार्केट साइकिल में, जो कि रोलिंग रिटर्न से हम पता कर सकते हैं, जो आजकल हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहता है. ये आपको बताता है कि मार्केट के उतार चढ़ाव में उस फंड ने कैसा प्रदर्शन करा है. बाकी मल्टी कैप में इम्पॉर्टेंट रहता है कि आप देखें कि वो जो बचा हुआ 25% रहता है जहाँ पे एक फंड मैनेजर अपना डिसीजन ले सकता है, तो वो क्या डिसीजन लेता आया है और आप कितना उस डिसीजन से ओके हैं. अगर आप लार्ज कैप टिल्टेड पोर्टफोलियो चाहते हैं तो आप ऐसे फंड मैनेजर को देखिए. जनरली ये डायनामिक रहते हैं, बट एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो आप देखें अगर तो आपको ये चुनाव करने में मदद कर सकता है. दूसरा एक रहेगा कि आप ये देखें कि वो एक्सपेंस रेशियो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो. ये कुछ चीज़ों को देखकर आप चुनाव कर सकते हैं.
0: All right, now let's take a peep into how the markets are expected to show up next week after a stronger than expected earnings season. Domestic investors are heading into a week packed with key market triggers including macroeconomic data, global events, US bond yield trends, foreign institutional investor flows, commodity prices and currency movements. Market participants will closely monitor the industrial production data and the latest forex reserve figures. Meanwhile, the primary market is set for another busy week with 5 new main board IPOs opening for subscription and 7 main board IPOs scheduled to make their stock market debut.
1: और आज वक्त इतना ही है. कुछ श्रोताओं से हम क्षमा चाहेंगे जिनके कॉल्स हम आज शामिल नहीं कर पाए. स्नेहा, कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
3: जी, धन्यवाद.
0: Listeners, before we wrap up today's show, a reminder of the headlines. Foreign portfolio investors infuse over 23,000 crore rupees into Indian equities in August so far. In bullion market, gold and silver prices rise for third straight week and situation in West Asia remains tense. And with that, we end today's Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना

0: विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में संपन्न हुई। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बैठक 2026 के अंतर्गत सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने खेल विकास, युवा भागीदारी तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने व्यावहारिक और सतत सहयोग के साथ ब्रिक्स खेल भागीदारी का निर्माण करने का आह्वान किया। उन्होंने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धा और खेल विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी साझा करने का प्रस्ताव किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
2: हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरईसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वह महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्टस एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को एआई और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने स्पष्ट किया है कि वायरस H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मौजूदा समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, यह वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। ICMR के अनुसार H1N1 समेत मौसम में इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पडिक्कल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ विज्ञान पत्रकार पल्लव बागला। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा।
1: राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हमें भारत की अंतरिक्ष यात्रा की उपलब्धियों के साथ साथ भविष्य की नई संभावनाओं पर विचार करने का भी अवसर देता है। आज भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र तेजी से बदल रहा है और सरकारी संस्थानों के साथ साथ निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स भी इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर भारत के स्पेस इकोसिस्टम की निरंतर यात्रा पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं पल्लव बागला जी, जो लंबे समय से विज्ञान संचार के क्षेत्र में सक्रिय हैं। पल्लव जी, सुर्खियों में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार जी।
1: पल्लव जी, अंतरिक्ष कभी केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा और राष्ट्रीय गौरव का विषय हुआ करता था, आज ये किसी देश की अर्थव्यवस्था, तकनीकी क्षमता, वैश्विक प्रभाव, इन सब चीजों को भी तय करने लगा है। इस पूरे बदलते परिदृश्य में भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो सफर तय किया है, उसे आप किस तरह से देखते हैं, खासकर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के संदर्भ में?
2: देखिए, भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाया जाता है क्योंकि 3 साल पहले भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब पहली बारी विक्रम लैंडर को लैंड किया था और प्रज्ञान रोवर को चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास चलाया था। उसी को एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। भारत पहला देश बना था जिसने ऐसा काम किया दक्षिणी ध्रुव पे, तो उसी उपलब्धता को मनाने के लिए अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। आज 3रा अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है और अगर आप देखें, इस वक्त कोई ऐसा पहलू नहीं है हमारी जिंदगी का जिसमें कि हमें अंतरिक्ष कहीं ना कहीं से छूता नहीं हो। आप एटीएम से पैसे निकाल ले जाएं तब आप अंतरिक्ष क्षेत्र से सैटेलाइट से टच में आते हैं। आप मौसम की जानकारी दें तब कहीं ना कहीं अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ते हैं आप। आप मछुआरे हैं, भारत के फार्मर्स हैं, किसान हैं, हर कोई किसी ना किसी तरह से अंतरिक्ष से कहीं ना कहीं जुड़ता है। आप मैप लेके गाड़ी से जाएं या रास्ता देखें, गूगल मैप देखें, वो भी अंतरिक्ष में जुड़ता है। तो हमारी जिंदगी में अंतरिक्ष पूरी तरह से हर जगह पे है और भारत की जो अपनी क्षमता है अंतरिक्ष के क्षेत्र में वो एंड टू एंड है। हम अपने रॉकेट बनाते हैं, हम अपने सैटेलाइट बनाते हैं और उसके ऊपर जो हमारा एप्लीकेशन का काम है वो दुनिया में अद्वितीय है। सबसे अच्छे एप्लीकेशन भारत के ही बनाते हैं और आजकल जो बदल रहा है माहौल उसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत बड़ा हो गया है। हाल में हमने देखा स्काई रूट एरोस्पेस के 28 साल के एवरेज एज वाले बच्चों ने अंतरिक्ष में पहले ही अटेम्प्ट में अपना विक्रम 1 रॉकेट भेजा। तो स्टार्टअप का क्षेत्र है वो भी आगे बढ़ रहा है, सरकार की तरफ से भी बहुत इसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हाल में ही प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र के 20 स्टार्टअप्स के सीईओ से मुलाकात की, उनको प्रोत्साहन दिया। तो इतना कुछ हो रहा है कि हम और आप इस पे 2 घंटे भी बिताने तब पूरा नहीं होगा।
1: आपने अभी काफी विस्तार से बताया कि क्या हो रहा है और देश ने अब तक क्या क्या हासिल कर लिया है इस क्षेत्र में और ये यात्रा किस दिशा में जा रही है। आप इनमें से किन उपलब्धियों और किन प्राथमिकताओं को रेखांकित करना चाहेंगे भविष्य के मद्देनजर?
2: देखिए, भविष्य के मद्देनजर भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जिसका नाम है गगनयान। वो ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कि भारत अपनी ही धरती से अपने ही रॉकेट पे एक भारतीय को अंतरिक्ष में श्रीहरिकोटा से भेजना चाहता है और वापस लाना चाहता है। ये गगनयान प्रोग्राम जो है एक लंबा प्रोग्राम है, कई सालों से इसरो इस पे काम करता रहा है और आज ही इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन ने जो नेशनल स्पेस डे पे अहमदाबाद में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि अगले 4 महीने के अंदर पहला गगनयान का अनक्रूड मिशन, अनक्रूड मिशन का मतलब हुआ मानव रहित। पहले 3 मिशन होने हैं मानव रहित, उसमें से जो पहला मिशन है वो उसको अंजाम देंगे। तो गगनयान का बहुत बड़ा महत्व है। भारत ऐसा 4था देश बनेगा जिसके पास अपनी ताकत से अंतरिक्ष में एक अंतरिक्ष यात्री को भेजने की क्षमता बनेगी और 2000 35 तक भारत की मंशा है कि वो एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाए और 2040 तक अपनी क्षमता से एक भारतीय को चांद की सतह पे भेजें और उसको वापस लेके आए। तो भविष्य तो बहुत क्लियर है, लेकिन इसके साथ साथ ये तो हुई ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की बात। फिर हमारे पास अपने सैटेलाइट होंगे जो कम्युनिकेशन के लिए हैं, हमारे सैटेलाइट हैं जो सर्वेलेंस के लिए हैं, उस सब में भी भारत बहुत लंबी छलांग लगाने के लिए

0: तैयार है और इसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बहुत बढ़ रही है।
1: ने प्राइवेट सेक्टर का उल्लेख किया है। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स की जो बढ़ती भागीदारी है, इसे हम कितना बड़ा बदलाव मान सकते हैं? हाल के वर्षों में निजी क्षेत्र में लॉन्च और सैटेलाइट तकनीक से आगे बढ़कर कई नई क्षमताएं भी विकसित की हैं।
0: जी देखिए, भारत का जो अंतरिक्ष का प्रोग्राम है ज्यादातर अभी तक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के माध्यम से होता रहा था। इसरो के पास भी इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन ने बताया है कि 80% से ज्यादा पैसा प्राइवेट इंडस्ट्री के पास जाता था जो अपनी तरफ से अलग अलग पार्ट्स बना के इसरो को देते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत बड़ा रहा है। 400 से अधिक इंडस्ट्रीज हैं जो इसरो के साथ जुड़ी रही हैं। लेकिन अब वो समय आ गया है जब प्राइवेट सेक्टर अपने ही सैटेलाइट बना के अंतरिक्ष में भेज रहा है, अपने ही रॉकेट बना के अंतरिक्ष में भेज रहा है। हमने देखा, अभी स्काई रूट की बात करते हैं, पहले देखते हैं अंतरिक्ष में सैटेलाइट के क्षेत्र में। पिक्सेल कंपनी है बैंगलोर की, वो अपने सैटेलाइट बना के भेज चुकी है, एक दर्जन से ज्यादा सैटेलाइट उनके अंतरिक्ष में हैं। उसी तरह से रॉकेट के क्षेत्र में हमने देखा, हाल में स्काई रूट एरोस्पेस, उन्होंने अपना विक्रम 1 रॉकेट पहले ही अटेम्प्ट में सफल प्रक्षेपित किया श्रीहरिकोटा से, और उससे उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की। आने वाले टाइम में अग्निकुल कॉस्मॉस करके एक चेन्नई की कंपनी है, वो भी रॉकेट भेजने की तैयारी में है, और इसी तरह से सैटेलाइट और भी कंपनियां बना रही हैं। पीछे गैलेक्साई ने अपना सैटेलाइट बना के छोड़ा था। गैलेक्साई स्पेस एक प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका सैटेलाइट काम नहीं किया। अंतरिक्ष में हर चीज पहली बारी में काम नहीं करती है और फेलियर हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है। और पीछे इसरो के भी फेलियर हुए हैं जो कि वो अभी सुधार के लॉन्च की साइट पे वापस आने की तैयारी में है। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में सफलता आती है लेकिन बहुत मेहनत के बाद आती है।
1: अगर हम इस पर देखें कि हमारी सरकार क्या कर रही है, तो सरकार और निजी क्षेत्र के बीच जो एक बढ़ता हुआ भरोसा दिख रहा है अभी, वो कितना महत्वपूर्ण है? और क्या जो हम एक नीतिगत निरंतरता देख रहे हैं, खास करके जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लोग जोखिम ले सकें, इसके लिए एक माहौल जो तैयार हो रहा है, क्या वो हमारे स्पेस इकोसिस्टम को एक नई गति दे सकता है?
0: देखिए, प्राइवेट स्टार्टअप जो है वो अपना पैसा जुगाड़ के अपनी रिस्क पे चीजें करने को तैयार हैं और उनकी कैपेसिटी यूज न्यू टेक्नोलॉजी और उस नई तकनीक से नई चीजें बनाने में उनकी क्षमता काफी है। लेकिन अभी सारे स्टार्टअप जो हैं वो बहुत छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, तो उनमें अभी वो ताकत नहीं है जो कि आप देखें, अगर अमेरिका में बोइंग है या लॉकहीड मार्टिन है या इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अभी हमारी कंपनियां छोटी हैं और वो छोटे सैटेलाइट पे कर रही हैं, और लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो सब आगे बढ़ के रॉकेट के क्षेत्र में कभी ना कभी वो अमेरिका की बड़ी कंपनी जो है स्पेसएक्स को स्काई रूट एरोस्पेस जरूर टक्कर दे सकेगा। तो देखिए, आने वाले टाइम में बहुत आयाम हैं जो कि खुलेंगे, और अभी सारे प्राइवेट सेक्टर के जो स्टार्टअप हैं वो एंकर कस्टमर सरकार को ही ढूंढ रहे हैं। वो चाहते ये हैं कि बनाए हम, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन और उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट है वो सरकार दे। तो ये थोड़े दिन चलेगा, लेकिन आने वाले टाइम में इनको अपनी ताकत से बहुत चीजें करनी पड़ेंगी। जहां तक पॉलिसी का सवाल है, हाँ, जब से स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म किए गए और प्राइवेट सेक्टर को परमिशन दी गई और उनको इजाजत दी गई कि वो इसरो की फैसिलिटीज में अपने टेस्ट कर सकें, इसरो की फैसिलिटी से लॉन्च कर सकें, जैसे स्काई रूट एरोस्पेस ने किया श्रीहरिकोटा में हमारे अपने सरकारी लॉन्च पैड को यूज करके, तो वो एक अच्छी बात है। आने वाले टाइम में हम बहुत देखेंगे कि इस तरह से दोनों की शायद साझेदारी हो, तो इस तरह से मिलजुल के जो भारत का अपना एक इकोसिस्टम है स्पेस का, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हो रहा है। इसरो अपनी जगह कायम रहेगा, एक्सप्लोरेशन का काम, R&D का काम इसरो करेगा, और जो रिपीट सैटेलाइट्स और रिपीट रॉकेट हैं वो प्राइवेट सेक्टर के पास जाएंगे।
1: पल्लव जी, आज भारतीय कंपनियां लॉन्च सेवाओं से आगे बढ़कर अंतरिक्ष के कचरे को हटाने, डॉकिंग और इन स्पेस रिफ्यूलिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर भी काम कर रही है। इन क्षेत्रों में भारत के लिए भविष्य में क्या संभावनाएं हैं?
0: देखिए अभी जो कदम लिए गए हैं आपने

जो तीनों क्षेत्र बोले वो बहुत ही छोटे कदम हैं, लेकिन हर शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है। अंतरिक्ष से कचरा हटाने का काम जो है वो इस बारी स्काई रूट एरोस्पेस के रॉकेट में उसके लिए पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था। वो एक्सपेरिमेंट अनफॉर्चुनेटली सक्सीड नहीं किया, लेकिन हाँ, हमारे यहाँ एप्लीकेशन के क्षेत्र में कई स्टार्टअप हैं जो कि खासकर फार्मर इंश्योरेंस के क्षेत्र में

0: से कर रहे हैं, और बहुत सारे बैंक जो हैं आज अंतरिक्ष के क्षेत्र को यूज करके फार्मर को लोन देने में, फार्मर की रिस्क असेसमेंट में अंतरिक्ष के क्षेत्र को डिप्लॉय कर रहे हैं। तो ये जो अभी कचरे वाली बात है या और इस तरह के एक्सपेरिमेंट हैं, वो तो अभी बहुत छोटे स्केल पे हैं।
1: अंत में नेशनल स्पेस डे 2026 से आगे देखते हुए भारत को अपनी अंतरिक्ष क्षमता को अगले स्तर तक ले जाने के लिए किन क्षेत्रों पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए?
0: देखिए, सबसे बड़ा क्षेत्र जो इस वक्त प्राइवेट सेक्टर की तरफ से डिमांड है कि भारत को अपना एक अंतरिक्ष का लॉ बनाने की जरूरत है। अभी हमारे पास अपनी कंट्री में स्पेस लॉ नहीं है, हम गवर्नेंस के क्षेत्र में थोड़ी अभी हमारी कमी है। तो रूल्स रेगुलेशंस लॉ, लायबिलिटी क्या होगी जब प्राइवेट सेक्टर काम करेगा, एक तरफ तो वो चाहिए हमको। उसकी दूसरी तरफ आती है जो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी में हमारा गगनयान का प्रोग्राम जो है, जिसमें एक लॉन्च व्हीकल Mach 3 को ह्यूमन रेटिंग करके उससे अंतरिक्ष में एक क्रू मॉड्यूल से भेजा जाएगा, वो काम आगे बढ़ रहा है। पिछले साल में हमने देखा था कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष गए थे, लेकिन वो गए थे Falcon 9 अमेरिकन रॉकेट से और SpaceX की क्रू ड्रैगन से, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए थे। तो अब गगनयान में भारत अपने रॉकेट से ही भेजना चाहता है, अपनी ही धरती से अपनी ताकत पे भेजना चाहता है। उसके साथ साथ जो हमारा अपना कार्यक्रम है कि एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हो 2035 तक, उसका काम भी आगे बढ़ रहा है। और आने वाले टाइम पे अगर हमने एक मनुष्य को चांद पे भेजना है और वापस आना है, उसके लिए एक नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV की तैयारी चल रही है, जो कि जो हमारा बाहुबली रॉकेट है लॉन्च व्हीकल Mach 3, उससे भी ज्यादा ताकतवर होगा। तो कई क्षेत्र में काम चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। उन्होंने तो अंतरिक्ष में इसमें एक नया ही पूरी ऊर्जा फेंकी है, जिससे कि बहुत ज्यादा प्राइवेट सेक्टर भी एनर्जाइज्ड है, इसरो भी एनर्जाइज्ड है, और भारत को इससे बहुत फायदा भी हो रहा है। तो मुझे तो दिखता है कि आने वाले टाइम में भारत एक स्पेस पावर के रूप में जरूर उभर के आएगा। और जैसे इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन ने आज अहमदाबाद में कहा कि हमारी शुरुआत हुई थी रॉकेट के पुर्जों को साइकिल पे ले जाते हुए, और आने वाले टाइम में 2040 तक हम वी विल बी सेकेंड टू नन, माने कोई सबके बराबर आ जाएंगे।
1: पल्लव जी, आपने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उपलब्धियों, बदलते इकोसिस्टम और भविष्य की संभावनाओं पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। सुर्खियों में अपना बहुमूल्य समय देने और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ विज्ञान पत्रकार पल्लव बागला। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 7:25 और ये हुए 45 सेकंड और एफएम गोल्ड पर ये समय है कार्यक्रम सांझ ढले का। आज की शाम सांझ ढले में मैं हूँ आपके साथ रेशमा और आपको सुनवाऊंगी कुछ मीठे मीठे से गीत। ये पहला गीत

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: GFM गोल्ड है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:32 और 30 सेकंड हो गए हैं और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप सांझ ढले। सांझ ढले में ये अगला गीत सुनवा रही हूँ मैं आपको फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से। आवाज़ें हैं मुकेश और लता मंगेशकर की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और बोल लिखे हैं वर्मा मलिक ने।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: आकाशवाणी FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सांच ढले। 7:39 हो गए हैं और सांच ढले में बस अब समय रह गया है एक और आखिरी गीत सुनवाने का आपको, क्योंकि 7:45 पर FM गोल्ड पर समय हो जाता है प्रादेशिक समाचार का। तो ये आखिरी गीत मैं आपको सुनवा रही हूँ फिल्म कश्मीर की कली से। आवाजें हैं इसमें आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की, संगीत ओपी नैयर का और बोल लिखे हैं SH बिहारी ने। और इसी गीत के साथ आज का सांझ ढले कार्यक्रम यहीं तक। आप सुनते रहिए FM गोल्ड।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे
1: जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
0: तो लेन देन
1: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
0: ओ,
1: जैसे UPI से।
0: अच्छा,
1: हाँ। और सुनो, एक और नियम है।
0: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
0: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की, ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सके। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की

0: शुभकामनाएं दी। दिल्ली सरकार ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 2025 को राजधानी में लागू करेगी। दिल्ली पुलिस द्वारा की गई विशेष कार्रवाई में 161 दोपहिया वाहन और 10 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ और अवैध शराब बरामद। दिल्ली पुलिस ने देश में अवैध रूप से रह रहे 18 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में संपन्न हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स से ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों CEOs के साथ संवाद किया। श्री मोदी ने उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। श्री चांदना ने बताया कि उनकी कंपनी ने 3 कारखाने स्थापित किए हैं। इस वर्ष 18 जुलाई को श्री चांदना की कंपनी ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की दूरदृष्टि, साहस और प्रतिभा को सलाम किया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस चंद्रयान 3 की 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर ऐतिहासिक लैंडिंग की याद में मनाया जाता है जिसने भारत को विश्व के अग्रणी अंतरिक्ष यात्री देशों में शामिल कर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली विद्यार्थियों के में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा और वैज्ञानिक जिज्ञासा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के CEOs के साथ संवाद को मुख्यमंत्री ने देश के युवा इनोवेटर्स के लिए एक प्रेरक आह्वान बताया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधोड़ी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र के बदरपुर और देवली विधानसभा क्षेत्रों में 30 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों से इन क्षेत्रों में लोगों को बुनियादी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, विशेषकर सड़कों और नालों का पुनर्निर्माण किया जाएगा जिससे आवागमन और जल निकासी की समस्याएं दूर होंगी। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज रोहिणी सेक्टर 9 में स्थित आत्मवल्लभ हाउसिंग सोसाइटी में एरोबिन और प्लास्टिक वेस्ट ड्रॉप बॉक्स का लोकार्पण किया। एरोबिन की सहायता से एक बार में एक बिन में 10 किलो गीले कूड़े को बायोकल्चर की सहायता से कंपोस्ट खाद में बदला जा सकता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान नुक्कड़ नाटक की सहायता से नागरिकों को स्वच्छता के महत्व पर जागरूक भी किया गया।
2: इस अवसर पर महापौर ने कहा कि इस तकनीक के माध्यम से स्रोत पर ही कचरे का पृथक्करण निस्तारण करने में सहायता मिलेगी। श्री वाही ने कहा, इस प्रकार की छोटी छोटी पहलों को अपनाकर हम कूड़े को लैंडफिल साइट पर जाने से रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों के दौरान दिल्ली नगर निगम के स्वच्छता बेड़े में अनेक आधुनिक मशीनों को भी शामिल

0: किया गया है। इससे पूरे शहर में स्वच्छता के स्तर को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने दिल्ली वासियों से भी अपील की कि वे अपने अपने क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने में दिल्ली नगर निगम का सहयोग करें तथा राजधानी को स्वच्छ और हरित बनाने के इस अभियान में सक्रिय भागीदार बने। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: दिल्ली सरकार ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 2025 को राजधानी में लागू करेगी। इसके लिए सरकार ने राजधानी की जेलों में बंद विचाराधीन गैंगस्टरों, संगठित अपराधियों और अधिक जोखिम वाले कैदियों को जरूरत पड़ने पर दूसरे राज्यों की जेलों में स्थानांतरित करने की योजना तैयार कर ली है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव के अंतर्गत संबंधित राज्यों की आपसी सहमति और गृह मंत्रालय की स्वीकृति से विचाराधीन गैंगस्टरों, संगठित अपराधियों तथा अन्य अधिक जोखिम वाले कैदियों को एक राज्य से दूसरे राज्य की जेल में स्थानांतरित किया जा सकेगा। इससे आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने और जेलों के बेहतर प्रबंधन में भी मदद मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार राजधानी की जेलों में दोषियों के साथ बड़ी संख्या में कठोर और कुख्यात अपराधी विचाराधीन कैदी के रूप में बंद हैं। साथ ही वर्तमान व्यवस्था में ऐसे विचाराधीन गैंगस्टरों और कुख्यात अपराधियों को राजधानी की जेलों से दूसरे राज्यों में स्थानांतरित करना संभव नहीं है। इसे संशोधित व्यवस्था को दिल्ली में लागू करने का प्रस्ताव है, जिससे गंभीर और अधिक जोखिम वाले विचाराधीन कैदियों को परिस्थितियों के अनुरूप दूसरे राज्यों की जेलों में स्थानांतरित किया जा सकेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य जेल सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए ऐसे कैदियों के अंतर्राज्यीय स्थानांतरण को संभव बनाना और संगठित अपराध से निपटने में राज्यों के बीच सहयोग को मजबूत करना है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: दिल्ली पुलिस ने रोहिणी जिला में 18 से 22 अगस्त तक एक विशेष कार्रवाई की है। संवाददाताओं से बातचीत में दिल्ली पुलिस उपायुक्त शशांक जायसवाल ने कहा कि इस कार्रवाई में 161 दोपहिया वाहन, 10 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ और अवैध शराब बरामद की गई है।
3: जब हमने रॉबर स्नैचर को पकड़ा तो उनके पास से अवैध हथियार भी मिले। हमने जो है आर्म्स एक्ट में मुकदमे दिए हैं। साथ में जब हम एनडीपीएस की बात करें तो हमने कुछ लोगों को पकड़ा है जिनके पास से हमें बहुत अच्छी क्वालिटी की हीरोइन जो वो लोग सेल करते थे उसको हमने बरामद किया है और एनडीपीएस के केस रजिस्टर करे हैं। करीब 10 करोड़ करीब की जो है हीरोइन बरामद की है और वो मेनस जो बने हुए थे उन लोगों को हमने गिरफ्तार करके कानून के दायरे में लेके आए हैं। साथ में इसके चोरी के मोबाइल्स भी हमने रिकवर किए हैं, तो इलिसिट लिकर भी हमने रिकवर की है, गैम्बलिंग डेन को भी बस्ट किया है और जो एक कॉल सेंटर था उसको भी बस किया, 6 लोग अरेस्ट किए हैं।
1: दिल्ली पुलिस की बाहरी जिला टीम ने देश में अवैध रूप से अवधि से अधिक समय तक रह रहे 18 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनमें 9 थाई, 3 बांग्लादेशी, 4 नाइजीरिया, 1 युगांडा और 1 गिनी नागरिक शामिल हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि दस्तावेजों की जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट और वीजा की वैधता समाप्त हो चुकी थी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि पकड़े गए विदेशी नागरिकों के विरुद्ध विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय द्वारा नियमानुसार निर्वासन की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। एक अन्य कार्रवाई में दिल्ली पुलिस के द्वारका जिले की टीम ने वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी रुके हुए 2 नाइजीरियाई नागरिकों को पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि जांच पड़ताल के दौरान इन विदेशी नागरिकों के पास कोई वैध और कानूनी दस्तावेज नहीं मिले। पुलिस ने कहा कि आगे की कानूनी कार्रवाई और निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या सभा के लिए किसी व्यक्ति या संगठन को अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस ने बताया कि आरक्षण सुधारों के मुद्दे पर लोगों को जुटने के लिए उकसाने वाले भ्रामक वीडियो और पोस्ट प्रसारित किए जा रहे हैं। नई दिल्ली में पहले से निषेधाज्ञा लागू है, जिसके अंतर्गत विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक लोगों की सभाओं पर सख्त प्रतिबंध है। पुलिस ने नागरिकों से ऐसे भ्रामक पोस्ट और वीडियो के आधार पर एकत्रित न होने तथा अपुष्ट सामग्री साझा न करने की अपील की है। साथ ही फर्जी या भ्रामक जानकारी प्रसारित करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और देश की समृद्ध विरासत को विश्व के सामने पेश करने में कला और संस्कृति के महत्व पर बल दिया। नई दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आयोजित कला तरंगिणी दिल्ली कला महोत्सव को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि देश भर के कलाकार महापुरुष श्रीमंत शंकर देव के पारिजात हरण अंकिया नाट को प्रस्तुत करने के लिए पूरे समर्पण भाव से एकजुट हुए हैं।
4: महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने भारत में एक संस्कार लाने के लिए जो भी उन्होंने कदम उठाई है कला संस्कृति की द्वारा, नृत्य गीत की द्वारा, इसकी वजह से आज हम 21वीं शादी में दुनिया में अपना मर्यादा पूर्वक परिचय बनाने में हम सफल हुई है।
1: रक्षाबंधन को लेकर बवाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पुटखुर्द गांव में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें शाहबाद डेयरी क्षेत्र की महिलाओं ने दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री तथा बवाना विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविन्द्र इंद्राज सिंह को राखी बांधी और उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर श्री इंद्राज ने कहा कि बहनों का प्रेम और विश्वास इस पावन अवसर को विशेष बनाता है और जनसेवा के प्रति हमारे संकल्प को और मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति में भाई बहन के बीच प्रेम, विश्वास और आत्मीय संबंधों की मजबूती का प्रतीक है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने एक पौधारोपण कार्यक्रम का नेतृत्व किया। यह कार्यक्रम एक पेड़ माँ के नाम ऑन संडे अभियान के लगातार 38वें रविवार के अवसर पर आयोजित किया गया। अलीगंज में आयोजित कार्यक्रम में आज युवाओं, स्थानीय निवासियों, महिलाओं, बच्चों, RWA प्रतिनिधियों तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अधिकारियों और कर्मचारियों ने पौधारोपण अभियान में भाग लिया। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में समापन हो गया। 17 अगस्त से शुरू हुई प्रतियोगिता में पुरुष सिंगल्स का खिताब फ्रांस के एलेक्स लेनियर और महिला सिंगल्स का खिताब दक्षिण कोरिया की अन से यंग ने अपने नाम किया। वहीं पुरुष डबल्स का खिताब चीन के लियांग वे किंग और वांग चंग तथा महिला डबल्स दक्षिण कोरिया की बेक हा ना और ली साही की जोड़ी ने जीता। फ्रांस के थॉम गिस्कल और डेल्फिन डेलरो ने मिक्स्ड डबल्स में स्वर्ण पदक जीता। भारत के लिए प्रतियोगिता में सबसे सफल प्रदर्शन त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का रहा, जिन्होंने 2011 के बाद विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स में भारत को कांस्य पदक दिलाया। राजधानी में आज सुबह तेज बारिश हुई और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप्स से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सके। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। दिल्ली सरकार ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 2025 को राजधानी में लागू करेगी। दिल्ली पुलिस द्वारा की गई विशेष कार्रवाई में 161 दोपहिया वाहन और 10 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ और अवैध शराब बरामद। दिल्ली पुलिस ने देश में अवैध रूप से रह रहे 18 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में संपन्न हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन। 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल। वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
6: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
7: हर लेन देन अब है आसान।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव

0: नहीं, भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में संपन्न हुई। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें ब्रिक्स देशों के बीच संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से खेलों में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बैठक के अंतर्गत सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने खेल विकास, युवा भागीदारी तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने के तौर तरीके पर विचार विमर्श किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने व्यवहारिक और सतत सहयोग से ब्रिक्स खेल भागीदारी करने का आह्वान किया। उन्होंने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धा और खेल विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी साझा करने का प्रस्ताव किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध पोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। श्री सिंह ने कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रूपये की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में कहा कि इस समय आत्मनिर्भरता आवश्यक है।
2: हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरईसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्ट्स एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को एआई और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मौजूदा समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। ICMR के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न आदि शामिल है। ईस्ट बंगाल FC ने 135वां डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। ईस्ट बंगाल ने कोलकाता के युवा भारती क्रीड़ांगन में खेले गए फाइनल मुकाबले में मोहन बागान सुपर जायंट को 4-1 से हरा दिया। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत के लिए ये मैच जीतना जरूरी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi today said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged them to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. He noted that an enabling environment must be created in the country where people from across the world see India as the preferred destination to build their careers and future in the space sector. During the interaction, Chief Executive Officer of India's first space tech unicorn, Skyroot Aerospace, Pavan Kumar Chandana, thanked Mr. Modi for opening up the space sector. Meanwhile, National Space Day is being observed today. Vice President C.P.

0: This is Delhi. Please stand by for our next program. This is Akashvani. We now bring you program Swar Dharohar based on the archival inputs of Akashvani.
1: Ye Akashvani hai. Prastut hai Akashvani Archives ke sahyog se nirmit karyakram Swar Dharohar.
2: नमस्कार श्रोताओं, स्वर धरोहर कार्यक्रम में मैं राहुल
1: और मैं श्वेता आपका स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, अच्छे शब्द अच्छे समाज का निर्माण करते हैं।
2: और आज हम आपको ऐसे ही एक लेखक के जीवन के बारे में बताने वाले हैं, जिनके शब्द सिर्फ कहानियां नहीं अपितु समाज का आईना थे।
1: बिल्कुल, हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के एक चमकते सितारे भगवती चरण वर्मा की।
2: हाँ श्वेता, वही लेखक जिन्होंने चित्रलेखा जैसी अनोखी रचना दी और जिनके शब्द आज भी ताजगी भरे हैं।

0: भगवती चरण वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शफीपुर गांव में हुआ था। परिवार साधारण था, लेकिन शिक्षा को बहुत महत्व देता था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। पढ़ाई के दिनों में ही वो कविताएं और कहानियां लिखने लगे थे। कानून की पढ़ाई ने उन्हें समाज को गहराई से समझने की क्षमता दी, जो बाद में उनके लेखन में काफी दिखी।
1: कॉलेज से निकलते ही उन्होंने पूरी तरह से साहित्य को अपना लिया। शुरुआती दिनों में उनके लेख और कहानियां पत्र पत्रिकाओं में छपने लगे। फिर उन्होंने रचना की चित्रलेखा उपन्यास की, जिससे हिंदी साहित्य को मिली एक ऐसी रचना जिसने सबका सोचने का नजरिया ही बदल दिया।
2: जब मैं चित्रलेखा के संबंध में सोचता हूँ तो मैंने चित्रलेखा 1930 में लिखनी आरंभ की, जिस समय मेरी उम्र 27 साल की थी। 27 साल की उम्र में मनुष्य कितना बौद्धिक होता और कितना समस्याओं को हल कर सकने वाला होता है, ये कहना तो बड़ा कठिन है।
0: 1934 में प्रकाशित चित्रलेखा ने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। इस उपन्यास में उन्होंने प्रेम, वासना, पाप, पुण्य और नैतिकता जैसे विषयों पर प्रकाश डाला और ये भी दिखाया कि कैसे पारिवारिक सामाजिक मूल्य इन अवधारणाओं को सीमित करते हैं। इस उपन्यास में उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि क्या वास्तव में कुछ कार्य पाप है या फिर ये सिर्फ मनुष्य की सोच का परिणाम है।
1: चित्रलेखा उपन्यास को इतनी लोकप्रियता मिली कि इस पर दो फिल्में बनी हैं, दोनों ही 1941 और 1964 में चित्रलेखा नाम से रिलीज हुई। 1941 की फिल्म का निर्देशन केदार शर्मा ने किया था और इसमें मेहताब ने चित्रलेखा की भूमिका निभाई थी। 1964 की फिल्म, जो कि 1941 की फिल्म की रीमेक थी, उस फिल्म में मीना कुमारी और प्रदीप कुमार ने अभिनय किया था। दोनों ही फिल्में पाप पुण्य, प्रेम, वासना और सांसारिक मोह माया जैसे विषयों पर आधारित थी।
3: ठहरिए देवता, एक बात मेरी भी सुनते जाइए। तपस्या को धर्म समझकर आप ईश्वर को खुश कर रहे हैं, यही आपकी साधना है?
2: यही।
3: तो मैं अपने धर्म का पालन करने के लिए अपनी कला से दुनिया को खुश करती हूँ। यदि आप ये कहें कि मैं झूठ कहती हूँ तो आप ज्ञानी नहीं। यदि आप मानते हैं कि मैं सच कहती हूँ तो मेरा दोष नहीं।
4: तेरा दोष नहीं नर्तकी, तेरा दुर्भाग्य।

भगवती चरण वर्मा केवल इस उपन्यास के ही लेखक नहीं थे, बल्कि उन्होंने टूटे हुए पंख, भूले बिसरे चित्र, तीन वर्ष, चाणक्य, सामर्थ्य और सीमा, टेढ़े मेढ़े रास्ते और वो फिर नहीं आई जैसी कई रचनाएं दी।

0: टेढ़े मेढ़े रास्ते को उन्होंने अपनी प्रथम शुद्ध बौद्धिक गद्य रचना माना है। इसमें मार्क्सवाद की आलोचना की गई है।
1: उनकी भाषा में सरलता थी पर विचारों में गहराई। वो कठिन से कठिन विषय को भी ऐसे कह जाते कि वो आम आदमी को भी समझ आ जाए। चलिए आपको सुनवाते हैं उनकी कविता की कुछ पंक्तियाँ।
2: देखो सोचो समझो सुनो बुनो और जानो इसको उसको समझो।

करते इस पद मुझको शक है, दर्शन मीमांसा यह फुर्सत की बकझक है, जमने की कोशिश में रोज तुम उखड़ते हो, थोड़ी सी घुटन

0: चित्र है इतना सच है, इससे जो कुछ ज्यादा वो सब तो लालच है।
1: भगवती जी को 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार केवल उनके लेखन की गुणवत्ता का नहीं बल्कि उनके विचारों की गहराई का सम्मान था। उन्होंने अपने शब्दों से समाज की कुरीतियों को चुनौती दी और इंसान को सोचने पर मजबूर किया कि क्या सही है और क्या गलत। साहित्यकारों को पुरस्कार मिलने के विषय पर वर्मा जी ने क्या कहा था, आइए सुनते हैं।
2: ये साहित्य ऐसी विधा है जिसके बल पर व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता। जब तक वो वहाँ तक विकसित न हो जाए तब तक उसे 25 काम करने पड़ते हैं। अध्यापक हुए, संपादक हुए, न जाने कितने काम करने पड़ते हैं। बहुत बाद में कहीं आता है कि हम अपनी रॉयल्टी पर जिंदा रह सके, उसके पहले उनका अस्तित्व कायम रहे, इसलिए इन पुरस्कारों की योजना है। और मुझे तो इन पुरस्कारों से कोई आपत्ति नहीं है, अगर आर्थिक सहायता मिलती है तो अच्छी है। मैंने एक जगह कहा है कि जहाँ जीवन है वहीं आजीविका है, आजीविका का प्रश्न सर्वप्रथम है। आजीविका के प्रश्न को हल करने में ये पुरस्कार जहाँ तक सहायक होते हैं मैं इनका स्वागत करता हूँ। लेकिन ये होता है कि इसमें दौड़धूप बड़ी करनी पड़ती है और जो स्वाभिमानी साहित्यकार हैं वो दौड़धूप कर नहीं पाते। ये जो लूटो मेरे भाई की परंपरा है, उस लूट के बाजार में वही लोग आ जाते हैं जिनमें कोई स्वाभिमान नहीं है।
3: भगवती चरण वर्मा जी ने 1936 के आसपास कोलकाता में फिल्म कॉरपोरेशन में भी कार्य किया, फिर कुछ दिनों विचार नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन और संपादन किया। इसके बाद बंबई में फिल्म कथा लेखन तथा दैनिक नवजीवन अखबार का संपादन किया और उन्होंने आकाशवाणी में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।
1: उन्होंने नाटकों, कहानियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को नए आयाम दिए। आकाशवाणी के मंच से उनकी आवाज और उनके शब्द देश के कोने कोने तक पहुँचे। रेडियो के जरिए उन्होंने साहित्य को आम जनता तक पहुंचाया। उन्होंने नए लेखकों और कलाकारों को अवसर दिए ताकि उनकी रचनाएं भी जनता तक पहुंच सके। उनके मार्गदर्शन में कई नए स्वर हिंदी साहित्य की दुनिया में गूंजे। पूरे देश में और हर प्रदेश में हिंदी की लोकप्रियता फैली और अनेक अन्य भाषी लेखकों ने हिंदी में साहित्य रचना करके इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
3: लेकिन कुछ नई पीढ़ी के लेखकों का कहना है कि पुरानी पीढ़ी के लोग नई पीढ़ी का मार्ग अवरुद्ध करते हैं। इस विषय पर भगवती जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी का मार्ग अवरुद्ध करती है, मैं ऐसा नहीं मानता। उसकी वजह यह है कि हम मनुष्य का विकास ही जो आने वाले हैं उनको अपना बल प्रदान करना, उसी से मानव समाज अभी तक जीवित है। अच्छा, अब पिता कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका पुत्र

0: बेकार हो या उसका पुत्र गलत मार्ग पर जाए। तो ये जो लोग कहते हैं, मैंने फिर कहा कि फैशन के तौर से न जाने कितनी बातें कही जाती, ये भी कह दीजिए, लेकिन वह नहीं। मेरे सामने जो भी नया लेखक आता है जिनमें कि यह है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, उनके प्रति मेरी हमेशा से एक अपनत्व मैंने उनके प्रति अनुभव किया।
1: 5 फरवरी 1981 को भगवती चरण वर्मा इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी किताबें, उनके विचार और उनकी आवाज आज भी जीवित है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।
2: भगवती चरण वर्मा जी एक लेखक, एक विचारक, एक संवेदनशील इंसान थे जिन्होंने अपने शब्दों से समाज का चेहरा दिखाया और आवाज से लोगों के दिलों को छुआ। उनका नाम हमेशा हिंदी साहित्य के स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा।
1: तो अब हमें यानी राहुल
2: और श्वेता को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: कार्यक्रम स्वर धरोहर की आज की कड़ी में वाचन स्वर था श्वेता और राहुल दक्ष का, आलेख था दीपा कुमारी का, प्रस्तुति सहयोग था डिंपल का और कार्यक्रम के निर्माता थे आशुतोष कुमार।
3: यू वर लिसनिंग टू द वीकली प्रोग्राम स्वर धरोहर बेस्ड ऑन द आर्काइवल इनपुट्स ऑफ आकाशवाणी। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
4: आप सुन रहे थे आकाशवाणी आर्काइव्स के सहयोग से निर्मित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वर धरोहर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं लेकर के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। आज कार्यक्रम में बात की जाएगी विशाखापट्टनम में हुई ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक की, जहां पर संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है आंध्र प्रदेश में। और कार्यक्रम में रुख किया जाएगा ईस्ट बंगाल एफसी का, जिसने 135वां ड्यूरेंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। और 22 वर्षों का इंतजार इस टीम ने आज मोहन बगान को 4-1 से हरा करके पूरा किया। कार्यक्रम में जिक्र किया जाएगा महिला हॉकी विश्व कप का, जहां आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। और सेमीफाइनल में अगर भारतीय महिला टीम को पहुंचना है तो उसकी नज़रें हर हाल में ये मुकाबला जीतकर प्रतियोगिता में आगे की राह तय करने पर होंगी। और क्रिकेट के मैदान की खबरों पर नज़र डाली जाएगी, जहां कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला शुरू हो गया और भारतीय बल्लेबाजों ने एक बार फिर अपनी शानदार बल्लेबाजी से मैच के पहले ही दिन से अपनी पकड़ मजबूत की है। और देवदत्त पडिक्कल के बल्ले से फिर निकला है एक शानदार शतक। और नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम

0: में आज संपन्न हो गई। तो खेल के मैदान की तमाम खबरों से पहले आज बात की जाएगी आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम की, जहां ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज संपन्न हो गई। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, जिसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। और अगर इसके मेन कंक्लूजन की बात की जाए तो इन दिस मीटिंग हेल्ड अंडर द ब्रिक्स चेयरशिप 2026 ऑफ इंडिया हैज गिवन अ फ्रेश पुश टू कोऑपरेशन अमंग ब्रिक्स कंट्रीज इन स्पोर्ट्स विद अ फोकस ऑन यूथ डेवलपमेंट, इंक्लूजन, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल एक्सचेंज।
1: The key outcome of the meeting has been the proposal to establish a BRICS working group on sport technology to promote cooperation in sports science, artificial intelligence, digital transformation and athlete performance. India's proposal for a BRICS sports manufacturing conclave has also received broad support. The inaugural conclave is proposed to be held in Udaipur in November this year, providing a platform for manufacturers, investors, technology companies and research institutions to share expertise and promote innovation. Another major initiative is the BRICS traditional and indigenous sports demonstration game proposed to be held in Ahmedabad in October. The event will showcase the rich sporting heritage of BRICS countries and strengthen culture and people-to-people ties. Union Sports Minister Dr. Mansukh Mandaviya called for a BRICS sporting partnership that moves beyond declarations and leads to practical cooperation through athlete and coach exchanges, joint competitions and knowledge sharing. The successful BRICS Sports Ministers meeting has laid the foundation for sustained sporting collaboration among BRICS nations. Allu Murli, Akashvani News, Vishakhapatnam.
0: तो हमारे संवाददाता ने बताया कि आखिर क्या कंक्लूजन निकला इस बैठक का। और इस बैठक से पहले केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स फ्रेंडशिप साइकिलिंग इवेंट का नेतृत्व किया। ये फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 87वां संस्करण था। ब्रिक्स युवा और खेल मंत्रियों की बैठक के दौरान इस इवेंट का आयोजन किया गया। इस सप्ताह के फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का विषय है उन्नत भारत अभियान। इस दौरान मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, यूएई, ईरान और दक्षिण अफ्रीका के मंत्री और विभाग के प्रमुखों ने साइकिलिंग इवेंट में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि विशाखापट्टनम में ब्रिक्स सम्मेलन के अवसर पर ब्रिक्स फ्रेंडशिप संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया।
2: आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स समिट के अवसर पर ब्रिक्स फ्रेंडशिप संडे ऑन साइकिलिंग का आयोजन करा गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की फिट इंडिया मूवमेंट आगे बढ़ रही है। देश में आज 18,000 से अधिक स्थान पर संडे ऑन साइकिलिंग करके हमारे देश के युवाओं ने फिटनेस का संदेश दिया है। विकसित भारत बनाने के लिए हम सब लोग फिट रहे, स्वस्थ समाज समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। मोदी जी ने देश को विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प कराया है। हम सब लोग मोदी जी के संकल्प को चरितार्थ करने के लिए एवरी संडे साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें।
0: तो संडे यानी फिटनेस की डोज। और अब इसके बाद रुक करते हैं फुटबॉल के मैदान का, जहां ईस्ट बंगाल एफसी ने 135वां ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। ईस्ट बंगाल एफसी ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम यानी युवा भारतीय क्रीड़ांगन में खेले गए फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट्स को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए 17वीं बार ड्यूरेंट कप जीता है। ईस्ट बंगाल के एडमंड लाल रिंदिंगा ने पहले हाफ में शानदार हैट्रिक लगाकर के टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विपिन सिंह ने पहले 10वें मिनट में ईस्ट बंगाल के लिए स्कोरिंग की शुरुआत की और उसके ठीक 2 मिनट बाद लाल रिंदिंगा ने बढ़त को दोगुना कर दिया। 23वें मिनट में उन्होंने फिर एक गोल किया और ईस्ट बंगाल 3-0 से आगे कर दिया। मोहन बगान के लिए मनवीर सिंह ने 33वें मिनट में एकमात्र गोल दागा। हालांकि ईस्ट बंगाल ने जल्द ही वापस पलटवार किया और लाल रिंदिंगा ने अपना तीसरा और मैच का चौथा गोल करते हुए 44वें मिनट में अपनी हैट्रिक पूरी की और हाफ टाइम से पहले स्कोर 4-1 हो गया था। ईस्ट बंगाल ने दूसरे हाफ में आसानी से बढ़त बनाए रखी और शानदार जीत हासिल की। 22 साल के लंबे इंतजार के बाद ड्यूरेंट कप अपने नाम किया है ईस्ट बंगाल ने। और अब ईस्ट बंगाल की शानदार जीत पर कुछ और अपडेट के लिए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
3: All the goals in the Duran Cup final today were scored in the first half. Edmond Lalindika scored a hat-trick for East Bengal.
4: Rashid with the ball in. Jay Gupta puts it back. Hat-trick hero. A brutal, overwhelming, extraordinary and magnificent performance from Edmond Lalindika.
3: while Bipin Singh added another goal. Manbir Singh scored the sole goal for Mohun Bagan. Edmond Lalindika of East Bengal was selected as the player of the tournament and won the golden ball. Aladdin Azerai of Northeast United FC won the golden boot for scoring the highest number of goals. Vishal Kaith won the golden gloves for best goalkeeper of the tournament. Defence Minister Rajnath Singh witnessed the final match at the stadium and presented the trophy to the champions. Kollan Laha for Akashvani News, Kolkata.
0: तो जहां फुटबॉल के मैदान में एक शानदार रिकॉर्ड दर्ज किया गया, ऐसी ही उम्मीद आज भारतीय महिला हॉकी टीम को होगी कि किस तरह विश्व कप जो नीदरलैंड्स में खेला जा रहा है उसमें आज के अपने मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हरा करके आगे का सफर तय किया जाए, जहां 10:30 बजे भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सामने होंगी और भारत को ये मैच हर हाल में जीतना है। इससे पहले कल भारतीय पुरुष टीम को नीदरलैंड से हार का सामना करना पड़ा 1-3 गोल से और इसके साथ भारत की सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाएं काफी हद तक सीमित हो गई हैं और दूसरी टीम के नामों पर निर्भर हो गई हैं। अब कार्यक्रम में बात की जाए क्रिकेट की, जहां कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने आज 5 विकेट पर 300 रन बना लिए थे। देवदत्त पडिक्कल ने फिर आज एक शानदार शतक लगाया और 117 रन की पारी खेली। कप्तान गिल ने 50 रन जबकि यशस्वी जायसवाल ने 45 रन बनाए। फिलहाल ध्रुव जुरेल 7 और सारांश जैन 4 रन बना करके क्रीज पर मौजूद हैं और पहले मैच की अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी विशेष। क्या कुछ रहा आज के दिन में खास?
5: शक्ति, आज भारतीय बल्लेबाजों ने अपना दमखम दिखाया है श्रीलंकाई गेंदबाजों के सामने। अगर हम शुरुआत की बात करें तो केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने काफ़ी सधी हुई शुरुआत देने की कोशिश की, लेकिन 37 रन पर केएल राहुल आउट हो गए जब टीम का स्कोर 37 था। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल जब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए तो उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जमाया। वहीं 4th नंबर पर शुभमन गिल ने 50 रन बनाए और ऋषभ पंत 3 रन पर रिटायर्ड हर्ट हो गए। उनकी बाई कलाई में दर्द के कारण वो अपना आगे का खेल जारी नहीं रख सके, एक शॉर्ट बॉल उनके कलाई में जाकर लग गई। वहीं रविंद्र जडेजा ने थोड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने 83 गेंदों पर 43 रन बनाए। वो अपने अर्धशतक के करीब थे लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से असिता फर्नांडो की गेंद पर बोल्ड हो गए।
0: जी बिल्कुल, और शुभमन गिल और देवदत्त पडिक्कल लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए। क्या खास रिकॉर्ड इन खिलाड़ियों ने आज बनाए हैं?
5: अगर हम देवदत्त पडिक्कल की बात करें तो उन्होंने लगातार दूसरा शतक लगाया है इस मुकाबले में। इससे पहले भी उन्होंने एक शानदार शतक जमाया था और वो 6वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने श्रीलंका की धरती पर लगातार शतक जमाए हैं। अगर कप्तान शुभमन गिल की बात करें तो उन्होंने आज अर्धशतक लगाया और अपने 50 रन की बदौलत 1000 रन WTC की सिंगल साइकिल में पूरे करते हुए विराट कोहली के 932 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके अलावा उन्होंने 3000 रन भी पूरे कर लिए और वो 4थे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में 3000 रन पूरे करने वाले।
0: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि भारत को सफेद जर्सी में एक नई उम्मीदें दिखती हुई जिसकी भारतीय टीम को काफी समय से दरकार है कि रेड बॉल क्रिकेट में कुछ और मजबूत परिपक्व खिलाड़ी टीम को देखने को मिले। और टेस्ट क्रिकेट की बात हुई है तो ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश श्रृंखला की बात की जाए, जहां ऑस्ट्रेलिया ने डार्विन में खेले गए क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में बांग्लादेश से मिली हार का बदला ले लिया है। आज साउथ मैके में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दूसरे ही दिन पारी और 51 रन से हरा दिया। जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली है। मिचेल स्टार्क प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे और आज के हीरो विशेष क्या कहेंगे मिचेल स्टार्क की परफॉर्मेंस पर और उससे पहले इस मैच पे, 2 दिन पे टेस्ट मैच समाप्त,
5: ये सबसे बहुत ही अलग बात रही जो टेस्ट मुकाबला इतनी जल्दी खत्म हुआ। मुकाबले में सिर्फ 750 गेंदें ही फेंकी गई और ये जो है 4था सबसे छोटा मुकाबला बना है टेस्ट क्रिकेट का। अगर हम बांग्लादेश की पहली पारी की बात करें तो 64 रन पर पारी उनकी सिमट गई थी। वहीं जब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने के लिए आई तो उन्होंने 210 रन खड़े किए थे। वहीं बांग्लादेश जब दूसरी पारी में एक बार फिर बल्लेबाजी के लिए आया तो उन्होंने 95 रन बनाए। इसके साथ ही बांग्लादेश के साथ ये पहली बार ऐसा हुआ जब उन्होंने दोनों पारियों में 100 का आंकड़ा नहीं छू पाया है, तो ये बहुत ही निराशाजनक हार है बांग्लादेश के लिए जबकि उन्होंने पहले टेस्ट मुकाबले में एक शानदार जीत दर्ज करी थी। तो इस जीत के हीरो रहे हैं मिचेल स्टार्क जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया का जो है परचम लहराया है। 10 विकेट हॉल उन्होंने लिया है इस मुकाबले में, पहली पारी में 6 विकेट और दूसरी पारी में 4 विकेट। मिचेल स्टार्क की घातक गेंदबाजी जो है वो 234 विकेट पर पहुंच गई है WTC की। इस साइकिल में उन्होंने पैट कमिंस का रिकॉर्ड जो है धराशायी कर दिया है।
0: जी बिल्कुल, तो रिकॉर्ड धाराशाही किया है। भारत के लिए अगर देखा जाए, भारत की नज़रें लगातार WTC की अपनी रेस पर बनी हुई हैं। इस मैच के परिणाम ने क्या हद तक भारत को फ़ायदा देने का काम किया होगा?
5: बांग्लादेश की जो WTC रैंकिंग है वो अभी भी चौथे नंबर पे बांग्लादेश की टीम बनी हुई है 55.5 अंकों के साथ, लेकिन अगर भारतीय टीम श्रीलंका के साथ ये जो मुकाबला खेल रही है अगर जीत जाती है तो वो चौथे नंबर पर पहुंच जाएंगी और बांग्लादेश खसक कर पांचवें नंबर पर पहुंच जाएगी। ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर बनी रहेगी 80% अंकों के साथ।
0: जी बिल्कुल, तो भारत को उम्मीद होगी कि श्रीलंका पर एक और शानदार जीत दर्ज की जाए और अपनी रैंकिंग में एक पायदान की छलांग और लगाई जाए। अब बात करते हैं बैडमिंटन की। नई दिल्ली में आयोजित विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आज समापन हो गया। ये प्रतियोगिता 17 अगस्त से इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हुई थी। आइए जानते हैं प्रतियोगिता में कौन कौन खिलाड़ी खिताब अपने नाम करने में सफल रहे।
6: विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स का खिताब फ्रांस के एलेक्स लेनियर और महिला सिंगल्स का खिताब दक्षिण कोरिया की अन से यंग ने अपने नाम किया। पुरुष वर्ग में एलेक्स ने फाइनल मुकाबले में जापान के कोदाई नाराओका को सीधे गेम में 21-11 से हराया। महिला सिंगल्स में अन से यंग ने जापान की अकाने यामागुची को 21-17 और 21-14 से हराया। डबल्स स्पर्धाओं में पुरुष डबल्स का खिताब चीन के लियांग वेई किंग और वांग चंग ने जीता। चीनी जोड़ी ने फाइनल में मलेशिया के अरोंचिया और सो वोयिक को 21-17 21-16 से पराजित किया। वहीं दक्षिण कोरिया की बेक हाना और ली सा ही की जोड़ी महिला डबल्स की चैंपियन बनने में सफल रही। इस जोड़ी ने खिताबी मुकाबले में चीन की लियो शेंगशू और तांग निंग की जोड़ी को सीधे गेम में 21-15 21-15 से पराजित किया, जबकि फ्रांस की जोड़ी थॉम गिस्कल और डेल्फिन डेलरू ने इतिहास रचते हुए मिक्स्ड डबल्स का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में गिक्वेल डेलरू की जोड़ी चीन की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी फेंग यानझे और हुआंग डोंगपिंग को 22-20 19-21 21-15 से शिकस्त देते हुए फ्रांस की ओर से मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीतने वाली पहली जोड़ी भी बनी। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो भारत की मेजबानी को काफी हद तक विदेशी खिलाड़ियों ने सराहा है और भारत के लिए सबसे शानदार प्रदर्शन इस प्रतियोगिता में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की महिला डबल्स जोड़ी ने किया, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में महिला डबल्स का कांस्य पदक अपने नाम किया। 2011 में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा के उस कांस्य पदक के बाद इस प्रतियोगिता में अब भारत को जाके ये पदक मिला है। सेमीफाइनल मुकाबले के बाद त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने कहा कि सच में पोडियम पे खड़ा होना उनके लिए एक कल्पना थी और किस तरह उनका ये मैच गुजरा इस पर उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं।
7: सेकंड सेट वो लोग काफी पेशेंटली खेले, तीसरे में बहुत अच्छा खेला। आज आई थिंक इवन इन द बैक कोर्ट आई थिंक शी वाज कंट्रोलिंग प्रीटी वेल, थोड़ा और अगर मैं सपोर्ट करती फ्रॉम द नेट आई थिंक वी कुड हैव पुल्ड ऑफ द सेकंड सेट, बट आल्सो इन द थर्ड सेट थोड़े पॉइंट्स ऐसे थे जो हम कन्वर्ट कर सकते थे पर रिदम नहीं आया। आई थिंक प्लेइंग विद दिस चाइनीज पेयर्स आई फील लाइक वी वर बिट मोर कॉन्फिडेंट इन द फर्स्ट गेम, वी वर लीडिंग इन द फर्स्ट हाफ, देन दे कवर्ड इनटू 11-7, दे जस्ट टुक द ब्रेक एंड अगेन वी कवर्ड देम. We catch the scoring close to them. I think that time we were much more confident and we were trailing them. But in the second game, we didn't get the rhythm.
0: तो शानदार खेल दिखाया इस जोड़ी ने पूरे टूर्नामेंट में, हालांकि सेमीफाइनल में इस जोड़ी को चीन की लियू शेंगशू और टेन निंग से 21-18 13-21 और 8-21 से हार का सामना करना पड़ा था। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की तमाम खबरों के साथ। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस पर अपनी राय और सुझाव हमें हमारी ईमेल sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
8: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेल में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ सम्पन्न हुई। ईस्ट बंगाल ने मोहन बागान को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड 17वीं बार डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीती। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की

0: अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, तो एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेसटेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस बीच राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। ये दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस के इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सृजित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध पोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रूपये की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
4: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इंडिजिनस स्वदेशी हथियार प्रणालियों की क्षमता को भी देखा है और आगे भी रक्षा मंत्रालय के साथ हमारे लैब, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स मिलकर अपनी सेनाओं को इंडिजिनस प्लेटफॉर्म से लैस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरईसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न शामिल है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। परिषद ने कहा कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को इसकी इन्फ्लुएंजा से जटिलताएं आ सकती हैं। यदि ये लक्षण गंभीर हों तो

0: डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार करने के साथ हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
1: बैठक का मुख्य परिणाम खेल विज्ञान, AI, डिजिटल बदलाव और एथलीटों के प्रदर्शन में सहयोग बढ़ाने के लिए खेल प्रौद्योगिकी पर ब्रिक्स कार्य समूह का गठन करने का प्रस्ताव है। भारत के ब्रिक्स खेल विनिर्माण सम्मेलन के प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिला है। पहला इस वर्ष नवंबर में उदयपुर में किए जाने वाला प्रस्ताव है। इससे विनिर्माताओं, निवेशकों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों को विशेषज्ञता साझा करके नवाचार को बढ़ावा देने का मंच उपलब्ध होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल है जो अक्टूबर में अहमदाबाद में होंगे। इनसे ब्रिक्स देशों की समृद्ध खेल विरासत प्रदर्शित होगी और सांस्कृतिक तथा लोगों के आपसी संबंध सुदृढ़ होंगे। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ऐसे ब्रिक्स खेल साझेदारी करने की अपील की जो केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर खिलाड़ियों और कोचों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धाओं और ज्ञान साझाकरण के जरिए व्यवहारिक सहयोग के लिए हो। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की सफल बैठक से ब्रिक्स देशों के बीच स्थायी खेल सहयोग का आधार तैयार हुआ है। विशाखापट्टनम से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
0: केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और देश की समृद्ध विरासत को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने में कला और संस्कृति के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में कला तरंगिणी दिल्ली कला महोत्सव में श्री सोनोवाल ने कहा कि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की रचना पारिजात हरण अंकीय नाट प्रस्तुत करने के लिए देश भर के कलाकार श्रद्धापूर्वक एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमंत शंकरदेव ने कला, संस्कृति, नृत्य और संगीत के माध्यम से समाज में सांस्कृतिक मूल्यों को लाने के लिए अनेक प्रयास किए।
2: महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने भारत में एक संस्कार लाने के लिए जो भी उन्होंने कदम उठाई है, कला संस्कृति की द्वारा, नृत्य गीत की द्वारा, इसकी वजह से आज हम 21वीं शादी में दुनिया में अपना मर्यादा पूर्वक परिचय बनाने में हम सफल हुई है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है।
3: देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, देश की संसद में वो संसद का गौरव बढ़ाएं, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में लागू करने के लिए सहयोग करें।
0: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्ट्स एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को AI और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिन का ये सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एमएल जाट ने आज कहा कि फसल सुधार, कृषि विकास तथा नीति निर्धारण प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का मृदा डेटाबेस और सूचना प्रणाली तथा भूमि उपयोग नियोजन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश की प्राथमिकताओं और परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप ये संस्थान सही दिशा में प्रगति कर रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने गंगा नदी के संरक्षण से संबंधित नियमों में हाल ही में किए गए बदलाव पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक पीठ ने इस महीने की शुरुआत में जारी की गई एक अधिसूचना पर संज्ञान लिया है। अधिसूचना में कथित तौर पर गंगा नदी को इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में निर्माण निषेध क्षेत्र हटा दिया है। अधिकरण का मानना है कि बदलाव वर्तमान पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह।
4: ईस्ट बंगाल एफसी ने 135वां ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ईस्ट बंगाल ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट्स को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड बराबरी करते हुए 17वीं बार ड्यूरेंट कप जीता। ईस्ट बंगाल के एडमंड लाल रिंदिका ने पहले हाफ में शानदार हैट्रिक लगाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं। और क्रिकेट में कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पड्डीकल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेलों में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges private space sector to build global aura of innovation as India celebrates National Space Day. Defence Minister Rajnath Singh stresses self-reliance in shipbuilding and maritime sectors. ICMR clarifies no new strain of swine flu identified in the country, assures current vaccines remain effective. BRICS Sports Ministers meeting concludes in Visakhapatnam with adoption of joint declaration to strengthen cooperation, inclusiveness and mutual respect in sports. In football, East Bengal lift Durand Cup for the record 17th time, defeating arch rivals Mohan Bagan in Kolkata. And in the FIH Hockey World Cup, India to face Australia in Netherlands tonight in a must-win Pool E fixture for a semi-final berth. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector and space research to build a global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India. Mr. Modi stated this during interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on the National Space Day today, Prime Minister Modi also

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चंदाना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। ये दिन हर वर्ष 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट

0: पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड के लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, यह वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित हैं। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। परिषद ने कहा कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को इस इन्फ्लुएंजा से जटिलताएं आ सकती हैं। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हो गया। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। ईस्ट बंगाल FC ने 135वां ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। ईस्ट बंगाल ने कोलकाता के युवा भारती क्रीड़ांगन में खेले गए फाइनल मुकाबले में मोहन बागान को 4-1 से हराया। महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Defence Minister was addressing the gathering after laying the foundation stone for 5 expansion projects of the Garden Reach Shipbuilders and Engineers GRSE and Yantra India Limited worth approximately 3,400 crore rupees in Kolkata. Mr. Singh asserted that India is capable of becoming a global shipbuilding hub and called for high-quality maintenance services and timely delivery of defence products to achieve this goal. Indian Council of Medical Research, ICMR, has clarified that no new strain of H1N1, commonly known as swine flu, has been identified and there is no cause for panic, assuring that current vaccines remain effective. According to senior scientists at ICMR, these viruses have been in circulation since the year 2025. They said the influenza strains currently circulating are well matched with vaccine strains recommended for the Northern Hemisphere. According to ICMR, seasonal influenza, including H1N1, is mostly self-limiting. Common symptoms include fever, cough, headache, and body ache, and most people recover with appropriate care and rest. ICMR said the situation has been closely monitored through regular surveillance and necessary public health measures are being undertaken. External Affairs Minister Jaishankar has reached Moscow for a 2-day visit to Russia. The minister will co-chair the 27th session of the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation with the Russian First Deputy Prime Minister Denis Manturov. During the visit, Dr. Jaishankar will also meet Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and exchange perspectives on regional and global issues. The BRICS Sports Ministers meeting concluded at Visakhapatnam in Andhra Pradesh with unanimous adoption of the Sports Joint Declaration. The declaration reaffirms the commitment of the member countries to strengthen cooperation in sports through dialogue, mutual respect and inclusiveness. And now news from the world of football. In football, East Bengal FC have lifted the Duran Cup for a record 17th time, ending a 22-year wait for the prestigious trophy after defeating erstwhile rivals Mohun Bagan Super Giant 4-1 in the final in Kolkata this evening. In the FIH Hockey World Cup, the Indian women's team will take on Australia tonight. India must win this match to stay in contention for a semi-final berth. The Pool E match will begin at 10:30 p.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं आशुतोष मिश्र। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिवसीय यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने उनको शीर्ष अदालत के आदेशानुसार निजी अस्पताल के बजाय सरकारी अस्पताल भेजने पर सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। कजाकिस्तान में आज संसदीय चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों से मध्य एशिया के सबसे बड़े देश में राष्ट्रपति कसीम जोमार टोकायेव की सत्ता और मजबूत होने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक संपन्न हो गई। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। विस्तार से विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिवसीय यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। सरकारी अधिकारियों ने श्री खान को शीर्ष अदालत के आदेशानुसार निजी अस्पताल के बजाय सरकारी अस्पताल भेजा है। श्री खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई पार्टी के कानूनी सलाहकार नईम पंजुदा के अनुसार याचिका में प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, सूचना मंत्री और अन्य सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। 3 न्यायाधीशों की पीठ ने मंगलवार को सरकार को निर्देश दिया था कि

0: खान को ओडियाला जेल से इस्लामाबाद के निजी शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में दो दिनों के भीतर चिकित्सा जांच के लिए स्थानांतरित किया जाए। सरकारी अधिकारियों ने श्री खान को शुक्रवार की जांच के लिए सरकार के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज PIMS ले जाकर वापस जेल भेज दिया। श्री खान की बहन उज्मा खान ने पत्रकारों को बताया कि उनके भाई को जेल में प्रताड़ित किया गया है। पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र की विशेष रिपोर्टर एलिस जिल एडवर्ड्स ने श्री खान की हिरासत की स्थितियों और उन्हें उचित चिकित्सा देखभाल नहीं मिलने की खबरों पर चिंता व्यक्त की थी। इस बीच पीटीआई नेताओं ने कहा है कि इससे 27 सितंबर को होने वाले नियोजित विरोध प्रदर्शन की तैयारियों को बल मिलेगा। बलूच यकजहती कमेटी BYC ने बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले के खड़कुचा इलाके में पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की निंदा की है। इस हमले में 4 मजदूरों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। BYC ने इसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। एक रिपोर्ट।
1: बलूच यकजहती कमेटी BYC ने आरोप लगाया कि ये घटना सोराब में हुई। हवाई हमले के कुछ ही दिनों बाद ये घटना हुई है, जिसमें उसके अनुसार महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कमेटी ने आरोप लगाया कि ये घटनाएं बलूच समुदायों के खिलाफ हिंसा के व्यापक पैटर्न का हिस्सा हैं और अधिकारियों पर बलूच पहचान के कारण नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। कमेटी ने इस दमन को चुनौती देने के एकमात्र तरीके के रूप में सामूहिक और राष्ट्रीय प्रतिरोध का आह्वान किया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से शिव प्रकाश मिश्र।
0: कजाकिस्तान में आज संसदीय चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों से मध्य एशिया के सबसे बड़े देश में राष्ट्रपति कसीम जोमार टोकायेव की सत्ता और मजबूत होने की उम्मीद है। नए संविधान के अंतर्गत देश की संसद को 2 सदनों वाली व्यवस्था से बदलकर एकल सदन वाली व्यवस्था में कर दिया गया है। कजाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले महीने कहा था कि नए संविधान के अंतर्गत वर्ष 2019 में पदभार संभालने वाले राष्ट्रपति टोकायेव 7 साल के एक और कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। यह नई एकल सदस्यीय संसद के लिए पहला चुनाव है, जिसे कुरिलताई के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति समर्थक आदलत पार्टी के भारी बहुमत से जीतने की उम्मीद है। कई विपक्षी दल भी चुनाव मैदान में हैं, हालांकि उन्हें राष्ट्रपति टोकायेव का समर्थक माना जाता है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार करने के साथ हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
2: बैठक का मुख्य परिणाम खेल विज्ञान, AI, डिजिटल बदलाव और एथलीटों के प्रदर्शन में सहयोग बढ़ाने के लिए खेल प्रौद्योगिकी पर ब्रिक्स कार्य समूह का गठन करने का प्रस्ताव है। भारत के ब्रिक्स खेल विनिर्माण सम्मेलन के प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिला है। पहला इस वर्ष नवंबर में उदयपुर में किए जाने वाला प्रस्ताव है। इससे विनिर्माताओं, निवेशकों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों को विशेषज्ञता साझा करके नवाचार को बढ़ावा देने का मंच उपलब्ध होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल, ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल है जो अक्टूबर में अहमदाबाद में होंगे। इनसे ब्रिक्स देशों की समृद्ध खेल विरासत प्रदर्शित होगी और सांस्कृतिक तथा लोगों के आपसी संबंध सुदृढ़ होंगे। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ऐसे ब्रिक्स खेल साझेदारी करने की अपील की जो केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर खिलाड़ियों और कोचों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धाओं और ज्ञान साझाकरण के जरिए व्यवहारिक सहयोग के लिए हो। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की सफल बैठक से ब्रिक्स देशों के बीच स्थायी खेल सहयोग का आधार तैयार हुआ है। विशाखापट्टनम से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हॉर्मूज जलडमरू मध्य को एक बार फिर अमरीकी इलाका बताए जाने के बाद से अमरीका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। श्री ट्रंप ने यह तस्वीर 18 अगस्त को भी साझा की थी। इस बीच ईरान ने फिर कहा है कि जब तक अमरीका अपना रुख नहीं बदलता, हॉर्मूज बंद रहेगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने हॉर्मूज पर अमरीकी दावों को खारिज करते हुए श्री ट्रंप के बयानों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि हॉर्मूज जलडमरू मध्य और अमरीका के बीच की दूरी 7,000 मील से भी अधिक है। ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अराग्ची ने अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों की ताजा धमकियों को खारिज करते हुए कहा है कि यह चालबाजी है तथा उसके पास ईरान के लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान के सरकारी प्रसारक IRIB के अनुसार श्री अराग्ची ने कहा कि आर्थिक दबाव बनाने के अमेरिका के प्रयास उसकी हताशा को दर्शाते हैं। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर इकोनॉमिक डीडे अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि एक देश के खिलाफ यह बहुत भीषण आर्थिक अभियान होगा। उन्होंने सहयोगी देशों से भी ईरान को अलग थलग करने में साथ देने की अपील की। श्री ट्रंप ने कहा कि तेल तस्करी तंत्र, वित्तीय लेन देन, विनिमय केंद्र, पोत पंजीकरण और प्रमुख कंपनियों समेत ईरान के आर्थिक जीवन रेखा को निशाना बनाने के उपाय किए जाएंगे। इसी बीच ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रिजाई ने पड़ोसी देशों को अमेरिका का सहयोग नहीं करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान तनाव नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन आर्थिक प्रतिबंधों में शामिल पड़ोसी देशों को शत्रु समझा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर क्षेत्रीय देशों ने ईरान के खिलाफ अमेरिका का सहयोग किया तो फारस की खाड़ी और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते से तेल निर्यात को प्रभावित करने के उपाय किए जाएंगे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: और अब खेल खबरों के साथ है शक्ति सिंह।
4: महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं, जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं। क्रिकेट में कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पड्डीकल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और ईस्ट बंगाल FC ने 135वां ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ईस्ट बंगाल ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट्स को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड बराबरी करते हुए 17वीं बार ड्यूरेंट कप जीता। ईस्ट बंगाल के एडमंड लाल रिंदिका ने पहले हाफ में शानदार हैट्रिक लगाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिवसीय यात्रा के लिए मॉस्को पहुंचे। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने उनको शीर्ष अदालत के अनुसार निजी अस्पताल के बजाय सरकारी अस्पताल भेजने पर सरकार के खिलाफ अवमानना दायर की है। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अमृत भूषण विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar reaches Moscow on a 2-day visit to Russia to co-chair 27th India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation. Former Pakistan Prime Minister Imran Khan's party files contempt petition against government for defying Supreme Court order. Kazakhstan votes in parliamentary election as President Kasym Jomart Tokayev seeks to consolidate power. BRICS Sports Ministers meeting concludes in Vishakhapatnam with adoption of joint declaration to strengthen cooperation, inclusiveness and mutual respect in sports. And in FIH Hockey World Cup, India to face Australia in Netherlands tonight in a must-win Pool E fixture for a semi-final berth. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar reached Moscow this evening on a 2-day official visit to Russia. During the visit, the minister will co-chair the 27th session of the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade and Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation. He will also meet Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and exchange perspectives on regional and global issues. The Indian Navy's sail training ship INS Sudarshini arrived at Lisbon, Portugal as part of her ongoing Lokayan 26 transoceanic expedition. The 3-masted bark made a grand entry through the Tagus River, showcasing traditional sailing and seamanship skills. The Defence Ministry said that during the port call, the ship's crew and trainees will participate in professional exchanges, cross-deck visits and cultural engagements with Portuguese naval leadership, local authorities and the Indian diaspora. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will be on a four-day visit to Japan from tomorrow till the 27th of this month, travelling to Tokyo, Nagoya and Osaka, leading India's largest ever business delegation to Japan. The delegation comprises more than 200 business representatives and spanning sectors ranging from manufacturing, semiconductors, clean energy and steel to automotive, financial services, healthcare and startups. It added that the visit will also open new avenues of cooperation in high-technology manufacturing and next-generation industries, sectors central to India's vision of Atmanirbhar Bharat and Vikasit Bharat at 2047. In Pakistan, the

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज़, और वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 10:31 और 15 सेकेंड। तो आप सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब, और एक बार फिर से सदाबहार गीतों के कारवां को लेकर हाजिर हूं मैं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल में, जिसका नाम है हर सिंगार। हर सिंगार यानी वो महफिल जिसमें होते हैं वो सदाबहार नगमे जो अमर हो गए, और वो सदाबहार कहानियां जो हमारे दिल में बस गईं। 1967 में ऐसी ही एक बेहद खूबसूरत फिल्म आई थी जिसका नाम था शागिर्द, और इसी फिल्म के नगमे के साथ आज के इस सफर का हम आगाज करेंगे। शागिर्द जो एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसका निर्देशन समीर गांगुली ने किया था। फिल्म में जॉय मुखर्जी और सायरा बानो ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। इस फिल्म की कहानी और किरदारों में उस दौर की हल्की फुल्की शरारत, रोमांस और रहस्य का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है। यही वजह है कि शागिर्द आज भी 60 के दशक की यादगार फिल्मों में शुमार की जाती हैं। उसी फिल्म का एक बेहद खूबसूरत गीत है जिसने इस फिल्म को संगीत प्रेमियों के बीच एक अलग पहचान दिलाई, और वो गीत है दिल विल प्यार व्यार। क्या खूब मस्त मौला अंदाज था इस गीत का। प्यार को लेकर बनी ये चुलबुली सी धुन सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। शागिर्द के संगीत की बात करें तो फिल्म में कुल 6 गीत थे। इन सभी गीतों का संगीत तैयार किया था मशहूर और मारूफ संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, जबकि गीतों को अपने अल्फाज दिए थे मशहूर

मशहूर गीतकार और शायर मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने। मजरूह साहब के बोलों में जहां मोहब्बत की मिठास थी, वहीं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की धुनों में उस दौर की ताजगी और रवानी। यही संगम शागिर्द के संगीत को दिलकश बनाता है। तो दोस्तों, शागिर्द सिर्फ एक फिल्म का नाम नहीं, बल्कि 60 के दशक के उस सुनहरे दौर की याद है जब फिल्मी गीतों में सादगी भी थी, शरारत भी थी और मोहब्बत का एक खास अंदाज भी। तो आइए सुनते हैं शागिर्द फिल्म का वही बेहद खूबसूरत और सदाबहार नगमा, रफ़ी साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फिरोज़ आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हर श्रृंगार में। और सदाबहार गीतों की महफिल हर श्रृंगार में अब बात एक ऐसी फिल्म की जो अपने दौर की बहुत ही कामयाब फिल्मों में से एक रही, और वो फिल्म है 1967 में आई ज्वेल देव। दोस्तों, पुरानी फिल्मों की दुनिया में कई बार कहानी पर्दे पर नहीं बल्कि पर्दे के पीछे भी लिखी जाती है, और आज की कहानी ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी है जहां एक अभिनेत्री का इनकार हुआ और दूसरी अभिनेत्री की एंट्री ने फिल्मी इतिहास में एक यादगार जोड़ी बना दी। बात हो रही है 1967 की मशहूर फिल्म ज्वेल थीफ की और इसके मुख्य किरदारों की कास्टिंग से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प कहानी की। फिल्म के लिए मुख्य अभिनेत्री के किरदार के तौर पर सबसे पहले संपर्क किया गया था खूबसूरत अदाकारा सायरा बानो जी को। हालांकि सायरा बानो और देवानंद इससे पहले प्यार मोहब्बत फिल्म में एक साथ काम भी कर चुके थे, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग थी। हुआ यूं कि जब देवानंद साहब सायरा बानो को ये किरदार करने से के लिए उनके पास जब गए और सायरा बानो जी ने इस किरदार को करने से मना कर दिया, और इसकी वजह उनकी शादी बताई गई। उन्होंने उस समय के मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार साहब से निकाह कर लिया था, जिसकी वजह से यह फिल्म करने से मना कर दिया था। फिल्म के लिए मुख्य अभिनेत्री के किरदार के तौर पर सबसे पहले तो उनको संपर्क किया ही गया था, लेकिन बाद में किसी और को लिया गया। मगर उससे पहले भी सायरा बानो ने 1965 की फिल्म गाइड में रोजी के किरदार का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया था। गाइड का निर्माण भी देवानंद साहब ने ही किया था। अब जरा सोचिए, अगर सायरा बानो ने गाइड और ज्वेल थीफ दोनों फिल्में कर ली होती तो हिंदी सिनेमा का इतिहास कितना अलग होता, कुछ अलग ही नजर आता सब कुछ। लेकिन फिल्मी दुनिया में एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है। सायरा बानो के बाद इस किरदार के लिए चुना गया वैजयंती माला जी को। वैजयंती माला और देवानंद की जोड़ी दर्शकों के लिए बिल्कुल नई नहीं थी। दोनों लगभग एक दशक पहले अमरदीप फिल्म में एक साथ नजर आ चुके थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वैजयंती माला को देवानंद ने गाइड में रोजी के किरदार के लिए भी विचार किया था, लेकिन कुछ वजह थी जिसके कारण उस भूमिका के लिए उनको नहीं लिया गया, और फिर बनी देवानंद और वैजयंती माला की जोड़ी ज्वेल थीफ में, जो हमेशा के लिए यादगार बन गई। दोस्तों, यही तो सिनेमा की दिलचस्प दुनिया है। कभी किसी का इनकार किसी दूसरे के लिए कामयाबी का रास्ता खोल देता है, और कभी एक छोटी या छूटी हुई भूमिका किसी दूसरी फिल्म में इतिहास रच देती है। तो अगली बार जब भी आप इस फिल्म को देखते हैं, यानी

ट्वेल्थ थिप को देखने का मौका मिलता है तो देवानंद के साथ वैजयंती माला को पर्दे पर देखें तो ज़रा इस पर्दे के पीछे की कहानी भी ज़रूर याद रखिएगा कि किस तरीके से किसको कहां कैसे मौका मिल जाता है। तो आइए इसी फिल्म का एक बेहद खूबसूरत और सदाबहार गीत आपको सुनवाते हैं लता जी और किशोर कुमार साहब की बेहद खूबसूरत आवाज़ों में, जिसे लिखा है आनंद बख्शी साहब ने और संगीत है शंकर जयकिशन साहब का।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ।

इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक बार फिर से आपका स्वागत है हर सिंगार के इस दिलकश महफिल में। हर सिंगार के इस दिलकश महफिल में अब बात अपने दौर की एक बेहद खूबसूरत मसाला फिल्म हाथ की सफाई की। हम जानेंगे इस फिल्म के बेहद खूबसूरत क्षणों के बारे में। 1974 में आई फिल्म हाथ की सफाई एक ऐसी मसाला फिल्म जिसमें एक्शन, ड्रामा, रोमांस, रिश्ते और जिंदगी के कई रंग एक साथ दिखाई देते हैं। इस फिल्म की कहानी लिखी थी उस दौर की मशहूर लेखक जोड़ी सलीम जावेद ने। फिल्म के निर्माता थे IA नाडियाडवाला, जबकि निर्देशन की जिम्मेदारी संभाली थी प्रकाश मेहरा साहब ने। और पर्दे पर नजर आए उस दौर के मशहूर कलाकार विनोद खन्ना, रणधीर कपूर और हेमा मालिनी। साथ ही फिल्म में सिमी गिरेवाल, रंजीत और सत्यन कप्पू जैसे कलाकारों ने भी अहम किरदार निभाया। यानी सितारों की ऐसी महफिल जिसमें हर किरदार अपनी अलग पहचान रखता था। विनोद खन्ना ने इस फिल्म में अपनी अदाकारी से ऐसा असर छोड़ा कि उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार भी मिला। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म को, यानी इस फिल्म को फिल्म फेयर में यही एकमात्र नामांकन मिला था और विनोद खन्ना उस नामांकन को पुरस्कार में तब्दील करने में कामयाब रहे। फिल्म हाथ की सफाई की कहानी पूरी तरह से ओरिजिनल नहीं थी। दरअसल ये फिल्म 1959 की फिल्म दो उस्ताद का रीमेक थी और सिनेमा की दुनिया में ये कहानी यही नहीं रुकी। बाद में हाथ की सफाई को 1976 में तमिल में बनाई गई और फिर तमिल में ही दूसरी बार इसका रीमेक हुआ 1981 में। यानी एक कहानी और अलग अलग भाषाओं में उनके नए अंदाज। अब जरा फिल्म के संगीत की तरफ चलते हैं, क्योंकि किसी भी मसाला फिल्म की रूह उसकी संगीत में बसती है। इस फिल्म का संगीत तैयार किया था मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी ने और फिल्म का सबसे लोकप्रिय गीत रहा वादा कर ले साजना। इस खूबसूरत गीत को अपनी आवाज दी थी मोहम्मद रफी साहब और लता जी ने। इस फिल्म के गीतों के बोल लिखे हैं गुलशन कुमार मेहता ने, जिन्हें हम गुलशन बावरा के नाम से जानते हैं। तो आइए इसी फिल्म का वही बहुत ही खूबसूरत सदाबहार नगमा हम आपको सुनवाते हैं लता जी और मोहम्मद रफी साहब की बेहद खूबसूरत आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ों में ये नगमा था फिल्म हाथ की सफाई से। ये फिल्म आई थी 1974 में। और इसी के साथ मुझे यानी फ़िरोज़ को अब हर सिंगार से दीजिए इजाज़त। फिर होगी हमारी मुलाकात आपसे कुछ ही देर बाद। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे पहले हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद ठीक 11:10 पर आप सुनेंगे मार्केट मंत्र का पुनः प्रसारण, और उसके पश्चात 11:40 पर मैं रहूंगा आपके साथ लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मन में, जिसमें सुनहरे दौर के उन बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, यह वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हो गया। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India. Mr. Modi stated this during an interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on National Space Day today, Prime Minister Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures. During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world.
3: आपने नए क्षेत्र में साहस दिखाया है. सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया. मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें. दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है.
2: Defence Minister Rajnath Singh has stressed the need for self-reliance in building warships, offshore vessels and related maritime sectors, describing it as vital to the country's security. Mr. Singh was addressing the gathering after laying the foundation stone for 5 expansion projects of the Garden Reach Shipbuilders and Engineers, GRSE, and Yantra India Limited, worth approximately 34,000 crore rupees in Kolkata. The Defence Minister asserted that India is capable of becoming a global shipbuilding hub and called for high-quality maintenance services and timely delivery of defence products to achieve this goal. Indian Council of Medical Research, ICMR, has clarified that no new strain of H1N1, commonly known as swine flu, has been identified and there is no cause for panic, assuring that current vaccines remain effective. According to senior scientists at the ICMR, these viruses have been in circulation since the year 2025. According to ICMR, seasonal influenza, including H1N1, is mostly self-limiting. Common symptoms include fever, cough, headache and body ache, and most people recover with appropriate care and rest. The BRICS Sport Ministers meeting concluded at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh with unanimous adoption of the Sports Joint Declaration. The declaration reaffirms the commitment of the member countries to strengthen cooperation in sports through dialogue, mutual respect and inclusiveness. The meeting was held under India's BRICS Chairship 2026. A key outcome of the meeting has been the proposal to establish a BRICS working group on sports technology to promote cooperation in sports science, artificial intelligence, digital transformation and athlete performance.

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking calls from our listeners on mutual fund-related queries. But do remember that we do not address fund-specific queries. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. Your anchors for today's show, Subodh Mishra and myself, Sarabjeet Kaur.
1: Dhanyavad Sarabjeet aur namaskar shrotaon, karobari khabron ke saath Market Mantra hazir hai. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। बस याद रखें कि हम किसी खास म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 2331-4444, 2371-0481 और 2371-7106। श्रोता, इससे पहले स्टडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट स्नेहा सूरी। स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
2: जी, धन्यवाद।
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर।
0: फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्फ्यूज ओवर 23,000 करोड़ रुपीज इनटू इंडियन इक्विटीज इन अगस्त सो फार। इन बुलियन मार्केट गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस राइज फॉर थर्ड स्ट्रेट वीक एंड सिचुएशन इन वेस्ट एशिया रिमेन्स टेंस।
1: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अगस्त में अब तक भारतीय शेयर बाजार में 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया। सर्राफा बाजार में लगातार तीसरे हफ्ते भी सोने और चांदी में चमक कायम और पश्चिम एशिया में तनाव जारी।

0: professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक श्रोता जुड़ गए हैं, पहले उनके पास ही चलते हैं. सरब जीत,
0: बिल्कुल.
1: यूपी से विवेक हमारे साथ हैं. विवेक, स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
2: हाँ, मार्केट मंत्री और एक्सपर्ट को नमस्कार.
1: नमस्कार
2: सर. मैं म्यूचुअल फंड में एक SIP के द्वारा इक्विटी क्लास में 8 से 9 ईयर से इन्वेस्टेड हूँ. मेरे पास अभी एक लमसम अमाउंट है जिसे मैं निवेश करना चाहता हूँ इक्विटी क्लास में. मैं इसे STP के माध्यम से, मेरे दो प्रश्न है. STP के माध्यम से मैं इसे 12 महीनों में स्प्रेड कर लगाना चाहता हूँ. क्या ये सही है समय अवधि या इसको चेंज करना होगा? मेरा दूसरा प्रश्न है कि मैं एक तो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, मतलब इक्विटी मिड कैप और स्मॉल कैप, इनमें मुझे रेशियो क्या रखना चाहिए सर? जैसे मेरा कोर्ट पोर्टफोलियो है उसमें मुझे कितना परसेंट रखना चाहिए? और जैसे मैं अग्रेसिव इन्वेस्टर के रूप में चाहता हूँ तो मुझे मैं अपने उसमें स्मॉल कैप और मिड कैप को शामिल करना चाहता हूँ और एक वैल्यू फंड भी रखना चाहता हूँ, तो कृपया इसका जो रेशियो है वो मुझे गाइड करें.
3: विवेक जी, जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि STP के माध्यम से वो लमसम आप इन्वेस्ट करें, तो ये बिल्कुल एक अच्छी अप्रोच रहती है. ये काम सबसे ज्यादा तब आती है जब आपके बैंक अकाउंट में पैसा ज्यादा देर पड़ा रहता है और डर रहता है कि कोई कुछ यूज आ जाएगा इसका और आप उसे वहां पर खत्म कर देंगे. तो STP के माध्यम से फायदा ये रहता है कि वो लमसम आपने ऑलरेडी एक फंड में डाल दिया, अब आप उसको छेड़ेंगे नहीं और आप वहां पर अपने फंड को एक इंस्ट्रक्शन दे देंगे, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, कि वो इस फंड से उस फंड में डाले. यहाँ पर बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि आपको जो जिस फंड से आप STP कर रहे हैं जनरली ये लिक्विड फंड रखना चाहिए ताकि उतार चढ़ाव कम रहे, तो आपका बेस अमाउंट पे उतना फर्क ना पड़े. जो आप डेट फंड लेंगे और जहां से आप उसमें से जिस इक्विटी फंड में जाएंगे ये सेम AMC के रहने चाहिए और हर इन्वेस्टमेंट जो यहां से कट रही होगी उस पर एक टैक्स इम्पैक्ट होगा जो कि तब नहीं होता है जब हम अपने बैंक अकाउंट से करते हैं. तो आप इसके बेसिस पर ये डिसीजन ले सकते हैं. जो आपका दूसरा सवाल है कि कोर पोर्टफोलियो और जो एक हम सप्लीमेंट्री पोर्टफोलियो कहते हैं जहाँ पे हम मिड स्मॉल को ज़्यादा एलोकेट कर पाते हैं बट कोर को थोड़ा रिलेटिवली स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स में रखना चाह रहे होते हैं, तो जैसे आपने कहा वैल्यू, फ्लेक्सी, मल्टी, ये सारी कैटेगरीज आप कोर पोर्टफोलियो के लिए बिल्ड कर सकते हैं और मिड एंड स्मॉल कैप आप अपने सप्लीमेंट्री के लिए कर सकते हैं, जिसमें जैसे आपने बोला आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आप 8-9 साल से कर रहे हैं और आप आगे भी करना चाहते हैं, तो आप 30% का एक रफ एलोकेशन अपने मिड और स्मॉल कैप एक्सपोजर के लिए रख सकते हैं. बट एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि जब आप फ्लेक्सी, वैल्यू या मल्टी कैप कैटेगरीज में इन्वेस्ट करते हैं तो फंड के चुनाव पर डिपेंड करता है कि वो फंड मिड और स्मॉल कैप में कितना एक्सपोजर लेता है. तो जब आप अपना मिड और स्मॉल कैप देख रहे हो उसको सिर्फ उन मिड स्मॉल कैप फंड्स में ना देखिए, एक होलिस्टिक पिक्चर देखिए अपने पोर्टफोलियो में कि मल्टी कैप, वैल्यू या फ्लेक्सी में से कितना मिड और स्मॉल कैप आ रहा है और रिलेटिवली इसको बैलेंस आप 30% के अराउंड का रख सकते हैं.
1: जी, विवेक जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था और स्नेहा आपने जो जवाब दिया है ये लगता है म्यूचुअल फंड के हर निवेशक के लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि अक्सर ये लोग पूछते रहते हैं. इसके अलावा भी कि जैसे हम गोल्ड में या सिल्वर में कितना परसेंट रखें और हमारे पोर्टफोलियो का कितना परसेंट इसमें होना चाहिए, ये सवाल और इस तरह के सवाल अक्सर आते हैं और इसके जवाब भी स्टैंडर्ड हैं, लेकिन शायद हमें कार्यक्रम में अक्सर इनको रिपीट करने की ज़रूरत होती है.
3: बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही कोई एसेट क्लास बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, बहुत बुरा करती है, ये सवाल एकदम से टॉप ऑफ द माइंड हो जाते हैं. इसलिए इम्पॉर्टेंट रहता है कि इन पे बार बार मतलब चर्चा हो, लोगों को भी अच्छा लगता है. तो जहां तक गोल्ड और सिल्वर के एलोकेशन की बात रहती है, ये एक तरीके का हेज रखते हैं कि जब इक्विटी मार्केट थोड़ी अनसर्टेन है ये आपको एक तरीके का इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं. पर वही रहता है जो चीज़ बहुत बढ़ रही होती है या मतलब उसका डायरेक्शन थोड़ी एक अलग लेवल पे होती है उसको चेज ना करके ये जो एक प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब इनमें कोई साइंटिफिक रूल नहीं है, ये आपको एक होलिस्टिक पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प करता है. तो 5 से 10% की एलोकेशन आप इन टाइप के एसेट क्लासेस में रख सकते हैं.
0: सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एलोकेशन ऑफ एसेट्स एट सच ग्रेट डिटेल एंड यू वर जस्ट टॉकिंग अबाउट द STP इन्वेस्टमेंट मोड एंड I understand that it creates a psychological barrier where you don't spend the money which is easily available in your bank account and then park it for a designated time and then utilize it more fruitfully. So in the backdrop of this, why are investors increasingly choosing mutual funds over keeping all their savings in traditional avenues?
3: Right. So I guess that has something

0: to do with how the mutual fund awareness has, let's say, anybody or everywhere you'll just mention the word mutual fund sahi hai, and everybody, let's say, watching cricket will also be able to understand because of the kind of advertisements and awareness that is being created about a very important product. Plus, India as a market has always been tilted towards, so much tilted towards traditional asset classes that we have, we had stopped appreciating other asset classes beyond fixed income. So that is where mutual funds come in.
1: Sneha, we'll come back with that discussion. Meanwhile, we'll connect with our next caller from Delhi. Pradeep ji, swagat hai, sawal puche.
2: Namaskar, Market Mantra team.
1: Ji, namaskar.
2: Madam, mere paas hai na, ek flexi cap, ek mid cap, ek small cap hai. Tino mein meri SIP chal rahi hai. So kya mujhe ek multi asset fund add karna chahiye? Aur dusra mera question lump sum ke bare mein hi hai, kyunki abhi mid cap aur small cap मतलब काफी ऊपर चल रहा है, लाइफ टाइम हाई जो भी है. तो अगर मुझे 50,000 रुपए का लमसम करना है इस मंथ में, तो मुझे फ्लेक्सी कैप में डालना चाहिए, मिड कैप में डालना चाहिए, स्मॉल कैप में डालना चाहिए?
0: जी प्रदीप जी, जो आपका पहला सवाल था कि आप फ्लेक्सी, मिड और स्मॉल में ऑलरेडी कर रहे हैं इन कैटेगरीज में, और आप मल्टी एसेट में जाएं या ना जाएं, तो मल्टी एसेट एक डिफरेंट तरीके की बॉल गेम हो जाती है इन कैटेगरीज से, जिनके नाम में ही पता चल जाता है ये कहाँ, यूजुअली कहाँ इन्वेस्ट कर रहे होते हैं. अब मल्टी एसेट, जैसा इसका नाम है, ये डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है. इसका मैंडेट बस इतना रहता है कि एक टाइम पर मिनिमम 10% इनको तीन एसेट क्लासेस में रखना चाहिए. जनरली ये देखा गया ये फंड्स इक्विटी, डेट और गोल्ड में ज्यादा एक्सपोजर रखते हैं, और इसमें डायनामिकली चेंज करते रहते हैं. तो मल्टी एसेट, अगर आप चाहते हैं कि ये एक्सपोजर आपके पास आए, एक ऐसा पोर्टफोलियो आपके पास रहे जो डायनामिकली चेंज करता रहे, तो आप बिल्कुल इसमें कर सकते हैं. बट इम्पॉर्टेंट बात ये रहती है, जब आप फंड सिलेक्शन पे जाएं तो आपको ये देखना पड़ता है कि हर फंड किस तरीके की इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि जब भी हम किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वी नो वॉट काइंड ऑफ रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ वी आर गेटिंग इन टू. तो यहाँ पर थोड़ी प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ वेयर द फंड इज इन्वेस्टिंग थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए बेटर रहता है कि पूरे अच्छे से हम रिसर्च करें. बट Having said that, मल्टी एसेट आपके पोर्टफोलियो में ना होकर अगर आप अलग से डेट और अलग से गोल्ड भी लेते हैं, तो भी आप कुछ मिस आउट नहीं कर रहे हैं एज सच. और आपका जो दूसरा सवाल था कि लमसम कहाँ किया जाए, तो मेरा मानना यह है कि लमसम से कोई आपको एक मैसिव फायदा अगर हो रहा होगा कहीं पे एज ऑफ टूडे, आपको नहीं पता है उससे एक मैसिव नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आप एक बड़ा अमाउंट एक ही साथ किसी एक ऐसी एसेट क्लास में डाल रहे हैं जहां पे जब चीजें हिलती हैं तो काफी बुरा हिल जाती हैं, और जब बढ़ती हैं तो काफी बुरा बढ़ जाती हैं. तो एक वो जो एक कॉइन फ्लिप वाली प्रोबेबिलिटी रहती है ना, उसमें मैं थोड़ा झिझकती हूँ करने से. तो लमसम पे मेरा मतलब, क्योंकि मैं खुद नहीं कर पाती हूँ, तो मेरी अप्रोच ऐसी रहती है कि इक्विटी में मैं लमसम ना करूँ. अगर आप मार्केट टाइमिंग करके फायदा उठाना चाह रहे हैं और आपको भरोसा है अपने आप पे, अपनी स्ट्रैटेजी पे, तो आप इसको थोड़े एक जो एक फन एलोकेशन होती है ना आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे, वो इम्पैक्ट ना करते हुए एक ऐसा अमाउंट लेना, ना ही वो आपके एक्सपेंसिस को इम्पैक्ट करिए, ना ही आपके पूरे बाकी के कोर को इम्पैक्ट कर रही है, और फिर ही आप ये डिसीजन लेना.
3: जी, और देखते हैं अब कि एफ पी आई का क्या हाल रहा है. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों, एफ पी आई ने अगस्त में अब तक भारतीय शेयरों में खरीदारी जारी रखी है. ताज़ा आंकड़ों के अनुसार एफ पी आई ने इस महीने अब तक भारत के शेयर बाज़ार में 23,544 करोड़ रुपए का निवेश किया है. कुल निवेश में 14,118 करोड़ रुपये स्टॉक एक्सचेंजों पर खरीदारी के माध्यम से आए, जबकि 9,426 करोड़ रुपए प्राथमिक बाजार के माध्यम से निवेश किए गए. जुलाई में तेज हुई खरीदारी की गति अगस्त में भी जारी रही, जिससे मजबूत हमारे मजबूत बुनियादी आंकड़ों और तिमाही आमदनी का समर्थन मिला है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में ज़्यादा बढ़े हुए मूल्यांकन को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण वैश्विक तरलता भी उभरते बाजारों की ओर वापस आ रही है. इस बीच ऋण बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के रुख में मिला जुला रुझान देखने को मिला है. अगस्त में अब तक एफपीआई ने जनरल लिमिट रूट के माध्यम से ऋण प्रतिभूतियों से 995 करोड़ रुपए निकाले हैं, जबकि वीआरआर से 83 करोड़ रुपए की निकासी दर्ज की गई. इसके उलट एफएआर से 852 करोड़ रुपये का निवेश हासिल हुआ है.
1: एंड विनोद जॉइन्स अस फ्रॉम दिल्ली, सवाल पूछे.
4: पूरी मार्केट ममता टीम को मेरी तरफ से नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
4: मैडम से ये जानना चाहूंगा कि मैं 2016-17 से अभी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हूँ, तो उसमें तरह तरह की मेरे पास स्कीम है, और लेकिन थोड़ा सा कुछ दिन से परिवार के दबाव में महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि वो कह रहे हैं इधर उधर की एग्जाम्पल सेट करके मुझे बताते हैं कि आप कुछ म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बेच के रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करो, बट मैं इस फैसले को लेकर

0: मुझे मैम थोड़ा गाइड करेंगे कि यह कैसा फैसला रह रहे हैं, क्या ये सही है कि वहाँ इक्विटी से कुछ यूनिट्स बेच के रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना, प्लीज बताएं।
1: जी विनोद जी, जैसे मैं पहले बात कर रही थी कि हम इंडिया में जनरली एक फिक्स्ड इनकम मार्केट बन जाती है, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स की जब हम बात कर रहे थे, तो रियल एस्टेट भी एक ऐसी मार्केट रही है जिसमें जो हमारे पेरेंट्स या उनसे पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वाले टाइम का ज़माना था, उसमें रियल एस्टेट को एक बड़ा अलग तरीके से देखा जाता था, इसीलिए शायद से आपके फैमिली आपको वो कह रही है। अब इंडिया में जो रियल एस्टेट की एक सिचुएशन रहती है उसमें एक तरीका ये देखा गया है कि आपको पता नहीं होता है कि आप जहाँ पे अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली में कंस्ट्रक्शन के बाद कुछ मटेरियलाइज होगा या नहीं होगा। एज एन एसेट क्लास जो लिक्विडिटी की एक प्रॉब्लम रहती है उसके बारे में कुछ हो नहीं पाता है या फिर काफ़ी हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी रहती है। तो मेरा मानना ये रहता है कि जब इक्विटी और रियल एस्टेट को कंपेयर करा जाए इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं आप चाहते हैं वो पैसा जब आपको चाहिए आप यूटिलाइज कर पाएं, क्योंकि नहीं तो हम इन्वेस्ट क्यों ही कर रहे हैं अपना पैसे बचा कर। तो लिक्विडिटी मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो म्यूचुअल फंड्स आपको बेटर देते हैं दैन रियल एस्टेट। बाकी अगर आप रियल एस्टेट का एक्सपोजर चाहते हैं तो अभी का टाइम एक ऐसा आया है जब रीट्स जो लिस्टेड रियल एस्टेट रहता है उनके एक्सपोजर पे आपको फंड्स आने वाले हैं। वैसा एक फंड अभी अभी लॉन्च हुआ है, उसका थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड होने देते हैं और हम तब देख सकते हैं कि अगर वो जो प्रॉमिस दे रहा है, क्योंकि वो एक इंडेक्स फंड है तो इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर का ज़्यादा स्कोप नहीं रहता है, तो एक चीज़ को ट्रैक करके आपको रिटर्न मिल जाता है जो एक रीट्स एज ए मार्केट का होता है। तो मेरे हिसाब से वो एक ज़्यादा बेनिफिशियल एरिया रह सकता है और आपको एट द सेम टाइम रियल एस्टेट का एक्सपोजर दे सकता है एक डिफरेंट तरीके से और एक लिक्विड तरीके से। तो जब इस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड बन जाता है आप इसको देख सकते हैं।
2: जी चेन्नई से काशीनाथ जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
3: हेलो
2: जी काशीनाथ जी, सवाल पूछें।
3: यस मैं काशीनाथ फ्रॉम चेन्नई। मेरा सवाल ये है कि आपने पहले जो सब फंड का नाम ले लेते थे, जैसे कि पहले अभी कुछ नाम नहीं लेते, मैं बहुत पुराना श्रोता हूँ, जैसे कि आप पहले बोल देते थे जैसे कि धीरेन्द्र सार ये सब बोलते थे, लेकिन अभी वो सिस्टम बंद कर दिए, ऐसा क्यों, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिएगा, धन्यवाद।
4: सो काशीनाथ जी, ये सिर्फ एक पॉलिसी मैटर है, जस्ट अ चेंज इन द सिस्टम इन विच द प्रोग्राम इज नाउ बीइंग प्रेजेंटेड, नथिंग मोर देन दैट।
2: जी, और ऐसा ना लगे कि हम किसी खास कंपनी या उसको बढ़ावा दे रहे हैं।
4: और जैसा कि हम कहते हैं कि पैसा आपका है तो सोच और समझ भी फाइनल और डिसीजन भी फाइनली आपका ही होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम दिल्ली, वरुण जी स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
5: मैम गुड इवनिंग।
4: गुड इवनिंग
5: मैम, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा दो फंड ऐसा है जो जिसमें पिछले एक डेढ़ साल से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, उसी कैटेगरी में दूसरा फंड अच्छा कर रहा है। अब मेरा जो कैपिटल गेन्स अगर मैं स्विच करता हूँ काफी ज्यादा बनता है, तो क्या मुझे कैपिटल गेन्स के बारे में ना सोच के क्या मुझे अभी दूसरा फंड में उसी कैटेगरी में स्विच करना चाहिए जो मैं करना चाहता हूँ उसी कैटेगरी में?
1: वरुण जी, अज्यूमिंग कि हम यहाँ पर इक्विटी फंड्स की बात कर रहे हैं, तो पहली बात कि एक डेढ़ साल बहुत ही कम टाइम हो जाता है इक्विटी फंड्स की परफॉर्मेंस पे एक डिसीजन लेने के लिए। मैं मानती हूँ निराशाजनक जब आपको अपना पैसा दिख रहा होता है तो डाउट हमेशा आता है, बट आप देखें तो मतलब ये साल तो स्पेशली सेंसेक्स ने भी कुछ रिटर्न नहीं दिया है। और जो सिचुएशन आप अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि सेम कैटेगरी में दूसरा फंड अच्छा कर रहा है, ऐसे करते करते आपको पता नहीं है कि कब ऐसा हो जाएगा जब आप एक कलेक्टर ऑफ फंड्स बन जाएंगे, क्योंकि ऐसा हर पल हर समय आपको लगेगा कि आप जिस फंड में इन्वेस्टेड है उससे बेहतर फंड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये एक हाइंडसाइट की बात हो जाती है। अब अगर आज हम चर्चा करते हैं कि कौन सा फंड अच्छा है कौन सा फंड बुरा है, तो उसका एक जवाब ये रहता है कि वक्त बताएगा और जब आपने इन्वेस्ट करा है तब उसके अकॉर्डिंग ही जज करना चाहिए। तो बिल्कुल जब भी हम ऐसे स्विचिंग कर रहे होते हैं हमें गेन्स और लोड्स का ध्यान रखना चाहिए, बट मेरे हिसाब से जो आप समय बता रहे हैं जितने होराइजन के लिए आप अभी इन्वेस्टेड रहे हैं, गिवन दैट ये वाला टाइम एज एन इंडियन मार्केट का भी काफ़ी फ्लैट टू फॉलिंग रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी आप अपना ये डिसीजन पे एक्ट ना करके थोड़ा समय और दीजिए, कम से कम लेट्स से 3 ईयर्स उस फंड को दीजिए परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि अभी उसने एक ही

0: साइकिल देखी है जब से आपने इन्वेस्ट करा है, जबकि अगर आप उसके रोलिंग रिटर्न्स जो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताता है कि डिफरेंट साइकिल्स में उसने कैसा प्रदर्शन करा है, उसको ध्यान में रखते हुए आई वुड से कि आप अपना ये डिसीजन अभी होल्ड करिए।
1: स्नेहा, लेकिन जब ऐसी बात करते हैं कि एक ही कैटेगरी के एक फंड में अच्छा प्रदर्शन है और दूसरे में उतना अच्छा नहीं है, मैं बुरा नहीं कहना चाहता, मान लीजिए अगर कितने के फर्क को हम माने कि हमें स्विच करने का फैसला लेना चाहिए, 0.2% का, 0.5% का, 1% का?
0: मेरा जो नज़रिया रहता है इसको देखने का वो इतना सा रहता है कि जब आपने इन्वेस्ट करा था किसी फंड में और जो एक दूसरा फंड है, पहले तो ये देखना चाहिए कि क्या वो दोनों सेम स्ट्रेटजीज भी हैं, क्योंकि एक कैटेगरी में, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, लेट्स से मल्टी कैप कैटेगरी में भी, जहाँ पे सेबी कहता है कि आप इतना इतना इतना पोर्शन लार्ज मिड स्मॉल में डाल सकते हैं, वहाँ पे भी जिस जो पोर्शन एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, वहाँ पे सब एक्टिव फंड मैनेजर्स डिफरेंट अप्रोचेस रखते हैं। तो सिर्फ नंबर देखकर तो कभी डिसाइड नहीं करना चाहिए कि कितने नंबर पे हम स्विच कर लें, क्योंकि सबके लोड, सबके एक्सपेंसेस अलग अलग रहेंगे, मतलब इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन टैक्सेस, क्योंकि डिपेंड करता है आपने कब इन्वेस्ट करा है। किसी ने एक ही साल में करा है तो उनका शॉर्ट टर्म गेन लग जाएगा, शॉर्ट टर्म टैक्स लग जाएगा, तो वो जो जितना डिफरेंशियल के लिए वो उधर जा रहे हैं उन्हें यहाँ पर देना पड़ रहा है, जिसने थोड़े लंबे समय के लिए किया हुआ है, तो ये सारे डिसीजंस काफ़ी कंफ्यूजिंग रहते हैं एक आम निवेशक के लिए। इसलिए बेटर ये रहता है कि आप एक टाइम दीजिए उस फंड को। बाकी अगर आपको बहुत घबराहट हो रही है उस फंड से, तो फिर तो आपको ये देखना चाहिए कि आप सही एसेट क्लास में है भी या नहीं।
1: चलते हैं अगले कॉलर के पास। नोएडा से रविंदर हमारे साथ हैं। रविंदर, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
2: Yeah, good evening, madam. I have one question regarding the electronic gold receipts. How to trade in the Zerodha or Grow platform, whether it is tradable or any other way to trade?
0: Right. So as far as my knowledge goes on the electronic gold receipts, they are very much available on the NSE platform. As in, they were introduced by NSE and they allow investors to buy and hold and sell physical gold digitally through a DMAT account. When compared to ETFs, I still feel that ETFs would be a better option, since they let you stay away from physical gold, which also gets its, certain traits like storage costs and the anxiety that your physical gold is somewhere else and not near you. Is everything gets protected when you invest in a gold ETF, where the money is really not in terms of that physical gold, because in your hand it's just the units, while it's otherwise when it goes to EGRs. So EGRs may suit those who are wanting direct gold ownership, and while ETFs are ideal for investors seeking more liquid passive price exposure. But all said and done, if you want to trade in EGRs, then you can do so directly on NSE platform.
1: अपने सोने की बात की तो चलिए हम श्रोताओं को बता दें कि इस हफ्ते सोने का हाल क्या रहा। कमज़ोर अमेरिकी डॉलर और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में तत्काल वृद्धि की आशंकाओं में कमी के चलते सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तीसरे सप्ताह बढ़त जारी रही। अमेरिकी ट्रेजरी द्वारा लंबी अवधि के बॉन्ड बायबैक को दोगुना करने के फैसले से लंबी अवधि के बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है, जिससे कीमती धातुओं की मांग में और वृद्धि हुई। एमसीएक्स पर अक्टूबर अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में सप्ताह के दौरान 5.1% की वृद्धि हुई और ये 1,62,438 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। सितंबर अनुबंध के लिए चांदी के वायदा भाव में 4.5% की वृद्धि हुई और ये 2,46,597 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। कॉमेक्स में अक्टूबर अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में सप्ताह के दौरान 5.5% की वृद्धि हुई और ये $4,645.10 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुआ। सितंबर अनुबंध के लिए चांदी के वायदा भाव में सप्ताह भर में 6.8% की वृद्धि हुई और ये $69.53 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुआ।
3: ऑल राइट, नाउ लेट्स कनेक्ट विद रवि नारायण फ्रॉम बिलाई। जी सवाल पूछे।
4: तो मेरा सवाल है कि मैं एक SIP में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और मेरे पोर्टफोलियो में जो है एक ही अच्छे भारत के लीड बैंक के पोर्टफोलियोज हैं सारे, और इक्विटी है और फोकस इक्विटी और मल्टी कैप वगैरह है, और करीब करीब 100% का इजाफा है, मैंने मेरे इन्वेस्टमेंट का 100% का इजाफा है। तो क्या मुझे मुझे अभी फंड की कोई जरूरत नहीं है, तो शुड आई कीप ऑन कंटिन्यूइंग और मुझे इसका कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, मुझे फंड की कोई आवश्यकता

0: can he remain in the funds?
1: Right. So, sir, even if you're sitting at 100% gain and the situation of your life is that you don't need that money right away, then you might as well continue your investments in the selected funds, because selling them and booking profits would only mean that, you know, that fund will, that money will eventually land in your bank account, and then the risk of consumption, like I was discussing earlier, kicks in. So it's a happy situation, and I believe since you're a long-term investor, you can continue investing in those funds.
2: एक बात इन्होंने और कही थी कि ये एक ही फंड हाउस के फंड्स हैं।
1: यहाँ पे जरूर मैं आपको बोलना चाहूंगी, व्हेन इट कम्स टू डाइवर्सिफिकेशन, द डाइवर्सिफिकेशन एज अ प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड ऑफर्स यू, बट एट एन इन्वेस्टर लेवल डाइवर्सिफिकेशन किक्स इन व्हेन यू आर स्प्रेडिंग योर मनी अक्रॉस डिफरेंट फंड्स, लाइक यू सेड फोकस्ड मल्टी कैप. इट ऑल्सो is important that you are investing in more than one AMC, because generally AMCs tend to follow a holistic or a one-stop investment philosophy at a fund house level, and then according to SEBI mandates, run the portfolio constructions as per SEBI mandates. If the market is not favoring that particular philosophy at one point in time, then definitely you can be in a situation where the AMC level risk kicks in. So definitely you should look to spread beyond that particular AMC.
3: All right, moving on to the next big story of the day. Tensions between Washington and Tehran escalated further after US President Donald Trump again shared an image that depicts the strategically vital Strait of Hormuz as new US territory. The latest post follows Trump's earlier sharing of the identical graphic on 18th of this month, after he previously floated the prospect of claiming jurisdiction over the waterway. Iran had reiterated that the crucial maritime corridor will remain closed unless the United States alters its stance. Rejecting Washington's territorial assertions, Iran's Supreme National Security Council Secretary Mohsen Rezaei launched a sharp critic against the US President's statements. He said the gap between America's inability to reopen the Strait of Hormuz and its claim to own it is greater than the 7,000-mile distance between Washington and the Strait itself. The rhetoric comes as the United States prepares to roll out a additional economic measures targeting Tehran.
2: जी, और ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रज़ाई ने पड़ोसी देशों को ईरान के खिलाफ अमेरिका के आर्थिक अभियान में शामिल न होने की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि इस तरह की भागीदारी से ईरान उन्हें दुश्मन मान लेगा. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग को दिए गए एक साक्षात्कार में रज़ाई ने कहा कि ईरान तनाव बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पड़ोसी देश अमेरिका के आर्थिक दबाव का समर्थन करते हैं तो ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा. उन्होंने ये भी कहा कि अगर क्षेत्रीय देश अमेरिका के अभियान में शामिल होते हैं तो ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल निर्यात रोक सकता है.
3: एंड लेट्स आस्क जितेंद्र जी फ्रॉम जयपुर व्हाट हिज क्वेश्चन इज.
4: हाँ, समय कम है तो शॉर्ट भी पूछ लेता हूँ. जैसे मल्टी कैप फंड है, दो फंड हाउस के बीच में कंपेयर करना रहा तो उसको स्टडी करने के लिए क्या क्या पैरामीटर रखते थे?
1: जितेंद्र जी, किसी भी कभी भी जब आप एक कैटेगरी में दो फंड्स का चुनाव कर रहे होते हैं तो सबसे पहली चीज देखनी चाहिए कि वो फंड अपने बेंचमार्क्स को कितने अच्छे से बीट कर पा रहा है हर मार्केट साइकिल में, जो कि रोलिंग रिटर्न से हम पता कर सकते हैं, जो आजकल हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहता है. ये आपको बताता है कि मार्केट के उतार चढ़ाव में उस फंड ने कैसा प्रदर्शन करा है. बाकी मल्टी कैप में इंपॉर्टेंट रहता है कि आप देखें कि वो जो बचा हुआ 25% रहता है जहां पे एक फंड मैनेजर अपना डिसीजन ले सकता है, तो वो क्या डिसीजन लेता आया है और आप कितना उस डिसीजन से ओके हैं. अगर आप लार्ज कैप टिल्टेड पोर्टफोलियो चाहते हैं तो आप ऐसे फंड मैनेजर को देखिए. जनरली ये डायनामिक रहते हैं, बट एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो आप देखें अगर, तो आपको ये चुनाव करने में मदद कर सकता है. दूसरा एक रहेगा कि आप ये देखें कि वो एक्सपेंस रेशियो में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो. ये कुछ चीजों को देखकर आप चुनाव कर सकते हैं.
3: All right, now let's take a peep into how the markets are expected to show up next week after a stronger than expected earnings season. Domestic investors are heading into a week packed with key market triggers including macroeconomic data, global events, US bond yield trends, foreign institutional investor flows, commodity prices and currency movements. Market participants will closely monitor the industrial production data and the latest forex reserve figures. Meanwhile, the primary market is set for another busy week.

0: with 5 new mainboard IPOs opening for subscription and 7 mainboard IPOs scheduled to make their stock market debut.
1: और आज वक्त इतना ही है, कुछ श्रोताओं से हम क्षमा चाहेंगे जिनके कॉल्स हम आज शामिल नहीं कर पाए. स्नेहा, कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
2: जी, धन्यवाद.
0: Listeners, before we wrap up today's show, a reminder of the headlines. Foreign portfolio investors infuse over 23,000 crore rupees into Indian equities in August so far. In bullion market, gold and silver prices rise for third straight week and situation in West Asia remains tense. And with that, we end today's Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 11:41 और 8 सेकंड और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में सुनहरे दौर के उस बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है, जिसे आप बार बार सुनना चाहते हैं, जिसे बार बार आप गुनगुनाना चाहते हैं। कभी कभी कोई नगमा सिर्फ गीत नहीं होता बल्कि मोहब्बत की एक खूबसूरत दास्तान बन जाता है। आज का एहसास ही हमारा पुराना कोई ना कोई नाता जरूर जोड़ता है। फिल्म चोरी चोरी का ये सदाबहार नगमा भी कुछ ऐसा ही है। और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फिरोज। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। तो आइए थोड़ी सी बात कर ले फिल्म चोरी चोरी की। साल था 1956 का, जब लता मंगेशकर जी और मन्ना डे जी की दिलकश आवाजों ने इस गीत में इश्क की नजाकत और मिलन की बेकरारी को बेहद खूबसूरती से पिरोया। गीतकार हसरत जयपुरी के अल्फाज और संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के मधुर धुन ने एक ऐसा गीत रचा जो हम सबके दिल में बस गया। तो जरा आंखें बंद कीजिए, बीते जमाने की उस हसीन शाम को महसूस कीजिए और दिल से कहिए, मोहब्बत भले पुरानी हो जाए मगर उसके नगमे कभी पुराने नहीं होते, बिल्कुल इस नगमे की तरह।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर। शमशाद बेगम की बेहद खूबसूरत आवाज आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत की इस दिलकश महफिल में। आज की महफिल में बात अब उस नगमे की जिसने बेफिक्री, तन्हाई और आजाद मिजाज जिंदगी को एक ऐसी आवाज दी जिसे सुनकर हर दिल मुस्कुरा उठता है। साल था 1951 का और एक फिल्म आई थी आवारा, और आवारा फिल्म की जब बात चली है तो उसका बेहद खूबसूरत नगमा आपको याद तो आ ही गया होगा। इस गीत को अपनी दर्द भरी मगर बेहद दिलकश आवाज दी मुकेश साहब ने। गीतकार शैलेंद्र ने अपने सादे मगर गहरे अल्फाज में एक ऐसे इंसान की कैफियत बयां की जो दुनिया की बंदिशों से दूर अपनी राह पर चलना चाहता है। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने इस एहसास को ऐसी पुरकशिश धुन दी कि गीत हमेशा के लिए अमर हो गया। कभी कभी जिंदगी हमें मंजिल से ज्यादा सफर का मजा सिखाती है, और सफर बेहद खूबसूरत लगता है, और शायद यही इस नगमे का पैगाम भी है। अपनी राह चुनिए, मुस्कुराइए और फिक्र को पीछे छोड़िए और इस बेहद खूबसूरत नगमे में खो जाइए।

मुकेश साहब और लता जी के गाए फिल्म अनाड़ी के इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज़ को अब दीजिए इजाज़त गीत मेरे मनमीत से। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद मंजू रहेंगी आपके साथ लेकर अगला प्रोग्राम। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी हमारी मुलाकात। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। कल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रूपये की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। सिक्किम के नाथुला दर्रे के रास्ते से होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा कल संपन्न हो गई। इसके माध्यम से 464 तीर्थयात्रियों ने 10 जत्थों में यात्रा की। यह यात्रा 20 जून को आरंभ हुई थी और अंतिम जत्थे के गंगटोक आने के साथ ही संपन्न हो गई। तीर्थयात्रियों ने चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा की। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, झारखंड, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना है। फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल की महिला टीम ने कल कोटा के नाबालू में एएफसी महिला चैंपियंस लीग 2026-27 के ग्रुप ए के आखिरी शुरुआती दौर के मैच में मलेशिया के सबाह फुटबॉल क्लब को 2-0 से हरा दिया। इस शानदार जीत के साथ ईस्ट बंगाल ने लगातार दूसरे साल टूर्नामेंट के मुख्य ग्रुप चरण में प्रवेश कर लिया है। अब ईस्ट बंगाल की पुरुष और महिला दोनों टीमें एक ही सीजन में एएफसी ग्रुप स्टेज में हिस्सा ले रही हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India.
1: आपने नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है।
3: Mr. Modi stated this during an interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on National Space Day yesterday, Prime Minister Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures. During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. Defence Minister Rajnath Singh has stressed the need for self-reliance in building warships, offshore vessels and related maritime sectors, describing it as vital to the country's security. Mr. Singh was addressing the gathering after laying the foundation stone for 5 expansion projects of the Garden Reach Shipbuilders and Engineers, GRSE, and Yantra India Limited, worth approximately 34,000 crore rupees in Kolkata. The Defence Minister asserted that India is capable of becoming a global shipbuilding hub and called for high-quality maintenance services and timely delivery of defence products to achieve this goal. Indian Council of Medical Research, ICMR, has clarified that no new strain of H1N1, commonly known as swine flu, has been identified and there is no cause for panic, assuring that current vaccines remain effective. According to senior scientists at the ICMR, these viruses have been in circulation since the year 2025. According to ICMR, seasonal influenza, including H1N1, is mostly self-limiting. Common symptoms include fever, cough, headache, and body ache, and most people recover with appropriate care and rest. The National Skill Development Cooperation, the National Skill Development Corporation, NSDC, and Cultus Education have announced the launch of a nationwide cloud and artificial intelligence skilling initiative in collaboration with Amazon Web Services, AWS. The program aims to provide foundational AI and cloud literacy to 1,50,000 learners through AWS digital training content and to offer intensive job-ready training to 10,000 participants through the AWS Restart program, focusing on youth in Tier 2 and Tier 3 cities. The BRICS Sports Ministers meeting concluded at Visakhapatnam in Andhra Pradesh with unanimous adoption of the Sports Joint Declaration. The declaration affirms the commitment of the member countries to strengthen cooperation in sports through dialogue, mutual respect and inclusiveness. The meeting was held under India's BRICS chairship 2026.

0: In Madhya Pradesh, 9 people trapped in the strong current of the Gadheri River in Sagar district were safely rescued by a joint team of police, SDRF and Home Guards. Heavy rain on August 22 caused the river to rise near the Upchand Caves. The rescue team trekked nearly 4 kilometers through dense forest and difficult terrain before SDRF personnel entered the river and rescued all 9. They were given medical checkups and found safe before being reunited with their families. The Kailash Mansarovar Yatra through Sikkim's Nathula route concluded with 464 pilgrims completing the pilgrimage in 10 batches. The Yatra, which began on 20th June, concluded with the return of the final batch of pilgrims to Gangtok. The pilgrims visited Mount Kailash and Lake Mansarovar in the Tibet Autonomous Region of China. In football, East Bengal FC entered the main draw of the AFC Women's Champions League 2026-27 by beating Malaysia's Sabah FC 2-0 in their final Group A preliminary stage match in Kota Kinabalu. In men's cricket, India were 300 for 5 in their first innings against host Sri Lanka at stumps on day one of the second and final test in Colombo. Dhruv Jurail and Saransh Jain were at the crease at the draw of stumps last evening. And that is the end of this news bulletin.
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
3: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, मन की बात के विस्तार के रूप में आज हम इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं दो भेंट वार्ताएं, जो ऐसे विषयों पर आधारित हैं जो हमारे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, अमृत सरोवर और कैच द रेन। लेकिन आइए सबसे पहले सुनते हैं इन विषयों के बारे में मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्गार।
4: मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से गाद निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है।
3: रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, ये दोहे की केवल एक पंक्ति नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों का भाग्य तय करने वाला सच है। पानी जो हमारी प्यास बुझाता है, फसलों में जान डालता है और जीवन का आधार बनता है। लेकिन ये भी सच है कि अगर यही पानी, यही जल धीरे धीरे हमारी जमीन से गायब होने लगे तो सब तबाह होना शुरू हो जाएगा। इसी जल संकट को दूर करने और हमारी आने वाली पीढ़ियों के कल को सुरक्षित करने के लिए शुरू हुआ एक अनूठा अभियान, मिशन अमृत सरोवर। अमृत सरोवर केवल पानी का तालाब या पोखर नहीं है, बल्कि ये हमारी ग्रामीण संस्कृति, सामुदायिक एकता और जल संरक्षण की एक नई क्रांति है। देश के हर जिले में 75 ऐसे तालाबों का पुनरुद्धार और निर्माण किया जा रहा है जो भूजल

0: स्तर को बढ़ाने के साथ साथ हमारे गांवों को एक नया जीवन दे रहे हैं। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में लीजिए, आपको सुनवा रहे हैं ऐसी ही एक प्रेरित करने वाली भेंट वार्ता। ये रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी जबलपुर के सौजन्य से प्राप्त हुई है।
1: श्रोताओं, बहुत बहुत नमस्कार, मैं हूँ प्रशांत परमार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जल संरक्षण, कैच द रेन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के महत्व को बताते हुए देश भर में हो रहे उल्लेखनीय कार्यों का जिक्र करते हुए नरसिंहपुर जिले में अमृत सरोवरों के संवर्धन और पुनर्जीवन की सराहना की। प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्रीय मंच से जिले के कार्यों का उल्लेख किया जाना निश्चित रूप से नरसिंहपुर जिले के लिए गौरव और सम्मान का विषय है। इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए हमने हमारे विशेषज्ञ अतिथियों को आज आमंत्रित किया है। श्रीमती रजनी सिंह, कलेक्टर जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नरसिंहपुर श्री गजेंद्र सिंह नागेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
1: रजनी मैम, अमृत सरोवर का जब जिक्र होता है तो एक छवि हमारे मानस पटल पर बनती है, साफ स्वच्छ पानी से लबालब भरे हुए तालाबों की, सरोवरों की। और जब स्वयं प्रधानमंत्री जी मन की बात कार्यक्रम में इसका उल्लेख कर रहे हों तो हम विस्तार से जानना चाहेंगे कि अमृत सरोवरों के संवर्धन, जल संरक्षण, जल स्रोतों के संवर्धन के लिए आपने किस प्रकार कार्य किया, किस प्रकार इसकी योजना तैयार की गई और कैसे इस पूरे अभियान को अंजाम दिया गया।
3: पिछले कई वर्षों से लगातार भारत सरकार के द्वारा और मंत्री शासन द्वारा जल संरक्षण को लेकर कई प्रयास किए जा रहे हैं। उसी तारतम्य में JSJB जल संचय जन भागीदारी अभियान और मत्स्य शासन का जल गंगा संवर्धन अभियान, ये प्रारंभ किए गए हैं। इन्हीं दोनों अभियानों के अनुक्रम में जिले में अमृत सरोवरों का ये काम प्रारंभ हुआ था और पिछले दो वर्षों में लगभग 63 अमृत सरोवर जिले में निर्माण किए गए। इन जो अमृत सरोवर बनाए गए हैं उनमें, क्योंकि समय के साथ आप देखते हैं कई बार गाद भर जाती है या थोड़ा जल स्तर कम हो जाता है, तो इनका संरक्षण किया जाना, लगातार इनमें जल भराव इसका मेंटेन रहे, ये सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो इस वर्ष हम लोगों ने जब जल संचय जन भागीदारी का काम और कैच द रेन कैंपेन जो भारत सरकार ने शुरू किया उसके अंतर्गत जो हमने कुछ काम लिए उसमें अमृत सरोवरों को मुख्य रूप से लिया गया, क्योंकि अमृत सरोवर के जो साइज होते हैं वो उस क्षेत्र में एक बड़ा जल भराव का सेंटर होता है और उस क्षेत्र में जल का हम कहें संग्रहण का एक अच्छा माध्यम बनता है। वो हम लोगों ने प्लानिंग की कि पहले हमने चिन्हित किए कि कितने हमारे पास अमृत सरोवर बने हुए हैं और हमारे जो कुछ अपूर्ण थे उनको पूर्ण करना, हम उनको पूर्ण कर पाए, और जो निर्मित हो गए हैं उनमें गाद निकासी करके उनकी जल भराव क्षमता को मेंटेन करें। तो हम लोग लगभग जनवरी फरवरी में इसकी कार्ययोजना बनाई और इसके साथ ही जैसे मैंने कहा कि जल संचय जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत हमने जो हमारे खेत तालाब, जो भी एक तरह के सरोवर होते हैं जो छोटी साइज के रहते हैं, तो खेत तालाब लगभग हमने 1100 खेत तालाबों की योजना बनाई जिन्हें हमें पूर्ण करना था। और इन दोनों ही, जो हम अगर तालाबों की बात करें तो दोनों ही कार्यों में लगातार प्रयास करके हम लोगों ने जून तक सभी एक तो कार्य पूर्ण किए जो अधूरे थे और जिसकी क्षमता कम हो गई थी उनको, उनकी जल भराव क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया, जिससे कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मुख्य ध्येय वाक्य होता है कि कैच द रेन वेयर इट इज, जो है उसको लेके हमने प्रयास किया कि हम उसको चरितार्थ कर पाए और अधिक से अधिक वर्षा जल को संचय कर पाए अपने जिले में।
1: जी गजेंद्र सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे अभियान में, इस पूरे जल संरक्षण और अमृत सरोवर के अभियान में सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी बाधा क्या रही मैदानी स्तर पर नरसिंहपुर जिले में कार्य करते हुए, जब आपने जल संरक्षण का कार्य और अमृत सरोवरों का संवर्धन का कार्य शुरू किया, सर आपसे जानना चाहेंगे।
4: देखिए, जहां तक जल संरक्षण के कार्यों में समाज के रुख का प्रश्न है, थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं धारणा है कि कोई काम अगर सरकार नीत है तो वो काम सरकार के नुमाइंदे ही करेंगे, एक ऐसी धारणा। तो कम्युनिटी एंगेजमेंट जो हम समझते हैं कि जल के विषय में तो अनिवार्य आवश्यकता है, हम बिना समाज के, बिना स्थानीय संसाधनों के, मानव प्रबंधन के, महिलाओं के, युवा साथियों के नहीं किया जा सकता। तो जब हमने इन जल इकाइयों के निर्माण या कि उनकी पूर्णता का विषय रखा तो सहज रूप से जो एक पहला रहता है कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कि वो परखते हैं, थोड़ा देखते हैं कि आप किस स्तर की बात कर रहे हैं, वो उसमें औपचारिकता है या वास्तविक रूप से आप उसमें अपना इनपुट दे रहे हैं, तो लोग धीरे धीरे शामिल हुए। और पहले उनकी जो जिज्ञासा थी वो कुछ प्रश्नों के रूप में थी, लेकिन वो बाद में कहीं ना कहीं समागम के रूप में और साहचर्य के रूप में आती चली गई। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि गोटेगांव जनपद में मेख में एक तालाब था, लगभग 1959 में वो वहां के कुछ परिवारों ने दान दिया था जल संरक्षण इकाई के लिए, बाद में वो फिर अतिक्रमण होकर और उसमें खेतियां होती रही। लेकिन इसी अभियान में जब उसको लिया गया और गांव ने ही सहयोग करके उस पूरे 21 एकड़ को एक जल इकाई के रूप में, सरोवर के रूप में विकसित किया। और ये जल संरक्षण के जो कार्य हैं, न केवल ये केवल भौतिक उपागम है या कि जल ही रोक रहे हैं, लेकिन समाज को भी कहीं ना कहीं जोड़ रहे हैं, एक महत्वपूर्ण बात है।
1: एक प्रशासक के तौर पर क्या चुनौतियां रही आपके लिए?
4: एक तो नरसिंहपुर के लिए अगर हम बात करें, नर्मदा जी का कछारी क्षेत्र है, परंपरागत रूप से इसमें जल का स्तर रहा है, भूमिगत जल का स्तर काफी अच्छा रहा, लेकिन इधर धान, गेहूं और आपके गन्ने की फसल जो कि थोड़ा सा ज्यादा पानी की खपत करते हैं, उनके लगातार उपयोग से और बोरिंग की अधिकता के कारण जिले में जल का स्तर बहुत तेजी से डिप्लीट किया है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ खेती में कई कई दफे एक एक किसान के पास 6-6, 8-8 बोर है, वो असफल हुए, और लगभग 3-4 क्रॉप का जिला है, तो वो जब रबी से लेके जब सिंचाई गर्मी के पूरे सीजन होती है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि भूगर्भीय जल का स्तर कैसे गिरेगा। तो लोगों को इस बात के लिए तैयार करना कि उनकी उपजाऊ भूमि में ही हम जल इकाइयां का निर्माण करें और उसके अपने हिस्से की जमीनों को वो कुछ मामला में जल संरक्षण के लिए छोड़ा, ये समझाना एक महत्वपूर्ण बात है। फिर मतलब ऐसे भी उदाहरण देखे गए कि फॉर्म पॉन्ड बने हुए हैं और उसमें वो पानी न रोकते हुए उसमें वो दूसरी खेती करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरीके से उनके कुछ धारणाओं को थोड़ा सा परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। फिर स्थानीय समुदाय को जोड़ना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। पंचायत के हमारे जो इकाई हैं, सरपंच सचिव हैं, जो कि निश्चित रूप से उनका भी मानस वही होता है जो गांव का होता है लगभग, तो उससे फिर अपना अभिष्ट निकालना, उससे वो सहयोग प्राप्त कर लेना, स्वीकृत कार्यों को पूरा कराना, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। तो जैसे कि माननीय मैडम ने कहा कि 1500 से अधिक हमारे ऐसे काम जो मनरेगा के रहे हैं, उनको भी इसी अवधि में हमने पूरा कराया है और लोगों का सहयोग लिया है। और फिर बाद में तो बात ये हुई कि लोगों ने खुद आगे बढ़ के सहयोग दिया, विभिन्न इकाइयों ने, और वो हमारे चाहे इंडस्ट्रीज के लोग हैं, उन्होंने भी मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाया।
1: यानी कि एक समन्वित प्रयास रहा है पूरे जिले का, तब ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। गजेंद्र जी, जल संरक्षण, संवर्धन और अमृत सरोवर के इस पूरे अभियान के बाद स्थानीय लोगों को, किसानों को इस पूरे अभियान से किस प्रकार लाभ पहुंचा है, क्या बदलाव देखने को मिला है?
4: देखिए, निश्चित रूप से मतलब खासकर अगर खेती के कार्यों के लिए देखें तो जल की तो आवश्यकता है, बाकी निस्तारी प्रयोजन के लिए भी और प्रत्येक चरण में जल की उपलब्धता तो बहुत आवश्यक है। जब हमने अमृत सरोवर और फार्म पॉन्ड को निर्मित किया तो सामुदायिक स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर भी लोगों ने सिंचाई के लिए उनका एक विकल्प के रूप में उपयोग किया और वो जो उनकी क्रॉप निकल के आई वो उनके लिए निश्चित रूप से एक गिफ्ट थी, तो वो एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यह है कि हमको ये भी देख के काफी अच्छा लगा कि लोगों ने उसको भी कुछ अलग तरीके से देखा, जैसे फार्म पॉन्ड में उन्होंने जल की उपलब्धता के साथ मछली पालन किया, कुछ लोग पल्स के लिए भी जा रहे हैं या इस तरीके से, और ये भी मतलब इस तरीके का क्वांटम की अंडरग्राउंड वाटर की तुलना में जो सरफेस वाटर है वो कैसे फसल को ज्यादा बेनिफिट करता है, तो ये अब अल्टीमेटली धीरे धीरे बात इस तरीके से भी जा रही है कि वो लोग जो शुरू में थोड़ा सा रिलेक्टेंट रहते थे, अब वो उनका और भी रहता है कि हम कैसे बेहतर करें। जैसे हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि खेतों में इस तरीके के रिचार्ज पिट बने जहां पे कि खेतों का पानी जब बाहर चला जाता था उसकी तुलना में वो अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करे, इस तरीके के सिस्टम बनाने की भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और जो असफल बोर हैं उनमें भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग रिचार्ज पिट बनाएं, सो दैट कि पानी अगर वो बोर नहीं दे रहे हैं तो हम उनके माध्यम से पानी भूगर्भीय सतहों में प्रवेश करा सकें।
3: इसमें बस मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि क्या मतलब प्रभाव रहा, तो इसमें हम लोग जब इस अभियान के लिए गांव-गांव जा रहे थे तो कुछ किसानों ने स्वयं अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि उनके जो एक खेत में 6-8 बोरवेल करा चुके हैं, किसी में पानी नहीं निकल रहा है, उसके बाद उनने खेत तालाब 3-4 बनाए और 1-2 सालों के अंदर उनके सभी जो पुराने बोर थे उसमें पानी का लेवल आ गया। तो ये अपने आप में एक बड़ी लर्निंग है यानी किसानों के लिए कि आप अनलिमिटेड एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं, मतलब जो आपका भूगर्भीय जल है उसको, और फाइनली हमको सरफेस वाटर पर निर्भर होना ही पड़ेगा, तो अगर उस पर हम निर्भर रहे सिंचाई के लिए मुख्य रूप से अपने पास, तो हम एक तो भूगर्भीय जल को बचा सकते हैं और दूसरा उसको मतलब उसको रिजुविनेट भी कर सकते हैं, उस सोर्स को वो भी हम कर सकते हैं। तो ये उनके खुद के अनुभव है जो हम लोगों ने उसको प्रयास किया कि उन किसानों को जो अपनी विभिन्न सभाएं हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, जहां भी हम वर्कशॉप कर रहे हैं, वहां उनको ही बोलें कि अपने अनुभव शेयर करें, जिससे अन्य लोग उससे थोड़ा सा प्रेरित हों और अपने यहां उसका उपयोग करें।
1: निश्चित रूप से आपके प्रयासों से स्थानीय लोगों को काफी फायदा हुआ है और जल संरक्षण के प्रति लोग ज्यादा जागरूक और संवेदनशील हुए हैं। श्रोताओं, जल संरक्षण पर बहुत ही अच्छी चर्चा हमारी चल रही है और अब बारी है गजेंद्र सर आपकी पसंद के एक गीत की।
4: जीवन में आपको हर जगह संघर्ष की स्थितियां रहती हैं। मेरी जंग फिल्म का एक गाना है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है।
1: जी जी जी,
4: श्रोताओं को अगर सुना सके तो बहुत
1: अच्छा। बिल्कुल, आइए सुनते हैं ये गीत। गजेंद्र सर, आपने अमृत सरोवर जल संरक्षण और पुराने जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन का जो पूरा अभियान स्तर पर कार्य किया, हम जानना चाहेंगे कि क्या शुरुआत में जिस लक्ष्य

0: को आप लेकर के चल रहे थे वो पूर्ण हो गए, और भविष्य में इस अभियान को लेकर के आपकी क्या योजनाएं हैं?
1: देखिए, जो नेशनल ग्राउंड वाटर बोर्ड है उसकी एक रिपोर्ट है, एक तो इंडिया वाइड हमने अंडरग्राउंड वाटर का बहुत व्यापक दोहन किया है। नरसिंहपुर भी उन जिलों में एक है जो अब रेड जोन में है, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर को बोर के माध्यम से एग्जॉस्ट करने की वजह से बहुत हम उस वाटर टेबल

0: सरकारी और सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से, स्थानीय सहभागिता के माध्यम से, जो बेसिकली बायर्स हैं सोसाइटी के, उनके साथ अगर हम कर रहे हैं तो शायद उम्मीद की जा सकती है कि ये सस्टेनेबल हो सकेगा। लेकिन आवश्यकता हमारे निस्तारी प्रयोजनों के साथ साथ अगर खेती की भी है, एक बात होती है कि खेती को हम ज्यादा उपादेय और लाभ के रूप में हम ले जाएंगे, क्योंकि कृषकों के लिए वो एक चुनौती हमारी है, हम कृषक बाहुल्य जिले भी हैं, तो हमें पानी की निरंतरता भी चाहिए और उसकी सततता भी चाहिए। तो हमारे लिए ये काम निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसको मानते हैं कि शुरुआत ही हमने की है। एक महत्वपूर्ण बात मैं ये कहूंगा कि नरसिंहपुर जिले को माँ नर्मदा की गिफ्ट मिली हुई है। लगभग 146 किलोमीटर का तट है दोनों क्षेत्रों में मिला के उत्तर दक्षिण में, तो बड़ा क्षेत्र नर्मदा जी के जल से सिंचित होता है और लगभग 24-25 ऐसी नदियां हैं जो कि उसको कहीं ना कहीं से अपनी सहायकता प्रदान करती हैं जलों के रूप में, जो खासकर विंध्य और सतपुड़ा से जो नदियां छोटी छोटी निकलती हैं वो अपना जल भी उनको वापस देती हैं। लेकिन हम अगर हर जगह पे, हर खेत में, हर गाँव के लिए अगर कार्य योजना नहीं बनाएंगे तो वो एक मुश्किल होगी। एक हम लोग अपने जिले में नर्मदा समृद्धि परियोजना के माध्यम से हमने विभिन्न प्रकार की गतिविधियां ली हैं, जिसके अंतर्गत जैसे मैडम ने बताया कि करीब 900 एकड़ से ज्यादा जमीन हमने उसको जो ट्रेडिशनल धान्य फसलें हैं उससे हटके हम उसको वानिकी और उद्यानिकी के लिए ले जा रहे हैं, और ऐसी जमीनें हमने विधिवत फेंस करके सुरक्षित करें। कम्युनिटी को, विशेष रूप से स्व सहायता समूहों को, उसको अनुबंध के माध्यम से कुछ जमीनें दे के एक निश्चित अवधि के लिए ये प्लानिंग है कि हम उनको दें और ये तय कर सकें कि नर्मदा जी के संरक्षण के लिए भी जल की उपलब्धता सतत बनाए रखने के लिए भी क्या आवश्यक है। तो क्या हम सॉइल इरोजन रोक रहे हैं, क्या हम रासायनिक खेती के स्थान पर प्राकृतिक खेती को बढ़ा पा रहे हैं और वो एक सस्टेनेबल मॉडल के रूप में आ रही है, क्या हम बी कीपिंग जैसे भी चीज कर रहे हैं जो ओवरऑल पूरे इकोसिस्टम को नेचुरलाइज कर पा रहे हैं। तो नर्मदा समृद्धि समितियां हर ऐसे 91 गांव में बनी जहां से नर्मदा जी प्रवाहित होती हैं, और अपेक्षा समिति के माध्यम से स्थानीय पंचायत के लोग और स्थानीय समुदाय को जोड़ने से है कि हम ये तय करें कि क्या नहीं करना है। मसलन जैसे कि जो नॉन डिग्रेडेबल गार्बेज है वो बहुत बड़ी चुनौती है, अजैविक कचरा, खासकर अगर देहातों की बात करें क्योंकि शहर में की तुलना में वहाँ कहीं प्रसंस्करण नहीं है, बहुत ज्यादा कलेक्शन का भी एक वातावरण निर्माण की आवश्यकता है। तो वो जितना भी अजैविक कचरा, वो चाहे पनी प्लास्टिक के रूप में, डिस्पोजल के रूप में होता है, वो नदियों के माध्यम से प्रदूषण का कारण बनता है, तो हम उनके भी रोकथाम की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक पत्तलों की बात कर रहे हैं, बर्तन बैंक की बात कर रहे हैं। तो एक तो ये बात, और क्या करें हम हरी चादर बिछाएं, रैपिडन जोन को हम ज्यादा मजबूत करें, वानिकी और उद्यानिकी पौधे और उसी के माध्यम से आजीविका सृजन की भी गतिविधि हो। ऐसा नहीं हो कि हम जब इकोसिस्टम बैलेंस कर रहे हैं तो किसी की आजीविका बाधित हो, वो भी उपार्जन हो, महत्वपूर्ण बात है। ऐसे ही एक जिले में सिंगरी नदी है जो नरसिंहपुर की लाइफ लाइन है, उसके भी पुनर्जीवन का काम किया जा रहा है और उसमें न केवल जन सहयोग, जैसे कि मैडम ने बताया कि उसमें लगभग 2 माह तक जिले के विभिन्न विभागों की जेसीबी और 200 जैसी बड़ी मशीनें लगभग नदी को उसके कोर्स करेक्शन के लिए मदद करती रही, बेंच बनाने का काम किया। फिर बाद में उसमें माननीय मंत्री जी ने उसमें हमको लगभग कुछ प्रोजेक्ट सेंक्शन किया है करीब 4 करोड़ रुपए का, जिसमें कि हम शहर से पहले के 4 गांवों में नदी पुनर्जीवन के काम के साथ साथ रिवर फ्रंट भी डेवलप कर रहे हैं और समाज को एक अच्छी गतिविधि के रूप में उसको देने का काम कर रहे हैं।
1: जी, अगर देखा जाए तो एक पूरे पारिस्थितिकी को, एक पूरे इकोसिस्टम को पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। रजनी मैम, प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में अमृत सरोवरों और जल संरक्षण को लेकर के नरसिंहपुर जिले की सराहना की गई, तो आप नरसिंहपुर जिले की कलेक्टर हैं, 2013 बैच की युवा आईएएस अधिकारी हैं, कैसा महसूस कर रही हैं आप?
2: देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब जिले का नाम मन की बात में लिया गया तो हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। जिले के लिए एक राष्ट्र स्तर पर जिले का नाम आना निश्चित रूप से, और आपके काम को इतना बड़ा एक रिकग्निशन मिलना अपने आप में हम सब के लिए बहुत उत्साह और गर्व का विषय रहा है। और इससे हमको और प्रेरणा मिली है, जो आपने अभी लक्ष्य की बात भी की थी कि जो हम अभी हमने काम किया है वो बस एक प्रारंभ है, जैसे सीओ साहब ने बताया, तो हमें बहुत प्रेरणा मिली है कि हम अपने इस काम को और आगे बढ़ाएं। और बरसात के बाद, जैसा अभी पहले भी जिक्र में आया कि हमारे पास सारी ऐसी भूमियां हैं जहां हम लोग निखाली कराई है हमने, तो वहां पे हम लोग अभी तो हमने छोटे संरचनाएं बनाई हैं। हमारा प्लान है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो उनका एक मुख्य विषय रहता है अमृत सरोवर को लेके, तो हम लोग इन क्षेत्रों में, भूमियों में बड़े बड़े सरोवरों का निर्माण कराएं। और विशेष रूप से अगर हम देखें ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बड़े तालाब होते हैं, तो बहुत, एक तो आप जो हम कहते हैं कि एक आपका जल स्तर है उसको बढ़ाने में मदद मिलती है, और बेसिक जो आपका सरफेस वाटर है अगर वो हमने रोक लिया तो वो उस क्षेत्र की जो रूटीन की आवश्यकताएं हैं, चाहे जानवरों के लिए पेयजल की बात करें या सिंचाई की बात करें या फिशरीज की बात करें, तो जो कृषि को लाभ का धंधा बनाने वाला वो भी माननीय

0: मंत्री जी का एक बहुत ही प्रिय प्रोजेक्ट है, तो उसमें भी सहयोग मिलता है। तो हम लोग प्लान यही है कि हम जो ग्रामीण एक अर्थव्यवस्था है उसको किस तरह से सभी चीजें समन्वित करके उसको बढ़ाने का प्रयास कर पाए। निश्चित रूप से हम लोग अपना जो हमारा अभी बारिश के बाद का समय होगा उसके लिए हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं कि हम कैसे इन सभी भूमियों पर कुछ बड़े तालाब और निर्मित कर पाएं। और प्लांटेशन बेसिकली एक सेकेंड लेवल है जल संरक्षण का, जब आप संरचनाएं बनाते हैं उसके अलावा प्लांटेशन करते हैं। तो हम लोग लगभग 500 एकड़ भूमि पे फेंसिंग करके उसकी प्लांटेशन की मतलब कुछ जगह 200 एकड़ पे लगभग कर लिया है और बाकी आगे प्लान है। तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रोत्साहन से जिले को एक नई ऊर्जा मिली है और काम करने की हमारी पूरी टीम बहुत उत्साहित हुई है और विभिन्न माध्यमों से हमको जो बधाइयां मिली हैं मन की बात में नाम आने से, तो हम अब एक नई ऊर्जा से इसमें काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम जितना अभी हमने काम किया उससे और अधिक प्रगति लाएं। और जिले में निश्चित रूप से जो पानी की जो समस्या है जो अभी फील नहीं हो रही है लोगों को, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी जल संरचनाएं या नदियां जैसा सीओ साहब ने बताया वो है, तो अभी हमारी वो चिंता का विषय नहीं है, लेकिन कुछ वर्षों बाद 10 वर्षों बाद तो चिंता का विषय बनेगा,
1: बन सकता है।
0: तो हमारी योजना यह है कि जब वो विषय बने उसके पहले ही हम इतना कुछ काम कर लें कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को उस समस्या का सामना न करना पड़े, उनके पास एक बेहतर जल की व्यवस्थाएं हो। और इसके लिए लगातार हम लोग जन समुदाय को भी हमें प्रशासनिक भी बहुत सहयोग मिल रहा है, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी हैं उनका लगातार मार्गदर्शन सहयोग मिलता रहता है, क्योंकि आरडी की मैक्सिमम स्कीम आरडी की होती है। तो स्थानीय स्तर पर निश्चित रूप से बहुत हमको सहयोग मिल रहा है सभी, मैं कहूँ स्तर है समाज के, चाहे वो राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो, समाज हो, संस्थाएं हो, सबका सहयोग मिल रहा है। और हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जो हमें एक उपलब्धि मिली है हमारा नाम जिले का लेके उसको हम और आगे बढ़ाएं, यही हम प्रयास कर रहे हैं।
2: निश्चित रूप से नरसिंहपुर जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर आना आपके साथ साथ पूरे जिले के लिए एक प्रेरणादायी उपलब्धि है। क्या संदेश आप देना चाहेंगे जल संरक्षण के लिए, सरोवरों के संवर्धन के लिए, जल स्रोतों के संवर्धन और संरक्षण के लिए, और व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से कैसे लोग इसमें अपना योगदान दे सकते हैं?
0: देखिए, अगर हम अपने मतलब देश की बात करें या प्रदेश की बात करें, तो आज की स्थिति में हम सब लगातार देख रहे हैं कि जल की कमी हर जगह महसूस हो रही है। और जितना हम उपयोग कर रहे हैं, जितना पर कैपिटा आवश्यकता है और कितना हम उपयोग कर रहे हैं, एक तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर है, मतलब बहुत ज्यादा पर व्यक्ति उपयोग किया जा रहा है जल, क्योंकि अवेलेबिलिटी अच्छी है इसलिए। और दूसरा, जो आज से हम कहें 10 वर्ष या 15 वर्ष पहले जो स्थिति थी आपके वाटर लेवल की, ग्राउंड वाटर लेवल की, वो बहुत डिप्लीट हो गई, हर जगह डिप्लीट हुई है। तो इवन जो आपके बहुत नदियों के कछार वाले क्षेत्र हैं जो बहुत अच्छी जल उपलब्ध है, वहां पे भी जल के संकट के स्थितियां आ गई हैं। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि जल संरक्षण में सरकार जरूर एक, क्योंकि प्रशासन का ये, सरकार का ये काम होता है कि जो चीजें वो प्लानिंग करे और उनको एग्जीक्यूट कराए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो समस्याएं जनता को झेलनी है उसमें उसकी जिम्मेदारी सरकार पे होती है। लेकिन जल संरक्षण ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां आज की स्थिति में पानी नहीं है और पानी को लेकर कितने सारे विषय हो रहे हैं। तो एज अ पर्सन हमें अपने व्यक्तिगत, घर की बात करें, अपने ऑफिस की बात करें, या हमारे खेत हैं, किसान हैं, हमको अपना प्रयास करना चाहिए कि हम जो एक इस अभियान में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नारा भी दिया गया कि खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, उस भावना से काम करें। और अपना जो भी परिसर, जितना बड़ा भी घर है, जितना बड़ा हमारा क्षेत्र है, उसमें अगर हमने जल संरक्षण का प्रयास कर लिया तो एटलीस्ट हम एक एक छोटे छोटे प्रयास से, हम जानते हैं मून मून सागर भरता है, बड़ी अच्छी कहावत है, तो हम सबको अपना व्यक्तिगत प्रयास करना चाहिए। और जो बड़े लेवल के प्रयास हैं वो तो शासन के माध्यम से हो ही रहे हैं, वो किए जा रहे हैं, लेकिन कम से कम हर व्यक्ति अगर इसमें पार्टिसिपेट करेगा तो निश्चित रूप से इसका असर दिखेगा। और हमने भी यही प्रयास किया है, जो हम लोगों ने अभियान चलाया है उसमें हमने यही प्रयास किया है कि जैसे हमने लगभग 4,000 SHG की महिलाओं के माध्यम से सोकपिट और बोरी बंधान के काम कराए, जिसमें कोई राशि खर्च नहीं हुई। तो बेसिकली इस पूरे अभियान का, या तो पंचायतों के माध्यम से या तो इसमें और समुदाय के माध्यम से, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि लोग इस अभियान से जुड़े, लोगों को व्यक्तिगत रूप से महसूस हो कि ये हमारा काम है, ये किसी सरकार का या किसी का काम नहीं है, ये हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है, हमारे पीढ़ियों का भविष्य जुड़ा है, इसलिए हमें ये काम करना चाहिए। तो प्रयास ये है कि हर एक ऐसा रूफ जिसमें पानी धारण करने की क्षमता हो उसका पानी जमीन में जाए, हर एक खेत जिसमें पानी भरता है, हमने किसानों से चर्चा की है कि अपने खेत में छोटी जगह जहां भरता हो वहां वो ऐसा कुछ सोकपिट जैसा बनाए जिससे पानी कम से कम भरे नहीं और उनके लिए उपयोगी हो। तो इसके लिए बड़ा एक, हम कहें, जन आंदोलन जैसा विषय है जो सबको इसकी माता समझनी पड़ेगी। लेकिन प्रयास ऐसे धीरे धीरे शुरू होते हैं और आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रयास हुए हैं जो आगे जाके बहुत उसके बड़े इम्पैक्ट हुए हैं। तो हमारा बस यही जिले में प्रयास है कि हम ऐसे ही मतलब लोगों को, जब भी हम किसी जगह जहां भी लोग होते हैं, जहां जन समुदाय होता है, चौपाल में चर्चा करते हैं कि भाई इसको कैसे आगे बढ़ाना है, तो लोगों के दिमाग में इस बिंदु को लाना कि ये एक एसेंशियल आवश्यकता है, ये बहुत जरूरी है, और वही हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और समुदाय व्यक्ति, सरकार, सब

0: मिलके जब काम करेंगे तब हम, मैं चाहे जिले की बात करूं, प्रदेश की या देश की, तब हम जो ये जल की आवश्यकता है, जल की जो स्कार्सिटी है, उससे लड़ पाएंगे और उसको अपने भविष्य में जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए सुनिश्चित कर पाएंगे उपलब्धता। यही हमारा लगातार प्रयास है और उसी भावना को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं।
1: गजेंद्र सर, आपने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है। उसके बाद जल संरक्षण हो, अमृत सरोवर हो, कैच द रेन या ग्राउंड वाटर रिचार्ज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, आपने इस क्षेत्र में लगातार मैदानी स्तर पर परिणामदायी कार्य किए हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं जल संरक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज को लेकर के? कौन से ऐसे व्यक्तिगत प्रयास किए जा सकते हैं? और जैसा कि आप जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं, हम ये भी जानना चाहेंगे सामूहिक रूप से किस प्रकार के प्रयास किए जा सकते हैं इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए।
2: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विजन है या जो उनकी अपेक्षा है हम सभी लोगों से, वो अगर जल संरक्षण के लिए है तो वो वास्तव में आवश्यक है। और आप देखें तो वर्ल्ड वाइड वाटर स्कार्सिटी की स्थिति है और क्लाइमेट चेंज भी इससे जुड़ा हुआ विषय है, खासकर स्वच्छ जल और आपके निस्तारी प्रयोजन के लिए होने वाले जल की उपलब्धता बहुत कम है। भारत यूनिसेफ के एक रैंकिंग में भारत में उपलब्ध जल का केवल 18% वाटर जो है वो उपयोगी है आपके लिए, जो कि अदरवाइज वो पॉल्यूटेड है या कुछ अलग तरीके का कारण से है। तो ये विषय ऐसा है जो हर तरीके से लोगों के प्राथमिकता का विषय होना चाहिए। और अगर मैं नरसिंहपुर की बात करूं तो हमारे पास 3 लाख हेक्टेयर के आसपास भूमियाँ हैं, 2,40,000 परिवार हैं। तो जो मैडम के भी हमारे कॉल हैं, वो हम अपेक्षा ये करेंगे कि प्रत्येक किसान इसमें शामिल हो और अपने खेत में वो लो रिच जहाँ है हम वहाँ पर रिचार्ज पिट बनाएं, असफल बोरों को फिर से जीवंत करें, क्योंकि एक धारणा है जल के लिए कि स्रोतों से पानी लो और स्रोतों को पानी दो
3: जी।
2: तो जो
3: जी।
2: स्रोत हमें देते देते सूख गए हैं उनको अगर हम वापस भर सकें तो हम नहीं तो अगली पीढ़ी उसको उपयोग कर पाएगी। तो आज की जो एक चुनौती है, मैं मानता हूँ कि क्लाइमेट चेंज भी उसका एक घटक है, तो हम उस पे जाके काम करना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि समाज का प्रत्येक वर्ग हर स्थिति में जो जहाँ जैसा हो वो रियल टाइम आज उसमें कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करे। तो एक ये धारणा के साथ नरसिंहपुर आगे बढ़ रहा है।
1: जी बिल्कुल। श्रोताओं, अमृत सरोवर, जल संरक्षण, कैच द रेन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंड वाटर रिचार्ज, इन विषयों का उल्लेख करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जुलाई माह के मन की बात कार्यक्रम में नरसिंहपुर जिले का जिक्र किया था। इन्हीं विषयों पर हमने चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया था हमारे अतिथि विशेषज्ञों को, श्रीमती रजनी सिंह, कलेक्टर जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, और श्री गजेंद्र सिंह नागेश, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नरसिंहपुर मध्य प्रदेश। हमें बता दें कि नरसिंहपुर जिले में अमृत सरोवरों के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और जल संरक्षण के कार्य आप दोनों के ही नेतृत्व में, आप दोनों के ही मार्गदर्शन में प्रभावी रूप से संचालित किए गए हैं। विभिन्न विभागों, जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय नागरिकों के समन्वित प्रयास से अमृत सरोवरों का पुनर्जीवन सुनिश्चित हुआ है, जिससे जल संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, भूजल संवर्धन को भी नई दिशा मिली है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय देकर हमसे विस्तार में चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: नमस्कार।
4: नरसिंहपुर के अमृत सरोवर, ये रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी जबलपुर के सौजन्य से प्राप्त हुई। अब पोस्टबॉक्स नंबर 111 में लीजिए आपको सुनवा रहे हैं ऐसी ही एक प्रेरित करने वाली भेंट वार्ता, कैच द रेन। अतिथि हैं श्री भरत भाई तिलवा, ट्रस्टी गिर गंगा परिवार ट्रस्ट, श्री दिलीप भाई सेकिया, संस्थापक ट्रस्टी और अध्यक्ष गिर गंगा परिवार ट्रस्ट। भेंट करता है हितेश कुमार मावाणी, कार्यक्रम प्रमुख, आकाशवाणी अहमदाबाद।
5: दिलीप भाई और भरत भाई, आपका आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में हार्दिक अभिवादन है, स्वागत है।
6: नमस्कार।
5: सबसे प्रथम हम दिलीप भाई से जानेंगे कि आपको ये जल संचय कामगिरी है उसकी प्रेरणा कब मिली और इसके लिए किन परिस्थितियां जवाबदार हैं?
6: बेसिकली मैं किसान का बंदा हूँ, अभी भी मैं और मेरे फादर खेतीबाड़ी कर रहे हैं, मेरे पास भी पशुपालन का काम है, 200 गिर की गायों है। तो मैंने चीज देखा कि जिस साल बारिश होती है ना, इस साल मेरे को गाय को चारा मुफ्त मिलता था, जिस साल बारिश नहीं होती है इस साल मेरे को वो परचेस करना महंगा पड़ता था। किसान के साथ साथ मैं वहाँ के भारतीय किसान संघ का अध्यक्ष बना, तो इस समय में मैंने बहुत गांव का प्रवास किया किसानों को मिले। उस समय मेरे को सबसे बड़ी अगर किसान की ओर विस्तार की समस्या अगर कोई दिखाई देने वो दिखाई दी पानी। मैंने नजदीक से जुया कि मेरी स्वराज की धरती के किसानों को अगर पूरा पानी मिल जाए ना तो हमारे देश की 140

0: करोड़ जनता का पेट भरने जैसा अनाज पैदा करने की ताकत वहाँ की जमीनों में भी है और वहाँ के किसानों में भी है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होती थी पानी। इस जगह पे एक समय 20-30-40 फीट पे पानी था। वो पानी धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे बहुत गहराई पे 100-200-500 हजार कहीं कहीं जगह पे तो 2000 फीट पे गहराई पे चला गया। वहाँ के किसानों की जो भी आमदनी होती है ना, वो आमदनी का 25% पानी ढूंढने में जा रही है। तो उस विषय की एक प्रेरणा मिली कि इस समस्या का रोल बहुत समझा। तुमने देखा तो बारिश तो हो ही रही है फिर भी पानी नहीं है। तुमने थोड़ी भौगोलिक रचना का अभ्यास किया क्योंकि वो सौराष्ट्र की धरती है। यहाँ पे 1200 किलोमीटर का दरिया किनारा है, वहाँ की धरती पथराड़ और डूंगरा है, बारिश गिरती है, लेकिन वहाँ जरूरत है इतना रोकने का, छोटे मोटे चेक डैम और तालाब न होना हिसाबे 80-90% पानी समुद्र में चला जाए। तो इस विषय की गंभीरता हमको समझ में आ रही और उसके बाद हमने इस विषय पे काम शुरू किया लोगों को जोड़कर ये पानी हम कैसे बचा पाए।
1: दिलीप भाई आप ये भी बात कीजिए कि सौराष्ट्र रीजन में जो 1984-85-86 में जब 3 साल लगातार बारिश नहीं हुई थी तो उस दौरान कैसी परिस्थिति थी?
0: एक समय था वो हम बात किया जाए कि यहाँ से 40-50 साल के पुराने की बात है। इस समय में क्या हालत थी कि वैसे कोई साधन भी नहीं थे तो जमीन में से पानी भी निकाल नहीं रहे थे हम लोग। और इस समय गुजरात के अंदर 3 साल का 85, 86 और 87 इन 3 साल में ऊपर से बारिश नहीं गिरी। फिर भी एक बात तो सही है कि वहां पे लोग सहन कर गए। उसका एक विजन था कि ऊपर से बारिश नहीं गिरी थी, जमीन के अंदर पानी कहीं ना कहीं पड़ा था। लेकिन उस समय में राजकोट को इतने दुष्काल के समय में देखो कि वहां पे उस समय में बस्ती भी कम थी फिर भी ट्रेन से पानी वहां पे आया था। और इसके बाद लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आई और यहाँ के सीएम ने भी वहां पे मेहनत की। और वो समय था कि बहुत सारे छोटे मोटे चेक डैम बने थे और वो चेक डैम बनने के बाद वो वहां के विस्तार में किसानों में और विस्तारों में थोड़ी सी मजबूती हुई, लोगों दो पैसा कामने लगे, थोड़ा सा विकास हुआ और राष्ट्र को वहां पे फायदा भी हुआ। मैंने जब देखा कि सबसे बड़ी समस्या पानी है तो उसको कैसे जोड़ा जाए, तो मैंने 3 साल तो मेहनत की गवर्नमेंट में रजूआत करने के लिए। तो काम इतना बड़ा था, ये प्रोसेस गवर्नमेंट भी अच्छी तरह से कहीं ना कहीं काम कर रही है लेकिन ये प्रोसेस इतनी बड़ी थी। तो मैंने बोला कि अगर कोई भी कामयाबी चाहे ना तो इसमें लोक आंदोलन होना चाहिए, लोक जागृति होनी चाहिए। तो हमारा एक एनजीओ था गीर गंगा परिवार जो हमने गायों के लिए तैयार किया था और ये हमने पानी के विषय में काम शुरू कर दिया। धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे लोगों को जोड़ जोड़ के हमने काम शुरू किया। पहली शुरुआत हमने की थी कि एक चेक डैम को रिपेयर किया। 2022 में हमने काम की शुरुआत की थी।
1: तो भरत भाई आपको ये जल संचय कामगिरी में कैसे आपकी रुचि उत्पन्न हुई?
2: पहली बार गिरंगा परिवार का मेरे को आमंत्रण दिया गया प्रेसिडेंट हिसाब से। मैंने पहली बार दिलीप भाई को सुना, उसकी जो बात में जो लगाव और प्रेम था पानी बचाने का, उसी संदेश से मेरे को प्रेरणा मिली कि गिरगंगा परिवार जो काम कर रहा है इसमें उसका पर्सनल ज्ञातिवाद वगैरह कोई जन समुदाय का सबका भाग वाला इसे काम कर रहे हैं, तो मेरे को उसके साथ जुड़ने की प्रेरणा हो गई। तब से मैं गिरगंगा परिवार के साथ में उसका सार्थी तरीके से जुड़ा रहता हूँ।
1: भरत भाई आप स्वयं अपनी जो फैक्ट्री है वहाँ पर भी आप ये हर महीने आपका ये प्रैक्टिस रहता है और साथ ही में आप अपने जो इंडस्ट्रीज है दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको भी आपने प्रेरित किया है, तो इसी तरह से हर महीने कितना कंट्रीब्यूशन होता है और जो गीर गंगा परिवार ट्रस्ट के आप डोनेशन करते हो?
2: अभी ये 2 महीने पहले की प्रक्रिया है, अभी शुरुआत हुई उसकी। कभी कभी जब भूख लगती है तो खाने के कोई ना कोई संशोधन कर ली, इसी भी इनमें से एक शोध बनाई, इनमें से एक प्रेरणा का फर्स्ट सब्जेक्ट। अभी मेरी कंपनी में इसकी कॉलेज की तरफ बहुत स्टूडेंट लोग आए थे, कंपनी के हर जगह पर एक एक बॉक्स रखा है, आगे का रिजल्ट के बाद आएगा, मालूम नहीं रिजल्ट सही आएगा ऐसा पक्की बात है, लेकिन कितना आएगा मैं आपको बता नहीं सकता लेकिन आएगा पक्का।
1: आपने बहुत अच्छी बात बताई भरत भाई। आइए हम फिर से दिलीप भाई से प्रश्न करते हैं कि कैच द रेन जल संचय कामगिरी के अंतर्गत आप कौन कौन सा कार्य कर रहे हैं?
0: हमारे देश भारत की सबसे बड़ा अगर कोई काम है तो वो किसानों का काम है। अभी तक हमारा देश की पहचान भी विश्व के अंदर खेती प्रधान देश से हो रही है और सबसे बड़ा पानी का यूज होता है वो तो किसान एग्रीकल्चर में हो रहा है। तो इतना बड़ा देश और इतनी बड़ी प्रवृत्ति चल रही है तो इस देश का जब बड़ा प्रधान कोई सूत्र देता है जल संचय जन भागीदारी, इस सूत्र को सार्थक करना है। तो इसके हिसाब से हमारी संस्था ने तय कर दिया कि पानी की एक भी बूंद हमको समुद्र में नहीं जानी है। तो इस

0: को किस तरीके से किया जाए, बहुत अभ्यास किया जाए। हमारा जो भी अभ्यास है वो अभ्यास से हमको जो सीखना मिला तो इसमें दो तीन चीज हमको जाना। पहली चीज होती है कि वहां की भौगोलिक रचना को देखना पड़ता है। हमारी गुजरात की अगर बात किया जाए तो गुजरात में दो चीज है। हमारे अहमदाबाद के ऊपर मध्य गुजरात और दक्षिण गुजरात में हम जब जाए ना तो वहां पे माटी और रेताड़ का प्रदेश है, वो जमीन ऐसी है। लेकिन हम सौराष्ट्र की अगर चला जाए तो वहां पे पथराड़ और डूंगराड़ है। तो पानी स्टोरेज की बात है तो सौराष्ट्र की धरती में सबसे बड़ा पानी का स्टोरेज का कोई उपाय है तो छोटे मोटे चेकडैम और तालाब, इस विषय में अगर भार दिया जाए तो अच्छी बात होती है। लेकिन ये रूलर की बात हुई, क्योंकि मैंने बोला ना कि 80% पानी तो एग्रीकल्चर में जा रहा है। लेकिन अभी सिटी भी बड़े हो रहे हैं, लोग गांव छोड़ के सिटी में क्यों आ रहे हैं, उसका भी अगर विजन दिखा जाए तो वो पानी आएगा। तो हमने लोगों को बचाया कि सिटी के अंदर पानी कैसे रोका जाए। तो दरेक लोगों की एक जिम्मेदारी होती है, उसका साल का जो भी पीने का पानी है ना, वो स्टोरेज का, बारिश का पानी का टंकी हर घर पे होना चाहिए। जमीन के अंदर बारिश का पानी स्टोरेज किया जाए, पहला तरीका। दूसरी बात, अभी तक हमको जब भी पानी की जरूरत पड़ती है तो हम जमीन से पानी निकाल रहे हैं। तो अब हम ऐसा बोर करें कि हम बोर करके जमीन को पानी रिचार्ज किया जाए, उसके बाद अगर बोर नहीं ले रही है पानी तो ही हम बाहर पानी निकालने देंगे। लेकिन गांव के लिए सबसे अगर बड़ी चीज है तो कुआं रिचार्ज, हम कुआं रिचार्ज करवा रहे हैं। जितने भी बोर है किसानों ने किया, जो फेल हो गए हैं, जिसमें पानी नहीं है, वो बोर रिचार्ज करना है। सभी किसान के खेत में छोटी मोटी खेत तलावड़ी बनाना है। मैं बोलता हूँ गांव के आगेवानों को, 25 इंच बारिश, 25 इंच बारिश अगर गिरती है और इस बारिश गिरने के बाद हमारे गांव की बॉर्डर के बाहर अगर बारिश का पानी निकला तो वहां के गांव के आगेवानों की दीर्घ दृष्टि में कहीं ना कहीं कुछ क्वेरी है, उसको सुधारनी चाहिए। इस विषय में लोगों को समझाकर बस एक ही काम है, डैम बनाना, चैम ऊंडा करना, गहराई करना और खेत तलावड़ी बनानी, कुआं रिचार्ज करना और बोर रिचार्ज करके हम ये संस्था काम कर रही है। हम जब गांव में विलेज में मीटिंग करते हैं ना, लोगों को जुड़ते हैं, तो उस समय एक प्रसंग मेरे को याद, मैं सबको बताता हूँ, अगर हमने एक डंपर माटी अगर तालाब से निकाल कर अगर हमने बाहर डाल दी तो वो लॉन्ग टाइम के लिए 10,000 लीटर पानी की जगह होगी। एक बार खर्चा करना है, मैं बोलता हूं अगर पानी में कोई 1,00,000 रुपया लगाता है ना तो राष्ट्र को 1 करोड़ का फायदा होता है।
1: कैसे?
0: क्योंकि एक बार डैम खोदने का खर्चा होता है, बाद में 100 साल चलेगा। तो क्या होगा, बार बार, एक बार पानी आया तो पानी की कीमत अमूल्य है। पानी की कोई कीमत, अगर पानी की कीमत समझना है ना तो हम रण में जाए देखते हैं, तरस बताते हैं पानी की क्या कीमत होती है। किसान बताता है कि जब उसका पाक सूखता है पानी की क्या कीमत होती है। अगर पानी की कीमत हमको समझनी है ने तो हमको ये विस्तार से हम समझाएगा तो क्या होता है कि एक बार खर्चा करने से बार बार लाभ मिलता है, वो पानी और चेक डैम का तरीका होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं लोगों को कि एक बार पानी में रुपया लगाने से क्या हुआ, जिस गांव में हमने काम किया ने उस गांव में खुशहाली आने देख, मैंने देखा। हमारे यहाँ के 2-3 गांव का मैं उदाहरण देता हूं। हमारे जामनगर डिस्ट्रिक्ट में कालावड़ तहसील के पास एक वरणा गांव है, इस गांव के पानी 700-800 फीट की गहराई पे पानी था। वहां पे लोगों ने, हमने जोड़ा, 2-3 मीटिंग की उसका, थोड़े लोग जामनगर रहते, थोड़े राजकोट गांव में, सभी जगह पे मीटिंग की और गांव लोगों ने चेरी की एकता करके वहां डैम करना शुरू किया। इस गांव में गर्मी के दिन में तो गांव को बोर करने का मशीन आता है हर साल और किसानों का 1 करोड़ रुपया लेके जाती थी। और वहां पे अगर बोर को शुरू करने के 1-2 किसानों के बोर में अगर पानी ज्यादा हो गया तो उस साल 2-3 करोड़ लेके जा रही थी। लेकिन जब किसानों के एकटा करके वो चेक डैम तालाब बनाने का शुरू किया, लास्ट 3 साल में उस गांव में बोरवेल आनी बंद हो गए तो वो किसानों का रुपया बढ़ा बचा। बाद में जो पानी 800 फीट पे था वो पानी 30-40-50 फीट पे आ गया और पूरे अगले गर्मी में वो गांव में ज्यादा से ज्यादा गर्मी के दिन में भी कोप लगा, तो वो सबसे बड़ा फायदा होता।
1: दिलीप भाई, आपने उस गांव में कैसे काम किया, जल संचय की कामगिरी के, जो जहाँ पर बोरवेल के मशीन नहीं आनी बंद हो गई?
0: बहुत सारे ऐसे गांव की उदाहरण है, लेकिन एक बात मैं अगर बताऊं, हमारा गिर गंगा का तरीका होता है। मैं मानना चाहता हूं कि लोगों को जागरूक, जैसे जन आंदोलन के बिना कामयाबी नहीं होगी, वो मेरा सूत्र है, तो लोगों को कैसे जोड़ा जाए, तो हमारा एक छोटा सा तरीका होता है। हम जब गांव में जाते हैं ना तो गांव को पहले देखने के बाद वहां पे एक मीटिंग करते हैं, लोगों को एक छोटी सी गांव सभा बोला जाता है, वहां पे हम समझाते हैं लोगों को पानी का महत्व समझाते हैं और वहां पे ही गांव की एक 10-11 लोगों की कमिटी बनाते हैं, वहां भी चैरिटी करते हैं और वो चैरिटी गांव में ही रखते हैं। वो चैरिटी का वही टीम के सदुपयोग करके हमने काम शुरू करते हैं। जिस गांव की बात की मैंने, एक वरणा की बात की, ऐसा एक टोडी गांव है, भावनगर।

0: डिस्ट्रिक्ट के सीहोर तालुका का टोडी गांव है। वहां पे एक विपस्याना केंद्र के जैन समाज के ग्रुप के आर्थिक सहयोग से वहां काम शुरू किया, जो समझना की बात है। उस गांव में भी पानी की यही हालत थी। क्षत्रिय समाज का गांव है, 800-900 फीट पे पानी, और वो डुंगराल प्रदेश का गांव। अगर बारिश चौमासे के दिन में अगर बारिश कम होती है तो चौमासु पाक भी फेल हो जाता था। उस गांव में हमने एक सीरीज ऑफ डैम बनाना शुरू किया, एक ही गांव में 15-17 डैम बना पाए। इस साल हम गर्मी में गया था ना, तो वो पहले दूसरे तीसरे लास्ट वाले डैम से नदी बह रही थी गर्मी के दिन में। वो किसान की अगर वो प्रसंग हमको महसूस करना है ना, तो वहां को किसान को मिलना चाहिए। अगर किसान को पानी मिल जाए ना, तो उसकी 90% खुशियां मिल जाती है। तो वो हमने देखी, तो वो यहाँ की गांव की खुशियां अगर देखा जाए, क्योंकि पानी है सबको, 90 समस्या के एकमात्र विकल्प है तो पानी है। किसान क्या बोलते हैं ना कि पशु को खुराक मिलता है, पंखियों को चण मिलता है, लोगों को रोजगारी मिलती है, अच्छा अनाज पैदा होता है। हम क्या है ना, हरियाली और खुशहाली गांव में अगर देखना है ना, तो पानी बचाना है। वो हमने नजदीक से देखा है।
1: बहुत ही उम्दा तरीके से बताया जल संचय की कामगिरी। भरत भाई, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने आसपास के लोगों को आप कैसे जल संचय की कामगिरी में आप लोगों को प्रेरित करते हैं।
2: जो भी पानी साहब ने जो बताया पहले, हर आदमी पानी बचाए और कम बिगाड़े, तो इस सूत्र है कि पानी जितना बिगाड़े इतना कम बिगड़े। ऐसी जो समझदारी की बात है, हम तो बिजनेसमैन है, खेती बाड़ी तो है नहीं, लेकिन उतना समय पानी बना भी नहीं सकते। बचाने की कोशिश करने के साथ समझदारी सबको देते हैं।
1: हम जो सोसाइटी में रहते हैं, तो वहाँ पर शहरी विस्तार और ग्रामीण विस्तार दोनों विस्तार है। तो आप जब भी सेमिनार का आयोजन करते हैं जल संचय के बारे में, तो शहरी विस्तार और ग्रामीण विस्तार, उसमें से आपको कैसा प्रतिभाव मिलता है?
2: ज्योत से ज्योत जलाने का मैं पहला काम करता हूँ। हर जगह मैं एक ही काम करता हूँ, दिलीप भाई को सुने और पानी बचाने क्या फायदा गैर फायदा होता है उसके बारे में मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ। मालूम नहीं है, कभी टेस्ट नहीं किया। तो मैंने हमारी सोचा, जब भी बात हुई मैं दिलीप भाई को बार बार बुलाता हूँ और जो सुनता है, सुनने जो भी प्रेरणा मिलती है, वो प्रेरणा से आगे आगे बात काम बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ।
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 111 कार्यक्रम जारी रखते हुए दिलीप भाई से पूछेंगे कि आपके जल संचय की कामगिरी में आपको सरकार की ओर से किस तरह से सपोर्ट मिलता है?
0: हमारी गिर गंगा की जो पानी का काम में गवर्नमेंट की अगर बात किया जाए, तो वो पहले तो मैं सोच रहा था कि जब हम गांव में काम करने जाते हैं, तो गांव में क्या होता है, लोक भागीदारी से सब प्रकार का काम होता है। गांव में गेट भी बनता है, गांव में समाज भी की बाड़ी भी बनती है, गांव में बेंच भी लगाया जाता है, गांव में स्मशान भी अच्छी बनती है, गांव में मंदिर का भी जीर्णोद्धार हो जाता है। लेकिन जब पानी की बात होती है, तो लोगों में साइकोलॉजी होती है कि क्या काम गवर्नमेंट करेंगे। तो इस विषय के लिए हमको बहुत संघर्ष करना पड़ता था कि गवर्नमेंट करेगी ऐसा दिमाग में क्यों है। तो ये बात भी सही है कि जिस समय जिस काम किया था सब गवर्नमेंट में किया था, तो लोगों की मानसिकता में आया था कि पानी का काम गवर्नमेंट में। तो इस विषय में लोगों को भी भावना है कि गवर्नमेंट में इसमें जुड़े। तो जब हमारी संस्था का काम करना के शुरुआत की, तो हम तो लोक भागीदारी से लोगों को जोड़ना करते थे। लेकिन इस देश के बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने जब सूत्र दिया, इस सूत्र को बार पहली बार हमारे देश में जल शक्ति मंत्रालय तैयार की, और इस मंत्रालय का काम कर रहे सीआर पाटिल साहब। सीआर पाटिल जी ने गिर गंगा परिवार को खूब प्रोत्साहित किया है, और कभी भी छोटे मोटे कोई भी प्रोग्राम गिर गंगा का होता है तो सर का आशीर्वाद रहता है। मेरे को मालूम है कि लोकसभा के अंदर भी सर ने गिर गंगा एनजीओ का नाम लिया कि वहां पे एनजीओ अच्छा काम कर रहे। राज्यसभा ने अंदर भी यहाँ के एमपीओ ने काम किया कि गिर गंगा अच्छा काम कर रहे। तो ये गवर्नमेंट के जो भी लोग गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, वो भी हमारी सराहना कर रहे थे। दूसरी बात, जल शक्ति मंत्रालय ने अगले साल बेस्ट एनजीओ का अवार्ड भी हमको गिर गंगा को दिया है। तो इससे क्या हुआ, हमारी प्रेरणा बढ़ी, हमको हिम्मत मिली। हम कहीं भी काम करते तो लोकल वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के जो भी कलेक्टर होते हैं, वो भी अधिकारियों को सूचना देते हैं कि गिर गंगा जब काम कर रही है तो हमको उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जितनी भी मदद करेंगे लेकिन उसकी काम में कहीं रुकावट नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से, इस होप्स के हिसाब से हम बड़ा काम कर पा रहे हैं। तो इस हिसाब से और आगे अभी भी नया नया प्रोजेक्ट गवर्नमेंट बना रही है कि इस साल कुछ गवर्नमेंट के हिसाब से आर्थिक सहयोग भी कैसे मिल पाए। ये चल रहा है, लेकिन वो गवर्नमेंट की प्रोसेस होती है। ये प्रोसेस अगर खत्म होगी तो आर्थिक भी सहयोग कुछ ना कुछ मिलेंगे। लेकिन उसने जो हमको वो कहीं ना कहीं आर्थिक के बिना जो भी मदद की है, वो बढ़िया की है, और इस हिसाब से काम आगे बढ़ रहा है सर।
1: दिलीप भाई, आप ये जो जल संचय कामगिरी कर रहे हैं, तो हमारे श्रोताओं को प्रेरणादायी बात बताइए और श्रोताओं के लिए संदेश भी बताइए।
0: मैंने पहले भी बोला था, लास्ट भी बोल रहा हूँ कि पानी कोई बना नहीं सकता, बिना पानी से काम हो नहीं सकता। पैर नहीं है फिर भी चलता है पानी, जीव नहीं है फिर भी जिंदा रहता है पानी। ये पानी की मूल्य है, ऐसा कीमती और अमूल्य पानी बचाना है वो गवर्नमेंट एक का काम नहीं है। हम

0: देशवासी भारत देश के सभी लोगों का यह धर्म है कि सभी को साइकिल चलानी है तो पानी की जरूरत है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े इंजीनियर फट फट के इतना आगे बढ़ गए, इतने आगे बढ़ गए, वो मंगल और चंद्र पे चले गए, वहां जाकर भी पानी ढूंढ रहे, तो हम यहाँ पानी क्यों ना बचा पाए। तो ये पानी बचाने का सभी लोगों का धर्म है। तो गिरगंगा परिवार का तो एक ही ध्येय है कि हम मेरे जन्मदिन में डैम कैसे बना पाए। जब मेरे लड़के का जन्मदिन है तो उसमें डैम बनाए। जब मेरे स्वजनों की मृत्यु होती है, मेरे मम्मी और फादर, मेरे दादा दादी जो भी है, उसका नाम काम डैम क्यों ना बना पाए। ऐसे तरह से हम लोगों को जोड़ रहे हैं, समझा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों को मैं बोलता हूं कि अगर राष्ट्र का विकास करना है, सभी समस्या का विकास करना है ना, तो आप पानी में ध्यान दीजिए। सभी कंपनी के CSR एक्टिविटी में अगर पानी पे लगाए जाए ना, तो देश की 90 समस्या खत्म हो जाएगी। बाकी कोई भी सहाय है ना, वो लोगों को आरसू कर रहे। मैं छोटा सा प्रसंग देता हूँ। थोड़े दिन पहले अमेरिका का एक भाई हमारे संस्था पे आए, बोले मेरे को जल्दी है, मेरे पास वक्त नहीं है, आप एक मिनट में आपकी संस्था को समझा दो। मैंने बोला आप दो बड़े डोनर मेरे को ढूंढ के दीजिए जो 10-10 करोड़ रुपया लगाते हैं, मैं आपको अच्छे दो गांव दिखाऊंगा। एक गांव में आपको 10 करोड़ रुपया गांव की सुविधा के लिए लगाना, लोगों की सुविधा के लिए, कि वहां पे गेट बनाना है बड़े बड़े, वहां पे बेंच लगानी है, वहां पे गार्डन एक बनाना है, वहां की अगर श्मशान है उसको अच्छी डेवलप करनी है, लोगों को मैरिज के लिए एक वाड़ी बनानी है, वहां के जितने भी मंदिर है वो मंदिरों को जीर्णोद्धार करना है, नया बनाना है। और दूसरे गांव में 10 करोड़ मात्र के मात्र जल संचय में, कि वहां चेक डैम बनाना, तालाब बनाना, बोर रिचार्ज, कुआ रिचार्ज, डैम बड़ा करना है, तो सिर्फ के सिर्फ जल संचय में लगाना। 5 साल के बाद दोनों गांव की आप विजिट करने, क्या फर्क मिलेगा। जिस गांव आपके जड़ संचय के लिए आपने जो रुपया लगाए ना, उस गांव ने दूसरे गांव का 50% काम लोग भागीदारी से कर दिया होगा। और जिस गांव में आपने लोगों को सिर्फ सुविधा दी है, तो वहां के वही बेंच में बैठे बैठे वो हमारे राज्य के आगेवान को सिखाते रहेंगे कि इन लोगों को देश चलाना नहीं आता है। तो कहने का मेरा इरादा है कि पानी है तो खुशहाली है। तो पानी अगर मिल जाए ने, बाकी की सुविधा लोगों को आरसू करने की सुविधा है। तो बड़ी बड़ी कंपनी को मेरे हिसाब से पानी में ध्यान देना चाहिए, अपने अपने विस्तार में पानी लगाना चाहिए। मेरे वहां पे दो प्रसंग है छोटे। एक अमरेली डिस्ट्रिक्ट का एक किसान का फोन आया था कि दिलीप भाई, मैंने मेरी अगले साल दिकरी की शादी की थी, तो इस शादी में मैंने जो खर्चा तय किया था वो कर कसर से मैंने खर्च किया, तो इनमें से 2 से 2.5 लाख मेरा बचा। लेकिन मैंने रुपया तो दिकरी के नाम में इकट्ठा किया था। मैं सोच रहा था एक साल से कि इस रुपया के मैं क्या करूं, लेकिन आपको सुनने के बाद मेरे को एक विचार आ रहा कि 2-2.5 लाख मेरे पास है, 2-2.5 लाख में और आपको ढूंढ के देता हूं। मैंने जिस गांव में दिकरी दिए ना, इस गांव में मेरे को 4-5 लाख रुपया का छोटे मोटा एक चेक डैम और तालाब बना दीजिए। मेरे को मेरी दिकरी को करियावर में वो गांव में चेक डैम देना है। विचार चला। मेरे जामनगर डिस्ट्रिक्ट में सोठा गांव के एक भी एक मीटिंग चल रही थी। कहने का मेरा इरादा है, सभी लोगों में अगर ये जागृति आए ने, तो और कामयाबी होगी। ऐसा दूसरा एक प्रसंग है, जामनगर डिस्ट्रिक्ट के कालावड़ तहसील का एक सोरठा गांव है, वहां पे चालू गांव की सभा में एक बुजुर्ग खड़े हुए मेरे साथ आके वो मेरे को बोला कि आप सर 2 मिनट रुकिए, मेरे 2 लड़के इधर है, आप इसको खड़ा कीजिए। दोनों लड़के को खड़ा किया, तो वो बुजुर्ग ने क्या बोला, बुजुर्ग ने बोला कि खबरदार, मेरे मरने के बाद आपने कोई खर्चा किया है, अगर आपको मेरे पास कुछ करना है तो मेरे नाम का गांव का तालाब खोद डालना। तब मेरे को बहुत खुशियां मिली। ये अवेयरनेस है ना, वो जागृति का काम कर रही है। तो ऐसे छोटे मोटे अवेयरनेस से लोग हमसे जुड़ रहे हैं और हम इस गांव को आगे बढ़े रहे।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्तुत्व दिया है जल संचय से जनभागीदारी, और मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने उल्लेख किया है कैच द रेन, तो जल संचय के इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में राजकोट स्थित गिर गंगा परिवार ट्रस्ट के स्थापक प्रमुख दिलीप भाई सखिया और साथ में ट्रस्टी भरत भाई टिलवा उद्योगपति, आप आकाशवाणी अहमदाबाद स्टूडियोज में आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।
2: कैच द रेन। बचपन में जब बारिश होती थी हम सब कागज की नाव बनाकर बहते पानी में छोड़ दिया करते थे और खूब खुश होते थे। लेकिन क्या कभी आज हमने ये सोचा कि जिस पानी को हम बहकर नदी नालों में जाते हुए देखते हैं, वही पानी अगर जमीन के अंदर चला जाए तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के बहुत काम आ सकता है। इसी सोच को हकीकत में बदलने के लिए राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा शुरू किया गया एक बेहद खास अभियान कैच द रेन। कैच द रेन सिर्फ सरकार का कोई कागजी अभियान नहीं है, बल्कि ये हम सब की जिम्मेदारी और

हमारे कल की सुरक्षा की चाबी है। छतों से टपकते पानी को सहेजना हो, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना हो या अपने इलाके के सोखता गड्ढों की सफाई करना हो, हर एक छोटा कदम हमारे गिरते भूजल स्तर को वापस ऊपर उठा सकता है। तो हम सभी अपनी ओर से जल संरक्षण का भरपूर प्रयास करेंगे। इसी संकल्प के साथ मैं नीलम मलकानिया कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। कल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। सिक्किम के नाथुला दर्रे के रास्ते से होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा कल संपन्न हो गई। इसके माध्यम से 464 तीर्थयात्रियों ने 10 जत्थों में यात्रा की। यह यात्रा 20 जून को आरंभ हुई थी और अंतिम जत्थे के गंगटोक आने के साथ ही संपन्न हो गई। तीर्थयात्रियों ने चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात कर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की है। भारतीय उच्चायोग ने कल बताया कि इस बैठक के बाद तेल और गैस सहयोग पर सरकार से सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन और इंडियन ऑयल कॉर्प लिमिटेड तथा मॉरिशस के स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के बीच एक समझौते का आदान प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश के सागर जिले में गदेरी नदी के तेज बहाव में फंसे 9 लोगों को पुलिस, राज्य आपदा मोचन बल और होमगार्ड की संयुक्त टीम ने सुरक्षित बचा लिया है। 22 अगस्त को भारी बारिश के कारण गुफाओं वाले इलाके में नदी का जलस्तर बढ़ गया था। इसके बाद

आकाशवाणी दिल्ली का अहम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपके साथ आपके रात की हम सफ़र मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकेंड। गीत सुहाने प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ के साथ।

फिल्म का नाम ओपेरा हाउस और आवाजें थी लता मंगेशकर और मुकेश की, संगीत चित्रगुप्त का और गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी साहब। ये फिल्म 1961 में प्रदर्शित हुई थी और ये एक रहस्यमय फिल्म थी जिसका निर्माण किया था ए नाडियाडवाला ने और इस फिल्म को निर्देशित किया था पीएल संतोषी ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी अजीत, बी सरोजा देवी, केएन सिंह और ललिता पवार ने। अगला गीत फिर से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में।

हरियाली और रास्ता मूवी से सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में, संगीत शंकर जयकिशन का और गीतकार शैलेंद्र साहब। ये फिल्म आई थी 1962 में और इस फिल्म को निर्देशित और निर्मित किया था विजय भट्ट ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी मनोज कुमार और माला सिन्हा ने। ये फिल्म मनोज कुमार की पहली हिट फिल्म थी और इस फिल्म में शंकर यानी मनोज कुमार, शोभना, माला सिन्हा और रीता यानी कि शशिकला के बीच एक त्रिकोणीय प्रेम को बहुत ही सुंदर ढंग से दिखाने की कोशिश की गई है। अगला गीत महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

धूल का फूल फिल्म से सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में, संगीत दत्ता नायक का और गीतकार थे साहिर लुधियानवी। ये फिल्म आई थी 1959 में और इस फिल्म का निर्माण किया था बी आर चोपड़ा ने और निर्देशन किया था यश चोपड़ा साहब ने। यश चोपड़ा की ये निर्देशक के रूप में पहली फिल्म थी, हालांकि नया दौर फिल्म में वो एज ए सहायक निर्देशक के रूप में काम कर चुके थे। सातवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में माला सिन्हा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और मुखराम शर्मा को सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए नामांकित भी किया गया था। अगला गीत गीता दत्त और आशा जी की आवाज़ में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाश

100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफ़र मंजू। वक्त हुआ है 1:46 और 2 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म दिल एक मंदिर से सुन रहे थे आप ये गीत। गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीत था शंकर जयकिशन का। ये फिल्म आई थी 1963 में और ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसका निर्देशन सीवी श्रीधर ने किया था और इसकी पटकथा लिखी थी राज बलदेव राज ने। और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार, मीना कुमारी, राजकुमार और महमूद ने अभिनय किया था। इस फिल्म के सभी गाने बहुत लोकप्रिय हुए। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट रही थी। और अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

दिल का हाल कहते रहना चाहिए, क्योंकि दिल का हाल कहने से दिल हल्का रहता है। फिलहाल गीत सुहाने में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी कि 2 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। अब से फिर मुलाकात होगी 2:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र को मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। कल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिन का यह सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। मध्य प्रदेश के सांची सब पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन आज शाम करीब 5 बजे वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। भारत सरकार के पोस्ट ऑफिस आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत इस पोस्ट ऑफिस का नवीनीकरण किया गया है। सांची की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए इसकी इमारत को नया और आधुनिक रूप दिया गया है। सांची सब पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, आधार और पार्सल जैसी सेवाएं मिलेंगी। लोग डाक और वित्तीय सेवाओं का लाभ भी आसानी से उठा सकेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। ईरान ने कहा है कि हॉर्मूज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाजों को अब तेहरान को सेवा शुल्क नहीं देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि इस फीस में समुद्री पर्यावरण लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। सरकारी प्रसारक के अनुसार यह कदम हॉर्मूज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक कार्रवाई योजना के अनुच्छेद 3 को मंजूरी मिलने के बाद उठाया गया है। दूसरी ओर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस अहम जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। उन्होंने एक तस्वीर साझा की जिसमें हॉर्मूज जलडमरू मध्य को अमरीका का नया इलाका दिखाया गया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, झारखंड, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना है। महिला हॉकी विश्व कप में नीदरलैंड के एम्स्टेलवीन में कल रात खेले गए दूसरे राउंड के अपने आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारतीय महिला टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। इस नतीजे के बाद ज्यादा गोल करने के नियम के कारण ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष एब्राहम। Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India.
1: हमें ऐसा एक aura खड़ा कर देना चाहिए कि इस field में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई startup से जुड़ जाओ, भारत की कोई space agency से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा talent pool जो है एक magnet की तरह हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
2: Mr. Modi stated this during an interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on National Space Day yesterday, PM Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures. During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. Indian Council of Medical Research has clarified that no new strain of H1N1 commonly known as swine flu has been identified and there is no cause for panic, assuring that current vaccines remain effective. According to senior scientists at the ICMR, these viruses have been in circulation since the year 2025. According to ICMR, seasonal influenza, including H1N1, is mostly self-limiting. Common symptoms include fever, cough, headache and body ache, and most people recover with appropriate care and rest. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reached Moscow on a two-day official visit to Russia. During the visit, the minister will co-chair the 27th session of the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade and Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation. He will also meet Russian Foreign Minister Sergey Lavrov and exchange perspectives on regional and global issues. Union Home Minister Amit Shah will attend the 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. The two-day conference will be held in hybrid format, combining physical and virtual modes. Over 850 officers from various security forces and police forces from across the country will deliberate on various contemporary matters and challenges to national security during the conference. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will be on a four-day visit to Japan from today till the 27th of this month, travelling to Tokyo, Nagoya and Osaka, leading India's largest ever business delegation to Japan. The delegation comprises more than 200 business representatives. The Commerce and Industry Ministry said that the visit reflects the scale of ambition both nations bring to their special strategic and global partnership and comes at a time when India and Japan are looking to significantly deepen trade and investment ties. The BRICS Sports Ministers' meeting concluded at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh with unanimous adoption of the Sports Joint Declaration. The declaration reaffirms the commitment of the member countries to strengthen cooperation in sports through dialogue, mutual respect and inclusiveness. The meeting was held under India's BRICS Chairship 2026. Iran has said that vessels from authorized countries transiting the Strait of Hormuz will now be required to pay service fees to Tehran. Iran's National Security Commission spokesperson Ibrahim Rezaei stated that the fees will cover a wide range of maritime, environmental and logistical provisions. According to state broadcaster, this comes after the approval of the Article 3 strategic action to ensure the security and progress of the Strait of Hormuz plan. In football, East Bengal FC entered the main draw of the AFC Women's Champions League 2026-27 by beating Malaysia's Sabha FC 2-0 in the final Group A preliminary stage match in Kota Kinabalu. In men's cricket, India were 300 for 5 in the first innings against hosts Sri Lanka at stumps on day 1 of the second and final test in Colombo. Dhruv Jurel and Sarang Jain were at the crease of the draw of stumps last evening. The India Meteorological Department has issued an orange alert for very heavy rainfall at isolated places over Chhattisgarh, Bihar, Odisha, East Madhya Pradesh today. Meanwhile, parts of the national capital received light to moderate rainfall. The weather agency predicted cloudy sky.

प्रेम करते हुए कभी कभी मैंने महसूस किया है कि तुम्हारा कोई हिस्सा मेरे अंदर आ चुका है। प्रेम करते हुए कभी कभी मैंने महसूस किया है कि तुम्हारा कोई हिस्सा मेरे अंदर आ चुका है। कभी कभी मैंने तुम्हें मुझसा बर्ताव करते हुए देखा है। इस प्रमाण के साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्रेम दो व्यक्तियों को एक दूसरे के भीतर अमर कर देता है। सौदशमलविक मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12:03। रात सुरमई प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रात सुरमई एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम रात को महसूस करते हैं बातों के साथ और गीतों के साथ। तो चलिए फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ।

जब मोरनी आधी रात को बोल रही है तो फिर हमें डर किस बात का। चले आइए और जुड़ जाइए मेरे साथ यानी आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, साथ वो जो साथ साथ चले। अगला गीत आप ही के लिए।

इतनी छोटी सी बात हमें समझ नहीं आती कि दिल उसे देना है जो जान दे दे। कई बार तो इस छोटी सी बात को समझने में हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और हम इस ज़िंदगी की सच्चाई को समझ ही नहीं पाते। जिंदगी में हम उसे ढूंढते हैं जिसे हम चाहते हैं, है ना, जबकि होना तो ये चाहिए कि तलाश उसकी हो जो हमें चाहता हो। क्या समझे? अगला गीत आप ही के लिए।

0: क्या कर रहा हूँ?
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ू?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझूं?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
0: आओ ना।

0: जब प्यार में इतना खुल्लम खुल्ला ऐलान हो ही चुका है तो फिर क्या गिला और क्या शिकायत। मोहब्बत में शायद सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि किसी का हाथ थामकर हमें बस इतना कहना होता है कि ये सफ़र जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। अगर आपको प्यार में इजहार करना नहीं आता तो फिर ये अगला जो गीत है ट्रेनिंग के लिए आप ही के लिए।
1: ओहो, अरे कोई सांस तो छेड़ो, झुका के सर को पूछो, मैडम हाउ डू यू डू।
2: नहीं नहीं नहीं भाभी, ऐसे नहीं, एक्टिंग करके बताओ।
1: झुका के सर को पूछो मैडम।

0: ऐसा क्या?
1: अब तुम करके दिखा, कैसे बोलोगे?
2: How do you do?
1: How do you do?
2: I love you.
1: ओहो, I love you इतनी जल्दी नहीं रे बाबा।

0: I like you.
1: अब तुम्हारे भेजे में बात आई, अब आगे बढ़े।
0: ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो,
2: अरे तू भी चुप हो जा।
0: खामुखा बीच में बजाता रहता है। अच्छा भाभी, अगर वो नहीं शर्माई तो?
1: अरे पागल बुद्धू, वो अगर नहीं शर्माई तो कोई और शर्माएगी।
3: ऐसा क्या?
1: हाँ।

0: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन
1: डन
0: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गलियों पे निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

वर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

और तुम गए तो कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? हाँ, ये सवाल इतनी मासूमियत से पूछा गया कि वो बेबाक बादल ठहर गया, वो उसी गली बरस गया, वो उसी शहर में बस गया। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:43 और 15 सेकंड। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई।

एक बात कहूँ आपसे, जुबान से कहीं ज़्यादा, जुबान से जो बातें कही जाती है उससे ज़्यादा भरोसेमंद बातें होती हैं आँखों की। क्या आपने कभी किसी की आँखों में अपने लिए वो प्यार देखा है? अगर देखा है तो फिर आपसे ज़्यादा सौभाग्यशाली कोई और इंसान नहीं। अगला गीत आप ही के लिए।

जब दिल किसी एक इंसान को चुन लेता है तो फिर भीड़ में भी नजरें उसी इंसान को ढूंढने लगती है ना। लाख चेहरे सामने आते हैं लेकिन दिल बार बार कहता है कि उसी इंसान को ढूंढा जाए, उसी इंसान को तलाशा जाए। मोहब्बत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि दिल हजारों लोगों, लाखों लोगों के बीच सिर्फ और सिर्फ एक इंसान का हो जाता है।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर हमराही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी अर्चना बिसारिया। मुझे यानी अपनी रात की हम सफ़र मंजू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है।

0: श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारतीय स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, तो एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। कल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। यह दिवस हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिन का यह सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। मध्य प्रदेश के सांची सब पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन आज शाम करीब 5 बजे वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। भारत सरकार के पोस्ट ऑफिस आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत इस पोस्ट ऑफिस का नवीनीकरण किया गया है। सांची की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए इसकी इमारत को नया और आधुनिक रूप दिया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरू जिले के मुसुनुरु गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान वे मुसुनुरु में भारत का पहला गैर अनुवांशिक रूप से संशोधित उच्च विस्तार क्षमता वाला पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज जारी करेंगे। साथ ही किसानों को सम्मानित करेंगे तथा कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों और अन्य प्रतिभागियों को भी संबोधित करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरू में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। यह सम्मेलन जनजातीय भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। इससे देश भर में जनजातीय संग्रहालयों और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मजबूती मिलेगी। यह सम्मेलन प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के रोड मैप को आगे बढ़ाता है, जिसके अंतर्गत भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को पुनर्जीवित करना और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी समुदाय पीछे न छूटे समावेशी राष्ट्रीय विकास के प्रमुख स्तंभ हैं। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उड़के करेंगे। ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाजों को अब तेहरान को सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि इस फीस में समुद्री पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। सरकारी प्रसारक के अनुसार यह कदम हॉर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक कार्रवाई योजना के अनुच्छेद 3 को मंजूरी मिलने के बाद उठाया गया है। दूसरी ओर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस अहम जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल की महिला टीम ने कल कोटा किनाबालू में एएफसी महिला चैंपियंस लीग 2026-27 के ग्रुप ए के आखिरी शुरुआती दौर के मैच में मलेशिया के सबा फुटबॉल क्लब को 2-0 से हरा दिया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation.

3:10 हुए हैं। दोस्तों आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम हमराही। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया।

दोस्तों कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें छुपाना चाहो भी तो दिल की खुशी चेहरे पर नजर आ ही जाती है। आंखें कुछ कहती हैं, मुस्कान कुछ राज खोल देती है, और फिर जमाना पूछता है आखिर माजरा क्या है। मोहब्बत जब दिल में दस्तक देती है तो उसकी आहट सिर्फ दो दिलों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसकी खुशबू आसपास के माहौल में भी महसूस होने लगती है कुछ इस तरह।

इस खूबसूरत गीत को हमने लिया था फिल्म ब्रह्मचारी से और आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की। दोस्तों कहते हैं प्यार की सबसे खूबसूरत बात ये है कि इसे वक्त की कसौटी पर परखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सच्चा प्यार हो तो वक्त बीतता जाता है मगर एहसास वही ठहरा रहता है। 60 के दशक का एक ऐसा ही बेहद प्यारा सा रोमांटिक नगमा है जिसे हम आपको सुनवा रहे हैं। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुरी की है। इसी खूबसूरत मासूम और अटूट भावना को सुर देती है इस गीत के जो बोल हैं वो इतने खूबसूरत हैं और शंकर जयकिशन का संगीत इसे और भी खूबसूरत बना देता है। अब जब बात ही कर रहे हैं इस गीत की तो हम नाम भी बता देते हैं। इस गीत को हमने लिया है फिल्म अप्रैल फूल से।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: हमराही कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, मोहब्बत में एक खूबसूरत पल वो होता है जब दिल किसी को अपना मान ले और फिर दुनिया की कोई भी दूरी उस एहसास को कम नहीं कर सकती। कभी किसी की मुस्कान दिल को अपना बना लेती है तो कभी उसकी आवाज़ यादों में बस जाती है और फिर धीरे धीरे पता ही नहीं चलता कि कब कोई अजनबी हमारी ज़िंदगी का एक सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाता है। तो आइए मोहब्बत के इसी मासूम और दिलकश एहसास के साथ सुनते हैं फिल्म आई मिलन की बेला का ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने।

यही तो मोहब्बत की खूबसूरती है। कुछ रिश्तों में शब्द कम पड़ जाते हैं क्योंकि एहसास खुद अपनी कहानी कहने लगते हैं, और जब दो दिल एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो पल किसी खूबसूरत गीत की तरह यादों में बस जाते हैं। तो आइए प्यार के उसी नर्म और खूबसूरत एहसास को महसूस करते हुए सुनते हैं फिल्म वक्त का ये खूबसूरत सा गीत, जिसे गाया है महेंद्र कपूर और आशा भोसले ने।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: 3:33 और 5 सेकंड हुए हैं। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 MHz पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, और आज मैं हूं आपके साथ इस कार्यक्रम में आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। दोस्तों, कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। उनकी धुन में जैसे कोई पुरानी याद धीरे से दस्तक देती है और दिल अनायास ही मुस्कुरा जाता है। कहते हैं ना, जब दिल में कोई बात हो तो जुबां खामोश हो, तो कभी कभी गीत वही बात कह जाते हैं जो हम खुद नहीं कह पाते। तो आइए यादों और मोहब्बत की इसी मधुर धुन में खो जाते हैं। सुनते हैं फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें का ये खूबसूरत सा गीत, आवाज सुमन कल्याणपुर और मुकेश की है।

दोस्तों, कभी-कभी कोई तस्वीर सिर्फ तस्वीर नहीं होती, वो किसी की याद बनकर दिल में उतर जाती है। फिर वक्त गुजरता रहता है, मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में वो चेहरा वैसा ही महफूज रहता है। कुछ रिश्ते पास रहकर भी अधूरे होते हैं और कुछ दूर रहकर भी दिल के बहुत करीब होते हैं। यादों की यही खूबसूरती है, इन पर वक्त का ना असर होता है ना दूरी का। आइए सुनते हैं माया फिल्म का ये गीत, आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

दोस्तों, मोहब्बत की यही तो खूबसूरती है कि किसी का होना हमारी नज़रों को भी एक नया नज़रिया दे देता है। फिर हर खुशी में उसी की झलक और हर धुन में उसी का एहसास सुनाई देने लगता है। तो आइए इसी खूबसूरत एहसास और दिलकश अंदाज के साथ सुनते हैं फिल्म बेटी बेटे का गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की।

दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें दूरियां भी मोहब्बत को कम नहीं कर पाती। बस एक आवाज़ और दिल को लगता है जैसे कोई बेहद अपना करीब करीब आ गया हो। मोहब्बत में इंतज़ार भी कितना खूबसूरत होता है, जब यकीन हो कि सामने वाला आपको याद करता है, आपकी आवाज़ सुनना चाहता है और बस एक पुकार की देर होती है। इसी प्यारे एहसास को अपने सुर में समेटे हुए है हमारा कार्यक्रम का ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म प्रोफेसर से।

एक खूबसूरत सा गीत था कांच की गुड़िया फिल्म से, आवाजें थी मुकेश और आशा भोसले की। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में कोई इंसान हमें इतना अपना लगने लगता है कि उसके बिना भविष्य की कल्पना भी अधूरी सी लगती है। लेकिन हर चाहत मुकम्मल हो ये जरूरी तो नहीं। कुछ रिश्ते दिल में उतरते हैं मगर किस्मत की किताब में उनका नाम नहीं लिखा होता। हम उन्हें भूलने की कोशिश तो करते हैं लेकिन यादें कहाँ इतनी आसानी से हमारा साथ छोड़ती हैं। शायद प्यार का एक सच ये भी है कि हर प्रेम कहानी का अंत मिलन नहीं होता। कुछ कहानियाँ अधूरी रहकर भी दिल में हमेशा पूरी लगती हैं। तो चलिए इसी एहसास के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। ये बेहद खूबसूरत और दर्द भरा सा नगमा है। फिल्म का नाम है प्रेम रोग और आवाजें सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की।

हमराही कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की मुझे यानी अर्चना विस्तारिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। कल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है। यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिन का यह सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। मध्य प्रदेश के सांची सब पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन आज शाम करीब 5 बजे वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। भारत सरकार के पोस्ट ऑफिस आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत इस पोस्ट ऑफिस का नवीनीकरण किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरू में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। यह सम्मेलन जनजातीय भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। इससे देश भर में जनजातीय संग्रहालयों और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मजबूती मिलेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरू जिले के मुसुनुरू गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान वे मुसुनुरू में भारत का पहला गैर अनुवांशिक रूप से संशोधित उच्च विस्तार क्षमता वाला पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज जारी करेंगे। साथ ही किसानों को सम्मानित करेंगे तथा कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों और अन्य प्रतिभागियों को भी संबोधित करेंगे। ईरान ने कहा है कि हॉर्मूज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाजों को अब तेहरान को सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि इस फीस में समुद्री पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। सरकारी प्रसारक के अनुसार यह कदम हॉर्मूज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक कार्रवाई योजना के अनुच्छेद 3 को मंजूरी मिलने के बाद उठाया गया है। दूसरी ओर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस अहम जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। उन्होंने एक तस्वीर साझा की जिसमें हॉर्मूज जलडमरू मध्य को अमरीका का नया इलाका दिखाया गया है। महिला हॉकी विश्व कप में नीदरलैंड के एम्स्टल वीन में कल रात खेले गए दूसरे राउंड के अपने आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारतीय महिला टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। इस नतीजे के बाद ज्यादा गोल करने के नियम के कारण ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंचा। इससे पहले दिन में नीदरलैंड ने चीन को 4-1 से हराकर बाहर कर दिया था। फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल की महिला टीम ने कल कोटा किनाबालू में एएफसी महिला चैंपियंस लीग 2026-27 के ग्रुप ए के आखिरी शुरुआती दौर के मैच में मलेशिया के सबा फुटबॉल क्लब को 2-0 से हरा दिया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build a global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India.
1: हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
2: Mr. Modi stated this during an interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on National Space Day yesterday, PM

4:10 हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और दोस्तों, ये वक्त है कार्यक्रम अरुणिमा का, और आपका एक बार फिर से कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ मैं, आपकी दोस्त अर्चना बिजारिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी में कुछ मुलाकातें हमें सिर्फ खुशी नहीं देती बल्कि हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं। किसी की निगाहों में मिली उम्मीद, किसी की बातों में मिला भरोसा, ये छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे सफ़र को खूबसूरत बना देती हैं। लेकिन असली खूबसूरती तब है जब हम किसी याद को अपनी कमजोरी नहीं अपनी ताकत बना लें। जो अच्छा मिला उसके लिए शुक्रिया, और जो छूट गया उसके मुस्कुराकर विदा कर दिया। तो आइए दिल की भावनाओं को हौसले की रोशनी में महसूस करते हैं फिल्म प्रेम पर्वत के इस खूबसूरत गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

अक्सर ऐसा होता है कि हमें लगता है कि जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा करके रख देती है जहाँ लगता है अब शायद कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, हालात चाहे जैसे भी हो, अगर हौसला जिंदा है तो कहानी अभी बाकी है। जिंदगी किसी दिन एक दिन की मोहताज नहीं होती। आज मुश्किल है तो कल आसान हो सकती है, आज रास्ता अनजान है तो कल मंजिल सामने हो सकती है। बस ज़रूरत है खुद पर भरोसा रखने की और हर सुबह एक नई शुरुआत करने की, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने डर से आगे निकल जाता है उसी दिन जिंदगी उसके नाम से मुस्कुराना शुरू कर देती है। इसी उम्मीद, आत्मविश्वास और जीत के जज्बे को महसूस कराता है फिल्म सन ऑफ इंडिया का ये खूबसूरत संगीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कभी कभी हमें लगता है कि जिंदगी तभी पूरी होगी जब हमारी हर चाहत पूरी हो जाएगी, लेकिन शायद जिंदगी की खूबसूरती इसी अधूरेपन में छिपी है। हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता, किसी को मंजिल मिलती है तो रास्ता मुश्किल होता है, किसी के पास रिश्ते होते हैं तो वक्त कम पड़ जाता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जिंदगी अधूरी है। जो मिला है उसकी कद्र करना और जो नहीं मिला उसके लिए उम्मीद बनाए रखना, ये भी तो जीने का हुनर है। कभी कोई कमी हमें मजबूत बनाती है, कभी कोई अधूरा सपना हमें आगे बढ़ने की वजह देता है। इसलिए अपनी कहानी की तुलना किसी और से मत कीजिए। आपकी राह, आपकी कहानी और आपकी रफ्तार सब आपकी अपनी ही हैं।

कभी कभी जिंदगी हमें रोकती है, थकाती है, रास्ते बदलने पर मजबूर कर देती है, लेकिन हर रुकावट का मतलब हार नहीं होता। कई बार वही मुश्किलें हमें उस इंसान में बदल रही होती हैं जो हम बनना चाहते हैं। बस फिर एक दिन दिल कहता है, अब डरना नहीं, अब पीछे नहीं हटना, जो भी है सामने है और मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। जिंदगी से शिकायतें बहुत की, अब जिंदगी को गले लगाने की बारी है। नए सपने हैं, नई उम्मीदें हैं और कदमों में फिर वही भरोसा है कि मंजिल चाहे कितनी ही दूर क्यों ना हो, रास्ता तय किया जा सकता है।

जिंदगी हमेशा हमारी पसंद के मुताबिक नहीं चलती, कभी खुशियां देती हैं, कभी चुनौतियां सामने रख देती हैं। लेकिन शायद जिंदगी को खूबसूरत बनाने का राज यही है कि हम हर रंग को स्वीकार करना सीखें। मुश्किल दिनों से घबराए मत, ये दिन हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि भीतर से मजबूत बनाने आते हैं। गिरे तो संभलिए, थके तो थोड़ा ठहरिए, लेकिन अपने सपनों से रिश्ता मत तोड़िए, क्योंकि जिंदगी से लड़ते रहने के बजाय कभी कभी उसे पूरे दिल से लगाना भी जरूरी होता है। जो मिला उसके लिए शुक्रिया, जो नहीं मिला उसके लिए उम्मीद, और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास।

4:40 और 32 सेकेंड हुए हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा मेरी यानी अर्चना बिसारिया के साथ। दोस्तों, जिंदगी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि दिल में उतर जाते हैं। किसी की एक अच्छी बात, एक सच्ची मुस्कान या हौसले से कही गई छोटी सी बात कभी कभी इंसान को फिर से खड़ा कर देती है। इसलिए अपनी बातों में मिठास रखिए और किसी के सपनों को छोटा करने के बजाय उन्हें उड़ान देने वाले शब्द दीजिए, क्योंकि शब्दों में बहुत ताकत होती है। वो किसी का दिन बदल सकते हैं, किसी का आत्मविश्वास लौटा सकते हैं।

ज़िंदगी हमेशा बड़ी बड़ी खुशियों का नाम नहीं होती, कभी कभी छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी उपलब्धियाँ और कुछ खूबसूरत पल मिलकर इसे खास बनाते हैं। हम अक्सर उस बड़ी मंजिल का इंतज़ार करते रहते हैं जहाँ पहुँचकर सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि सफ़र में मिलने वाले छोटे छोटे अनुभव ही हमें मंजिल के लिए तैयार करते हैं। इसलिए आज जो मिला है उसे महसूस कीजिए, छोटी जीत का जश्न मनाइए, अपने प्रयासों की कद्र कीजिए और हर नए दिन को एक नए मौके की तरह स्वीकार कीजिए।

दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि जिंदगी का सफर कभी सीधा नहीं होता। कहीं धूप है, कहीं छांव, कहीं उम्मीदें हैं तो कहीं ऐसे मोड़ भी आते हैं जो हमें भीतर से बदल देते हैं। लेकिन हर मोड़ अपने साथ कुछ नया सिखाकर जरूर जाता है।

इसलिए बीते हुए कल को बोझ बनाकर मत रखिए। जो अच्छा था उसे यादों में संजोइए, जो मुश्किल था उसे सीख लीजिए और फिर पूरे भरोसे के साथ आज को जीना शुरू कीजिए, क्योंकि जीवन की असली खूबसूरती मंजिल तक पहुंचने में नहीं बल्कि हर पल को महसूस करते हुए आगे बढ़ने में है।

अंत में सिर्फ इतना कहूंगी कि हर इंसान के भीतर एक अधूरा सा सपना, एक अनकहा सा गीत और किसी अपनी की तलाश छिपी होती है। कभी वो ख्वाबों में मिलता है तो कभी ख्यालों में, और जब ये एहसास हकीकत का रूप लेता है तो जिंदगी जैसे एक नया अर्थ पा लेती है। तो कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रही हूँ डैडी फिल्म का ये गीत, तलत अजीज और दिलराज कौर की आवाज़ों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरू जिले के मुसुनुरू गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति मुसुनुरू में भारत के पहले गैर आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज का विमोचन करेंगे। वे किसानों को सम्मानित भी करेंगे और कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों तथा अन्य प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि

0: ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। इस सम्मेलन में लोग इंटरनेट के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 तारीख तक 4 दिवसीय जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे और जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सांची उप डाकघर का उद्घाटन आज शाम करीब 5 बजे वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। भारत सरकार के डाकघर आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत इस डाकघर का नवीनीकरण किया गया है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में गडेरी नदी में तेज धारा में 9 लोग फंस गए, जिन्हें पुलिस, एसडीआरएफ और होमगार्ड की संयुक्त टीम ने सुरक्षित बचा लिया। सूचना मिलते ही बचाव दल घने जंगल और दुर्गम इलाके से होते हुए लगभग 4 किलोमीटर पैदल चलकर घटनास्थल पर पहुंचा। एसडीआरएफ के जवान तेज धारा के बावजूद नदी में उतरे और सभी 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। बचाव के बाद सभी की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें सुरक्षित पाए जाने पर उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाजों को अब तेहरान को सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि इस शुल्क में समुद्री, पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। राष्ट्रीय चिड़ियाघर नई दिल्ली ने कल अपने 11वें संडे बर्ड वॉक के साथ ट्री वॉक एट NZP का दूसरा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया। ये कार्यक्रम चिड़ियाघर की चल रही नागरिक विज्ञान पहल का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य जैव विविधता के प्रलेखन, निगरानी और संरक्षण जागरूकता में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भारतीय दिव्यांग पुरुष क्रिकेट टीम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि टीम भारत इंग्लैंड पुरुष मिश्रित दिव्यांगता T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज 2026 के लिए इंग्लैंड दौरे से लौट आई है। इसके साथ ही ये समाचार।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India.
2: हमें ऐसा एक aura खड़ा कर देना चाहिए कि इस field में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई startup से जुड़ जाओ, भारत की कोई space agency से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा talent pool जो है एक magnet की तरह हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: Mr. Modi stated this during an interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on National Space Day yesterday, PM Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures. During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. Union Home Minister Amit Shah will attend the 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. The 2-day conference will be held in hybrid format, combining physical and virtual modes. over 850 officers from various security forces and police forces from across the country will deliberate on various contemporary matters and challenges to national security during the conference. Vice President C.P. Radhakrishnan will visit Musunuru village in Eluru district of Andhra Pradesh today. During his visit, the Vice President will launch India's first non-genetically modified organism, GMO, high expansion popcorn maize hybrid seed in Musunuru. He will also felicitate farmers and address agricultural stakeholders and other participants. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reached Moscow on a two-day official visit to Russia. During the visit, the minister will co-chair the 27th session of the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade and Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation. He will also meet Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and exchange perspectives on regional and global issues. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will be on a four-day visit to Japan from today till the 27th of this month, travelling to Tokyo, Nagoya and Osaka, leading India's largest ever business delegation to Japan. The delegation comprises more than 200 business representatives. The Commerce and Industry Ministry said that the visit reflects the scale of ambition both nations bring to their special strategic and global partnership and comes at a time when India and Japan are looking to significantly deepen trade and investment ties. Indian Council of Medical Research, ICMR, has clarified that no new strain of H1N1, commonly known as swine flu, has been identified and there is no cause for panic, assuring that current vaccines remain effective. According to senior scientists at the ICMR, these viruses have been in circulation since the year 2025. According to ICMR, seasonal influenza, including H1N1, is mostly self-limiting. Common symptoms include fever, cough, headache and body ache, and most people recover with appropriate care and rest. The BRICS Sports Ministers' meeting concluded at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh with unanimous adoption of the Sports Joint Declaration. The declaration reaffirms the commitment of the member countries to strengthen cooperation in sports through dialogue, mutual respect and inclusiveness. The meeting was held under India's BRICS Chairship 2026. Iran has said that vessels from authorized countries transiting the Strait of Hormuz will now be required to pay service fees to Tehran. Iran's National Security Commission spokesperson Ibrahim Rezaei stated that the fees will cover a wide range of maritime, environmental and logistical provisions. According to state broadcaster, this comes after the approval of the Article 3 strategic action to ensure the security and progress of the Strait of Hormuz plan. In chess, India's 19-year-old grandmaster Pranesh M emerged as the champion in the prestigious Kanizsa Open 2026 in Nagy Kanizsa, Hungary, securing the Group A title with a superb performance. Pranesh defeated Vadim Petrovsky of Germany in the final round of the tournament. In football, East Bengal FC have lifted the Durand Cup for a record 17th time, ending a 22-year wait for the prestigious trophy after defeating arch rivals Mohun Bagan Super Giants 4-1 in the final in Kolkata last evening. And the IMD has issued an orange alert for very heavy rainfall at isolated places over Chhattisgarh, Bihar, Odisha, East Madhya Pradesh today. And that is the end of this news bulletin.

सुबह के 5:11 हुए हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम भोर सुहानी। एक बार फिर से मैं अर्चना बिसारिया आपका स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म लोफर से।

0: का फसाना।
1: दोस्तों ये गीत है किशोर कुमार की आवाज में फिल्म पंचली से।
2: अच्छा जी।
0: एक बहाना बन गया अच्छा
2: अच्छा

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: भोर सुहानी में आइए अब आपको सुनवाते हैं लव स्टोरी फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और अमित कुमार ने।